ये सब शायद शायर की खाम ख्याली हो, पता नहीं कैसी कैसी परछाइयों को गिरह लगा के बांध देना चाहता है। सब जमा करता है और कुछ हाथ नहीं आता। ये सब के सब सरकते हुए साए हैं, इनमें दर्द भी है रस भी। अजीब चीज है ये शायर, चाहे जितना उंडेलता रहे खाली नहीं होता।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: किसी का एक लाइन, नाउ इवन अगर कल बीत गया, इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पे रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आपको।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

भजन में भक्त ने भगवान के साथ ऐसे सुंदर सुंदर संबंध जोड़े हैं कि ना तो भक्त भगवान से दूर रह सकते हैं, ना भगवान भक्त से

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अपने आप को आज देखते हैं, हर रोज कुछ बातों को हमने एक ही तरह से रिएक्ट किया और करते करते वो मेरी आदत बन चुकी है। आज एक नया तरीका, अ न्यू वे ऑफ रिस्पोंडिंग, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मुझे खुशी, सेहत और सुंदर रिश्ते देगा, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मेरे लिए कंफर्टेबल एंड रॉयल होगा। आज अपनी किसी एक आदत, अपने किसी एक रिएक्शन को चूज करते हैं एंड देखें अपने आप को कि आज उसी परिस्थिति में अपने आप को एक नए तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए देखें। धीरे धीरे अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग, एक नया पैटर्न क्रिएट होना शुरू हो रहा है। This is the powerful being.
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों में उड़ान होती है। नमस्कार, मी आहे आपल्यासाठी शुभ असलेली शुभांगी।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एंगर इज अ वेपन जिसको हमने हर परिस्थिति में यूज करना शुरू कर दिया है। व्हाट वी आर नॉट रियलाइजिंग दैट वेपन डजंट वर्क, इट्स नॉट प्रोवाइडिंग एनी रिजल्ट, लेकिन फिर भी हम उसी शस्त्र को बार बार यूज करे जा रहे हैं और उससे चोट दूसरे को नहीं लगती उतनी ज्यादा, वो भूल जाएगा। बॉडी के अंदर भी उसका इफेक्ट होता है, माइंड पर भी होता है। तो अगर हम ये याद रख लें कि ये एक हथियार है मेरे हाथ में जिससे मैं दूसरों को मारने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका किसी और पर कोई अच्छा इफेक्ट नहीं होने वाला है, वो सिर्फ मेरा ही नुकसान करे जा रहा है, तो हम उसको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली खत्म कर देंगे। बहुत ईजी है खत्म करना, इट्स जस्ट दिस अंडरस्टैंडिंग, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। कि दूसरा, सबसे पहला निवारण यही होगा कि दूसरा मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, ये खुद मेरे हाथ में, तो आधा तो इसी से खत्म हो जाता है। क्योंकि अभी तक हमेशा कोई और मुझे गुस्सा दिला रहा, ये अंडरस्टैंडिंग ही अपने आप, क्योंकि मैं खुद से गुस्सा नहीं करना चाहूंगी जब मुझे समझ में आ गया कि उसका इतना डैमेज है, लेकिन मैं खुद से नहीं कर रही ना, आप मुझे दिला रहे, तो देन आई फील के नथिंग इज इन माई कंट्रोल, सो दैट इट सेल्फ चेंजेस सो मच ऑफ द पर्सपेक्टिव देखने का।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ओम शांति. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर स्वागत करते हैं आप सबका. हैप्पीनेस इंडेक्स की इस श्रृंखला में बहुत सी बातें सामने आई हैं, और अगर पिछली कड़ी को देखें तो याद आता है कि हमने बात की थी कि क्या एंटरटेनमेंट खुशी दे रही है. हम अभी तक ये सोचते थे कि हम टीवी जो देख रहे हैं या फिल्म देखने जाते हैं या किताब पढ़ लेते हैं वो हमें एंटरटेन करती है कुछ टाइम तक. मेरे थॉट्स जो मुझे तंग कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनसे मुझे दूर ले जाती है, मैं किसी और चीज में इन्वॉल्व हो जाता हूँ. लेकिन फिर ये बात समझ में आई थी कि क्यों कहा जाता है कि टीवी देखना या फिल्म देखना एक एडिक्शन बन सकती है, क्योंकि जैसे ही हम जो वहां सिचुएशंस हो रही थी उसमें इन्वॉल्व होते जाते हैं, उन्हें अपना थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसे चूज करने का हक उनको दे देते हैं. ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी बात थी, लेकिन जब इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, एक्सपीरियंस करते जाएंगे, हमें समझ में आता जाएगा. आज थोड़ा इसी बात को और आगे बढ़ाते हैं कि हाउ डज इट रियली वर्क. हमारा सौभाग्य हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी. ओम शांति.
1: ओम शांति.
0: इनफैक्ट सिस्टर शिवानी, इट्स लाइक अगेन आई कैन अंडरस्टैंड नाउ व्हाई पीपल से कि आप रोज हमारे साथ ड्राइंग रूम में होते हैं, बात कर रहे होते हैं, क्योंकि इट्स अ जर्नी. और हर बार हमारा जो अनुभव है, हम बात यहाँ कोशिश करते हैं समझें, फिर उसे जाके इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं. तो एक रिकैप लेना चाहेंगे आपके साथ कि व्हाट रियली हैपेंस जब मैं किसी भी टीवी के प्रोग्राम में या फिल्म में या नॉवल में इन्वॉल्व हो रहा हूँ.
1: इट्स नॉट दैट वी नॉट ट्राइंग टू से के हम ये नहीं देखें. फंडामेंटल ऑफकोर्स हम चूज करें क्या हम देख रहे हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो अंदर फीड हो रही है. सिर्फ अब ये ध्यान रखें देखते हुए भी कैसे देखें, यू नो, एंड इट्स एप्लीकेबल बोथ द प्लेसेस. जैसे मूवी को या टीवी को देखते हुए कैसे देखें, और वही चीज फिर आपकी प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में आएगी कि ये जो ड्रामा सारा दिन, इसको भी हम ड्रामा ही कहेंगे. माई जर्नी ऑफ लाइफ इज अ ड्रामा. व्हाई इज इट अ ड्रामा? बिकॉज एक सीन के बाद दूसरा सीन विद सो मेनी एक्टर्स इन्वॉल्व. तो दोनों तरफ हमें ये सीखने को मिलता कि ड्रामा की हर सीन को कैसे देखें. तो जब हम मूवी देखते या टीवी देखते, जस्ट वॉच योर सेल्फ. अगर आप हाफ एन आवर का सीरियल देख रहे हैं या 3 घंटे की मूवी देख रहे हैं, सिर्फ आज शाम को अगर आप कुछ देखें तो उसको देखते हुए अपने मन को बीच बीच में देख लेना कि वो कैसे कैसे.
0: एक्चुअली आई वॉन्ट टू शेयर व्हाट हैपेंड टुडे. मैं जब आ रही थी तो पहले मैं कुछ अपना सोच रही थी, ड्राइवर ने गाना चला दिया, वो मेरा सबसे फेवरेट गाना था. एकदम से मुझे स्ट्राइक किया, मैं गाना सुनने लग जाती हूँ तो मेरा थॉट खत्म हो जाता है. लेकिन मैंने इस बार चाहा कि नहीं, मैं जो सोच रही थी वो करती रहूं. बट उसकी अट्रैक्शन इतनी थी गाने की, गानों के शब्दों की, और तब मैंने देखा कि गानों के शब्द ना सिर्फ मुझे इन्वॉल्व करते गए बल्कि वो इमोशन भी क्रिएट होने, क्योंकि मैं देख पा रही थी, हम इस पे बात कर चुके थे इसलिए. तो अब मैंने सोचा कि नहीं, मुझे वो इमोशन तक नहीं जाना, मुझे वापस आना है अपने थॉट पर. पर मेरा मन नहीं था आने का मेरे को, क्योंकि उसमें एंजॉयमेंट मिल रही थी.
1: स्टिम्युलस था ना, वो एक स्टिम्युलस था जो मेरे अंदर वो इमोशंस क्रिएट कर रहा था. क्या होता, हैप्पीनेस या पेन दोनों चीज हॉर्मोन्स तो सिक्रेट करती है ना बॉडी के अंदर, एंड द माइंड नीड्स दैट क्रेविंग बट द बॉडी ऑल्सो नीड्स दोज हॉर्मोन्स. इफ आई एम वेरी वेरी स्टेबल, अगर मैंने प्रैक्टिस नहीं किया है, दिस ऑल्सो डिवेलप्स धीरे धीरे ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. लेकिन मेरी बॉडी की कुछ वो होती है, एडिक्शंस होती है, वो हॉर्मोन्स की मुझे आदत पड़ी हुई है, तो मुझे कुछ ऐसा बाहर से चाहिए होता है स्टिम्युलस, कि वो स्टिम्युलस आएगा, वो स्टिम्युलस मेरे अंदर वो इमोशंस क्रिएट करेगा, और जैसे वो इमोशंस क्रिएट होंगे मेरे बॉडी के अंदर भी वो हार्मोन सिक्रेट होंगे एंड आई फील गुड. जैसे कि मुझे वो चीज मिल गई जो वो चाहिए थी. फिर इवन भले वो दर्द के ही यू नो इमोशंस हो, वो एड्रेनालिन सिक्रेट हो, लेकिन वो सिक्रेट हुआ ना, वो बॉडी को जो चाहिए था वो सिक्रेट हुआ. आई फील गुड एंड देन आई से दिस इज एंटरटेनमेंट, यू नो, ये मुझे चाहिए, दिस मेक्स मी फील गुड, इवन इफ आई हैव क्राइड फॉर हाफ एन आवर. हाउ कैन आफ्टर क्राइंग यू फील गुड अदरवाइज? तो कोई लॉजिक ही नहीं. आप आधा घंटा पिक्चर देखा, आप कितनी बार रोए उसके साथ, यहाँ तक कि आपने हैंकी तक निकालना पड़ गया, एंड देन वी से आई फेल्ट गुड आफ्टर वॉचिंग द मूवी. वॉट फेल्ट गुड? समवेयर दोज इमोशंस गॉट क्रिएटेड, द बॉडी सिक्रेटेड व्हाट इट हैड टू डू, एंड आई वॉज लाइक ओके दिस इज वॉट इज माई नीड. जैसे ड्रग्स है, डैमेजिंग है, लेकिन बॉडी को आदत पड़ गई है ना, तो जब तक बॉडी लेती नहीं है उस चीज को,
0: वो
1: लेना उसको अनकंफर्टेबल लगता है. तो इसी तरह अगर मुझे एक पर्टिकुलर प्रोग्राम से वो स्टिम्युलस मिलता है, देन धीरे धीरे धीरे आई स्टार्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, कि ये तो मुझे देखना ही है. अगर आज मैं पहुंच नहीं पाई टाइम पर, या वो लाइट नहीं है घर में, वो प्रोग्राम नहीं आ रहा, या आई विल फील वेरी वेरी अनकंफर्टेबल. सो दिस इज लाइक जिसको किसी को वो नहीं मिला जो उसको उसकी आदत होती है. जैसे आपने वो सॉन्ग के साथ किया, नेक्स्ट टाइम हम सभी एक्सपेरिमेंट इसको करके देख सकते हैं कि जब हम कुछ देख रहे हैं, पहले जब हम बैठते हैं जस्ट देखने के लिए, आर माइंड इज क्वाइट स्टिल, यू नो. इनफैक्ट पहले तो आर माइंड इज विद अदर थॉट्स. सो दिस इज अबाउट वॉचिंग आर माइंड. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि जैसे ही हम आकर बैठे टीवी के सामने, पहले थोड़ी देर मेरे मन में कुछ और चल रहा है जो मैं छोड़कर आया हूँ अभी ऑफिस का काम या घर का. धीरे धीरे वो थॉट्स खत्म हो जाती है एंड यू विल एक्सपीरियंस अ लिटिल स्टेज वेयर यू आर इन, यू नो, नॉट टू मेनी थॉट्स. दिस माइंड इज बिकमिंग साइलेंट, क्योंकि ये वो वाली जो बातें लेकर आया था घर, वो बातें तो खत्म हो गई. तो ये माइंड थोड़ा थोड़ा स्टिल हो जाता है. ये जो स्टिलनेस की स्टेज है, ये है कि यू आर हियर, प्रोग्राम इज देयर, एंड आप उसको डिटैच्ड ऑब्जर्वर की तरह आप उस प्रोग्राम को देख रहे हैं. उसका इफेक्ट मुझ पर नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये बहुत थोड़ी देर रहता है. धीरे धीरे हमारी जो नेक्स्ट स्टेज आती, वो आती है कि हम जजमेंटल होना शुरू करते हैं. ऐसे क्यों बोल रहे हैं ये, ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे व्हाटएवर आवर ओपिनियन.
0: देखा उसने ऐसे किया तो अब ऐसे ही होना चाहिए. अब व्हाट नेक्स्ट,
1: इवन इन द क्रिकेट मैच ऐसे क्यों,
0: ये बॉल के.
1: यू सी, सो द सेकंड स्टेज बिकम्स जजमेंटल, कि हम अपना ओपिनियन चाहते हैं कि दैट इज हाउ इट शुड, ऐसे करते तो. इवन the actor's clothes we've seen or whatever, everything, I start becoming judgmental. जैसे ही हम judgmental शुरू हुआ, मतलब क्यों, क्या, कैसे के question mark की series में गए, ये जो stillness थी वो क्या होगी,
0: वो खत्म हो गया.
1: Because वो mind ऐसे ऐसे, ऐसा क्यों, ऐसे कैसे, ऐसे, तो the mind starts getting disturbed. वो stillness हमारी खत्म हो गई. So this was the second stage. The third stage जो आती कि हम उस character की स्टोरी के अंदर ही पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं. एंड दैट स्टेज विल बी कि वो कैरेक्टर जो इमोशन वहां एक्सपीरियंस कर रहा है, वो इमोशन आई स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग हियर. तो फिर आई एम टोटली इन द स्टोरी, लाइक पूरी तरह से. देन आई हैव नो अदर थॉट एंड देन आई, माय क्रिएटिविटी इज ओवर, बिकॉज नाउ आई एम ओनली क्रिएटिंग व्हाट दे आर क्रिएटिंग. मेरी अपनी अब कोई नहीं रह गई.
0: मेरे पहले तो मैं कर रही थी वैसे,
1: उससे पहले
0: जजमेंटल जब मैं हो रही थी.
1: पर जैसे जजमेंटल हुए तब क्या हुआ, क्रिएटिविटी नहीं थी. जैसे ही आप जजमेंटल होते हैं, आपकी एनर्जी तो उल्टा खत्म होने लगती है, क्योंकि आप किसी और को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते. आई कैन सिट अक्रॉस द टेलीविजन एंड कीप ऑन सेइंग व्हाट आई वांट टू से. मैं कितना भी जजमेंटल हो सकती हूँ, कैन आई डू एनीथिंग अबाउट इट. मैं आपका प्रोग्राम देख रही हूँ सामने से बैठकर, और मैं कहूँ ये नहीं पहनना चाहिए था, ये पहनना चाहिए था, ये सेट ऐसा नहीं, कैन आई डू एनीथिंग अबाउट इट. नो, आई एम थिंकिंग ऑफ दोज थिंग्स विच आर नॉट इन
0: बट माई कंट्रोल.
1: माई कंट्रोल,
0: बट आई हैव अ राइट टू हैव माई ओन ओपिनियन.
1: दैट्स ओके, दैट्स ओके, दैट्स फाइन, यू आर हैव अ राइट. लेकिन आप बस बैठे हैं और यहाँ आपका माइंड कंटिन्यूसली वो थॉट्स क्रिएट कर रहा है उन चीजों के बारे में जो आपके कंट्रोल में नहीं है. यूजफुल एनर्जी?
0: No, it can't be. Yes.
1: Useful energy?
0: Actually, I know, it's always, it's of no use.
1: It's a drain. ये आपका drain शुरू हो गया, कि जो वो stillness थी, वो आपका drainage शुरू हो गया, क्योंकि आप एक एक वो thought create कर रहे हैं जो आपके control में.
0: Actually, और इससे मुझे आदत भी पड़ती जाएगी.
1: Exactly. यही चीज तो फिर प्रैक्टिकल लाइफ में आएगी ना, डे टू डे.
0: हर एक को, oh yes.
1: जो आपने कहा, do I not have the right to have an opinion? Yes.
0: So then I'll have my right with
1: सारा
0: everyone.
1: दिन भी. ये बिल्कुल सेम चीज फिर रोज के ड्रामा में होती है ना. दैट्स व्हाट वी सेड, जो टेलीविजन के ड्रामा के साथ पहले प्रैक्टिस होती है, वही चीज फिर हैबिट बन गई, तो वही चीज फिर मेरे डे टू डे लाइफ में आती है. सो वी वेंट थ्रू दीज थ्री स्टेजेस, पहले स्टिलनेस, फिर जजमेंटल, एंड तीसरा तो पूरी तरह से इन्वॉल्व. एंड जब पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गई, तब तो अपनी थॉट क्रिएट करने की मेरी अपनी कैपेसिटी है वो भी भूल गया. मेरी थॉट की पावर मैंने टोटली उस प्रोग्राम को दे दी. नाउ दिस, because I'm doing every day, it's not ki I'm watching a movie just once in a while ya main TV dekh rahi hu once in a while, nahi, hum roz kar rahe hain. To koi bhi cheez jo roz karenge,
0: well, of course,
1: wo ban gayi meri habit. Ab jo humne pichli baar bhi dekha ki agar gussa office mein sirf kar rahe hain ye soch ke ki gusse se kaam hota, lekin wo meri agar ban jati hai habit, to wo habit mere sath har jagah
0: meri personality banti. Yes, now I understand it actually.
1: Ab ye tha, shuru kiya tha jab baith kar dekhna, मैं एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर, एक साक्षी दृष्टा थी, लेकिन आधे पौने घंटे के अंदर अंदर मैं उस ड्रामा के अंदर पूरी तरह से घुस गई. अब यही चीज फिर सारा दिन होती, क्योंकि अब मुझे हैबिट पड़ गई है. अब धीरे धीरे तो वो साक्षी दृष्टा होना कैसे वो ही हमें आज नहीं पता चलता. और इसलिए आज हमारी वोकैबुलरी ये हो गई है कि अटैचमेंट तो नेचुरल है, डिटैचमेंट, डिटैचमेंट का कॉन्सेप्ट कंफर्टेबल नहीं लगता लोगों को, बहुत कोल्ड लगता है कि हम बहुत स्टिल हैं, हम बहुत डिटैच्ड हैं, हमारे ऊपर असर क्यों नहीं पड़ रहा. लेकिन ये जो असर पड़ने का, प्रभाव पड़ने की आदत जो पड़ी थी वो इससे पड़ती है.
0: वो कंटिन्यू. इनफैक्ट अगर हम देखें, वो जब अभी हुआ था, जब मुंबई का जो अटैक हुआ था, तो उसमें मुझे कितने दिन तक, 2 दिन लगातार चला था, हम पूरा टाइम डिस्टर्ब्ड रहे थे.
1: लेकिन अब इसको ही अगर आप देखो, जो न्यूज में अगर कोई यस एक इंसिडेंट हुआ है, एब्सोल्युटली के वो नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है बात, लेकिन जब हम उसको 24 घंटा हर रोज स्ट्रेच करते हैं, और उसमें हम करते क्या है, किसी के साथ कुछ हुआ, हम उसी को लेकर वो रोते हुए को बार बार दिखाएंगे, बार बार उसको पूछेंगे आपको कैसा फील हो रहा है. समवेयर वी आर यूजिंग इमोशंस एंड द अदर पर्सन्स फीलिंग टू सेल इट इनटू द मार्केट. और क्यों? क्योंकि हम फील करते हैं कि ये लोग देखना चाहते हैं. दिस साउंड्स वेरी हार्श, दिस साउंड्स वेरी हार्श, बट इट इज द ट्रूथ. हमें लगता है कि ये रहम है, एक्चुअली नहीं, उनको रहम नहीं चाहिए, उनको कंपैशन चाहिए, उनको लव चाहिए. लेकिन लव नहीं है. अगर हमने भी पेन क्रिएट किया कुछ भी ऐसा देखकर, जब ये पूरा टेरर अटैक हुआ, तो व्हाट वाज द इंफॉर्मेशन दैट वाज बीइंग फ्लडेड एवरीवेयर, कि आप सबको गुस्सा होना चाहिए इस बात को लेकर. व्हाई आर यू नॉट एंग्री, पीपल शुड गेट एंग्री, वही तो सोल्यूशन है. हाउ कैन एंगर बी द सोल्यूशन टू एंगर? जिन्होंने जो किया दैट वॉज अ साइन ऑफ एंगर, रिजेंटमेंट. ऑलरेडी उस शहर के अंदर जो वातावरण फैल चुका था वो दर्द का था. बहुत लोगों की जीवन ऊपर नीचे हो गई थी, बहुत लोग डर में थे, अपने अपने घरों में ट्रैप्ड थे. इन एन एनवायरमेंट जहां ऑलरेडी इतना पेन है, इतना दर्द है, वी ट्राइंग टू से गेट एंग्री.
0: नहीं, एंड इनफैक्ट वही बात कर रही हूँ कि वो सिचुएशन, अगर हम जो हम जिस मुद्दे पे थे, उस सिचुएशन ने जो कहीं और हो रही थी, उसने पूरी तरह से पूरे जो वॉच कर रहे थे, टीवी देख रहे थे, उन सबके माइंड्स को कैप्चर ही तो कर लिया.
1: या बट नॉट इवन सी, अगर हम देख भी रहे हैं, हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद मेरे माइंड में इमिजिएटली ये आना चाहिए कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. आई टेल यू अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग दैट हैपन्स एट द ब्रह्मा कुमारीज. वी नॉट सेइंग कि ये होना चाहिए, जो समथिंग वेरी वेरी नाइस दैट हैपन्स हियर इज कि जब भी दुनिया के किसी भी हिस्से में कुछ भी हो जाता है, थोड़ा भी ऊपर नीचे, चाहे वो नेचुरल कलामिटी है या वो कुछ ऐसी बात है, इमिजिएटली एवरीवन नोज दिस, हर सेंटर पर जितने भी हम सारे भाई बहने हैं, वी हैव कलेक्टिव मेडिटेशन. हम सब इकट्ठे मिलकर, अलग अलग अपनी अपनी रीति से घर पर तो करते ही हैं, लेकिन कलेक्टिव टाइम फिक्स करके हम सब सेंटर पर बैठते हैं, और सेंटर पर इकट्ठे मिलकर वी क्रिएट वाइब्रेशंस ऑफ पीस, लव एंड पावर. क्योंकि भगवान परमात्मा हमेशा ये कहते कि दर्द तो ऑलरेडी है. आप दर्द के बारे में चर्चा करते हो, दर्द की खबरें सुन रहे हो और दर्द क्रिएट कर रहे हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इस टाइम? डोंट जस्ट सी इट एज अ स्टिम्युलस, सी व्हाट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ. तो वहां दर्द है, हमें क्या भेजना? हमें प्यार भेजना, हमें शांति भेजनी. लेकिन वो कब भेज पाएंगे? जब हम डिटैच्ड हैं. लेकिन अगर मैं ही दर्द में चली गई, हाय क्या हुआ, कैसे हुआ, तो वेयर इज द पावर?
0: और इनफैक्ट अननोइंगली मैं दिए जा रही हूँ, भेजी जा रही हूँ.
1: हमें लगता है कि ओ मैं तो दिल्ली में बैठी हूँ, ट्रेजेडी तो बॉम्बे में हुई, बट इट्स नॉट ट्रू. इट्स अ कलेक्टिव वाइब्रेशन.
0: डेफिनेटली सिस्टर शिवानी, ये तो बात समझ में आती है. लेकिन जब अगेंस्ट चीजें हो रही हैं, सोसाइटी के नॉर्म्स के, ह्यूमन काइंड के, तो हम ही तो हैं, इंसान ही तो हैं जिन्होंने अपनी वॉइस भी रेज करनी है. तो अगर हम स्टेबल होके देख रहे हैं या मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं उस चीज को, इजंट इट बीइंग नॉन रिएक्ट, आई एम नॉट डूइंग थिंग्स,
1: यू बिकम वेरी पैसिव.
0: यस, यू नो, लाइक मतलब आप बहुत स्लो हो जाते हैं. आपको अपनी बात कहने का भी तो वो जरिया चाहिए.
1: एब्सोल्युटली. लेकिन अपनी बात कहने का जो तरीका है, एक तो वो मैटर करता, और दूसरी अपनी बात कहने के लिए पहले आपकी सोच में तो बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए ना. जब हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, सी एंगर, पेन, हर्ट, उस टाइम जो हम जिस अटैक के बारे में बात कर रहे हैं, जो 3 फंडामेंटल इमोशंस बहुत हैवी थे, एंगर, पेन, हर्ट, रिजेंटमेंट, एंड स्पेशली वो पूरी, यू नो, एक पूरा एक फ्लेवर जो क्रिएट हो गया हर जगह, इट वॉज दीज 3. जब हम इन तीनों इमोशंस के वशीभूत हैं, ये तो डू वी हैव क्लैरिटी ऑफ थॉट, क्या हम उस समय राइट सोच पाएंगे, राइट बोल पाएंगे। अब इसी स्पेसिफिक बात को भी अगर हम देख लें, जितनी दिन वो न्यूज में था, हम देख रहे थे क्या हो रहा है, सो वी वर ऑल्सो यू नो एवरीवन इज वेरी एंग्री, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इट, किया हमने क्या इज अ क्वेश्चन मार्क, हमने क्या किया अपने देश के लिए,
0: कलेक्टिव एंगर जो था,
1: कलेक्टिव एंगर था, कलेक्टिव एंगर का रिजल्ट।
0: Again, you know, this is what people have seen.
1: See, if you want to voice your opinion, all the more you require stability. We thought ke anger and reaction hamari awaaz jyada, you know, jaise normal bhi, wo to badi baat hai, choti baat pe, office mein bhi hum dekhenge ya ghar pe bhi, ki main zor se chillakar bolunga na to aapko zyada theek se samajh mein aayegi. See, the thing is, first is impact on you, ki aap jo emotions create karte hain uska aapke upar impact, fir collective sab logon ke upar uska impact, fir uska end result. Is particular case mein kya hua, humne bahut zyada kuch kiya nahi, humne sirf uske bare mein jitne din wo news mein tha hum bhi news ke sath the, and hum bhi usko, you know, office mein bhi wohi baat ho rahi hai, ghar mein bhi wohi baat ho rahi, humne kiya kya 10 din 15 din, I think that's about it all. Uske baad news change ho gayi, कोई और चीज हो गई दुनिया के किसी और कोने में,
0: पब्लिक मेमोरी बहुत छोटी होती
1: है, हम उसके बारे में बात करने लगे, जिनके जीवन पर उसका इफेक्ट हुआ, जो आज दर्द में है वो तो आज भी दर्द में है, हमने उनके लिए क्या किया, कुछ नहीं किया, हमने कंट्री के लिए क्या किया इज अ बिग क्वेश्चन मार्क, हमने सिर्फ गुस्सा किया, व्हाट डज दैट रिजल्ट।
0: अच्छा, लेकिन
1: अगर सारे इकट्ठे होकर इफ वी हैव टू रियली डू समथिंग उसके लिए, क्योंकि टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज, इवन कुछ करने के लिए पावर चाहिए। अगर हम अंदर से हर्ट हैं, गुस्से में हैं, हम वीक हैं, वीक अंदर से वीक होकर सिर्फ शोर मचाकर हम कोई परिवर्तन ले आएंगे, विल नॉट रियली वर्क, एंड वी नीड टू रिमेम्बर वो करना, वो उस तरह से करना धीरे धीरे मेरे क्या बनते जा रहा
0: है,
1: हैबिट बनता जा रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो क्या होता है कि हम उसके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, वी नीड टू रिमेम्बर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, डिटैच होकर देखें, एंड तुरंत अपने आप से पूछें अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। सो दैट लाइक आई वाज शेयरिंग एट द ब्रह्मा कुमारीज हम लोग कलेक्टिव मेडिटेशन करते कि हम सब बैठकर, और ये तब नहीं सिर्फ कि अगर कुछ ऐसे इंसिडेंट होता, बट एवरी मंथ आल्सो, एक है कि एवरी डे हम शाम को जब मेडिटेशन करते 6:30 to 7:30, हम दो बार मेडिटेशन करते हैं हर रोज दिन में, वन इज इन द मॉर्निंग, एंड ये हमने बहुत यू नो क्लियरली जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर जैसे ये किया है कि मॉर्निंग में जो मेडिटेशन है वो है अपने ऊपर काम करने का समय, अपनी मेहनत, अपने संस्कारों को परिवर्तन, और शाम को जब मेडिटेशन करते इट इज फॉर सर्विंग द वर्ल्ड, कि सुबह आपने मेडिटेशन किया, आपने अपने अंदर पावर्स भरी, शाम को आप मेडिटेशन करो एंड वो पावर्स जस्ट सेंड इट आउट टू द वर्ल्ड, जस्ट सेंड इट आउट। Now, when I came first to the Brahma Kumaris, I just didn't know how this works. ये कैसे होगा कि हम यहाँ बैठे हैं, हम यहाँ क्रिएट कर रहे हैं कुछ, एंड दिस इज गोइंग आउट टू द वर्ल्ड, ये एंड फॉर मी इट वॉज अ क्वेश्चन मार्क, इसका क्या फायदा हो सकता है कि हम यहाँ बैठे हैं, वो किसी और देश में है, वो तो अभी भी दर्द में ही है, एंड ये ऐसी चीज है जिसका कोई तुरंत प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं पता चलता कि यू नो जैसे वी यूज्ड टू कॉल दिस डोनेशन ऑफ पीस एंड पावर। तो आई सेड धन डोनेट करो तो दिखाई देता, कपड़े डोनेट करो दिखाई देता, मतलब हमें ये नहीं कि फॉर एटलीस्ट आई कैन सी दैट आई एम गिविंग इट टू यू एंड यू आर टेकिंग इट, एंड आई सी कि आपको वो मिला जो आपको चाहिए था, लेकिन पीस डोनेट करो, वो आप तक पहुंच रहा है कि नहीं, आई वुड नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस के, बट नाउ व्हाइल आफ्टर डूइंग इट फॉर सो मेनी इयर्स आई हैव रियलाइज्ड इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। हाँ, हमें उसका तुरंत वो नहीं पता चलेगा कि वो किस तक पहुंचा, क्या हुआ, लेकिन जब ये समझ में आ गया कि थॉट्स एनर्जी है और जो एक एक थॉट हम क्रिएट करते वो वाइब्रेशन है जो एनवायरमेंट में फैलता है, पहले मुझे मिलता, मेरे आसपास जो है उनको मिलता, देन ग्रेजुअली आई अंडरस्टूड कि एक एक थॉट जो हम क्रिएट करते वो वाइब्रेशन है, इट डजंट स्टे इन, इट रेडिएट्स, इट वाइब्रेट्स इनटू द एनवायरमेंट, एंड वो जिनके प्रति भी क्रिएट किया गया होगा, बिकॉज दैट्स व्हाट वी हैव सीन एवरी टाइम, कि जो थॉट मैं आपके लिए क्रिएट करूंगी वो आप तक पहुंचेगा। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं इट इज कॉन्शियसली क्रिएटिंग थॉट्स, यू नो वी डोंट रियलाइज, हम लोग आज सब बोल रहे हैं कि दुनिया में शांति होनी चाहिए, एवरीवन इज टॉकिंग कि दुनिया में शांति होनी चाहिए, कैसे आएगी, जब हम एक एक शांत रहेंगे तब ऑटोमेटिकली शांति के वाइब्रेशंस फैलेंगे, ऑटोमेटिकली शांति होगी। हम सब अशांत है और हम कहते हैं दुनिया में शांति होनी चाहिए। दुनिया मीन्स व्हाट? कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ एवरी इंडिविजुअल इन द वर्ल्ड। हरेक जो हम है, हम सबकी मन की स्थिति क्या है, कलेक्टिव सबकी मन की स्थिति को अगर हम लें, वो दुनिया की स्थिति है। तो हम कहते हैं दुनिया में शांति हो तो मैं शांत हो जाऊंगा, यू नो, दुनिया सब ठीक हो जाए तो मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं शांत होंगे तो दुनिया में शांति आएगी। तो नाउ वी आई कांट वेट कि पूरी दुनिया में सभी 600 करोड़ लोग जब शांत हो जाए तो दुनिया शांत होगी, लेकिन एक एक करेगा, एक एक क्रिएट करेगा वो पीसफुल वाइब्रेशन, तो दुनिया में तो आएगी, लेकिन सबसे पहले I will be peaceful, my family will be peaceful, where I'm working will be peaceful. तो ये जो हम meditation करते हैं, we do it every evening, 6:30 to 7:30, serving the world, sending out powers of peace, love and power. And specifically, every third Sunday of the month, ये तो fixed है, all over the world, every third Sunday of the month, 6:30 to 7:30, सभी भाई-बहन इस center पर आते, and it is called meditation for world peace, ki vishwa mein shanti ke liye hum ikatthe milkar meditation karte.
0: In fact, you know, it's such a beautiful aspect ki it will make me feel so good ki I'm doing it for the world. You know, abhi tak to sab kuch, even program mein bhi hum apne liye kar rahe the, you know, har cheez hum par focus ho rahi thi, aur kahin na kahin wo jo human element ye hota hai ki hum duniya ke liye kya kar sakte hain, aur har bar hamare ko lagta hai ki हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम इतने बिजी हैं अपनी लाइफ में, कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, कुछ किसी का दर्द नहीं बांट सकते, कुछ नहीं कर सकते। सो दिस गिव्स मी सच अ गुड फीलिंग, एक्चुअली वी शुड ऑल ट्राई टू एक्सपीरियंस इट।
1: इन दिस केस इट इज कि जब आप कर रहे हैं किसी और के लिए, सबसे पहले किसको मिलता?
0: हाँ, खुद को मिलता
1: सबसे पहले। सी इफ आई डू समथिंग फॉर यू, इट्स फॉर यू, तो उसमें शायद हो सकता है मुझे कोई बेनिफिट नहीं, लेकिन इसमें सबसे पहले मुझे मिलता और फिर मेरे थ्रू औरों तक पहुंचता। एंड जब हम देते हैं, दैट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल फीलिंग। लेना लेना सारा दिन, ये तो बहुत ईजी है, लेकिन जो खुशी मिलती है जब हम देते हैं, दिस इज समथिंग टू बी एक्सपीरियंस्ड। एब्सोल्युटली,
0: इन फैक्ट इट ऑलवेज हैपेंस, यू नो, हम कुछ भी जब देते हैं हमें अच्छा लग रहा होता है,
1: यू नो, गिफ्ट, जैसे गिफ्ट होता है, आई हैव टू आस्क मायसेल्फ, गिफ्ट देने में ज्यादा अच्छा लगता या गिफ्ट लेने में? इट्स ऑलवेज द गिविंग, अ गिविंग ऑफ अ गिफ्ट। आप चूज करने जाएंगे, आप लेंगे, यू ऑलवेज सो हैप्पी बिकॉज गिविंग इज ह्यूमन नेचर, लेकिन वो हम अपनी बेसिक नेचर को आज थोड़ा सा भूल गए हैं। एंड इंस्टेड ऑफ गिविंग हैप्पीनेस, giving love, giving peace, we are wanting happiness, asking for love, asking for peace. So let's experiment this meditation together.
0: In fact, Sister Shivani, हम जो बात कर रहे थे वो ये थी कि जो impact था आज इस पूरी बातचीत में, ये तो समझ में आया कि क्या process है, क्या कुछ कैसे होता है, जो जिसे हम हमारा जो पूरा जितनी देर हम टेलीविजन के आगे होते, क्योंकि ये जो हमने एग्जांपल्स लिए उसमें भी तो यही हुआ, जितने दिन तक वो टीवी पर दिखते रहे, जितने दिन तक वो चर्चा में रहा, उतने दिन तक वो हम पे हावी रहा, उसके इमीडिएटली बाद हमें याद भी नहीं रहा,
1: कुछ और आ गया ना तब।
0: हाँ, सो इट मीन्स इट टुक ओवर ना।
1: सो दैट मीन्स मेरी अपनी क्रिएटिविटी क्या थी, इफ यू रियली फेल्ट फॉर व्हाट हैड हैपेंड, तो टीवी से वो हट भी गई न्यूज, आपकी फिर भी वो रहना ही चाहिए थी ना, व्हाट एवर यू थॉट, बट इट्स फिनिश्ड। सो इट्स नॉट रियली दैट यू फेल्ट इट, इट इज समवन एल्स वाज क्रिएटिंग योर इमोशंस फॉर यू दैट टाइम, एंड वो समवन एल्स चेंज्ड द टॉपिक, हमारा भी चेंज,
0: तो हमारी रैशनैलिटी खत्म हो चुकी होती है एक्चुअली।
1: दैट्स व्हाट वी सेड, हमारी क्रिएटिविटी कि कौन सी थॉट्स क्रिएट करनी है, चूज करनी है, इट्स ओवर।
0: तो वी अंडरस्टूड कि शुरुआत में क्या होता है, देयर इज अ स्टेज वेयर वी आर स्टेबल, वी आर डिटैच्ड, हमने जो पूरा प्रोसेस देखा, और उसके बाद हमारा जो यू नो लोगों के ऊपर जो जजमेंटल होना कि ये ऐसा किसी भी चीज के लिए, एंड देन पूरी इमोशंस हमारे जो टेक ओवर करती है, ये तीन प्रोसेस हैं जब हम किसी भी चीज में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, बाहर ही किसी भी, और ये फिर मेरी हैबिट बनता जाता है जजमेंटल होना, और फाइनली फिर उस सिचुएशन को अपने ऊपर हावी होने देना। इनसे अब काम कैसे करना, हम टेलीविजन के प्रोग्राम से ही जुड़े हुए चीजें करेंगे, सो दैट क्योंकि आप इस प्रोग्राम से भी जुड़े हुए हैं तो उसको

0: 866-555। हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी, इसमें आज हमने मेडिटेशन के उस एस्पेक्ट को भी समझा जो कलेक्टिव होती है और जो सिर्फ मुझसे जुड़ी नहीं हो सकती, लोगों से भी जुड़ सकती है, विश्व से जुड़ सकती है। तो आज सदा शिवानी चलते चलते चाहेंगे कि थोड़ा सा अनुभव वो करें।
1: आज दिन तक हमने मेडिटेशन किया, आज उसमें एक नया एस्पेक्ट देखते कि हाउ आई कैन क्रिएट वाइब्रेशंस ऑफ पीस एंड सेंड इट आउट टू द वर्ल्ड। तो इसमें कोई हमें स्पेसिफिकली लोगों के बारे में नहीं सोचना है, लेकिन आई क्रिएट वो शांति की संकल्प, वो अनुभूति, एंड देन आई सेंड इट आउट टू द वर्ल्ड। डोंट सिट एंड थिंक कि वो किस तक पहुंचेगा, कहाँ पहुंचेगा, नहीं, जस्ट सेंड इट आउट विद अ प्योर फीलिंग एंड अ प्योर इंटेंशन एंड इट विल रीच आउट टू देम। लेट्स सिट कंफर्टेबली। बाहर की रोजमर्रा की बातों से अपनी बुद्धि को हटाते हुए अपने ऊपर लेकर आते हैं। आई दैट पावरफुल बींग जो हर संकल्प क्रिएट करता है। आई एम द क्रिएटर ऑफ एवरी थॉट। आई एम अ पीसफुल बींग। शांति मेरा अपना स्वभाव, मेरी अपनी नेचर है। ये शांति की वाइब्रेशंस, ये शांति की शक्ति मुझसे निकलकर सारे विश्व तक पहुंच रही है। देखने का प्रयास करें वाइब्रेशंस ऑफ पीस। इट्स लाइक अ लेजर बीम मुझसे निकल सारे विश्व तक पहुंच रही है, विश्व की एक एक आत्मा तक पहुंच रही है। ओम शांति,
0: ओम शांति। थैंक यू सो मच। अब आपसे भी विदा लेंगे, लेकिन इसी उम्मीद के साथ कि आने वाली कड़ियों में बहुत सी और बातें हम समझ पाएंगे। ओम शांति।

ख्वाब और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम याद रखें कि वो एक बार भी जब हमें गुस्सा आया, हम इस विश्व को दूषित कर रहे हैं। हम मन को, शरीर को, रिश्तों को, प्रकृति को दूषित कर रहे हैं। और अगर एक बार भी हमने आज क्रोध को त्याग कर शांति को धारण किया, तो हम सिर्फ अपने मन को सुकून नहीं, रिश्तों में प्यार नहीं, प्रकृति को सद्भावना नहीं, हम विश्व को सुंदर बनाने की सेवा कर रहे हैं। तो क्या हम सेवा करने के लिए तैयार हैं?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आवाज सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले रेडिओ स्टेशन ऐकत रहा 107.8 FM। आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
1: कंप्यूटर से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। अगर देखने का समय नहीं है तो सुनी लीजिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ओम शांति एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। अगर आपको याद हो पिछली कड़ी में हमने ये जाना है कि इमोशंस और फीलिंग्स दो ऐसे एस्पेक्ट है जिन्हें आज तक हम ये समझ रहे थे कि वो एक ही तराजू का हिस्सा है या एक ही थैली के हिस्से है, लेकिन हमने ये जाना कि इमोशंस जहाँ नेगेटिविटी को क्रिएट करते हैं वहीं फीलिंग्स मेरी नेचुरल सेंस को लेकर आते हैं, जो नेचुरली मैं हूँ, सहज हूँ। और आज हम बात करेंगे एंगर की। और आपको बता दें कि आने वाले जो कड़ियां हैं, आने वाले एपिसोड्स में हम जानेंगे कि किस तरह से एंगर जो है वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, वो एक नेगेटिव इमोशन है, और क्या है उसका एंटीड्यूट, कहीं ना कहीं शांति जिसे हम और आप तलाश रहे हैं, क्या हम उस फीलिंग को क्रिएट कर सकते हैं। और फिर आगे चलकर बात आती है क्षमा की, यानी कि फॉरगिवनेस की। ये होगा आने वाली कड़ियों में, लेकिन आज बात करते हैं एंगर की। कई सारे रॉन्ग बिलीफ्स जुड़े हैं एंगर के साथ। इन सभी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, अगर हम गुस्से को देखते हैं तो गुस्सा ऐसा लगता है कई बार, अगर हम पूरे अपने सिनेरियो को देखें तो चारों तरफ वो एंगर नजर आता है, और उस एंगर को हमने इतना नॉर्मल मान के एक्सेप्ट किया हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसा कि आप पहले भी हमसे कह चुके हैं कि अंदर से हम सब जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत, तो कैसे खुद को बार बार ये समझाना जरूरी है कि ये कहीं गलत है और उसे सिर्फ अंदर ना रह के बाहर भी लेके आए।
1: बाहर की दुनिया की जो आज हालचाल हम देखते तो बस एक बार न्यूज़ ऑन करने की ही ज़रूरत है या एक न्यूज़पेपर ही उठाने की ज़रूरत है, और पढ़ते ही या देखते ही वो एंगर हमारे अंदर भी इतना क्रिएट हो जाता, क्योंकि हम देखते हैं एक देश दूसरे देश के अगेंस्ट, एक धर्म दूसरे धर्म के अगेंस्ट, एक शहर दूसरे के अगेंस्ट, एक टीम दूसरे के, यू नो, एवरीवेयर वी आर फाइंडिंग दैट कॉन्फ्लिक्ट, कि एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इतना ज़्यादा, और वो कॉन्फ्लिक्ट एक एंगर जेनरेट करता है। कहीं फैमिलीज के अंदर वो भी सारा दिन आज मीडिया में दिखाई देता कि फैमिली के अंदर ही ब्रेकडाउन है, तो चारों तरफ से एक नेगेटिव वायुमंडल तो है ही, लेकिन हमारा सारा दिन ध्यान बहुत ज्यादा उसकी तरफ होता कि बाहर क्या हो रहा है, और इस प्रोसेस में कहीं रुक कर अपने आप से पूछना होगा कि बाहर तो जो है तो है, दैट वी कैन डू व्हाट वी कैन डू अबाउट, लेकिन अंदर का क्या हालचाल है। बाहर बहुत एंगर है, बहुत नेगेटिविटी है, और वो देखकर हमें अच्छी नहीं लगती, और यू नो वी सिट डाउन एंड से ये दुनिया कहाँ जा रही है, यू नो व्हाट इज द वर्ल्ड हेडिंग टुवर्ड्स, समाज का क्या होगा, घर में लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, लेकिन अंदर क्या हालचाल है, यू नो, एंड हु विल आस्क दैट, वो मेरे से कौन पूछेगा। आई हैव टू आस्क माई सेल्फ कि अंदर नेगेटिविटी है या प्योरिटी है या पॉजिटिविटी है, कहीं ऐसा तो नहीं बाहर का एंगर इतना है जो मेरे अंदर भी उतना एंगर ही क्रिएट हो रहा है, तो आई नीड टू स्टॉप एंड चेक दिस कि मेरे अंदर क्या हालचाल है। कई बार क्या होता, हम जैसे हमने पहले भी बात किया, हम बुक्स तो पढ़ते हैं, इस तरह से प्रोग्राम भी सुनते या ट्रेनिंग सेमिनार्स अटेंड करते, सब कुछ करते हैं, और ये सारी चीजें हमारे सामने सत्यता को लाकर रख देती हैं, क्योंकि क्रोध इस पर अब कोई डिबेट करने जैसी बात नहीं है कि ये राइट है या रॉन्ग है। आई हैव टू आस्क माई सेल्फ कि ये मेरे लिए सही है या नहीं है, लेकिन सच जानने के बाद फिर भी उस पर काम नहीं करना, फिर भी कोई स्टेप्स नहीं उठाना जिससे आई कैन यू नो गेट रिड ऑफ इट, तो ये तो अपने आप से धोखा है।
0: लेकिन यही सचिवानी, बहुत से लोग यही इस ये भी एक कंफ्यूजन या जिस दौर में हम रह रहे हैं कि मुझे सच पता चल गया तो समझ गया, बस हो गई बात, कि मुझे इम्प्लीमेंट भी करना है कुछ कुछ, कैसे ये हो पाएगा क्या। और यही ये जो एक जो सो कॉल्ड अध्यात्म की हम बात कर रहे हैं कि आज जब मुझे समझ में, मुझे पता तो चल गया, हाँ ठीक है, मुझे भी पता है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, मैं मानता हूँ इस बात को, मैं मानती हूँ, तो फिर अब क्या करना है।
1: क्योंकि सच बहुत सिंपल है, गुस्सा क्या है वो भी बहुत सिंपल है, उसको ओवरकम करना है वो भी बहुत सिंपल है, लेकिन होता क्या कि जब सत्यता सामने आ जाती है तो वो एक शीशे का काम करती है, इट इज अ मिरर टू माय इंटरनल स्टेट, और वो सत्यता मुझे दिखाती है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम अंदर है, कि अंदर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे ऐसे मान्यताएं, बहुत सारे ऐसे बिलीफ सिस्टम, परसेप्शन, दृष्टिकोण ऐसा बन चुका है जिसने मेरे थॉट्स को उस डायरेक्शन में बनाना शुरू कर दिया है, तो अब अगर मुझे उसे चेंज करना है तो मुझे अंदर काफी सारा वर्क करना पड़ेगा और वो कहीं ना कहीं डिफिकल्ट लगता है.
0: आर वी रेडी? दैट्स व्हाट
1: यू नो, वो डिफिकल्ट लगता है एंड देन वी से इट्स ओके, आई एम ओके द वे आई एम, यू नो. क्योंकि जहाँ परिवर्तन की और मेहनत की अंदर पे बात आती है तो हम कहते हैं नहीं, जैसे हैं ठीक है, क्योंकि हमने कंफर्ट जोन क्रिएट कर दिया है.
0: पहले मुझे लगता है उसकी जरूरत ही नहीं है मुझे अंदर काम करने की. ये जो इससे
1: मुझे जरूरत नहीं है भी क्यों, क्योंकि हम अनकंफर्टेबल रहते हुए भी कंफर्टेबल बन चुके हैं. यू नो इट्स लाइक दिस कि सपोज ये कुर्सी कंफर्टेबल नहीं है, यू नो इट्स गिविंग मी अ लॉट ऑफ पेन, लेकिन रोज उस पर ही बैठे हैं तो बैठते बैठते इस अनकंफर्टेबल कुर्सी पर बैठने की भी आदत हो जाती है एंड वो जो दर्द वो दे रही है उसको भी हम स्वीकार कर लेते हैं. बिकॉज आई डोंट हैव अनदर ऑप्शन, लेट्स से यू नो आई कांट चेंज माय चेयर, तो आई एक्सेप्ट दिस पेन एंड आई एक्सेप्ट दिस डिसकंफर्ट और इस पर ही मैं अपने आप को कंफर्टेबल कर लेती हूँ. आई से ओके एंड आई गेट यूज्ड टू सिटिंग ऑन दिस. तो इसी तरह वो जो कंफर्ट जोन हमने क्रिएट कर लिया, गुस्सा दर्द देता है, गुस्सा तकलीफ देता है अंदर, हमें पता है, लेकिन उसी के अंदर हमने अपने आप को कंफर्टेबल कर लिया कि ये ठीक है, दिस इज ओके. तो अनकंफर्टेबल में भी हम कंफर्टेबल रहने लग गए हैं, अनहैप्पी होते हुए भी हम अपने आप को हैप्पी समझने लग गए हैं. सो दिस इज अ वेरी बिग इल्यूजन, या ये एक चीटिंग है अपने आप से. तो उस कंफर्ट जोन से कहीं ना कहीं हमें बाहर निकल कर आना पड़ेगा, क्योंकि ये गुस्सा मन पर तो नुकसान करता ही करता है और हमारे शरीर पर भी नुकसान करता है. एंड इट्स नॉट दैट वी आर ऑल इन द सेम थिंग. अगर आप चारों तरफ देखें तो इट्स लाइक अ स्पेक्ट्रम, यू नो, हमें हर तरह के लोग मिलेंगे समाज में. एक तरफ हमें उस तरह के लोग मिलेंगे जो दुनिया में छोटी से छोटी जो बात हो रही होगी उस पर उनको गुस्सा आ जाएगा. न्यूज देखते हुए भी उनको उतना ही गुस्सा आएगा जितना उन लोगों को आ रहा है जिनके साथ वो अत्याचार हो रहा है. यू नो, इतना ज्यादा इमोशनल डिस्टर्बेंस है. थोड़ा सा बीच में आए तो उस तरह के लोग मिलेंगे जिनको उस बात से बहुत ज्यादा नहीं फर्क पड़ता कि दुनिया में क्या हो रहा है. दे विल लिसन एंड दे विल से ओके, इट्स एक्सेप्ट. लेकिन उनके जीवन में, उनके नजदीक, उनके ऑफिस में और घर में जो छोटी छोटी बातें हो रही है उससे उनको काफी गुस्सा आ जाता है. और एक एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम पे वो लोग मिलेंगे जो इररिस्पेक्टिव ऑफ जो भी हो रहा है, एंड देन इट मीन्स जो भी, कुछ भी, चाहे बाहर चाहे उनके आसपास, उनको गुस्सा नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है. जिनको हम कहेंगे द इनलाइटेंड पीपल, दे विल नॉट लूज देयर कंट्रोल, दे विल नॉट गेट एंग्री. तो हर प्रकार के लोग हैं. अब मुझे अपने आप को उस ग्राफ के ऊपर ऑफ 1 to 10 मुझे अपने आप को रख कर देखना पड़ेगा कि वेयर एम आई. एंड देन देर आर सम काइंड ऑफ पीपल जो कहेंगे कि गुस्सा अगर नहीं किया तो ये सारी जो गलतियां हो रही हैं समाज के अंदर, इसको ठीक कौन करेगा. तो उन्होंने जैसे अपने ऊपर ये जिम्मेवारी उठाई हुई है कि उनके गुस्सा करने से जो गलत हो रहा है वो सही होगा, जिसको आपने कहा राइटियस एंगर. यू नो, वो अपने एंगर को भी राइट जस्टिफाई कर देते हैं. तो इट्स नॉट फॉर एनीवन एल्स टू टेल मी व्हाट्स राइट और रॉन्ग. आई हैव टू आस्क माई सेल्फ कि मेरे लिए क्या, डू आई फील एंगर इज गुड फॉर मी? इफ यस, live on with it. Live on with it, but then don't complain. Don't say कि मुझे तो खुशी चाहिए, मुझे तो शांति चाहिए, मुझे तो प्यार चाहिए, मुझे तो सबके साथ बहुत अच्छे relationships चाहिए, मुझे एक बहुत अच्छा career चाहिए. Because both these things साथ साथ नहीं चलेंगे.
0: ये coexistence नहीं हो सकता. Peace और anger का coexistence. This is what we'll have to understand actually.
1: तो हमें चाहिए कुछ और, लेकिन हम comfortable इसके साथ हो गए हैं. It's like I'm sitting on this chair, I'm not even moving, और फिर इस पर बैठकर मैं complain भी करती रहूं, ये कुर्सी ठीक नहीं है, ये कुर्सी ठीक नहीं है. So you will say, get up, move, change your chair. It's so simple. लेकिन रहना भी गुस्से के साथ है, लेकिन मुझे शांति चाहिए, मुझे शांति चाहिए.
0: बिफोर वी मूव ओवर टू यू नो कि कौन कौन से किस किस तरह के गुस्से होते हैं, एक और बात मैं कहना चाहूंगी कि जो जैसे आपने कहा, एक वो लोग हैं जो कोई भी सिचुएशन आ जाए उसमें नाराज नहीं या गुस्सा नहीं होते हैं, लेकिन उससे पहले एक और भी ऐसे लोग हैं जो शो नहीं होने देते कि उन्हें गुस्सा है,
1: लेकिन वो गुस्सा तो हो रहे हैं.
0: वही वो एक और मेजर चीटिंग है कि कहीं ना कहीं वो कॉन्फ्लिक्ट अंदर जिसे इंटरनलाइज कर लेते हैं और उसको वो फिर कहीं ना कहीं किसी रूप में निकल रहा है.
1: वो सबसे पहले तो अपने शरीर पर निकलेगा, लेकिन इसका भाव ये भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस भी बिलीफ के साथ चलते कि अंदर नहीं रखना चाहिए इसलिए निकाल दो. अगर मैंने अपना गुस्सा अंदर रख दिया तो वो मेरा नुकसान करेगा अंदर, तो इससे अच्छा आप अगर आपने गल्ती की थी तो आप पे मैं वो गुस्सा निकाल
0: दूं। अल्टीमेटली बात ये है ना, अंदर ना बाहर कहीं नहीं रखना चाहिए।
1: बट अगर हम उस तरह से उसको चलेंगे कि अंदर नहीं रखना है तो बाहर निकाल दो, तो हम बाहर निकालते ही जाएंगे, निकालते ही जाएंगे। वेयर इज इट गोइंग टू स्टॉप, यू नो? सो समवेयर, जैसे इस मेडिटेशन के करते दौरान हम जिस यात्रा पर चले, तो माय पर्सनल एक्सपीरियंस हैज बीन कि समवेयर यू हैव टू फर्स्ट स्टॉप आउटसाइड। आपको क्योंकि उतना लेवल नहीं है हमारा एकदम से कि बिल्कुल मन में भी गुस्सा नहीं आए। अल्टीमेट स्टेज वो है कि थॉट में भी एंगर नहीं आएगा, लेकिन एकदम से हम सोचें कि वो वाली स्टेज अचीव हो जाए तो वो नहीं हो पाती है। आइडियली होता क्या है, यहाँ गुस्सा आता है और ये बाहर निकल कर आता है। अब अगर इसको हम नहीं रोक पाते कि यहाँ नहीं रोक पाते, एटलीस्ट हमें इसको यहाँ रोकना पड़ेगा। एक बार वो यहाँ रुकेगा बिहेवियर में, आप कॉन्शियस रहेंगे कि चाहे कोई कुछ भी बोले, चाहे कोई कुछ भी करे, आई शुड नॉट रिएक्ट, यू नो, एंड यू विल कॉन्शियसली कीप अटेंशन इन इट फॉर सम टाइम एंड यू विल सी दैट आप बहुत जल्दी उसको अचीव कर पाते हैं। कि अगर आपने डिसाइड कर लिया आप नहीं रिएक्ट करेंगे तो आप रिएक्ट नहीं करेंगे, तो एटलीस्ट उतना नुकसान खत्म हुआ। तो बहुत सारी एनर्जी जो इस तरह से डिस्चार्ज होने वाली थी, रिलेशनशिप्स बिगड़ने वाले थे, वो रुक गया। देन इट्स अ जर्नी, तो नाउ नेक्स्ट स्टेज इज ठीक है, मैंने बोला नहीं, मैंने कुछ गलत किया नहीं, लेकिन अब मुझे गलत सोचना भी नहीं है। देन आई विल वर्क ऑन द नेक्स्ट स्टेज कि अब चाहे कोई कुछ भी बोले मुझे बुरा सोचना भी नहीं है। लेकिन अगर मैं इस प्ली को ले लूं कि जब भी मैं मुझे गुस्सा है मुझे बोलना तो चाहिए, नहीं तो मेरा नुकसान हो जाएगा, then it never stops. It just goes on and on.
0: No, but then we have to understand that if we have reached a stage where जहां हम openly गुस्सा नहीं कर रहे हैं, चुप हो गए हैं, उसके बावजूद भी हमारा सफर खत्म नहीं हुआ,
1: वो अभी भी गुस्सा,
0: मंजिल कहीं और है।
1: बिकॉज गुस्सा वो नहीं है जो बाहर आ रहा है, गुस्सा सबसे पहले वो है जो यहाँ क्रिएट हो रहा है। तो हम जिसकी बात कर रहे हैं वो ये है कि अंदर से वो इमोशन खत्म हो जाए, वो जो बात बात में डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है वो खत्म हो जाए, क्योंकि वो हमारे रिलेशनशिप्स पर भी अफेक्ट कर रही है, हमारे ऊपर अफेक्ट कर रही है और हमारे शरीर पर भी अफेक्ट कर रही है। बहुत सारी इस तरह से स्टडीज भी हुई है जिसमें ये बताया, और जो बहुत ऑब्वियस है कि अगर आपने कुछ चीज अंदर पकड़ कर रखी है, यू नो, यू होल्डिंग अ ग्रज अगेंस्ट समबडी, या किसी ने आपके साथ कुछ किया और आपने वो पकड़ कर रखा है, आप तब तक हेल्दी नहीं रह सकते, क्योंकि आपके अंदर वो नेगेटिव थॉट्स जब तक चलते रहेंगे तो वो आपके शरीर को तकलीफ देते ही रहेंगे। एंड दिस वाज दिस रिसर्च डन इन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कि दे वर डूइंग अ प्रोजेक्ट ऑन फॉरगिवनेस। तो उस फॉरगिवनेस के प्रोजेक्ट पे उन्होंने कहा कि इट इज इम्पॉसिबल, नॉट इवन दैट इट्स डिफिकल्ट, लेकिन ये असंभव है कि आप खुश रहें और आप हेल्दी रहें अगर आपने किसी के अगेंस्ट कोई बात अंदर पकड़ कर रखी हुई है। टिल यू लेट गो, द डे यू आर एबल टू लेट गो, you will be. Now what happens is we want to be happy. See, this is where the irony comes. And yet humne kitni sari baatein pakad kar rakhi hui hain. Impossible. To fir puri yatra chalte rahenge chahiye ye aur pakad kar ye rakha hua. So it will never be possible.
0: Wahi again hum ye sochte hain ki ye dono cheeze coexist kar lengi, ya gussa aur shanti ikattha kar reh sakta hai.
1: Wo nahi sakta. Jab bhi hamare andar stress ya gussa is tarah se aata hai to hormones secrete hote hain, cortisol और एड्रेनालिन जो हमने देखा, और जैसे ही वो सिक्रेट होता है हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है। यू नो, इमीडिएटली अगर आप देखो कि लेट्स से आप गाड़ी चला रहे हो और एक गाड़ी कोई बहुत नजदीक से आपसे चले जाए, एंड यू फील कि यू जस्ट मिस्ड एन एक्सीडेंट वेरी क्लोजली, उस क्षण अंदर क्या क्या हो जाता है, वो सारा बॉडी में, वो सारा सिस्टम में फ्लो हो जाता है। लेकिन ये कभी कभी होता है, तो कभी कभी होने से उसका बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता कि छोटा सा एक्सीडेंट होना था बच गया, अंदर हार्मोन क्रिएट हुआ लेकिन जस्ट फॉर अ फ्यू मिनट्स। लेकिन जब हम एंगर, स्ट्रेस ये सारा दिन क्रिएट करते हैं, दीज आर लाइक एक्सीडेंट्स व्हिच आर टेकिंग प्लेस
0: एवरी मोमेंट, यू नो, लाइक आई थिंक
1: कॉन्स्टेंटली, और वो कॉन्स्टेंटली क्रिएट होने से वो केमिकल्स सारा दिन क्रिएट हो रहे हैं और कहीं ना कहीं फिर वो टॉक्सिन्स बन जाते हैं हमारे शरीर के अंदर, और फिर हमें बीमारियों का अलग अलग रूप ले लेते हैं, चाहे वो हार्ट अटैक है, हाई ब्लड प्रेशर है, इवन इम्यूनिटी सिस्टम हमारा क्रैश हो जाता है। तो इसमें अब दो राय कहाँ होनी चाहिए कि गुस्सा हमारे लिए अच्छा है या नहीं अच्छा है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, जिसका हर एस्पेक्ट पे नुकसान हो रहा है. Why have we kept it with us?
0: लेकिन सिस्टर शिवानी, अगर हम बात आम जिंदगी में देखें तो बहुत सी ऐसी प्लीज हैं जो जुड़ी हैं गुस्से के साथ, जिन्हें हम अपना बिलीफ सिस्टम में कह सकते हैं कि
1: एक्चुअली गुस्से को खत्म करने के लिए बहुत सिंपल है, सिर्फ सबसे पहले समझ लेना इट्स अनहेल्दी. यू नो, जैसे स्मोकिंग इज डेंजरस, हानिकारक है, सिमिलरली एंगर इज हानिकारक है, मेरे लिए वो हानिकारक.
0: इनफैक्ट वी शुड राइट इट, एंगर इज टॉक्सिक नाउ.
1: एब्सोल्युटली इट इज टॉक्सिक, यू नो, इसीलिए तो वो पूरा जो डेंजर का साइन होता है दैट गोज विद एंगर ओनली, क्योंकि वो इतना ज्यादा नुकसान कर देता है हमारे में. तो तीन स्टेप्स में हम चल सकते हैं. एक, समझ ले पहले अच्छी तरह से. जब तक समझ नहीं आएगा आई विल नॉट वॉन्ट टू चेंज. तो सबसे पहले समझ ले कि एंगर इज एब्सोल्युटली अनहेल्दी, ये मेरे लिए हानिकारक है. दूसरा, ये मेरी जिम्मेवारी है. मेरा एंगर ये मेरी जिम्मेवारी है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी परिस्थिति या कोई भी व्यक्ति, ये मेरी अपनी क्रिएशन है, मेरी, किसी और की वजह से नहीं क्रिएट हो रहा. क्योंकि जब तक वो किसी और की वजह से क्रिएट हो रहा है आई कैंट चेंज इट, बट व्हेन आई अंडरस्टैंड कि दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी देन आई हैव अ चॉइस, देन आई कैन डू समथिंग अबाउट इट. एंड थर्ड इज वो जो आपने कहा बिलीफ्स, जो मान्यताएं हमने पकड़ कर रखी हुई हैं, जिसकी वजह से ये गुस्सा क्रिएट होता है, चेंज, लेट देम गो. जैसे ही बिलीफ सिस्टम चेंज हुआ गुस्सा आना खत्म हो जाएगा. तो तीन स्टेप्स पर चले. पहले तो समझ ले कि दिस इज अनहेल्दी फॉर मी, सेकंड, दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई कैन फिनिश इट, एंड थर्ड, व्हाट इज द रॉन्ग बिलीफ सिस्टम व्हिच नीड्स टू बी चेंज्ड, एंड देन चेंज इट. बिकॉज हमने बहुत सारी बिलीफ्स पकड़ी हुई हैं, और उन बिलीफ्स की वजह से ही हमने एंगर को पकड़ा हुआ है. बिलीफ गया, एंगर भी चले जाएगी.
0: बिलीफ सिस्टम की अगर हम बात करें तो जैसे कि आपने अभी भी कहा कि बहुत से बिलीफ सिस्टम्स हैं, तो उन पे आते हैं हम कि कौन कौन से ऐसे जो बिल्कुल हमें बिल्कुल गुस्से को जाने नहीं देते हैं हमारे पूरी जिंदगी से. उससे पहले ये जानना चाहूंगी कि कैसे हम उसे ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे,
1: बिलीफ को, अपने बिलीफ सिस्टम को कैसे चेंज कर पाएंगे. कुछ नहीं है, नॉलेज से. क्योंकि जैसे सपोज अभी तक मेरा एक बिलीफ सिस्टम था कि मेरा गुस्सा आपकी वजह से, यू नो, नॉर्मल भी भाषा में अगर हम सारा दिन देखें, मेरा मूड तो बिल्कुल ठीक था, मैं बिल्कुल ठीक थी जब मैं ऑफिस में आई, उन्होंने बात ही ऐसी की कि मुझे गुस्सा आना ही था. तो आई वॉज लिविंग विद द बिलीफ सिस्टम कि मेरा गुस्सा इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ अदर पीपल. तो इसीलिए मैंने हर बार अपने गुस्से को जस्टिफिकेशन दे दी, थोड़ा सा रुक कर चेक किया कि उन्होंने जो कहना था वो तो किया, उन्होंने जो करना है वो किया, अब गुस्सा कौन क्रिएट कर रहा, इट्स मी. देन आई आस्क माई सेल्फ व्हाट्स द ट्रूथ, क्योंकि बिलीफ जरूरी नहीं है कि वो सच है, इट्स अ बिलीफ. एंड ट्रूथ इज व्हेन आई वर्क विद इट, आई एक्सपेरिमेंट विद इट, एंड आई एक्सपीरियंस इट. टिल देन इट्स ओनली अ बिलीफ, ये एक मान्यता है कि औरों की वजह से गुस्सा क्रिएट होता है. राइट है या रॉन्ग है, वी डोंट नो, दिस आई विल हैव टू एक्सपेरिमेंट विद माई सेल्फ. तो पूरे दिन को इवेल्युएट करें जितनी बार गुस्सा आया था, और चेक करें क्या उन्होंने आपके अंदर आकर वो गुस्सा क्रिएट किया, या उन्होंने जो करना था वो किया, उसको लेकर आपने जो अंदर क्रिएट किया उससे गुस्सा आया. दिस विल नॉट हैव टू बी डन वंस, नंबर ऑफ टाइम्स. आप 8 बार 10 बार एक हफ्ते के लिए हर सिचुएशन में जब आपको गुस्सा आता है, गुस्सा डजंट नेसेसरली ऑलवेज मीन अ बिग, यू नो, गुस्सा छोटा छोटा छोटा छोटी छोटी इरिटेशन हो रही है, तो वो आप हर टाइम चेक करें. यू नो, लाइक सिंपल है कि लेट्स से कई लोगों को आदत है कि वो बैठ के, यू नो, अपने नकल्स को इस तरह से दबाते रहते हैं. अब कई लोगों को आदत है कि वो देखकर बहुत इरिटेशन होती है, राइट? तो इट्स लाइक ये मेरी चॉइस है, आई एम डूइंग दिस. अब इससे आपको इरिटेशन हो रही है, अब तक हम सोच रहे थे आप ऐसे कर रहे हो इसलिए मुझे इरिटेशन हो रही है. आई एम डूइंग व्हाट आई वांट टू डू, दिस इज व्हाट आई फील लाइक डूइंग, आई एम नॉट गेटिंग इनटू योर माइंड एंड टेलिंग यू गेट इरिटेटेड विद दिस व्हाट आई एम डूइंग. नो, यू आर चूजिंग कि यू डोंट लाइक दिस. तो इरिटेशन किसने क्रिएट की, आपने. क्या आप उसको फिनिश कर सकते हैं? एब्सोल्युटली. द मिनट यू रियलाइज दिस इज माय क्रिएशन, इट्स ओवर. Absolutely. So just work on this for 1 week. Every situation, stop.
0: That's wonderful. What you're trying to say is कि हम ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि गुस्सा मेरी वजह से ही अगर मैं क्रिएट करती हूँ, किसी और की वजह से नहीं होता. ये एक जो मान्यता है, ये रॉन्ग बिलीफ है. लेकिन मैं तब तक उसे स्वीकार ना करूँ जब तक मैं खुद एक्सपीरियंस
1: कोई भी बिलीफ को नहीं स्वीकार करना, बिकॉज अदरवाइज अभी तक एक बिलीफ था कि औरों की वजह से गुस्सा क्रिएट हो रहा है. अभी हम एक और बिलीफ क्रिएट कर देंगे कि नहीं, ये मेरी वजह से हो रहा है. कल फिर वो उसको कोई चैलेंज कर देगा. तो डोंट, यू नो, दैट्स ऑल अबाउट, यू नो, दैट्स व्हाई वी डोंट से जस्ट लिसन एंड रीड एंड स्टार्ट डूइंग इट. एक्सपेरिमेंट, डू इट, एक्सपेरिमेंटेड, एक्सपीरियंस हो गया, देन इट्स द ट्रूथ. तो अब आप उसको एक्सपेरिमेंट करें, उसको सच नहीं माने कि दिस इज द ट्रूथ. लेकिन जब आपको उसको अनुभव हो जाएगा, एंड यू विल रियलाइज दिस इज द ट्रूथ.
0: Okay, so this is again a new thing for us, you know, कि जो भी जिन भी मान्यताओं को आप ये कह रहे हैं कि ये गलत मान्यताएं हो सकती हैं आपके लिए, क्योंकि वो गुस्सा आपके अंदर क्रिएट कर रही हैं, उन्हें हम जैसे ही गुस्सा आने लगे, that's wonderful actually.
1: Just stop and check.
0: खुद एक्सपेरिमेंट करके.
1: Absolutely. जब दो बार चार बार I will realize कि आप नहीं गुस्सा क्रिएट कर रहे हैं, ये मैं क्रिएट कर रही हूँ. नाउ आई चेंज माई बिलीफ सिस्टम. और जब मैंने उसको चेंज किया, एंड ये क्योंकि मैंने अनुभव किया, किसी के सुनने से या बोलने से नहीं किया, जब मैंने अनुभव कर लिया, नाउ दिस इज ट्रूथ फॉर मी. और जब ये सच, ये सत्यता की ताकत मेरे पास आ जाएगी, ये मुझे परिवर्तन करने देगी. अभी तक ये आपकी स्टेटमेंट है सिर्फ, यू नो, अगर कोई सिर्फ ये प्रोग्राम सुने और सोचे कि हाँ मुझे तो गुस्सा अपनी वजह से ही आता है, तो चलो फ्रॉम टुमारो आई विल चेंज, इट विल नॉट हैपन. परिवर्तन किसी और की वजह से नहीं आ सकता. परिवर्तन सिर्फ तब आएगा जब अंदर से there is that inner work, you listen to it, wo aapko samajh mil rahi hai, but the work will have to be done inside. Experiment kare, bar bar ruke, dekhe kisne create kiya. It's my creation. Kitni der create karke rakhna, 1 minute 10 minute 1 ghanta, choose, and you will see that you have all the power.
0: Wonderful. In fact yahi ek aur jo manyata hai ki anger is good. You know, anger is good. तो यहाँ पे एक और फीलिंग भी हम चेक कर सकते हैं बार बार कि
1: what is good about it?
0: क्या मैंने गुड फील किया?
1: Yeah, ask. That's all. It's all about. See, self awareness क्या है? Every time talking to yourself. बहुत लोग बोल रहे हैं anger is good. Now let me ask myself. What is good? पूरा हो गया, सीन खत्म हो गया, गुस्सा कर दिया मैंने. जिसको डांटना था उसको डांट दिया, और चार लोगों को भी डांट दिया, सब कुछ कर लिया. Now stop. What is good? Put it down on paper. अगर आप नहीं थॉट्स क्रिएट कर पा रहे हैं, सिट विद अ पेन एंड पेपर, क्योंकि लिखने से फिर मे बी इट जस्ट फ्लोज, एंड राइट डाउन अच्छा क्या निकला इससे और नुकसान क्या क्या हुआ. फाइंड योर लिस्ट. मेरे को अच्छे वाली साइड पे तो पता नहीं क्या निकलेगा, लेकिन बिकॉज देयर इज नथिंग अच्छा, कुछ भी अच्छा नहीं निकला.
0: मैं इसलिए बता पाऊंगी क्योंकि मैं खुद ये कर रही हूँ, क्योंकि ये एक बिलीफ है या व्हाटएवर इट इज, हमसे लाइक वी ऑल एक्सपीरियंस दैट कि गुस्सा करने से कम काम निकलता है. वी लिव ऑन दैट कि गुस्सा किए बिना काम नहीं हो सकता.
1: तो काम तो निकल गया, और अगर प्यार से कराते तो अगर आप प्यार से कराते तो काम निकलता?
0: कोई नहीं सुनता. मतलब
1: आपके साथ कोई किस तरह से काम करवाए तो आपको अच्छा लगेगा. यू सी, इट्स जस्ट दैट वी डोंट हैव द पेशेंस. हमारे वो पेशेंस नहीं है कि हम प्यार वाला मेथड यूज करके देखें. एक्चुअली क्या हुआ, everyone has got used to that belief system ke gusse se kaam ho jata hai. ab agar humne kisi ko ek bar kaha ye kar dena, unhone nahi kiya, dusri bar kaha bhaiya kar dena, nahi kiya, teesri bar humne thoda sa zor se bol ke kar diya, aur jaise hi humne zor se bol kar kiya, us vyakti ne kar diya fatafat. To humne kaha, are wah, very good, this method works. To maine do bar time waste kyu kiya apna? And kyunki time to hai hi nahi aajkal, we are always short. To kahin na kahin wo experience यहाँ फिट होता जा रहा है कि नेक्स्ट टाइम मैं दो बार प्यार से, फिर तीसरी बार गुस्से से नहीं बोलने वाले.
0: सीधा गुस्से से बोलेंगे.
1: एंड फिर एक बार ऐसे करते हैं, दो बार करते हैं, धीरे धीरे वो हमारा संस्कार बन जाता है. क्यों? क्योंकि किसी एक के साथ ऐसा हुआ था, हुआ एक के साथ था कि एक को प्यार से बोलने से उसने दो बार में नहीं किया, लेकिन वो करते करते करते वो मेरा तो संस्कार बन गया. एंड नाउ दैट संस्कार विल कम इन टू प्ले एवरीवेयर एंड विद एवरीबडी.
0: हैबिट बना ली मैंने उसको.
1: मैंने हैबिट बना ली अपने आप की उसको. तो वो कहीं ना कहीं उनका तो कितना फायदा कर रही है वो नहीं पता, लेकिन अपना मेरा बहुत ज्यादा नुकसान कर रही है, क्योंकि एवरी टाइम हर काम कराने के लिए मैं अपने अंदर वो एड्रेनालिन, वो कोर्टिसोल्स, वो हॉर्मोन्स, वो नेगेटिविटी, हार्ट बीट फास्ट, वो सब क्रिएट कर रही हूँ एक एक काम कराने के लिए।
0: लेकिन शिवानी, अगर ठीक है सब जगह मैं नहीं करूंगी, लेकिन कई जगह मुझे दिख रहा है कि चार बार बोलने पे भी नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूँ?
1: असर्टिवनेस, अथॉरिटी, अथॉरिटी चाहिए। यस, अगर हम समझते हैं कि प्यार से बोलने से नहीं काम होता तो हमें अथॉरिटी चाहिए, लेकिन अथॉरिटी इज नॉट एंगर, टोटली डिफरेंट। एंगर इज वो कि जब अंदर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है, टर्मोइल, हम अपने ऊपर कंट्रोल खो देते हैं, हमारे अंदर से पूरा सिस्टम ऊपर नीचे हो जाता है। अथॉरिटी, हम बिल्कुल स्टेबल हैं, मुझे कोई गुस्सा नहीं आया हुआ है बिल्कुल भी अंदर, एंड फिर भी हम थोड़ा सा स्टर्नली, वो भी तब अगर आपको लगे कि प्यार से काम नहीं हो सकता, एक्चुअली इवन दैट्स नॉट नीडेड, प्यार से डेफिनेटली काम हो सकता है। ये हो सकता है आपको चार की जगह छह बार बोलना पड़ेगा, लेकिन इन द प्रोसेस आप क्या बिल्ड कर रहे हैं? बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स,
0: लेकिन एक्चुअली हो सकता है जिन हालात में हम रह रहे हैं कि वो सामने वाला व्यक्ति भी
1: यूज अथॉरिटी, वो भी इसलिए हो गया है। देखो, ये सामने वाले व्यक्ति पे भी जो हम ब्लेम डाल रहे हैं, उनको भी किस चीज की आदत पड़ गई
0: है। मैं कहना चाह रही थी कि सामने वाला व्यक्ति को भी आदत है कि मुझ पे चिल्लाएंगे तभी मैं काम कर दूंगा, कि भाई अभी एक चिल्ला रही
1: हूं। क्योंकि जब हम बार बार चिल्लाते हैं तो सामने वाला भी ढीठ हो जाता है उसके ऊपर, हाँ ठीक है जब चिल्लाएंगे तभी होगा। सो यू नो वी आर क्रिएटिंग दैट होल सिस्टम लाइक दैट, बट हमें ही उस सिस्टम को फिर से चेंज करना होगा। तो अगर प्यार से आपको लगता कि नहीं हो रहा है तो अथॉरिटी, लेकिन अथॉरिटी एंगर नहीं है। अथॉरिटी में आप पूरी तरह से स्टेबल हैं अंदर, आप सोच समझ कर एक एक शब्द बोल रहे हैं, आपका एक भी वर्ड रॉन्ग नहीं निकलेगा, सिर्फ आप थोड़ा सा स्टर्नली बोल रहे हैं, थोड़ा सा डिसिप्लिन करके बोल रहे हैं, एंड दिस इज समथिंग वी नीड टू यूज समटाइम्स विद चिल्ड्रन आल्सो, अ पेरेंट एंड अ चाइल्ड नीड्स टू यूज दैट, कि आपको थोड़ा सा असर्टिव होकर बोलना पड़ता है, बट नॉट एंग्री, एंगर इज नॉट नीडेड। लेकिन इसके लिए सबसे पहला बिलीफ सिस्टम जो तोड़ना पड़ता है वो यही है कि गुस्सा मेरी अपनी क्रिएशन है, इट्स मी। अभी तक बिलीफ था इट्स देम,
0: situation, the other person, good, wonderful, and you know, again, ये बात सुनके हमें इसे अपना belief system बना लेना ये भी जरूरी नहीं है।
1: नहीं, हर बात इसको experiment करो, सारा दिन में try करो, आपको जो बोलना था आपने बोल दिया। See, it's like this, you walk in and you come and say, you're good for nothing, that's what you say, तो आपने बोल दिया। अब मैं उस sentence को अंदर ले लेती हूँ और अपने आप को बोलना शुरू करती हूँ, इन्होंने बोला कि आई एम नो गुड, इन्होंने बोला आई एम नो गुड, नाउ आई लिसन टू दैट सेंटेंस, मेरा जो इमेज अपने साथ अपने बारे में अंदर है आई एम वेरी गुड, ठीक है, लेकिन आपने बोल दिया कि आई एम नो गुड, तो ये दोनों के साथ क्लैश हो गया, जहां वो क्लैश हुआ वो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ। इफ आई वॉन्ट टू मेंटेन माई स्टेबिलिटी आई कैन से इट्स ओके, इन्होंने वो बोला कि आई एम नो गुड, पहली बात या तो ये मुझे पूरी तरह से जानते ही नहीं है, दूसरी बात ये फिर भी एंटाइटल्ड है अपने ओपिनियन से, इनके बोलने का मतलब ये नहीं होगा कि मैं बन जाऊंगी उस तरह से, लेकिन अब अगर मैं अपना आपा खो दूं देन तो आई एम रियली नो गुड, देन आई विल एक्चुअली बी प्रूविंग टू यू व्हाट यू आर सेइंग, सो यू से समथिंग टू मी दैट्स ओके, बट दैट डजंट क्रिएट द एंगर, उसको अंदर लेके जो मैं क्रिएट करती हूँ ना, इन्होंने ऐसा कैसे बोला, इन्होंने अपने आप को क्या समझते हैं, इन्होंने ऐसा, तो नाउ आई एम क्रिएटिंग दैट एंगर। अब वो कितना क्रिएट करना है, किस लेवल का क्रिएट करना है, कितनी देर का क्रिएट करना
0: है, okay, लेकिन वो इतना रिएक्शन इतनी देर तक होता है ये हमें खुद ही नहीं पता, क्योंकि वो एक इंस्टेंट जो एक्चुअली एंगर है, जो रिएक्शन की बात है, वो इतना इंस्टेंट होता है कि मुझे नहीं मालूम कि मैं इतना देर लगा पाऊंगी अपनी अपने अंदर की जो कॉन्वर्जेशन, क्योंकि मे भी आदत नहीं है इस कॉन्वर्जेशन।
1: अगर वो अवेयरनेस हमने अदरवाइज प्रैक्टिस की होगी तो नेक्स्ट टाइम ये बहुत स्लो चल रहा है, देन वो अवेयरनेस में रहेगा कि हाँ इन्होंने कह दिया। अभी हम क्या कर सकते हैं, सपोज अभी हमने गुस्सा कर दिया, लेकिन शाम को जब हम बैठ के रिफ्लेक्ट करेंगे दैट टाइम चेक इट आउट, और आप देख लें और तब अपने आप को कंक्लूजन दे दें, उन्होंने गुस्सा नहीं क्रिएट किया था, उन्होंने जो बोलना था वो बोला था। टॉक टू योर सेल्फ, काउंसिल योर सेल्फ, उन्होंने जो बोलना था वो बोला था, गुस्सा किसने क्रिएट किया,
0: मैंने खुद,
1: तो उस टाइम शायद अभी नहीं याद आएगा क्योंकि नया नया प्रोसेस चल रहा है, लेकिन शाम को बैठकर उस पर वर्क करेंगे तो कल जब होगा तब वो याद आ जाएगा।
0: वंडरफुल सिस्टर शिवानी, एंगर के इस एस्पेक्ट की बात बहुत क्लियरली समझ में आई कि जिन भी रॉन्ग बिलीव्स को या जिन भी बिलीव्स को हम रॉन्ग या राइट समझते हैं, जो आप कह रहे हैं उसको भी ना मान के एक एक्सपेरिमेंट करते रहे, उसको एक सूत्र पकड़ के उस पर खुद अनुभव का जो हमारा एक सफर है उसे तय करते रहे और फिर देखें कि हम कहाँ खड़े हैं, क्योंकि अगेन काम अपने ऊपर करना जरूरी है। लेकिन आज ये जो पूरा हमारी श्रृंखलाएं चल रही है उसमें ये बात तो सामने आती है जिस तरह से हमारा परिवार जुड़ा है कि हम काम करने को तैयार हैं, शायद वो रास्ता नहीं मिल रहा था तो अब ये रास्ता हम जरूर पकड़ेंगे। सिस्टर शिवानी, आज की इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: जिस गुस्से को हम सही मानते हैं, हो सकता है वो सही हो अगर आपकी कसौटी पर खरा उतरेगा, क्योंकि हर बार की तरह बात यही कहेंगे कि जिस बिलीफ को लेकर हम चल रहे हैं वो सही है या गलत, ये भी हमें खुद तय करना है और उसके लिए अनुभव बहुत जरूरी है। आज तीन बातें हमारे सामने आई हैं कि सबसे पहले ये कि हम समझ लें कि गुस्सा अगर हम करते हैं या एंगर या क्रोध जो है वो किस तरह से ना सिर्फ हमारे मन को बल्कि शरीर को परेशान करता है, उसके लिए नुकसानदायक है। दूसरी बात ये, हम ये अभी तक मानते आए हैं कि गुस्सा कोई और क्रिएट करता है, किसी और के कारण मुझे आता है, लेकिन करने वाला मैं खुद हूँ, ये बात जानना बहुत जरूरी है। और तीसरी बात ये कि जो रॉन्ग बिलीव्स हैं या जो बिलीफ सिस्टम है वो सही है या गलत, ये भी हमें खुद तय करना है। सफर अभी लंबा है, लेकिन अगर हमने एक सूत्र पकड़ लिया है तो फिर सफर पर चलने को भी हम तैयार हैं। ये इंटरनल जर्नी यूं ही चलेगी। अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपका स्वागत। आप हमें ईमेल पर या फिर फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं।

और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ये गुस्से वाले हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। तो मैं तो बच गई, लेकिन आप अपने आप से दूर कैसे रहेंगे? आप सारा दिन अपने आप को कितना चीट कर रहे हैं। किसी को चीट करना क्या होता है कि किसी का नुकसान करना ना, किसी के साथ धोखा करना, किसी का गलत करना, उसी को आप चीटिंग कहेंगे। अपने मन का पल पल पल नुकसान करना, अपनी फीलिंग्स का नुकसान करना, अपनी खुशी को, अपनी शांति को हर थॉट में खत्म करते जाना। दूसरा अगर चीट करता भी, किस चीज के लिए चीट कर लेती? पैसों के लिए कर लेती, बिजनेस में कर लेती, कुछ आप मेरे पे विश्वास करते मैं झूठ बोल देती, इतना ही तो चीट कर सकते हैं। सामने वाला कितना चीट करेगा, हमें क्या चीट करेगा? दूसरे तो हमसे बच गए, दूसरे हमसे डर गए, दूसरे हमसे दूर रहने लगे, लेकिन हमें तो अपने साथ रहना है। The person who I have to live with 24/7, I need to be comfortable with that person. I have to live with myself. दूसरे तो अपना संभाल लेंगे, so we need to say.
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो।

खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: असर्टिवनेस विदाउट जेनरेटिंग एंगर, तभी वो रियल मायने में असर्टिवनेस होगा, क्योंकि असर्टिवनेस इनर स्टेबिलिटी। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम गुस्सा भी हैं और स्टेबल भी हैं, क्योंकि जैसे ही गुस्सा अंदर जेनरेट हुआ, चाहे वो सप्रेस कर दिया, लेकिन हम स्टेबल नहीं होते हैं तब, यू नो। तो देन आई कैन नॉट से कि आई एम इंटरनली स्टेबल बट नाउ आई एम बीइंग असर्टिव। तो इंटरनल स्टेबिलिटी मीन्स यू नो नो ट्रेस ऑफ एंगर, उसको जब पूरा खत्म होगा, इंटरनली बिल्कुल काम एंड इन कंट्रोल है, लेकिन फिर भी आपको डिसिप्लिन करना, यू नो। एंड असर्टिव जब हम होते हैं, हमें बहुत कम बोलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा यू नो, और बहुत सोच समझ के एक एक बोल निकलेगा, क्योंकि आप फुल इन कंट्रोल है। एंगर में या सप्रेशन वाली स्टेज में आप इंटरनली डिस्टर्ब्ड है कि वो हो सकता है कि मुख से कोई ना कोई ऐसा बोल निकल ही जाए कि दूसरे को भी बुरा लगेगा और खुद को भी पश्चाताप हो।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुणेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।
3: दोस्तों, जब आपके ऊपर किसी का उधार हो तो आपको कैसा महसूस होता है? मैं अपनी बात करूं तो मुझे दिन रात उस चीज की याद आती है कि मुझे ही किसी को लौटाना है, मुझे ही किसी को लौटाना है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो किसी से लिया हो कोई सामान हो, किसी से लिया हो कोई किताब हो। हमेशा ही बुद्धि में ये बात रहती है कि मुझे सामने वाले को लौटाना है। अगर किसी ने मेरे लिए कुछ किया है तो उसको धन्यवाद बोलना या उसके लिए कुछ उपयुक्त ऐसा कर्म करना जिससे उसके किए हुए उस सहयोग का मैं ऋण चुका सकूं, ये मुझे हमेशा याद रहता है। आपको भी याद रहता होगा। लेकिन एक ऋण ऐसा है दोस्तों जो हम अक्सर भूल जाते हैं। माता पिता का ऋण हमें याद होता है, दोस्तों का ऋण याद होता है, परिवार जनों का ऋण हमें याद होता है, लेकिन जो ऋण माँ प्रकृति का हमारे ऊपर है वो ऋण हम भूल जाते हैं। नैसर्गिक ऋण है ये, निसर्ग ऋण है ये, जिसको हम भूल जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इस निसर्ग ऋण को भूलता नहीं है, याद रखता है, वही जीवन में कुछ ऐसा कर जाता है जो कि पूरे भारत का नक्शा ही बदल देता है। यशस्वी भारत कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर श्री शरद काले जी के साथ। डॉक्टर श्री शरद काले जी भारत के वो यशस्वी वैज्ञानिक हैं जिन्हें 2009 में भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। कारण, निसर्ग ऋण। जी हाँ दोस्तों, आइए चलते हैं, बात करते हैं डॉक्टर शरद काले जी और समझते हैं क्या है निसर्ग ऋण। स्वागत करते हैं डॉक्टर शरद काले जी का हमारे स्टूडियो में। डॉक्टर शरद काले जी, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। रेडियो मधुबन 107.8 FM में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद होने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। डॉक्टर शरद काले जी, आपका रेडियो मधुबन के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
4: नमस्कार।
3: सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय निकाला हमारे लिए और हमारे श्रोता साथियों से जोड़ने के लिए आप हमारे बीच में आए। आपका दिनचर्या मैं समझता हूँ बहुत बिजी रहता होगा, क्योंकि आपको हमारे जैसे कई लोग ढूंढ रहे होते हैं समय आपसे बातचीत करने के लिए, आपका थोड़ा सा समय पाने के लिए। तो हम खुद को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि आपने हमें समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से।
4: मैं वैज्ञानिक होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं हर कोई जो कोई मुझसे बात करना चाहे उससे मैं बात करूं, उसे सैटिस्फाई करूं, ये तो मेरा कर्तव्य है।
3: जी, तो सबसे पहले हम शुरुआत करना चाहेंगे शरद काले जी के सफर की, जहां पर बचपन से लेकर के एक वैज्ञानिक बनने तक और एक वैज्ञानिक ही नहीं भारत के प्रबुद्ध व्यक्तित्व बनने तक का जो सफर है वो हम सुनना चाहेंगे, आपकी कहानी आपके जुबानी।
4: मैं अहमदनगर में शालेय शिक्षण ले चुका हूँ मेरा, और सबसे ज्यादा मेरे जीवन के प्रभाव पड़ने वाले व्यक्ति थे मेरे स्कूल के जो 68 शिक्षक, मुझे पूरे नाम याद है, और मैं उनको अपनी तरफ से किताबें लिख के एक एक करके अर्पण कर रहा हूँ। 14 किताबें हो गई है और 54 किताबें लिखनी है। तो तभी मैं कहूँगा मेरा उत्तरदायित्व उनके प्रति थोड़ा सा तो जिसे हम रिटर्न कहते हैं वापस दे सकता, पूरा तो नहीं दे सकता। और दूसरे जो व्यक्ति ने इन्फ्लुएंस किया है मुझ पर, वो मेरे पिताजी और माताजी। मेरी सबसे बड़ी वैज्ञानिक गुरु मेरी माताजी रही है। इन्होंने बहुत अच्छी तरह से पाल पोस के हमें तो बड़ा किया, लेकिन जो संस्कार दिए, मुझे याद है कि मैंने जो मेरे जीवन में अगले अनुसंधान केंद्र भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में कचरे पे काम किया उसकी शायद बीज मुझे याद है कि 1964 की दिवाली, उस दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा थी और लक्ष्मी पूजा के दिन मेरी माता जी ने कहा बेटे चवन्नी थी तो चवन्नी मेरे हाथ में दिया और कहा कि बाजार में जाके केरसुड़ी खरीद लाओ। केरसुड़ी को मराठी में मतलब मैंने शब्द इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि वो शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है। केरसुड़ी मतलब छोटा झाड़ू, वो उस जमाने में बैठ के झाड़ू लगाते थे तो छोटा झाड़ू हुआ था, लंबा झाड़ू नहीं हुआ करता था आजकल जैसे होते हैं, छोटा झाड़ू हुआ करता था, उसे हम लक्ष्मी केरसुड़ी कहते थे। तो मैंने माता जी से कहा माता जी आप सब लोग नए कपड़े खरीद रहे हैं, पटाखे खरीद रहे हैं, मिठाइयां खरीद रहे हैं, हम आप मुझे झाड़ू खरीदने को क्यों कह रहे हैं? तो मम्मी जी ने कहा कल बताऊंगे। कल दूसरा दिन लक्ष्मी पूजा थी तो लक्ष्मी पूजा के दिन उन्होंने चौरंग पे एक 5 रुपए की नोट थी, उस जमाने में 5 रुपए भी बहुत ज्यादा हुआ करते थे, और मम्मी के पास एक छोटा सा गोल्ड का ऑर्नामेंट था वो रखा और उसमें झाड़ू रखा और ये तीनों की पूजा करने को कहा। मैंने कहा मम्मी जी मैं लक्ष्मी की पूजा तो समझ जाता हूँ लेकिन झाड़ू की पूजा क्यों? तो उन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया था, इतना सुंदर उत्तर मुझे आज तक किसी वैज्ञानिक ने नहीं दिया है और पूजा का अर्थ भी उन्होंने इतनी अच्छी तरह से समझाया था कि आज भी मैं हाथ जोड़ता हूँ मम्मी जी को कि मुझे पूजा का अर्थ उन्होंने समझाया और बहुत छोटी उम्र में समझाया। उन्होंने कहा बेटे तुम जैसे केरसुनी कहते हो, झाड़ू कहते हो, वो असल में जुड़वा बहन है लक्ष्मी जी की और दोनों को सह अस्तित्व होता है और ये सह अस्तित्व बहुत इम्पोर्टेंट है, एक है तो दूसरी है, एक नहीं है तो दूसरी नहीं है, इसलिए एक की पूजा करना और एक का अपमान करना हमारे संस्कृति को शोभा नहीं देता, दोनों की पूजा दोनों को होनी चाहिए। और फिर उन्होंने कहा पूजा मतलब क्या? हल्दी कुमकुम चढ़ाना, हार लगाना, आरती करना और नैवेद्य खुद खा लेना, इसका मतलब पूजा होता है क्या? ऐसा नहीं होता पूजा, पूजा होती है 364 दिन, 364 दिन जब सेवा कर रहे हो तो पूजा कर रहे हो, 365वें दिन याद करके, लक्ष्मी पूजा के दिन याद करके, खुद मिष्ठान खा के फिर खुद को याद दिलाना है कि मुझे अगले 364 दिन लक्ष्मी माता और झाड़ू माता आप दोनों की पूजा करनी है। तो ये होती है पूजा, तो ये जो अर्थ है पूजा का कि आपका कर्तव्य आप निभाते रहो वही पूजा होती है, वर्क इज वर्शिप। ये बहुत अच्छा लेसन। और झाड़ू ये अलग चीज नहीं है, ये जो कचरा है ये नाम की वजह से हमने इसका इतना हमारे देश में पूरा डंपिंग यार्ड जैसे लगता है क्योंकि वो धारणा मन में एक बार बैठ गई कि यह कचरा है। अगर मन में धारणा बैठ गई कि यह कचरा नहीं, ये लक्ष्मी की जुड़वा बहन है, तो फिर उसका देखने का नजरिया बदल जाता। तो ये बहुत उम्दा काम, सकारात्मक काम मेरे मम्मी जी ने मेरे मन पर संस्कार ये किए थे। दूसरे थे हमारे टीचर्स, बहुत ही अच्छे थे। एक टीचर ने हमें एक पौधा लगाने को दिया था, वो पीपल का पौधा आज 65 इयर्स ओल्ड हो गया है जो हमने अपने हाथों से लगाया था। तो उस 65 साल के पीपल के वृक्ष के नीचे जब मैं बैठता हूँ तब मुझे समझ आता है कि मेरे शिक्षक ने मेरे लिए क्या किया। हम कहते हैं कि हम सारी चीजें हमें प्रकृति से मिलती है लेकिन कितनी मिलती है इसका हिसाब नहीं करते क्योंकि फ्री मिलती है। हमें आपकी अगर श्वास की हिसाब करें तो हम 21,000 बार श्वास लेते हैं दिन में और 21,000 बार श्वास लेते समय हम 17,000 लीटर हवा लेते हैं अपनी फेफड़ों में। तो 17,000 लीटर हवा में 20% ऑक्सीजन होती है, मतलब 3,500 लीटर ऑक्सीजन होती है। उसका अगर वजन करें, केमिस्ट्री में एक रूल है कि 1 ग्राम मोल ऑफ ए सब्सटेंस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम, उस हिसाब से हमें 2.7 किलोग्राम ऑक्सीजन रोज लगती है। और जब कोरोना काल में हम ऑक्सीजन खरीदते थे तो पता चलता था कि 11,000 रुपए किलो पे ऑक्सीजन बेची जाती है इंडस्ट्रियल, मतलब 33,000 रुपए का ऑक्सीजन रोज हम 21,000 बार श्वास के लिए इस्तेमाल करते, मतलब हर श्वास के लिए हम 1.5 रुपया मोल अला करना चाहिए प्रकृति को। अगर प्रकृति ने यह ऑक्सीजन का सप्लाई कट किया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं दिया तो इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाती, प्रकृति ने कहा आप 1.5 रुपए नहीं दे पा रहे, आप श्वास नहीं ले पाओगे, ये हमारा जो मुलाकात है ये ऊपर लेनी पड़ेगी चित्रगुप्त के सामने, क्योंकि ना तो आप बिल दे पाओगे ना हम दे पाएंगे। लेकिन जो सर ने मेरे लिए काम किया था, मैं हाथ जोड़ता हूँ सर को उस पेड़ के नीचे जब बैठता हूँ, कि मेरा ऑक्सीजन का बिल सर ने दिया है ऑलरेडी। वो जो पेड़ अपने फोटोसिंथेसिस के माध्यम से 3 किलोग्राम से ज्यादा ऑक्सीजन छोड़ रहा है, तो जितना मैंने लिया उतना दे दिया। ये जो निसर्ग ऋण, जिसे मैं संस्कृत में निसर्ग ऋण या प्रकृति का ऋण, ये चुकाने की जो बात है, ये 7वीं, 5वीं से 26वीं, 5वीं, 6वीं, 7वीं कक्षा में ये संस्कार हमारे ऊपर मन में, स्कूल में और घर में हुए। इसकी वजह से ही मैं आगे अच्छे काम कर सका। अगर ये संस्कार शायद नहीं थे तो शायद नहीं कर सका। एक और एक छोटी कहानी मैं बताना चाहूंगा, छोटी सी, कि हमारे एक सर ने एक बहुत अच्छा सम दिया था 5वीं कक्षा में। एक टंकी है, उस टंकी का वॉल्यूम 10,000 लीटर है और वो टंकी का पानी भरने का जो रेट है 120 लीटर प्रति मिनट है। लेकिन उसको एक छेद गिरा है और छेद से पानी बह रहा है, तो उसका पानी बहने का रेट 20 लीटर प्रति मिनट है। तो टंकी भरने को कितना समय लगे? होशियार बच्चे थे क्लास में, सबने जवाब दिया 100 मिनट लगेंगे। लेकिन मैंने कुछ सोचा, सवाल मेरे मन में आया, तो मैंने सम किया नहीं, सर की तरफ देखता रहा। सर को गुस्सा आया, सर ने कहा जवाब मेरे चेहरे पे लिखा है। जवाब तो नहीं लिखा, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है, पूछो। तो सर, मैंने कहा सर अगर टंकी गल रही है तो भरेगी, अगर हम उसे लीक बंद करें और फिर भरे तो पानी भी नहीं वेस्ट होगा और एक सब्ट्रैक्शन भी नहीं करना पड़ेगा, एक ही स्टेप में आंसर मिल जाएगा। तो सर ने बहुत उम्दा चीजें दो बताई। सर ने कहा बेटे ऐसा कभी मत सोच, ये गलत सोच है, क्योंकि भारत में सब मार्क्सवादी लोग हैं, मतलब सबको मार्क्स चाहिए, ज्ञान किसी को नहीं चाहिए, ज्ञान की बातें मत बोल। लेकिन सर ने दूसरी बात बहुत अच्छी कही। सर ने कहा बेटे जब बड़ा हो के समाज में जाएगा, भारत में जाएगा, मधुबन रेडियो में मुलाकात करेगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि सारा भारत देश ही गलती हुई टंकी में पानी भर रहा है, और अगर उसमें से एक गलती बंद करने की कोशिश तुम करोगे तो आसमान में मेरी तरफ देख के बोल कि सर मैंने गलती बंद करने की कोशिश की है, तभी मैं तुम्हें किताब की गलती निकालने का अधिकार दूंगा, तब तक तुम्हें यह सम ऐसा ही करना पड़ेगा। 5वीं कक्षा के बच्चे को सर ने ये चीजें क्यों बतानी चाहिए, वो सर का ही बड़प्पन है, सर की ही सोच थी कि अगर इस बच्चे के मन में कुछ, दिमाग में कुछ सीड डाले तो उसका किसका, किसके ब्रेन में वो सर, अभी ये स्टोरी तो सर ने सबको बताई, तो ये कहाँ पैदा होगा, कहाँ जर्मिनेट होगा। तो ये होता है शिक्षक का जो दृष्टिकोण जो होता है ना, बहुत उन्नत है हमारे सर के। ऐसे अच्छे शिक्षक मुझे मिले थे स्कूल में, और इतनी बढ़िया शिक्षक मिलने से मेरे जीवन को एक दिशा मिली। तो 1966 की बात है, जब डॉक्टर भावा जी का, अपने बाबा का देहांत हो गया प्लेन एक्सीडेंट में 24 जनवरी को। तो उसे दूसरा दिन था, वो सैटरडे था, और उस दिन हमारे स्कूल में छुट्टी डिक्लेयर की थी, लेकिन सर ने एक बहुत ओजस्वी ऐसा भाषण दिया, कौन है बाबा, क्या है विज्ञान, क्या है एटॉमिक एनर्जी। और उस सुन के मैंने घर में आके उसके नोट्स बनाए, आज भी मैंने मेरे पास वो नोट्स रखे हैं, कभी मौका मिले तो आपको दिखाऊंगा। तो वो जो नोट्स से मैंने मम्मी को बताया, मम्मी जी मैं वैज्ञानिक बनना चाहूँ, तो मम्मी ने कहा बेटे जो भी बनना है उसमें कभी चेंज मत करना, योर माइंड शुड बी फोकस्ड, अगर फोकस पे केंद्रीभूत रहेगा, लक्ष्य तुम्हारा ठीक रहेगा, तो तुम यशस्वी हो जाओगे, नहीं तो नहीं होगे। तो मैंने कभी मेरा लक्ष्य बदला नहीं, और आज तक मैंने कभी रिग्रेट नहीं किया मैं वैज्ञानिक क्यों बना। तो ऐसे वैज्ञानिक बनने के जो रास्ते थे वो स्कूल में खुले हुए, तो कुछ देखे, कुछ सुने, कुछ समझे, कुछ लिखे, कुछ पढ़े, तो ऐसे जैसे जिंदगी बनती गई। तो भाभा एटॉमिक सेंटर रिसर्च सेंटर में मैंने प्रवेश किया। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में पहली चीज मुझे बहुत ही अच्छी लगी, जो मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ रहा था, तो एक दिमाग में आया, अरे ये एटॉमिक स्ट्रक्चर कितना सुंदर है, आपको मालूम है आपके शरीर में कितना सेल्स है, पेशी है। तो हमारे शरीर में 3 ट्रिलियन पेशी होती है, सेल्स होती है। अभी हर पेशी में, मैं वैज्ञानिक हूं, मैं उसका एविडेंस भी दे सकता हूँ कि हर सेल में 10^16 एटम होते हैं, मतलब 3×10^12 सेल्स, और हर सेल में 10^16 एटम। तो हमारा शरीर 3×10^28 एटम से बना हुआ। और ये एटम में आपको मालूम है प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो न्यूट्रॉन्स को मैं अलग नहीं मानता, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स आर द बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन। बेसिक कण जिसे कहते हैं वो दो ही, मूलभूत कण दो ही है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, और ये पॉजिटिव और निगेटिव है। तो ये निगेटिविटी समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये निगेटिविटी और पॉजिटिविटी की जो बात आपने की, ये समझना, ये मुझे एटॉमिक एनर्जी से लेसन मिला कि जब हमारा प्रोटॉन, जब हमारा एटम उसका इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उसे हम पॉजिटिव कहते हैं। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो सोडियम पॉजिटिव हो गया, तो सोडियम पॉजिटिव हो गया, और क्लोरीन ने ले लिया तो क्लोरीन निगेटिव हो गया। तो सोडियम को पॉजिटिव, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो आपकी निगेटिविटी आप छोड़ दीजिए, आप पॉजिटिव बनोगे, आपका ही एटम आपको चिंता चिंता के कह रहा है, और आपके शरीर में ऐसे 3×10^28 एटम आपको बता रहे हैं भाई निगेटिविटी छोड़ दो, आप पॉजिटिव बनोगे। अभी ये निगेटिविटी इतनी खराब चीज है क्या? वो सोडियम ने दी, क्लोरीन ने ली, इसलिए बॉन्ड बना। अगर बॉन्ड नहीं बनता था तो सोडियम क्लोराइड नहीं बनता था, सोडियम क्लोराइड नहीं बनता तो पेशी नहीं बनती थी, पेशी नहीं बनती थी तो ऑर्गन नहीं बनते थे, आप नहीं बनते थे, मैं नहीं बनता था, फिर ये भाषण नहीं सुनना पड़ता था। ये सब बना क्योंकि निगेटिविटी यूज एट राइट प्लेस इज कन्वर्टेड टू पॉजिटिविटी। ये लेसन हमें इस एटॉमिक एनर्जी से मिलता है कि आप निगेटिव एंड पॉजिटिव दीज आर टू साइंस, डोंट टेक इट इन अ निगेटिव सेंस। ये निगेटिविटी भी जरूरी है लेकिन उसे निगेटिविटी के हिसाब से आपको ट्रीट करना है। अगर मेरे सामने ये प्लग पॉइंट है, इसमें निगेटिव में हाथ डालूंगा तो शायद मुझे शॉक नहीं लगता है, लेकिन पॉजिटिव में हाथ डालूंगा तो पूरा मंडल पूरा होकर मुझे शॉक लगता है। तो ये निगेटिविटी इस नहीं होती तो ये फ्लो नहीं होता पहले, तो निगेटिविटी होना जरूरी है। तो कचरे को मैं लोगों को कहता हूँ कि कचरे को निगेटिविटी मत सोचो। तो मैथमेटिक्स में भी जो थर्ड कोऑर्डिनेट आ रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, निगेटिव इनटू निगेटिव पॉजिटिव होता है। क्यों होता है वो पॉजिटिव? तो निगेटिविटी पुट एट राइट प्लेस बिकम्स पॉजिटिविटी, कचरा पुट एट राइट प्लेस बिकम्स रिसोर्स। एंड शेक्सपियर से मेरा वही झगड़ा है कि शेक्सपियर को मैं कहूंगा जब ऊपर जाऊंगा मिलूंगा उसे कि भाई आपने नाटक तो बहुत अच्छे लिखे थे लेकिन एक बात आपने बहुत गलत कही, आपने कहा कि व्हाट इज देयर इन द नेम, आपने देखो कचरे को कचरा कहा, हमारा पूरा भारत देश डंपिंग यार्ड बन गया। अगर हमने हमारे बच्चों को हम पढ़ाते थे ये कचरा नहीं है रिसोर्स है तो ये डंपिंग यार्ड नहीं बनता था। कितनी छोटी छोटी चीजें होती है कि देखिए हम अपने थाली में, अभी आप ब्रह्म कुमारी के यहाँ सेवा देते हो तो आप बिल्कुल नहीं फेंकते हो गे, लेकिन कितना अनाज हम फेंक देते हैं अपने डिश में। जब हम अनाज फेंकते बना बनाया खाना सब्जी अच्छी नहीं हुई फेंक दी, तो हम ये नहीं सोचते कि खाना फेंकने से हम अपनी मम्मी जी का या पत्नी का या अपने बहन का अपमान करते हैं, हम किसान का अपमान करते हैं और हम सृष्टि का अपमान करते हैं। किसने अधिकार दिया आपको ये तीन लोगों का अपमान करने का? अगर ये अपमान नहीं करना है, अगर नहीं करोगे आप तो 20% कचरा तो उधर ही खत्म हो जाएगा पैदा होने से पहले। फिर आप बाजार में जाके केला खरीदते हो तो केला खरीदते हो तो छिलके के साथ खरीदते हो या बिना छिलके का खरीदते हो? तो छिलके के साथ खरीदते हो। तो केला आप खाए छिलका किसी और ने उठाई, ये कहाँ का न्याय होगा? उसकी भी मरम्मत आपको ही करनी है, वो धरती माता को आपको ही वापस देना है। और मैंने ऐसी टेक्निक बीआरसी में डेवलप की है कि जिससे मैं 24 घंटे में ये केले के छिलके का खाद बना सकूं। मेरे घर से कभी कचरा बाहर नहीं जाता, मैं सारे मेरे घर में जो अपशिष्ट बनते हैं वेजिटेबल के, मैं वेजिटेरियन हूँ, जो भी वेजिटेबल के बचे हुए पार्ट है मैं मिक्सर में डालता हूँ और उसे ऑर्गेनिक मैन्यूअर में घोल देता हूँ, तो 24 घंटे में उसका जैसे दूध का दही बनता है मेरे घर में खाद बनता है। और मैंने मेरी वो उसे मैं डस्टबिन नहीं कहता, मैं उसे निसर्ग लक्ष्मी कहता हूँ, वो मैंने अपने डाइनिंग टेबल पे रखी और वो डाइनिंग टेबल पे उसको कोई स्मेल नहीं, कीड़ा नहीं आता, कीटक नहीं आता, क्योंकि वो सूक्ष्म जीव मेरा काम करते हैं, वो इतना आसानी से 24 घंटे में काम करते हैं कि उसे खुशबू आती है, जैसे पहले बारिश के बाद जैसे खुशबू आती है वैसे मेरे हाथ को खुजवा दी है। अगर सोचिए कि भारत में सब लोगों ने ये काम किया तो उसमें एक बिजनेस प्रपोजल भी मैं बच्चों को देना चाहता हूँ नए कि मैं अपने घर में दो लोग हैं हम 5 किलोग्राम खाद में हर महीने में ब्यूटीफुल FCO क्वालिटी जिसे फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने दिया है उस क्वालिटी का खाद में बना। अगर ब्रह्म कुमारी के आश्रम में करना है तो मैं आके करूंगा, कोई दिक्कत नहीं, 24 घंटे में आप खाद करके दूंगा। तो क्योंकि इतना बड़ा पैमाने पे आप लोग खाना खिलाते हो तो अपशिष्ट तो बनता है, तो उनका खाद बना मैं बनाने के आपको ट्रिक बताता हूँ ना। ये तो भगवान का दिया हुआ है, कोई कंसल्टेंसी चार्जेस नहीं है, मैं आके आपके साथ जुड़ जाऊंगा और करूंगा। तो ये कहने का मतलब ये है कि अगर ये 5 किलोग्राम खाद में अपने दो लोग बनाते हैं, भारत की लोक संख्या 140 करोड़ है, अभी 110 करोड़ लोग भी एक्टिव है समझिए, तो 55 करोड़ यूनिट हो गए दो लोगों के, 55 करोड़ गुना 5 मतलब 275 करोड़ किलोग्राम हर महीने में गुना 12 भारत को यूरिया की जरूरत है। भारत पूरा सेंद्रीय खाद पे काम चला सकता है अगर आपने आपके घर से खाना और जो अपशिष्ट है फेंकना बंद कर दिया। कितनी आसानी से कहते हैं, मैं अभी एक कविता में आपको एक सवाल करूंगा कि चांद पे तो पहुंच गए थे कई साल पहले, अंतरिक्ष अब दूर नहीं है, पहुंचेंगे कल मंगल ग्रह पर या शायद उसके आगे भी, आएगी कल बुलेट ट्रेन देश में हमारे, होगी कई सारी स्मार्ट नगरी हमारे देश में, लेकिन क्या बदल सकेंगे हम खुद को, क्या करेंगे कूड़ा मुक्त अपने घर को, डंपिंग यार्ड बढ़ाते जा रहे हैं, धरती माँ को कब से तड़पा रहे हैं, घर का कूड़ा म्युनिसिपैलिटी के गाड़ी में डाल के, घर तो स्वच्छ होगा मेरे मित्र लेकिन क्या भारत स्वच्छ होगा, उसी कूड़े से आएगी ना कल के अनाज की बोरी, यही बतला रही ना पदार्थ के अविनाशित्व की कहानी, कूड़ा बाहर फेंकने से जहां दिन की शुरुआत होती है वहां भारत बदलने की बात हो रही है, मेरा भारत।
3: जी बहुत सही,
4: आप आपके घर से कूड़ा मत फेंकिए। अभी और एक कविता में हमारे देश की समस्या में बता दू, छोटी कविता है कि कहीं मुझमें का इंसान खो तो नहीं रहा है, पहले मुझे सताता था ये सब, कहीं मुझमें का इंसान खो तो नहीं रहा है, जब मैं वातानुकूल महल में अपने रेशम की कंबल लेकर सोता हूँ, बाहर 50 डिग्री टेम्परेचर है, मैं रेशम की कंबल लेकर सोता हूँ तो मेरे दिमाग में ख्याल नहीं आता कि मेरा वातानुकूल यंत्र ऊर्जा खर्चा कर रहा है, आधी आबादी को पंखा भी नहीं मिलता, आधी आबादी को कंबल नहीं मिलता, ये मेरे दिमाग में नहीं आता, कहीं मुझमें का इंसान हो तो नहीं रहा है। जब मैं बाजार में जाता हूँ हाथ में थैली लिए बिना और प्लास्टिक की थैलियां भर भर के सब्जियां लाता हूं तो मुझे शर्म नहीं आती है, क्या सिर्फ मेरी प्लास्टिक की थैलियां प्रदूषण फैला रही है, दूसरों की प्लास्टिक की थैलियां प्रदूषण नहीं फैला रही है, कहीं मुझमें का इंसान हो तो नहीं। जब मैं पार्टियां देता हूँ गजब की और थालियां भर भर के खाना खिलाता हूँ ऐसे मित्र और सज्जनों को जिसको जिनको खाने की तो समस्या नहीं है लेकिन खाने से समस्या हो सकती है, वो फेंक रहे खाना थाली में वो मुझे समझने मुझे नजर नहीं आता, पार्टी के वेटर तरस रहे खाने के लिए वो मुझे नजर नहीं आता, कहीं मुझमें का इंसान हो तो नहीं रहा। जब मैं आलीशान गाड़ी में बैठ के रास्ते से निकलता हूँ सैर करने तो रास्ते के मुसाफिर नजर नहीं आते ना, मुझे गाड़ी से होता हुआ प्रदूषण नजर आता है, क्या सिर्फ मेरी गाड़ी प्रदूषण फैला रही है, दूसरों की गाड़ियां प्रदूषण नहीं फैला रही है, कहीं मुझमें का इंसान हो तो नहीं रहा। जब मैं मोबाइल लेके चित्रीकरण करता हूँ किसी दुर्घटना का या किसी की मृत्यु का तो आगे बढ़ के मैं मदद नहीं करता, मेरे हाथ कांपते नहीं है, आगे बढ़ के मैं मदद नहीं करता क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, मुझे वापस आके वो वीडियो फेसबुक पे अपलोड करके लाइक्स कमाने हैं दोस्तों से, कहीं मुझमें का इंसान हो तो नहीं रहा है। लेकिन आजकल आनंद की बात यह है दोस्तों, मैं बिल्कुल नहीं घबराता क्योंकि मेरे अंदर का इंसान मौत की नींद सो रहा है, मैंने अब सोचना ही बंद कर दिया है। जब मैं देखता हूं ना कि कितने हम उदासीन हो गए हैं, कितनी असंवेदना अपने मन में पैदा हुई है, कितनी आसानी से हम कचरा दूसरों को देते हैं, मिक्स करके देते हैं, सोचते नहीं है। एक छोटी सी चीज मैं बताता हूँ कि मेरे हाथ में समझिए कि प्लास्टिक की दूध की थैली भरी हुई है, ये मैंने आप कैसे काटोगे, हाथ में कैंची लिए कॉर्नर कट करते हैं, हम सब कॉर्नर कट करते रहते जिंदगी में, तो ये कॉर्नर कट करते हैं। अभी एक थैली है तो कॉर्नर कट करने की कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन भारत में अमूल का जो बिजनेस है 25% मिल्क बिजनेस है एंड देट टेल सेल 2.5 crore पैकेट्स एवरी डे, दैट मीन्स 10 crore पैकेट्स आर सोल्ड, 10 crore कॉर्नर्स फॉल डाउन ऑन टू द ग्राउंड और वो सारे पर्यावरण में जाते हैं, उनका कुछ विघटन नहीं होता, उनके सारे सूक्ष्म जो पार्टिकल्स नैनो पार्टिकल और माइक्रो पार्टिकल बनते हैं और वो सारे जमीन में मिल जाते हैं क्योंकि वही पहुंचते हैं वो, और पानी में पहुंच जाते हैं उसी से हमारे शरीर में आते हैं। तो ये जो समस्या पैदा हुई है ये हमारे असंवेदनाशील वर्तन से पैदा हुई है और ये कचरे पे काम करने के बाद बालाड़ परमाणु अनुसंधान केंद्र में ये मुझे तीव्रता से ये लग रहा है कि हमारे देश में अगर किसी की जरूरत है तो ये इंडिविजुअल टीचिंग की बहुत जरूरी है। इसलिए फिर मैंने अपनी विज्ञान धारा प्रोग्राम से बच्चों से बातें, मैं 30 साल हो गए रोज कम से कम 300-400 बच्चों को साल में 200 दिन तो मैं बातें करता रहता हूँ। ये एक ज्वाला है, एक मशाल है, ये मशाल देनी है कि अरे ये काम करना है, जरूरी है। अगर हम वी आर पार्ट ऑफ द सिस्टम, सिस्टम से बाहर जाके तो हम नहीं रह रहे, उसी जिंदगी में उसी सिस्टम में रह रहे। पानी की समस्या है, पानी की इतनी समस्या है, लेकिन हमारे यहाँ बड़े बड़े कॉलेजेस होते हैं वहाँ डिस्टिलेशन प्लांट चलते रहते हैं, एक जगह ऊर्जा खर्चा होती है, दूसरी जगह एसी से पानी जो बाहर से लीक होता है वो मानसरोवर क्वालिटी पानी होता है, लेकिन उससे झगड़े होते हैं, मेरे सर पे आपके एसी का पानी गिर रहा है। अगर वो कलेक्ट करे, आपके सारे डिस्टिलेशन प्लांट आप बंद कर सकते हो, आपके सारे जो कार बैटरीज को पानी लगेगा वो एसी पानी से लगा सकते हो। भारत में 10 crore अगर एसी है तो आपको रोज 60 crore लीटर मानसरोवर क्वालिटी पानी मिल रहा है और वो उधर ड्रेनेज को जोड़ते हैं, ड्रेनेज को कनेक्ट करते हैं और वहां से बह जाता है। कितनी मतलब ये दो जो हमारे टीचर ने कहा था ये भारत में सारे लीकेजेस है, ये लीकेजेस इतने बड़े हैं, हमारे जो फूड का जो वेस्ट होता है, पानी का वेस्ट होता है, कचरे का, कपड़ों का वेस्ट होता है। अभी आपको मैं कहूंगा आप खुद का एक बार अकाउंटिंग कीजिए, अकाउंटिंग में आपको लगेगा कि घर में इतने सारे चीजें पड़ी रहती है जो हमने सालों से इस्तेमाल नहीं किए। अगर वो इस्तेमाल नहीं की है तो रखना मेरे हिसाब से क्रिमिनल अपराध है और ये किया हुआ अपराध है। तो शेयरिंग नहीं है भारत, ये शेयरिंग कैसे बढ़ाए, अगर ये चीजें शेयर हो सकती है क्यों हम पीछे पड़ते हैं, हर नई चीज आई मार्केट में मुझे चाहिए, क्यों हम इसके पीछे भाग। हम विज्ञान के सारे उपकरण यूज तो करते हैं लेकिन उससे हमारी वैज्ञानिक मेंटेलिटी नहीं बदली। अभी इतने गड़े चांद पे तो पहुंच गए, ये यूनिवर्स कैसे एक्सपांड हो रहा है उसके बारे में, और हम इक्लिप्स में वो हमारे ऊपर क्या परिणाम होगा, ये सारा परिणाम विज्ञान हमारे किताबों में रह गया, इसका सब ये परिणाम है। नहीं होता है परिणाम। अगर आप प्रिकॉशन लेके अगर आप समाज में जाओ कोई गलत परिणाम नहीं होता ये, लेकिन ये समझ नहीं पाते हम, क्योंकि हम आधे हम जो मैंने जैसे कहा मार्क्सवादी एजुकेशन से चल रहे
3: हैं, नंबरों के पीछे बहुत ज्यादा भागने लगे हैं, चाहे वो स्कूलों में नंबर हो, चाहे स्कूलों में नंबर हो या अकाउंट्स में पैसों का नंबर हो या बुद्धि में कहीं पहुंचने का होड़ हो, तो इट्स लाइक अ रेस
4: में हम। अभी ऐसा है ना कि मैथमेटिक्स इज देयर परफेक्टली इन योर लाइफ, हम जिसे डेरिवेटिव कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं, आपका एक पीस व्हेन इट बिकम्स इंटीग्रेटेड इनटू 10 crores इट बिकम्स अ ह्यूज, इट इज नॉट सिंपल समेशन, इट बिकम्स इंटीग्रेशन, और उसका बहुत बड़ा एक जिसका होता उतने 10 crore टाइम्स नहीं होता, वो 100 crore टाइम्स होता है, बिकॉज इट इज एन इंटीग्रेटेड इफेक्ट। तो ये डेरिवेटिव, और हम इस बच्चों को इतना उससे चिढ़ आती है कि हमें ये समझता नहीं है, लेकिन इस तरीके से इंटीग्रेशन आप समझा दो बहुत अच्छी तरह से बच्चे समझ जाते हैं। तो सर तो इंटीग्रेशन बहुत अच्छा है समझने को, आसान भी है, मेरे डालो उसमें वो फॉर्मूला क्या चीज है, फॉर्मूला तो हमने बनाए अपने सिंपल करने के लिए। तो ये जो तरीका है पढ़ा हमारे शिक्षकों का, जो तरीका था पढ़ा, शिक्षा सेवा नहीं, आज धंधा बन गया है। मैं तो सैडली कहता हूँ धंधा बन गया, हम बहुत सेल्फी बन गए, हम अपनी मातृभाषा में नहीं पढ़ते। मुझे बहुत बड़ा गर्व है, मैंने 11वीं तक अपनी मातृभाषा में पढ़ा और आज तक मुझे जिंदगी में कहीं भी मुझे कुछ डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ी, क्योंकि अपनी मातृभाषा में जितना अच्छे से समझता है। लेकिन भारत में देखो सब जगह इंग्लिश मीडियम का बोलबाला है, सब जगह इंग्लिश में ही चलना है, कॉन्वेंट भेजना है बच्चों को, और बातें करेंगे जब सभा में बड़ी बड़ी बातें करेंगे मातृभाषा में पढ़ना चाहिए, लेकिन हालत बहुत ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो ये चीजें जो समस्या है समाज की, ये समस्या मेरे जीवन से बहुत नजदीक से जुड़ी हुई है और मैंने देखी है। मैंने एक हमारे जैसे स्कूल था, जय कृष्णमूर्ति कहते थे देर आर ओनली टू प्लेसेस वेर यू कैन फोर्सिबली टेक पीपल, यू हैव टू टेक फोर्सिबली पीपल, वन इज जेल एंड अदर इज स्कूल। तो इफ आई हैड मेट हिम आई वुड हैव टोल्ड हिम, मैं बताता था उनको, मतलब जेल का तो पता नहीं, लेकिन हम स्कूल में सर ऐसा कभी फोर्सिबली नहीं गए, हमारे स्कूल में इतने अच्छे संस्कार थे, लोग पढ़ाई भूल गए, पढ़ना भूल गए। आप खुद को पूछिए, आई एम नॉट गोइंग टू एम्बरेस एनी क्वेश्चन टू एनी वन, आप कितनी किताबें पढ़ते हो साल में? आजकल नहीं पढ़ते, लाइब्रेरी भूल गए हम। लाइब्रेरी होती है दिखाने के लिए लाइब्रेरी। हमारे स्कूल में एक रूल ऐसा था, अलिखित नियम था, कि हर बच्चे ने हर हफ्ते एक किताब पढ़नी चाहिए। बाय द टाइम मैं 11वीं में पास होके बाहर आया, आई हैड रेड माय 350 बुक्स, और आज मेरी 5000 किताबों की लाइब्रेरी है, मैंने ए टू जेड हर किताब पढ़ी हुई। ये बड़ी गर्व से कहता हूं मैं, और ये होना जरूरी है, ये हर एक के लाइफ में होना जरूरी है। तभी आप, क्योंकि आप जब टीवी देखते हो, सीरियल देखते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज फॉरवर्ड करते हो, आपका ब्रेन काम नहीं करता, जब आप पढ़ते हो तब आपका ब्रेन काम करता है। तो आखिर ये समस्या है।
3: हाँ, मुझे लगता है चूंकि पढ़ते समय बुद्धि को बहुत ज्यादा केंद्रित करना पड़ता है, जो थोड़ा सा मशक्कत वाला काम है, इसलिए लोग उससे बचना चाहते हैं, जबकि वो ये भूल जाते हैं कि ये मशक्कत ही जो है बुद्धि का एक्सरसाइज है, ये उस इंटेलेक्ट को बहुत स्ट्रांग बनाएगा, तो वो उस मेहनत से बचना चाहते हैं। जैसे अभी कोई जिम जाता है, अगर वो जिम जाकर के कुछ करे ही नहीं, बस लोगों को मशक्कत करते हुए देखे, तो उसके तो कभी मसल्स बनने ही नहीं वाले, उसको खुद को मेहनत करना पड़ेगा। ठीक ऐसे ही किताबें पढ़ना जैसे आप कह रहे हैं वो बहुत वाकई में इम्पोर्टेंट है। ऐसे में आप क्या सोचते हैं, क्या करना चाहिए? क्योंकि चलिए मानते हैं कि लोगों का अब वो जो एक हैबिट है पढ़ने का वो छूट गया है, लेकिन चलिए मान लेते कि आज इस एपिसोड को जो सुनने वाले हैं उनके मन में आता है कि डॉक्टर शरद जी ने कहा था कि उन्होंने किताब पढ़ करके अपनी बुद्धि को बड़ा बलशाली बनाया, मुझे भी करना है, वेयर टू स्टार्ट, व्हाट इज द बिगनिंग पॉइंट, कहाँ से शुरू किया जा सकता है?
4: बहुत बहुत सिंपल सी चीज है कि मेरे मम्मी जी ने एक मंत्र दिया था कि अनलेस यू रीड समथिंग न्यू डोंट स्लीप, एक छोटा सा मंत्र है, बहुत सिंपल मंत्र है कि नया कुछ पढ़ने से आप सोना नहीं। अगर यू आर वेरी ट्रू टू दैट, अगर आप उसमें वेरी फर्म, आपका मन अगर उसमें बन गया, नहीं आज कुछ पढ़ूंगा तभी सो जाऊंगा, तभी आप जरूर पढ़ोगे, छोटी सी चीज होती है। एंड शुरू में ये सारे जो चीजें है, बदलाव है, कोई भी बदलाव आसानी से नहीं होगा, लेकिन बदलाव को आप इस तरीके से ले लीजिए कि जो जीवन का अंग बने, तो अगर जुड़ जाए कि बच्चों को, अगर बेटा पिताजी को हाथ में मोबाइल लेके बातें करते हैं और पिताजी, वो बच्चा बेचारा बाप से बोलने को बहुत तरस रहा है, एंड ही डजंट हैव टाइम, इट डजंट रिफ्लेक्ट नाइसली, अच्छा नहीं दिखता, वो प्रतिबिंबित नहीं होता। तो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, उसका मेरे पास जवाब है। जो स्विट्जरलैंड में मैंने देखा, जर्मनी में मैंने देखा, ये लोग, ये तो देश रईस क्यों है मालूम है आपको? ये देश रईस इसलिए है, जो मैंने देखा कि शाम को 6 बजे उनका सफर डिनर हो जाता है और 6:30 बजे किचन बंद हो जाता है और 6:30 बजे के बाद 11:30 तक वो खुद का समय होता है, पढ़ते रहते ये लोग। आप देखिए स्विट्जरलैंड में सारी टाउन लाइब्रेरी भरी हुई रहती है। तो ये 5 घंटे अपने को देते हैं, आप खुद को पूछिए आपको कितना समय देते हैं। मैं ये आपको 2 घंटे का समय दे दीजिए, बहुत काम हो जाएगा। एंड कीप ऑन टेलिंग योर सेल्फ यू आर ए स्टूडेंट, हर मनुष्य विद्यार्थी होता है, अंतिम श्वास देने तक, अगर वो व्यक्ति हमारे आइंस्टाइन थे, एक बड़ा बाप आदमी था, नोबेल प्राइज विनर था, फिजिक्स का जानकार था, उसके मेंदू के बारे में, ब्रेन के बारे में कहते थे ऐसा ब्रेन हुआ नहीं, वो आदमी ने क्या कहा उसके पीएचडी स्टूडेंट को व्हेन ही वाज डाइंग ऑन मृत्युशैया पे थे, तब उन्होंने बच्चों को कहा, पीएचडी बच्चों को, आज मुझे पता चलता है कि मुझे कितना विज्ञान मालूम नहीं है, कैन यू सी द पर्सन। तो विद्यार्थी होना बहुत जरूरी है। अगर आप विद्यार्थी है और आपका काम आप निभा रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आई। मुझे आत्मविश्वास की दिक्कत मेरी जिंदगी में कभी नहीं आई, मुझे ना तो कभी टेंशन आता है, ना कभी अभी अभी क्या होगा ये दिमाग में कभी नहीं आता, क्योंकि आई एम वेरी श्योर, मैं खुद मुझे पक्का मालूम है मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, क्योंकि उसके पीछे एक तपस्या है। ये तपस्या पुराने जमाने में वो भगवान के सामने बैठ के करते थे, आज की तपस्या अलग होती है। ये 5 घंटे की तपस्या अगर आप करेंगे, जैसे स्विट्जरलैंड में लोग करते हैं, जर्मनी में करते हैं, इसलिए लोग आगे आगे पहुंच गए, चांद पे पहुंच गए, यूनिवर्स एक्सपांड ऐसा करने हो रहा है, ये ढूंढने के लिए वो यूक्लिड मिशन उन्होंने भेजा है, हमने भी भेजा है, आदित्य भेजा है, चंद्रयान भेजा है, हमारे भी लोग है, लेकिन ये संख्या बढ़नी चाहिए। हमारे देश में इंटेलेक्चुअल की कमी नहीं है, लेकिन दो चीजें हमें खराब हो रही है, एक हमारा समय अच्छी तरह से हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और ये व्हाट्सएप ये जो चीजें आई है ये एक्चुअली वो डाइवर्टिंग टाइप आई है, और बाहर के लोग यही देने की कोशिश करेंगे ताकि ये 140 लोगों का देश मूर्ख रहे और अच्छी मार्केट प्लेस बनी रहे, यही चाहेंगे वो, अपनी उन्नति वो नहीं चाहेंगे, इसलिए हमारी उन्नति हमारे हाथ में है। अगर हम हमारे आपके सवाल का आंसर यही जवाब यही है कि खुद को आप 2 या 3 घंटे दिन में शुरू में दे दीजिए, बाद में वो नंबर बढ़ा दीजिए, और खुद को बताते रहिए मुझे मालूम नहीं है, मुझे ये पढ़ना है, डोंट से दैट यू आर ए मास्टर,
3: मुझे सब आता है। तो दोस्तों अभी तक आप सुन रहे हैं डॉक्टर शरद काले जी को, जो कि भारत के एक बहुत जाने माने वैज्ञानिक है, जिन्हें भारत सरकार ने वर्ष 2009 में पद्मश्री सम्मान से पुरस्कृत किया है, बट आपने इनको बहुत पहले और कई जगह पे अपने विज्ञान के तथ्यों के द्वारा समाज में सुधार लाने का प्रयास करते हुए देखा है, सुना है। आप में से कईयों ने इनको आमिर खान जी के शो सत्यमेव जयते पे भी देखा है, जैसे कि मैंने सबसे पहले आपको वही देखा था डॉक्टर शरद काले जी। मैं उस किस्से पे आऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं ये बताना चाहूंगा दोस्तों कि जब मैं किसी को पूछता हूँ कि आपकी कहानी आपकी जुबानी सुनाए, तो वो अपनी पूरी कहानी सुनाते हैं, और अक्सर उन कहानियों में कई माइलस्टोन्स होते हैं, कई ऐसे पड़ाव होते हैं जिनका वो जिक्र करते हैं। लेकिन मैंने आपकी कहानी में पाया डॉक्टर शरद काले जी कि आपने कहीं पर भी किसी पड़ाव का जिक्र नहीं किया, लेकिन उस पड़ाव के पीछे के व्यक्तियों का जिक्र किया, आपके 68 शिक्षक, आपकी माता जी, आपके पिताजी, आपने लोगों का जिक्र किया। ये बहुत अनोखा है और बहुत सुकून देने वाला एक विषय है कि व्यक्ति की जो यात्रा होती है उसमें यात्री पड़ाव याद रखता है, मुकाम याद रखता है, लेकिन मुकम्मल उन मुकामों को बनाने वाले जो लोग होते हैं उनको भूल जाते हैं अक्सर। आप उन लोगों को याद रखते हैं, इसलिए शायद आप भी यादगार। आपको पहले तो उस चीज के लिए हम सलाम करते हैं, लेकिन साथ में एक सवाल भी इसके साथ पूछते हैं कि ये जो भावना है आभार की भावना, ये जो ग्रैटिट्यूड है, ये आपको पर्सनली कैसे इनरिच करता है? इसकी वजह से आप अपने जीवन में क्या अनुभव करते हैं? अगर मान लीजिए शरद काले जी के जीवन से ये आभार की भावना को थोड़ा भी कम कर दिया जाए, तो क्या देखते हैं आप शरद काले जी के जीवन?
4: मैं यहाँ तक नहीं पहुंचता था, मैं बिल्कुल यहाँ तक नहीं पहुंचता था। ये सारा जो है, जैसे बीआरसी के लाइफ में भी डॉक्टर काकोडकर से एक बहुत अच्छे गुरु मेरे सामने खड़े थे। मैंने जब कचरे पे काम शुरू किया तब सारे लोगों ने तो हंसने लगे, ये क्या कचरे पे काम करने की, अनुसंधान केंद्र में आप जहाँ एटॉमिक वेपन्स बने जाते हैं, एटॉमिक एनर्जी बनती है, वहां आप कचरे पे क्या काम कर रहे हो? तब सपोर्ट दिया था सर ने, तो मैंने उसमें उपाधि मैंने मिली, उपाधि मैंने जिस दिन मैंने निवृत्त हो उपाधि भी छोड़ दी, उपाधि इज वेरी गुड, आई हैव नथिंग अगेंस्ट उपाधि, लेकिन वो उपाधि और जो डॉक्टरेट वगैरह है मैं इसे नहीं मानता हूँ। उसके साथ जो हमारे सर ने जो कहा था कि वो गलती बंद करने की कोशिश, अगर किसी ने मुझे आके बताया कि सर मैंने आज से खाना फेंकना बंद कर दिया है, मुझे अच्छा लगता है कि अरे कुछ तो चीज असर हुआ इस चीज का। तो ये जो हमें क्या फाइनली हम इस धरती पे, मैं ये मानता हूँ कि पंचतत्व ने आत्म तत्व अलग किया, उसे शरद काले नाम देके बोला कि जा धरती पर चला जा, लेकिन जाते समय नंगा जाएगा, आते समय नंगा है, तो क्या किस लिए मैं भेज रहा हूँ। मेरे हाथ में उन्होंने पूरी वसुंधरा सौंप दी। अगर आप किसी को 15 रुपए 10 रुपए देते हो तो आप उसे मॉर्गेज लिखते हो कि मेरे को ये दे दो, तभी इससे भगवान ने तो कुछ लिया नहीं, मॉर्गेज पूरी दुपरते आपको दे दी। तो उसने एक एक्सपेक्टेशन है पंचतत्व को आपसे, वो एक्सपेक्टेशन ये है, अपेक्षा ये है कि आप जब गए थे तब धरती जितनी सुंदर थी उससे और सुंदर बना के वापस आए, और सुंदर बनाने में आपको जो लोग मदद करेंगे उनके चरण छूओ, आप वही आपको मार्गदर्शन करने वाले हैं कि उनकी वजह से आप ये जो रास्ता है चल रहे हैं, रास्ता कट रहा है, और ये अगर मैं धरती आप सुंदर कर रहे हो तो उनका योगदान उसमें बहुत बड़ा है, आप सिर्फ निमित्त।
3: ये बहुत सुंदर बात आपने रखी कि जीवन का जो उद्देश्य है वो ये है कि जहां पर आप हो वहां से जब आप वापस आओ तो उस जगह को 100 गुना सुंदर बना करके आओ। ये जो लक्ष्य है ये अगर व्यक्ति अपने जीवन में ठान ले तो मैं समझता हूँ उसका हर कदम जो है बहुत कल्याणकारी कदम होगा, वो कभी भी किसी का नुकसान कर ही नहीं सकता।
4: नहीं सुनेगा किसी गलत नहीं
3: जी।
4: ये जो मैं बच्चों से बोलता हूँ, आप ये धर्म की बातें हैं, पूजा की बातें हैं, आप घर में रखो, ये पूरे विश्व में एक ही धर्म है वो मानव धर्म, और दो ही जाति है, एक स्त्री और एक पुरुष। अगर ये सोच के आप चाहो, जब रास्ते पे मैं चलता हूँ, मैं मेरी गाड़ी में बस में बैठा हूँ, बस का ड्राइवर मुस्लिम है क्रिश्चियन है मुझे क्या वास्ता है, मुझे जगह पे ले जा रहा है, मेरे लिए मेरा गाइड है भगवान है, वो श्री मेरा श्री कृष्ण है, सारथी है, वो लेके जा रहा है, उसमें गलत क्या है। ये जो भावना मन में पैदा हुई, आप किसकी पूजा करते हो, आप घर में रखो, आपको अगर शांति मिलती है ब्रह्म कुमारी आश्रम में जाके आप जरूर जाओ, कोई रोकता नहीं आप, लेकिन दूसरे को आप नीचे इसकी ये मत कहो कि आप ये मत कहो, आपका आपने रास्ता तय किया, आप उस रास्ते से चलते रहो।
3: ये जो दूसरे को नीचा दिखाने वाली जो वृत्ति है, इसकी वजह से ही शायद हम कभी भी कचड़े का समाधान नहीं निकाल पाए, क्योंकि हमें ऐसा लगा कचड़ा मतलब यूजलेस या वेस्ट, लेकिन किसी का वेस्ट जो है वो किसी के लिए गोल्ड होता है, समझिए जैसे जो कचरा बिनने वाले लोग होते हैं उसके लिए तो वही वेस्ट गोल्ड है। तो मैंने कहीं किसी को बोलते हुए सुना था,
4: गोवा में 250 टन का एक प्लांट चलाता हूँ मैं, उनका मैं एक्सपर्ट हूँ, वहाँ 250 टन कचरा जीरो हो जाता है, और उसमें 1 मेगावाट बिजली भी निकलती है, 40-50 लाख रुपए रिसाइक्लेबल वैल्यू भी उसे मिलती है, और उसे जो RDF करके वो सीमेंट फैक्ट्री को ईंधन भी मिलता है, और कचरा भी शून्य,
3: लोगों को रोजगार भी मिल रहा है उससे, लोगों को रोजगार भी मिला।
4: 165 रैक भी कर अभी उनके बहुत अच्छे हालात हो चुके हैं, कहीं भी गोवा में जाके सालीगांव प्लांट देखिए आप खुद खुश हो जाओगे, 165 लोगों का जो रास्ते पे कचरा भी उठाते थे अभी उनको 20,000-25,000 रुपए की तनख्वाह मिलती है, 2 वक्त का खाना मिलता है, पूरा मेडिकल इंश्योरेंस उनका भरा रहता है, तो उनका कितना अच्छा हुआ, और गोवा भी जीरो वेस्ट होता है। तो ये चीजें होती है कि प्रकृति के विश्वकोश में कचरा शब्द नहीं है, वो हमने लाए, अगर प्रकृति के विश्वकोश में एक कचरा दूसरे का रिसोर्स है, इसे ही पुनर्चक्रांकन कहते हैं, जीवन चक्र होता है, जो पानी से एक कविता मैंने लिखी थी, युगों से रहा हूं मैं धरती पर, बारिश झरना नदी सागर, फिर बारिश झरना नदी सागर, चक्र से मैं गुजरता हूँ, लेकिन वक्त के मुसाफिर मानव मित्र में थे, जितना पिया है आज तक आधा तो शुद्ध करो, धरती माता की मदद करो, नहीं तो मेरा जनाजा उठने वाला है, उसके साथ साथ मानव वंश का भी जनाजा उठने वाला है, अगर पानी की हम समस्या पैदा करें, रोज हम 100 लीटर पानी प्रदूषित करते हैं हर एक, तो इंटीग्रेशन इतना बड़ा होता है उसका।
3: मैंने ये देखा शरद जी कि आप केवल वैज्ञानिक ही नहीं, बहुत अच्छे साहित्यकार भी हैं, आपके शब्दों में बड़ा जादू है और आपके बोलने के तरीके में एक रोमांच है जो कि लोगों को छू जाता है, तो मैं समझता हूँ अगला जो पढ़ाव है आपके जीवन में, मैं समझता हूँ आपके साहित्य की वजह से शायद आ सकता है। डॉक्टर शरद काले जी, आपके साथ बात करते हुए समय का पता ही नहीं चलता है कि कब हम इतने लंबे समय से बात कर रहे थे, लेकिन मैं समझता हूँ हमें अभी भी बहुत कुछ जानना है आपसे, बहुत कुछ सीखना है आपसे, इसलिए इस वार्तालाप को हम जारी रखेंगे अगले एपिसोड के लिए। साथियों बने रहिएगा यशस्वी भारत के साथ, और उम्मीद करते हैं अगले एपिसोड में दोबारा आपके साथ मुलाकात होगी। एक और एपिसोड में डॉक्टर शरद पाले जी हमारे साथ होंगे अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा करने के लिए। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 crore सेल्स है, दिस इज द ब्रेन, ओके 10,000 crore सेल्स। एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 crore सेल्स आर, ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 मोर सेल्स इन द बॉडी, 10,000 crore सेल्स इन द ब्रेन इंटू 10,000, दिस इज द ह्यूमन नेटवर्क, सो मेनी स्विचेस कनेक्टेड टू सो मेनी स्विचेस। अब जब इतने स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा। तो जब ब्रेन में 10,000 crore सेल्स कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स इन द बॉडी, एंड हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सिक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है, और हमने कितने आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे। अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उससे हमें याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते हैं वैसे करना।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.1। आपका हार्दिक स्वागत है ज्ञान चिंतन में, एक ऐसा रेडियो कार्यक्रम जहां हम विचारों की गहराई में उतरकर ज्ञान, जीवन, समाज, संस्कृति और आध्यात्म से जुड़े विषयों पर सार्थक संवाद करते हैं। यह कार्यक्रम न केवल जानकारी देता है बल्कि सोच को नई दिशा भी प्रदान करता है। तो आइए आत्ममंथन और बौद्धिक समृद्धि की इस प्रेरक यात्रा में हमारे साथ जुड़िए और चिंतन को जीवन का हिस्सा बनाइए।
1: नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं हूं आपका मित्र विवेक जैन और आज हम एक ऐसे विषय पर चिंतन करने जा रहे हैं जिसकी तलाश हर इंसान करता है और उसे पाने के लिए अक्सर बाहर की दुनिया में भटकता रहता है। यह विषय है आंतरिक शांति। आंतरिक शांति एक ऐसी स्थिति है जिसमें मन स्थिर, शांत और संतुलित रहता है। यह मानसिक तनाव, चिंता और नकारात्मक विचारों से मुक्ति पाने की अवस्था है। मित्रों, आज हम बाहरी रूप से सुविधाओं से भरपूर हैं, लेकिन भीतर से अशांत हैं। हमारे पास तकनीक है, साधन है, उपलब्धियां हैं, फिर भी मन में बेचैनी, तनाव और असंतोष बना रहता है। कारण स्पष्ट है, हमने जीवन की गति तो बढ़ा ली है लेकिन मन को थामना भूल गए। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में आंतरिक शांति प्राप्त करना एक चुनौती हो सकता है, लेकिन कुछ सरल तरीके अपनाकर इसे संभव बनाया जा सकता है। आंतरिक शांति पाने का पहला और सबसे प्रभावी तरीका है स्वयं से जुड़ना। दिन भर हम दूसरों की अपेक्षाओं, जिम्मेदारियों और समस्याओं में उलझे रहते हैं, लेकिन खुद से बात करने का समय नहीं निकालते। प्रतिदिन कुछ मिनट मौन में बैठना, अपनी सांसों पर ध्यान देना, मन की गति को देखना, यह एक छोटा सा अभ्यास है जो हमें भीतर की शांति से जोड़ सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र है वर्तमान में जीना। हमारा मन या तो अतीत की स्मृतियों में उलझा रहता है या भविष्य की चिंताओं में भटकता रहता है। अतीत अब बदला नहीं जा सकता और भविष्य अभी आया नहीं है। जीवन तो केवल इसी क्षण में है। जब हम वर्तमान को पूरी सजगता से जीते हैं तभी मन शांत होता है। श्रोताओं, आंतरिक अशांति का एक बड़ा कारण है नकारात्मक सोच। हम अक्सर वही बातें याद रखते हैं जो हमें दुख देती हैं। आवश्यकता है दृष्टिकोण बदलने की। हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ सीख छिपी होती है। सकारात्मक सोच कोई जादू नहीं बल्कि एक अभ्यास है जिसे रोज अपनाया जा सकता है। आंतरिक शांति के मार्ग में क्षमा का विशेष महत्व है। जब हम दूसरों के प्रति क्रोध, ईर्ष्या या शिकायत पालते हैं तो सबसे अधिक नुकसान हमारा ही मन झेलता है। क्षमा करना कमजोरी नहीं बल्कि आत्मिक शक्ति है। माफ करने से सामने वाले का नहीं हमारा मन हल्का होता है। मित्रों, संतोष और कृतज्ञता भी आंतरिक शांति की कुंजी है। हम जो नहीं है उसी पर ध्यान देते हैं और जो है उसे अनदेखा कर देते हैं। प्रतिदिन जीवन में मिली छोटी छोटी खुशियों के लिए आभार व्यक्त करना सीखें। यह आदत मन को गहराई से शांत करती है। प्रकृति भी हमें शांति का संदेश देती है। प्रकृति के सानिध्य में समय बिताना, जैसे सुबह की सैर, पेड़ों के बीच कुछ पल, आकाश को निहारना, यह सब मन को सहज रूप से शांत करता है। प्रकृति हमें सिखाती है कि बिना शोर किए भी संतुलन में कैसे रहा जाए। आंतरिक शांति का एक और सशक्त माध्यम है आध्यात्मिकता और प्रार्थना। इसका अर्थ केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं बल्कि जीवन के गहरे अर्थ को समझना है। जब हम किसी उच्च शक्ति पर विश्वास रखते हैं तो जीवन की कठिनाइयां भी हमें विचलित नहीं कर पाती। अंत में श्रोताओं, इतना ही कहना चाहूंगा कि आंतरिक शांति कोई बाहरी वस्तु नहीं जिसे खरीदा जा सके, यह हमारे भीतर ही विद्यमान है। आवश्यकता है तो केवल उसे पहचानने, अपनाने और रोजमर्रा के जीवन में उतारने की। इसी संदेश के साथ मुझे अनुमति दीजिए, फिर मिलूंगा एक नए चिंतन के साथ। बने रहे हमारे साथ पुनेरी आवाज 107.8 FM पर और सुनते रहें इसी तरह प्यार से, खुश रहें, खुशियां बांटे।
0: प्रिय श्रोताओं, ज्ञान चिंतन के आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमें आशा है कि आज की चर्चा ने आपके मन में नए विचारों को जन्म दिया होगा और सोच को एक नई दिशा प्रदान की होगी। ज्ञान और चिंतन की यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है। फिर मिलेंगे ज्ञान चिंतन में एक नई सोच, एक नई दिशा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और शुभकामनाएं। खुश रहें, खुशियां बांटें।

0: गली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस। राइट, मैं दुनिया पे अकेला हूँ।
1: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लिनिया इज जक्सटापोजिशन्ड बाय द हेमोग्लोबिन ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द कंट्री।

0: डाली तो जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: सो क्यूट।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपये क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मी काका सुमूर्ती शिंदे, त्यामुळे मला हे पीक विमाचा अनुदान रक्कम 1,38,000 रुपये मिळाले आहे। तर काही गोष्टींमुळे येत असतं, त्यासाठी शेतकऱ्याने हे विमा याचा लाभ, शासनाच्या योजनेचा लाभ घेतला पाहिजे, त्यामुळे शेतकरी समृद्ध होऊ शकेल।
2: खरीफ पीक विम्यासाठी लवकरच नोंदणी करा।
3: बँक शाखा, विमा कंपनी, कृषी ऋण समिती, जनसेवा केंद्राशी संपर्क करा।
4: पीक विमा संबंधित अधिक माहितीसाठी हेल्पलाइन नंबर 1444 7 वर कॉल करा।
5: पीक विमा काढा हो, सुरक्षा कवच मिळवा हो।
6: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। वेलकम सिस्टर।
7: ओम शांति।
6: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग शक्ति।
7: थैंक यू सो मच।
6: आज फिर से मैं कुछ पढ़ के सुनाना चाहता हूँ।
7: जरूर।
6: वी डू नॉट सी द वर्ल्ड थ्रू अ विंडो। वी डू नॉट सी द वर्ल्ड थ्रू अ विंडो बट थ्रू अ मिरर, आईने के द। Everything we discern is comparatively held to the vision with which we see ourselves.
7: Look at the line. We do not see the world through the window. We see the world through a mirror. Dunya ko hame khidki ke through nahi, ek aaine ke through dekh rahe hain. Dunya ko agar hame khidki ke through dekhte, खिड़की के थ्रू तो जो चीज जैसी है वैसी दिखाई देती है,
6: तो डिटैच होके देखते हैं।
7: जो चीज जैसी है वैसी दिखाई देगी थ्रू अ विंडो, बट इन द मिरर व्हाट डू आई सी? आईने में व्हाट डू आई सी? नो, आईने में आई सी ओनली माई सेल्फ।
6: वही तो मैंने आपसे कहा,
7: आई कैन सी हियर इज द वर्ल्ड, सपोज दिस इज द वर्ल्ड, यू आर द वर्ल्ड फॉर मी, लेट्स से ये दुनिया है, मुझे इसको देखना है। अगर मैं आपको खिड़की के थ्रू देख रही हूँ, मतलब खुला है सब, आई कैन सी यू एज यू आर, लेकिन अगर बीच में एक आईना है, मिरर है, आईने में आई कैन सी ओनली माई सेल्फ, थ्रू व्हाट आई सी माई सेल्फ देन आई सी यू, सो आई डू नॉट सी यू एज यू आर। ये बहुत डीप लाइन है और इसीलिए उसने लिखा कि बहुत कम हम लोगों को और सिचुएशंस को वो जैसे हैं वैसे परख सकते हैं। वी डू नॉट डिसर्न देम एज दे आर। जो लास्ट टाइम भी हम बात कर रहे थे कि जब हम औरों को चेंज करने के लिए कहते भी हैं, या औरों को उनकी आदत के लिए, संस्कार के लिए क्रिटिसाइज करते हैं, जो आपने कहा इतना भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं आता, एट दैट टाइम वी आर सीइंग पीपल थ्रू अ मिरर, नॉट थ्रू द विंडो।
6: और ये सारी बातों में आता है, कर्टेसी में, खाने में, उठने में,
7: हर चीज में,
6: ताकत में, सेहत में, मतलब कॉमन सेंस में, हर जगह बोल देते हैं इतना तो होना चाहिए।
7: कॉमन सेंस के लिए कितना इजीली बोलते हैं, इतनी भी कॉमन सेंस नहीं है।
6: कर्टेसी में कम बोलते हैं, कम से कम खड़े तो हो जाते, नमस्ते झुक के नहीं करते, एटलीस्ट दिस बार चाय तो पूछ लेते, नहीं पिलाओ भले पूछ तो लेते, मतलब हर चीज में।
7: हेलो, सब कुछ हम आईने के थ्रू कर रहे हैं।
6: किस किस तरह के प्रॉब्लम होते हैं, मेरे घर में एक झगड़ा हुआ था कि सम गेस्ट ऑफ माइन, उन्होंने मेरे भाई का फोन उठा दिया, तो उन्होंने सोचा कि अमेरिका से फोन कर रहा है मेरा भाई, तो उन्होंने जल्दी से फोन लाके मेरे को दिया, तो बोले फोन उसको वापस दो, वापस दे कि आपको इतनी कर्टेसी नहीं है, पहले हेलो हाय नमस्ते कुछ भी। तो वो बोल रही भाई मैं समझी आप अमेरिका से लाइटनिंग शाइटनिंग पता नहीं क्या आपके पैसे लगेंगे, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से
7: कॉन्फ्लिक्ट का कितना बड़ा रीजन है। और इसीलिए जैसे वो लाइन थी कि इसीलिए हम लोगों को और सिचुएशंस को परख ही नहीं सकते, क्योंकि हम वो जो हैं जैसे हैं वैसे उनको हम नहीं देख रहे हैं, हम उनको आईने के थ्रू देख रहे हैं। आईने के थ्रू देख रहे हैं मतलब अपने संस्कार के थ्रू जब हम उनको देखेंगे, तो वो जो हैं जैसे हैं वैसे हम उनको नहीं देखेंगे। राजयोग मेडिटेशन से जब हम अपने माइंड को साइलेंट करना शुरू करते हैं, एक माइंड में टर्बुलेंस चल रही है, अपने संस्कार, ईगो का कभी, हर्ट का कभी, एंगर का कभी, इरिटेशन का, ये जब चल रहे हैं और इनके थ्रू हम दूसरों को देखेंगे, तो दूसरे जो हैं जैसे हैं वो कभी नहीं दिखाई देंगे।
6: धुलती चेहरे पर हम आईना पोछते रहे,
7: बिल्कुल
6: चेहरे पे अपना नहीं पोछ रहे हैं।
7: अब सेम चीज जब ये माइंड साइलेंट हो जाएगा, मतलब ये जो अक्वायर्ड संस्कार है वो साइलेंट है, तब सामने वाला जो है जैसे है वैसे दिखाई देगा। इसीलिए परखने की शक्ति कितनी इम्पोर्टेंट है। परखने की शक्ति अगर सही नहीं होगी तो निर्णय शक्ति सही नहीं होगी। निर्णय शक्ति सही नहीं होगी तो कर्म सही नहीं होगा। कर्म सही नहीं होगा तो भाग्य सही नहीं बनेगा। तो एक परखने की शक्ति में अगर गलती हुई कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, इस समय सही क्या है, गलत क्या है, एक छोटी सी गलती का इफेक्ट मेरे भाग्य तक पड़ेगा।
6: ये जो दोनों रिश्तेदार थे, जो जिसने फोन मेरे घर पे उठाया और जिसने अमेरिका से रिश्तेदार ने फोन किया, अब मेरे हिसाब से दोनों राइट है। वो कहता है कि तुम छोटे हो उम्र में, पूछो तो सही भाई कैसे हो, कैसे है, क्या हाल है। तो वो बोल रहे हैं कि नहीं, मैं तो ये समझ रही थी कि आपका पैसा लगेगा।
7: ये जो आपने अभी कहा ना कि मेरे हिसाब से दोनों राइट है, क्योंकि एक्चुअली दोनों राइट है, लेकिन किसको ये दिखेगा कि दोनों राइट है, जो दोनों से डिटैच्ड होके सिचुएशन को देख रहा है। लेकिन उन दोनों को नहीं दिख रहा कि दोनों राइट है।
6: पर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो बोलता है कि भी कम नमस्ते तो करो।
7: उनका दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू राइट है, लेकिन राइट परखने के लिए हम अगर डिटैच होकर देखते तो हमें ये भी दिख जाता कि दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू भी तो राइट है। दिस आपको कैसे दिख रहा है?
6: अगर सपोजिंग वो बंदा पूछ लेता कि बेटा तुम मेरे को आज हेलो तो करो, क्या बात है, नमस्ते भी नहीं किया, इतनी जल्दी क्या है।
7: जैसे हमें कोई ऐसा बिहेव करेगा जो हमारे संस्कार के साथ अग्री नहीं करता, हमारी ईगो हर्ट हो गई, हम रिएक्ट कर गए ना। जब रिएक्ट कर गए तब तो एनर्जी सारी चेंज हो गई उसके बाद,
6: रोती हुई आई मैं,
7: क्योंकि हमने यहाँ थॉट क्रिएट कर लिया वो गलत है। द मिनट आई एम सीइंग अ संस्कार विच इज डिफरेंट फ्रॉम माइन, माई संस्कार सेज कि जिसने फोन उठाया उसको प्यार से पहले बात करनी चाहिए, विश करना चाहिए, कर्टेसी। माई प्रोग्रामिंग इज फिक्स्ड, तो मेरी प्रोग्रामिंग के थ्रू ही मैंने उनको देखा, आईने के थ्रू देखा, तो मैं ये देख ही नहीं पा रहा कि सामने वाले ने इसलिए बात नहीं की क्योंकि उसका नजरिया क्या था कि अमेरिका से फोन है, वाई टू वेस्ट देयर पर मिनट एनी। आप उस सिचुएशन के अंदर नहीं है, यू नो, एक होता है सिचुएशन के अंदर घुसे हुए हैं और एक है सिचुएशन से साक्षी है। वो दो लोग सिचुएशन के अंदर हैं। अब एक है जिन्होंने फोन किया, आपने कहा उनको उस बच्ची ने विश नहीं किया तो वो उनकी ईगो हर्ट हो गई, एक। फिर जब उन्होंने डांटा तो वो बच्ची की ईगो हर्ट हो गई तो वो रोते हुए आई, उसने भी तो उनका नजरिया नहीं समझा ना, दोनों ने नहीं समझा, जोर से डांटा ना।
6: अब जरा इतनी भी अकल नहीं है तो
7: हाँ, लेकिन वो बच्ची भी, उसने भी तो वो नजरिया नहीं देखा ना कि हाँ इन्होंने इसलिए डांटा कि मैंने विश नहीं किया इसलिए डांटा। द पावर टू बी एबल टू सी द अदर पर्सन्स पर्सपेक्टिव, इम्पोर्टेंट इज वी आर नॉट एबल टू सी द अदर पर्सन्स पर्सपेक्टिव, वी कैन सी ओनली वन पर्सपेक्टिव, सिर्फ एक नजरिया।
6: जिसने फोन उठाया उसको क्या समझ में आई, क्यों झाड़ रहा है मुझे।
7: जब हमें किसी ने कुछ कहा या किया तो हमें उतना पॉज होना पड़ेगा कि इसके पीछे इनका क्या रीजन, पर्सपेक्टिव या इंटेंशन था। जब तक हम वो नहीं देखेंगे हम ना व्यक्ति को ना परिस्थिति को परख पाएंगे। इसीलिए तो वो खिड़की खुली नहीं है, खिड़की नहीं खुली ना,
6: मिरर के थ्रू
7: मतलब सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव के थ्रू, सिर्फ उस आईने के थ्रू ही हम देख सकते हैं सबको। बहुत सारी सारा दिन में हमारे से छोटी छोटी गलतियां इसलिए हो रही हैं क्योंकि हम सब
6: छोटी नहीं हुई ना, ये बात इतनी बड़ी बाद में,
7: लेकिन ये बात
6: वो जब वो घर आए तो बात भी नहीं करी, महीनों चला इसको कि बोलती मुझे आज तक किसी ने इतनी जोर से नहीं डांटा।
7: दोनों तरफ नजरिया नहीं देखा, दूसरे के संस्कार को नहीं समझा, फिर उसके बाद ईगो को हील नहीं कर पाए, बात को लेट गो नहीं कर सके, ना लंबा चलता है। चीज इतनी होती है, इतनी सही नहीं परखी तो फिर बाद में निर्णय के लिया इनसे बात नहीं करनी, अभी जल्दी जल्दी ऐसे डांटते हैं। ये कर्म बदल गया, भाग्य बदल गया। ये सारा दिन में अगर हम चेक करेंगे ना तो पता नहीं कितनी लंबी लिस्ट निकलेगी कि जो हम ये कितनी बार ऐसा करते हैं। इसीलिए जितनी पावर्स हमने अभी तक देखी, पावर टू लेट गो, ये सब जो पुरानी बातें हुई बीत गया लेट को छोड़ना है.
6: पावर टू टॉलरेट.
7: फिर पावर टू टॉलरेट, सहन शक्ति कि दूसरे के संस्कार को एक्सेप्ट करना. तीसरा एडजस्ट करने की शक्ति कि समाने की शक्ति. लेकिन ये तीनों चीजें भी करने के लिए जो चौथी शक्ति वो ये वाली शक्ति है, परखने की शक्ति. मीन्स राइट रॉन्ग सही गलत हम बचपन से सीख रहे हैं. सही गलत की परख होनी चाहिए. परखो तो सही क्या था गलत क्या था, सच क्या है झूठ क्या है, परख के फिर निर्णय लो. वी हैव हर्ड दिस सिंस चाइल्डहुड. लेकिन जो हम पहले परखने की शक्ति बोलते थे दैट वॉज अ लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग कि सही क्या है गलत क्या है देखो तो नो बट अ लॉजिकल. स्पिरिचुअलिटी जो हमें सिखाती है, राजयोग मेडिटेशन से जो हम अपने पर वर्क करते हैं और हर एक अनुभव भी करेगा उसको कि जितना माइंड थोड़ा थोड़ा साइलेंस की तरफ, साइलेंस मतलब ये क्लटर जो नॉइज है ये कम होने लगती है, हम अपने ओरिजिनल संस्कार की तरफ जाना शुरू करते हैं तो जो परखने की शक्ति इमर्ज होती है वो एक आउटवर्डली परखने की शक्ति नहीं होती कि लॉजिकली राइट क्या है रॉन्ग क्या है, नॉलेज क्या कहती है राइट क्या है रॉन्ग क्या है, लेकिन वो होती है एक इनेट अंदर से एक जो इनर वॉइस जिसको कहते हैं, जिसको हम इंट्यूशन कहते थे. नहीं जब कहते अंदर की आवाज कहती है ये राइट है ये रॉन्ग है.
6: अंदर वाला तो हमेशा मुझसे बात करता रहता
7: है ना,
6: और कई बार बोलते हैं मत कर मत बोल और मैं हमेशा फंसा.
7: फंसा मतलब अगर नहीं माना तो फंसा.
6: मैं कई बार फंसा बाय नॉट लिसनिंग टू माय अंदर वाला.
7: नॉट लिसनिंग. हाँ
6: सिस्टर, एक बार मैं लोनावला जा रहा था अपने फार्म हाउस तो अंदर वाला बोला चाबी तो ले लो. तो मैं ऐसा हाथ बढ़ा, मैंने क्यों, माली है उसके पास चाबी है, वहाँ सब खाना पका के देंगे. वहाँ गया तो मालिक के घर में किसी की डेथ हो गई, वो गांव चला गया.
7: जिसको हम अंदर की आवाज कहते हैं ना, वो एक परखने की शक्ति है जो अक्वायर्ड बातों से नहीं, लोगों के ओपिनियन के आधार से नहीं, जो इस समाज में रहते हुए जो बिलीफ सिस्टम्स हमने बने उसके थ्रू नहीं परखता, लेकिन जो आत्मा की इनेट विजडम है, आत्मा को जो अंदर से पता होता है कि सही और गलत क्या है. नहीं कई बार हम कहते हैं मुझे अंदर से मालूम है कि ये सही है मेरे लिए, मुझे अंदर से मालूम है ये गलत है. वो जो आवाज आती है, वो जो राइट और रॉन्ग हमें बताएगा, वो हमेशा राइट निकलेगा. इट विल ऑलवेज बी राइट फॉर अस, बट नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज स्टार्ट यूजिंग इट मोर एंड मोर.
6: विवेक, मेरा बेटा और मैं एक अपने लिए लैंड लेने गए थे तो उसके नंबर के लिए विवेक पूछ रहे बोलने लगा और मैं कि हम लोग वास्तु वाले को बुला ले, उसको पूछ ले तेरे अंदर वाला क्या बोल रहा है. डैडी आई लव इट. डैडी मुझे अच्छी लगी. मैंने मेरे को बहुत अच्छी लगी. न नंबर पूछो न वास्तु पूछो, तुम और मैं दोनों फंसेंगे क्योंकि वो कुछ बोलेगा ये कुछ बोलेगा ये हाथ से चीज चली जाएगी.
7: सही बात है.
6: आज तक हमको इतना सुख है उस प्रॉपर्टी से.
7: वन इज अक्वायर्ड नॉलेज एंड वन इज द इनेट नॉलेज दैट द सोल हैज.
6: दिस इज ब्यूटीफुल. आपने मुझे याद दिला दिया अंदर
7: सही वाला. और गलत की जो आवाज, जो हमें पता है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन वो जैसे आपने कहा ना अभी, जो जब माइंड क्लटर्ड में होता है तो हमेशा बाहर ढूंढता है सही क्या है गलत क्या है, इससे पूछे इससे पूछे, ये करे, इधर पढ़े उधर चेक करे. अगर हम सिर्फ दो मिनट साइलेंस में बैठ जाए, सिर्फ दो मिनट, हर आत्मा को हर बात का आंसर पता है. We don't need to find out anything from anyone or anywhere. Every soul knows the answer to every question, every issue and every problem in their life.
6: You're so right. ये practically मैंने किया sister. विवेक को किसी ने बोला आप member of parliament के youngsters की जरूरत है आज, आप क्यों नहीं किसी party से ticket लेके लड़ते, this that, you're so good in speech. तो मेरे से वो advice लेने आया. मैंने कहा एक काम करो, बाबा के सामने बैठो, मंदिर में बैठो, मेडिटेट करो और अंदर वाले से पूछो, आपको जवाब आएगा.
7: बस
6: वो गया ही नहीं.
7: एक बार परखा सही फिर निर्णय लेना इज इजियर. इम्पोर्टेंट तो वो परख की शक्ति राइट होनी चाहिए ना. तो जितना आत्मा इस इनेट से अब आंसर निकालने शुरू करेगी हर चीज में, इवन अब अगर जब हमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है दो लोगों के बीच, जैसे हमने देखा कि दूसरे का संस्कार हम क्यों नहीं परख पा रहे, दूसरे का संस्कार क्यों हम दूसरे को अपने संस्कार के थ्रू देख रहे हैं, क्योंकि उस टाइम हम इनेट से कनेक्टेड नहीं है, हम ईगो से कनेक्टेड है.
6: क्यों इनेट से कनेक्टेड?
7: हम इनेट से कनेक्टेड नहीं है ना. अगर हम इनेट से
6: कनेक्टेड हूँ या नहीं हूँ, आप मुझे कुछ भी बोलते जाएंगे तो मैं इनेट से कनेक्टेड हूँ नहीं हूँ, आप बदतमीजी करोगे तो
7: वाइज सोल कौन सी है, जो आत्मा अपनी विजडम से कनेक्टेड होगी। आप देखो जब हम अगेन जब हम महात्माओं के पास जाते हैं उनके साथ कोई गलत भी व्यवहार करता है।
6: वो तो मैंने देखा, लेकिन मैं महात्मा नहीं हूँ ना।
7: महात्मा नहीं हो, एक मिनट,
6: हम तो
7: महात्मा नहीं हो, मैं दिव्य आत्मा नहीं हूँ, मैं संत आत्मा नहीं हूँ। उस टाइम
6: क्या करना है?
7: उस टाइम मैं नहीं हूँ, क्योंकि उस टाइम मैं अपनी ओरिजिनलिटी से डिसकनेक्टेड हूँ।
6: Let us talk to people like us only. आप बीच में महात्मा मत लाइए ना। महात्मा तो करता ही है, मैंने देखा हुआ है। एक मेरे सामने जगत गुरु का आदमी इतना बोला, उन्होंने सिर्फ बोला आप शायद इसे गलत समझ रहे हैं, ये बात सत्य नहीं है।
7: पहली बात तो हम बार बार ये विक्टिम फीलिंग क्रिएट करते हैं ना कि हम तो संत आत्मा नहीं है।
6: इसमें विक्टिम की बात नहीं, सब प्रैक्टिकल है। आप यही चीज जो उसने जगत गुरु से बोलता ही जा रहा था, बोलता मैं सुन के मेरा मन कर था अभी मारूं, और वो देख रहे हैं, बोलते शायद नहीं आपके ना, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग होगी।
7: तो अब वो संत आत्मा उस क्षण उस सीन में ही लेकर आते हैं कि एक व्यक्ति आया, ठीक से नहीं बात की, अब्यूजिव लैंग्वेज, रॉन्ग लैंग्वेज यूज की, यहाँ वो संत आत्मा बैठे हैं, यहाँ आप बैठे हैं, वो शांत थे।
6: मैं तो बहुत शांत
7: डिस्टर्ब हो रहे थे। ओके, नाउ What was the difference between the two souls only at that time? आप में और उनमें उस समय क्या फर्क था?
6: वो महात्मा थे, मैं एक्टर था।
7: महात्मा थे, मैं एक्टर था, मतलब क्या?
6: हाँ, मतलब है।
7: महात्मा कोई रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है,
6: तो फिर
7: कोई प्रोफेशन थोड़ी है कि वो महात्मा थे मैं एक्टर था। महात्मा कोई प्रोफेशन थोड़ी है। महात्मा है मतलब
6: क्वालिटीज तो है उनमें,
7: है मतलब डिवेलप की
6: ओरिजिनलिटीज भी है, काम भी है उनका, और उनको
7: उसके
6: महात्मा को प्रैक्टिस भी तो होती है ना।
7: प्रैक्टिस तो हम भी कर रहे ना। सी, ये सब प्ली देके अपने आप को छुड़ाना नहीं है उस पुरुषार्थ से, वो महात्मा थे मैं एक्टर था, नहीं, वो आत्मा है मैं आत्मा हूँ। वो आत्मा उस क्षण अपनी ओरिजिनलिटी से कनेक्टेड थे, मैं आत्मा उस क्षण अपनी ओरिजिनलिटी से डिसकनेक्ट होके अपने ईगो में था। नहीं, सिर्फ आपने कहा हम संत आत्मा नहीं है, हम सब संत आत्मा है। परमात्मा हमें कहता है आप सब ओरिजिनली ब्यूटीफुल प्योर दिव्य आत्मा हो, सिर्फ संत आत्मा भी नहीं हो, दिव्य आत्मा, डिवाइन सोल, देवी देवता। देवी देवता मतलब डिवाइन आत्मा। हर आत्मा वो है, डिविनिटी। संत आत्मा प्रोफेशन नहीं है। आप एक्टर हैं इसका मतलब ये नहीं है कि ईगो होनी चाहिए और आपको ऐसे
6: ईगो होनी चाहिए। नहीं बोला मैं एक्टर हूँ, महात्मा नहीं हूँ, तो दोनों में डिफरेंस है।
7: मैं एक्टर हूँ इज अ प्रोफेशन।
6: तो क्या हुआ?
7: तो मैं एक्टर हूँ इज अ प्रोफेशन।
6: महात्मा तो
7: इज नॉट अ प्रोफेशन।
6: तो
7: महात्मा हूँ, एक महात्मा एक्टर बन सकता है?
6: महात्मा का बिहेवियर,
7: एक महात्मा एक्टर बन सकता है?
6: क्यों नहीं बन सकता?
7: सिंपल, मतलब आत्मा महान है, प्रोफेशन कोई भी हो। ऐसा नहीं है कि मैं एक्टर हूँ तो ईगो होना इज फाइन।
6: सही बात है, कई महात्मा तो मर्डर भी करते हैं।
7: हाँ, दैट्स इट, राइट। सो इट्स नॉट अबाउट हमने कौन से कपड़े पहन लिए।
6: ये आपका पॉइंट समझ में आया।
7: हमने कौन से कपड़े पहन लिए, हम आश्रम में रह रहे हैं, जंगल में रह रहे हैं, या एक बहुत बड़े बंगले में रह रहे हैं, इट डजंट मैटर। महात्मा इज नॉट अ रोल, महात्मा इज नॉट अ प्रोफेशन। महात्मा
6: रिपीट करेंगे, बहुत सुंदर।
7: महात्मा मीन्स वो आत्मा,
6: वो आत्मा, हाँ,
7: जिसने अपनी महानता को, मतलब अपनी डिविनिटी को, अपनी ओरिजिनलिटी को इमर्ज किया है। फिर उसके बाद चाहे वो एक्टर का प्रोफेशन है या बिजनेसमैन है, वो फादर है, वो कुछ भी हो सकता है।
6: यू सो राइट, अभी मेरे बात समझ में आई, क्योंकि अब मुझे थॉट आया कि मैं कई महात्माओं को जो ये रोल करते हैं लेक्चर देने का, रिलीजियस एक्स्ट्रा जो भी है, वो लोगों को मैंने गुस्से में भी देखा है, लड़ाई करते हुए भी देखा है, एकदम लो लेवल की बातें भी देखी है, पैसों के लिए भी उनको ग्रीड देखा है।
7: बिल्कुल,
6: यू आर राइट। तो
7: विच इज ओके, अगेन हम यहाँ जजमेंटल
6: नहीं, मैं एक्टर और उसको नहीं करूंगा,
7: बट यहाँ हम उनके बारे में भी जजमेंटल नहीं हो रहे, ठीक है। वी आर नॉट हियर टू बी जजमेंटल अबाउट एनीबडी, वी आर हियर टू अंडरस्टैंड कि आत्मा एवरी सोल, एंड एवरी सोल मीन्स एब्सोल्यूटली एवरी सोल ऑन दिस प्लैनेट। परमात्मा ने कहा हर आत्मा मीन्स हर आत्मा, चाहे इस समय वो कुछ भी कर रहे हैं, एंड कुछ भी कर रही है मीन्स कुछ भी कर रही है, कुछ भी। अगर आज कोई आत्मा निमित्त बनती है मर्डर करने के, टेरर क्रिएट करने के विश्व के अंदर, वो आत्मा भी ओरिजिनली, वो आत्मा भी ओरिजिनली बहुत ब्यूटीफुल एंड प्योर आत्मा है, लेकिन इस समय किसी कारण से जो कंडीशनिंग हुई, जो सिखाया गया, जिस प्रभाव में आए, जो भी रीजन, डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, अपनी ओरिजिनलिटी से कम्प्लीटली डिस्कनेक्टेड। वो एक एक्सट्रीम है कि ओरिजिनलिटी से इतने डिस्कनेक्ट हो जाते हैं कि हम ऐसा कुछ कर्म करने लगते हैं। एक है हम सब लोग, लेट्स से मेजोरिटी, जो अपनी ओरिजिनलिटी से उतना डिस्कनेक्टेड नहीं है कि हम किसी के साथ ऐसा मर्डर करे या कुछ करे, लेकिन हम ओरिजिनलिटी से थोड़ा डिस्कनेक्टेड है, तो हम गुस्सा करते हैं और ये सब कर सकते हैं, विच इज ऑल्सो नॉट आर ओरिजिनल। और एक ऐसी सेट ऑफ आत्माएं हैं जो अपनी ओरिजिनलिटी में बहुत ज्यादा रहते हैं, जिनको फिर हम लेबल करते हैं नॉट बिकॉज ऑफ व्हाट दे वेयर एंड हाउ दे लुक, बट बिकॉज ऑफ हु दे आर, कि वो आत्मा संत आत्मा है। जरूरी नहीं है जो संन्यास करते हैं, आश्रम में रहते हैं, या जो आपने कहा वर्कशॉप्स कराते हैं, वो संत आत्माएं होते हैं। आपको सारा दिन में चलते फिरते आपको ऐसी आत्मा मिलेगी, आपको कोई गेट पे एक सिक्योरिटी गार्ड मिलेगा, कोई आप रेस्टोरेंट में जाएंगे आपको जो खाना परोस रहा होगा, आपको उससे मिलकर ऐसी एक वाइब्रेशन आएगी, आप कहेंगे संत आत्मा है ये, बिल्कुल आएगा कि नहीं आएगा।
6: लोग तो यहाँ तक बोलते, मैं किसी गाय को हाथ लगाने वाला था तो मैंने पूछा ये मारती तो नहीं है, तो बोले नहीं, तो एक तो बिल्कुल संत है।
7: तो संत मतलब किसको हम संत लेबल करेंगे,
6: जिसको
7: जो आत्मा अपनी ओरिजिनलिटी से ज्यादा कनेक्टेड है, मतलब जो आत्मा शांत रहती है, प्यार करती है, अनकंडीशनली हमें एक्सेप्ट करती है, जिसकी वाइब्रेशन, और किसको बोलते हैं संत, छोटे बच्चे को,
6: फ्रेंडली चाइल्ड,
7: छोटे बच्चे को जिसकी इतनी प्योरिटी है, इतनी डिविनिटी है, विच मीन्स इट कैन बी एनीबडी नाउ, नॉट इट्स नॉट गोइंग टू बी पीपल जिनके पास सिर्फ टाइटल है कि वो संत आत्मा है, ये 100% है। ना हमें ये सोचना है कि जिनके पास ये टाइटल है कि ये संत आत्मा है वो सारे परफेक्ट होने चाहिए, वो भी नहीं हमें देखना है, क्योंकि आज क्या होता है ऐसा देख के फिर हम कई बार डिसइल्यूजन हो जाते हैं, हम परखने की शक्ति रॉन्ग उस टाइम यूज करते हैं, क्योंकि बहुत लोग आजकल कहते हैं ओ ये लोग भी ऐसे करते हैं, तो फिर हम क्या, बट वाई आर वी कंपेयरिंग विद एनीबडी, वाई आर वी जजिंग एनीबडी, लेट्स हैव नॉलेज। नॉलेज ये कहती है कि हर आत्मा प्योर है, राइट, हर आत्मा अपनी प्योरिटी से अलग अलग मैग्नीट्यूड में डिस्कनेक्ट हुई है, कोई थोड़ा, कोई ज्यादा, कोई बहुत ज्यादा, लेकिन हर आत्मा के पास वो पावर है कि वो अपनी ओरिजिनलिटी पे वापस जा सकती है। कोई आत्मा हो सकती है घर गृहस्थ में रहती है, सारा दिन बिजनेस कर रही है, कारोबार कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन अपनी ओरिजिनलिटी से बहुत कनेक्टेड है, कनेक्टेड है, तो वो अपनी डिविनिटी को अपने डे टू डे कर्म में रेडिएट करती है। कोई आत्मा हो सकती है कि वो आश्रम में सेवा करती है, कहीं भी पूरी दुनिया में, लेकिन वो आत्मा अभी जर्नी पर है, वो अभी अपनी ओरिजिनलिटी से उतनी कनेक्ट नहीं हुई है, वो वर्क कर रही है अपने पर, मेहनत लेकिन हुई नहीं है। तो हमें ऐसे को देखकर डिसइल्यूजन भी नहीं होना है, जजमेंटल भी नहीं होना कि ऐसे आश्रम में रहते हैं, सब कुछ छोड़ दिया, संन्यास किया, फिर भी गुस्सा करते हैं। नो, इट्स ओके, दिस इज कंपैशन, दिस इज अंडरस्टैंडिंग द अदर पर्सन्स पर्सपेक्टिव, एंड उससे क्या होगा, ना हम उनके प्रति जजमेंटल होंगे और ना हम अपने को डिसएम्पावर करेंगे।
6: संत के जो आश्रम खोल के बैठे रहते हैं उनको गुस्सा करके तो देखता भी हूँ और बोलता भी हूँ ये संत थोड़ा ही है।
7: हमने किसी के ऊपर जजमेंटल नहीं होना है, हमें हर आत्मा की यात्रा पता नहीं है। आज अगर आप मुझे देख रहे हैं, सपोज आई एम ऑन दिस जर्नी, दिस जर्नी इज अ वेरी लॉन्ग जर्नी, ऐसे नहीं है आज डिसाइड किया तो ये ठीक हो गया, आज डिसाइड किया तो ये परफेक्ट हो गया। नो, अब आज अगर मैं गुस्सा कर रही हूँ यहाँ, एंड आप कहें फिर फायदा क्या है? आप इतना सुना रहे हैं और आप ही गुस्सा कर रहे हैं।
6: मुझे बोलते हैं कि आप शिवानी दीदी के साथ इतने सारे सीरियल किए और छोटी सी बात पे आपको गुस्सा आ गया, तो फायदा ही क्या हुआ जाके?
7: हाँ,
6: मुझे बोलते हैं
7: राइट,
6: तो देयर राइट।
7: हमें ये चेक करना है
6: सिस्टर, इट इज इम्पॉसिबल। देखिए, मैं किसी महात्मा को देखू गांजे पी रहा है, मैं किसी को देखू सिगरेट पी रहा है, किसी को देखू मैं खराब काम कर रहा है, किसी को देखो मैं लालची कर रहा है, तो मैं चुप रहूं और बोलू हा हा हा, ऐसा तो होता ही है, ऐसे पॉसिबल है? एवरीबडी हैज टू प्ले द रोल। हाँ, तो फिर आपने, आप कितने एपिसोड्स में बोला आपने ड्यूटी करनी चाहिए?
7: हमारी ड्यूटी पहली ड्यूटी है कि हमें दूसरे के प्रति जजमेंटल और क्रिटिकल नहीं होना है।
6: हम जजमेंट कहाँ करें? परखने की शक्ति जो आप बोल रहे हो वो परख रहा हूँ मैं।
7: हमें उनसे कुछ सीखना है, कुछ लेना है या नहीं लेना है, आवर चॉइस, वो परखना है। ठीक है, अगर आपको मेरे अंदर कुछ बहुत गलत दिखाई देता है, तो अगर आपको मेरे साथ बैठ के नहीं शेयर करना है या आपकी चॉइस, फाइन, ये परखने की शक्ति। लेकिन लेबल करना, जजमेंटल हो जाना, क्रिटिकल हो जाना, ये लोग तो ऐसे हैं, ये लोग तो ऐसे हैं, ये ऐसे ही करते हैं, फायदा क्या है? इससे तो आपकी पावर डिप्लीट हो जाएगी, मेरा नुकसान नहीं होगा।
6: लेकिन मैं परखा कि ये आदमी, ये संत का ये सब दरबार खोल के बैठा है और इतना बड़ा आश्रम खोल के बैठा है, वहां मैं अपने बच्चों को भी बोलूंगा, वाइफ को भी बोलूंगा कि वहां बिल्कुल जाने की कोई जरूरत नहीं आपको,
7: विदाउट बीइंग क्रिटिकल।
6: फिर समझाएं कैसे विदाउट बीइंग क्रिटिकल?
7: कोई भी चीज ऐसी ना करें जिससे अपनी ही शक्ति डिप्लीट होती है। इट्स लाइक ये दिखा, ये ठीक नहीं है, उधर से नहीं चलो, पांव टूटेगा, सिंपल। इतना ही परखना है सिर्फ, उधर नहीं,
6: चक्कर में आ जाते हैं ना इनके,
7: तो वो अपनी परखने की शक्ति की कमी है।
6: मेरे अगर बच्चे और बीवी है तो मेरा काम है ना, मैं तो परख लिया,
7: परख लिया,
6: तब उनको समझाऊं कि ऐसा है, ऐसा ऐसा मत जाओ।
7: वेरी ट्रू, विदाउट बीइंग क्रिटिकल एंड जजमेंटल अबाउट दी अदर पर्सन, दिस इज नो, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट।
6: सिस्टर, लोग अपनी जायदाद दे देते हैं ऐसे लोगों को, ज्वेलरी दे देते हैं, पैसा देके बैठ जाते हैं, क्या क्या कैसे कैसे काम होते हैं आपको मालूम है क्या?
7: अपनी परखने की शक्ति की कमी है ना, हमें करना है करें, हमें नहीं करना है नहीं करें, इट्स फाइन। लेकिन जो हम बहुत ज्यादा दूसरे को क्रिटिसाइज करने की जर्नी पे चले जाते हैं, राइट, सपोज मेरी वाइट ड्रेस है लेकिन उसपे काले दाग हैं, ठीक है, आपने देख लिया, आपको नहीं आना नजदीक, दूर रहना है, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, परख लिया। लेकिन दूर बैठकर अगर आप मुझ पर लगे हुए काले दाग के बारे में सिर्फ डिस्कस करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे, उससे नफरत करेंगे, तो उससे मेरे काले दाग पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं अपनी यात्रा पर हूं अपने दाग को कम करने के लिए, लेकिन मुझे क्रिटिसाइज करते करते आपकी ड्रेस पर काले दाग ज्यादा लग जाएंगे।
6: मेरी ड्रेस पर काले दाग कैसे लगेंगे सिस्टर? मुझे एक बहुत जरूरी ये जानना है और मैं इसको इमीडिएटली नेक्स्ट एपिसोड में आपसे ये पूछूंगा।
7: थैंक यू सो मच।
6: थैंक यू। ओम शांति।
8: वी डू नॉट सी द वर्ल्ड थ्रू अ विंडो, वी सी द वर्ल्ड थ्रू अ मिरर। सीइंग द वर्ल्ड थ्रू अ विंडो मीन्स seeing people and situations as they are. Seeing the world through a mirror means seeing situations and people through our sanskars. When we see people through the filter of our sanskars, we will perceive their emotions, words and actions according to our sanskars. And we may not be able to understand them truly as they are. Rajyoga meditation helps to silence our turbulent sanskars of ego, anger, hurt. This helps us to understand situations and people as they are, and this increases our power to discern. Power to discern or discriminate means to know what is right, what is wrong, what is true, what is false. Often, we discern what is right or wrong based on acquired information, people's opinion, or belief systems created by society. This may or may not be right for us. Discernment based on our innate wisdom, which we call the inner voice or intuition, is right for the soul.
7: If you wish to discuss

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। मैं स्मिता जयकर, खुश रहो, खुशियां बांटो।

कहे महाराष्ट्र तेरा, वो कहे गुजरात मेरा, एक का पंजाब घर है, एक का मद्रास तेरा। आग में जलता बिहार, जोश में बंगाल है, उस तरफ देखो के सरहद पर खड़ा भोचाल है।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम खुश बैठे हैं, हम प्यार से वो चीज खा रहे हैं जो हमें पसंद है, तो पूरी सिचुएशन तो हमारी एक्चुअली। सी द सिचुएशन इज ऑल अबाउट मी। मैं आराम से इस कुर्सी पे बैठी हूँ, मेरे सामने मेरी फेवरेट मिठाई है, मैं प्यार से खा रही हूँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट, हैप्पी हैप्पी, और सामने

0: में से कोई आया, किसी ने एक लाइन बोल दी, इस केस में लाइन इतनी बहुत ज्यादा कड़वी भी नहीं है, लेकिन हो सकता किसी ने कोई कड़वी लाइन भी बोल दी, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर ली, किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने डांट दिया। इस केस में तो कुछ भी नहीं था, इस केस में थोड़ा सा बोला कि आपको थोड़ी परहेज करनी चाहिए थी। हियर माई वर्ल्ड वॉज परफेक्ट, सब कुछ मेरे अनुसार था, लेकिन सामने से कोई आया, सामने से किसी ने एक लाइन बोली और वो एक लाइन ने मेरे पूरे वर्ल्ड को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। मन डिस्टर्ब्ड, फीलिंग्स डिस्टर्ब्ड, फिर वर्ड्स डिस्टर्ब्ड, काफी देर तक डिस्टर्ब्ड। मीनिंग वन लाइन, किसी की एक लाइन मेरी इस दुनिया को एक घंटे के लिए डिस्टर्ब कर सकती है। और ये भी हो सकता है कि अगली बार जब आप वो उनसे मिलेंगे तब भी आपको वो वाली बात याद आ जाएगी। सो इट विल नॉट इवन रिस्ट्रिक्ट टू दिस वन आवर, ये हो सकता है कि इट स्टेज ऑन माई माइंड एंड इट कम्स बैक टू माई माइंड लेटर ऑन। शायद कभी जब वो लड्डू खा लिया तब वो बात याद आ जाएगी, या शायद वो बहन सामने कभी आ जाएगी तो वो बात याद आ जाएगी। मतलब माई माइंड, ये हमारा एक्सरे है।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

पुणे आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो।

0: उनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
1: भारत की प्रशंसा में न जाने कितने गीतकारों ने गीत लिखे, कितने कलाकारों ने अपनी रचनात्मकता द्वारा अलग अलग तरीके से व्यक्त किया। इस भारत भूमि के ऐसे प्रदेश की बात हम आपसे करने जा रहे हैं, जहां का रंग बिरंगा अंदाज और स्वादिष्ट खाना आपको यहीं बांध लेगा। चलिए आज चलते हैं हम राजस्थान।

राजस्थान भारत गणराज्य के क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। इसके पश्चिम में पाकिस्तान, दक्षिण पश्चिम में गुजरात, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश, उत्तर में पंजाब, उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश और हरियाणा है और साथ में दिल्ली से भी लगा हुआ है। भौगोलिक विशेषताओं में पश्चिम में थार मरुस्थल और गगधर नदी का अंतिम छोर है। विश्व की पुरातन पर्वत श्रेणियों में से प्रमुख अरावली पर्वतमाला राजस्थान की एकमात्र पहाड़ी है जो पर्यटन का केंद्र है, जो कि माउंट आबू और विश्व विख्यात दिलवाड़ा मंदिर को सम्मिलित करती है। पूर्वी राजस्थान में दो बाघ अभयारण्य हैं, रणथंबोर और सरिस्का, और भरतपुर के समीप केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है जो पक्षियों की रक्षार्थ निर्मित किया गया है। राजस्थान भारतवर्ष के पश्चिम भाग में अवस्थित है जो प्राचीन काल से ही विख्यात रहा है। तब इस प्रदेश में कई इकाइयां सम्मिलित थीं, जो अलग अलग नाम से संबोधित की जाती थीं। आइए अब पलटते हैं कुछ पन्ने राजस्थान के इतिहास के। यहाँ का इतिहास प्रागैतिहासिक काल से शुरू होता है। ईसा पूर्व 3000 से 1000 के बीच यहाँ की संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता जैसी थी। 12वीं सदी तक राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुर्जरों का राज्य रहा। गुजरात तथा राजस्थान का अधिकांश भाग गुर्जरात्रा अर्थात गुर्जरों के रक्षित देश के नाम से जाना जाता था। गुर्जर प्रतिहारों ने 300 साल तक पूरे उत्तरी भारत को अरब आक्रांताओं से बचाया। बाद में जब राजपूतों ने इस राज्य के विविध भागों पर अपना आधिपत्य जमा लिया तो यह क्षेत्र ब्रिटिश काल में राजपुताना अर्थात राजपूतों का स्थान कहलाने लगा। 12वीं शताब्दी के बाद मेवाड़ पर गहलोतों ने राज्य किया। मेवाड़ के अलावा जो अन्य रियासतें ऐतिहासिक दृष्टि से प्रमुख रहीं, वे थीं भरतपुर, जयपुर, बूंदी, मारवाड़, कोटा और अलवर। अन्य सभी रियासतें इन्हीं रियासतों में से बनी थीं। इन रियासतों ने सन 1818 ईस्वी में अधीनस्थ गठबंधन की ब्रिटिश संधि स्वीकार कर ली। सन 1857 के विद्रोह के बाद यहाँ के लोग स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में एकजुट हो गए। सन 1935 में अंग्रेजी शासन वाले भारत में प्रांतीय स्वायत्तता लागू होने के बाद राजस्थान में नागरिक स्वतंत्रता तथा राजनीतिक अधिकारों के लिए आंदोलन और तेज हो गए। 1948 में इन बिखरी हुई रियासतों को एक करने की प्रक्रिया शुरू हुई जो 1956 में राज्य पुनर्गठन कानून लागू होने तक जारी रही। सबसे पहले 1948 में मत्स्य संघ बना जिसमें कुछ ही रियासतें शामिल हुईं। धीरे धीरे बाकी रियासतें भी इनमें मिलती गईं। सन 1949 तक बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर जैसी मुख्य रियासतें इनमें शामिल हो चुकी थीं और इसे बृहत्तर राजस्थान संयुक्त राज्य का नाम दिया गया। सन 1958 में अजमेर, आबू रोड, तालुका और सुनेल टप्पा के भी शामिल हो जाने के बाद वर्तमान राजस्थान राज्य विधिवत अस्तित्व में आया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान का भी योगदान कम नहीं रहा। यहाँ के अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अनेक आंदोलनों में हिस्सा लिया, जिनमें से प्रमुख थे अंजना देवी चौधरी, छगन राज चौपासनीवाला, गंगा सिंह, घनश्याम दास बिडला, घासीराम चौधरी, जमुना लाल बजाज, चुन्नीलाल चित्तौड़, जय नारायण व्यास, अब्दुल हमीद कैसर, ठाकुर केसरी सिंह और महात्मा रामचंद्र वीर। आइए इन वीरों की गाथा के बारे में एक छोटा सा गाना सुनते हैं और फिर लौटते हैं राजस्थान की कहानी में।

आइए अब और थोड़ा जानते हैं राजस्थान को। राजस्थान मुख्यतः एक कृषि व पशुपालन प्रधान राज्य है और अनाज व सब्जियों का निर्यात करता है। राज्य की प्रमुख फसलें हैं चावल, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, चना, गेहूं, तिलहन, दालें, कपास और तंबाकू। अल्प व अनियमित वर्षा के बावजूद यहाँ लगभग सभी प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। यहाँ का अधिकांश क्षेत्र शुष्क या अर्ध शुष्क है। फिर भी राजस्थान में बड़ी संख्या में पालतू पशु हैं और वह राजस्थान सर्वाधिक ऊन का उत्पादन करने वाला राज्य है। ऊंटों व शुष्क इलाकों के पशुओं की विभिन्न नस्लों पर राजस्थान का एकाधिकार है। रेगिस्तानी क्षेत्र में बाजरा, कोटा में ज्वार व उदयपुर में मुख्यतः मक्का उगाया जाता है। इस राज्य में गेहूं व जौ का विस्तार रेगिस्तानी क्षेत्रों को छोड़कर अच्छा खासा है। ऐसा ही दलहन, मटर, सेम व मसूर जैसी खाद्य फलियां, गन्ना व तिलहन के साथ भी है। शिक्षा के क्षेत्र में भी राजस्थान ने बहुत प्रगति की है। राजस्थान में अनेक शैक्षणिक संस्थान हैं, जिनमें राज्य द्वारा संचालित जयपुर, उदयपुर, जोधपुर व अजमेर विश्वविद्यालय हैं। कोटा खुला विश्वविद्यालय, पिलानी में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस शामिल हैं। यहाँ अनेक राजकीय अस्पताल और दवाखाने हैं। यहाँ कई आयुर्वेदिक, यूनानी, जड़ी बूटियों पर आधारित चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी संस्थान हैं। शिक्षा के साथ साथ संस्कृति भी हर प्रदेश की नींव होती है। राजस्थान की संस्कृति बहुत निराली है। यहाँ मुश्किल से ही कोई महीना ऐसा जाता होगा जिसमें धार्मिक उत्सव न हो। सबसे उल्लेखनीय व विशिष्ट उत्सव है गणगौर, जिसमें महादेव और पार्वती की मिट्टी की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं और उनकी पूजा 15 दिन तक सभी जातियों की स्त्रियों द्वारा की जाती है। बाद में उन्हें जल में विसर्जित कर दिया जाता है। विसर्जन की शोभा यात्रा बाजे गाजे के

हिंदू और मुसलमान दोनों एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते हैं। इन अवसरों पर उत्साह और उल्लास का बोलबाला रहता है। जयपुर का गणगौर विश्व प्रसिद्ध माना जाता है। एक अन्य प्रमुख उत्सव अजमेर के निकट पुष्कर में मनाया जाता है, जो धार्मिक उत्सव व पशु मेले का मिश्रित स्वरूप है। यहाँ राज्य भर के किसान अपने ऊंट व गाय भैंस आदि लेकर आते हैं एवं तीर्थयात्री मुक्ति की खोज में आते हैं। अजमेर स्थित सूफी आध्यात्मवादी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भारत में मुसलमानों की पवित्रतम दरगाहों में से एक है।

0: राजस्थान का विशिष्ट नृत्य घूमर है, जिसे उत्सवों के अवसर पर केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, जबकि गेर नृत्य महिलाओं और पुरुषों दोनों द्वारा किया जाता है। पनिहारी भी महिलाओं का लालित्यपूर्ण नृत्य है, जिसमें पुरुष नर्तक वनवटी घोड़ी पर बैठे होते हैं। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध गीत खुरजा है, जिसमें एक स्त्री की कहानी है जो अपने पति को खुरजा पक्षी के माध्यम से संदेश भेजना चाहती है। वह उसकी उस सेवा के बदले उसे बेशकीमती पुरस्कार का वादा करती है। अब वक्त हो रहा है इसी गीत खुरजा को सुनने का। आइए सुनते हैं खुरजा की कहानी, आखिर क्या बेशकीमती पुरस्कार मिलने वाला है।
1: उनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो, खुशियां बांटो।

अब जब हमने घूमर की बात कर ही ली है तो आपको घूमर सुनाना भी चाहिए। आप बैठे बैठे नाचने लगेंगे। पेश है घूमर, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

तो कैसा लगा गाना? राजस्थान ने भारतीय कला में अपना बहुत योगदान दिया है। यहाँ साहित्यिक परंपरा मौजूद है, विशेषकर भाट कविता की। चंद बरदाई का काव्य पृथ्वीराज रासो या चंद रासो विशेष उल्लेखनीय है। यहाँ पर मनोरंजन का एक लोकप्रिय माध्यम ख्याल है, जो एक नृत्य नाटिका है, जिसके काव्य की विषय वस्तु उत्सव इतिहास या प्रणय प्रसंगों पर आधारित रहती है। राजस्थान में प्राचीन दुर्लभ वस्तुएं प्रचुर मात्रा में हैं, जिनमें बौद्ध शिलालेख, जैन मंदिर, किले, शानदार रियासती महल, मस्जिद व गुंबद शामिल हैं। राजस्थान मेलों और उत्सवों की धरती है। होली, दीपावली, विजयदशमी, क्रिसमस जैसे प्रमुख राष्ट्रीय त्योहारों के अलावा अनेक देवी देवताओं, संतों और लोक नायकों तथा नायिकाओं के जन्मदिन यहाँ मनाए जाते हैं। यहाँ के महत्वपूर्ण मेले हैं तीज, जयपुर का गणगौर, अजमेर शरीफ की उर्स, गलियाकोट के वार्षिक उर्स, बेनेश्वर डूंगरपुर का जनजातीय कुंभ, श्री महावीर जी सवाई माधोपुर का मेला इत्यादि। अब इस रंगारंग संस्कृति और त्योहारों का कुछ न कुछ तो आपको झलक देना ही पड़ेगा। तो आइए सुनते हैं बहुत ही खूबसूरत सा गाना और फिर लौटते हैं राजस्थान की कहानी में।

राजस्थान का राज्य पक्षी गोंडावण है, जो आकार में काफी बड़ा तथा वजन में भारी होता है। गोंडावण राजस्थान तथा समीपवर्ती पाकिस्तान के क्षेत्रों में पाया जाता है। यह एक दुर्लभतम पक्षी है। राजस्थान का राज्य पक्षी गोंडावण।

0: रावण उड़ने वाले पक्षियों में सबसे अधिक वजनी है। बड़े आकार के कारण यह शत्रुमुर्ग जैसा ही प्रतीत होता है। भारत में गोंडावण जैसलमेर के मरु उद्यान व अजमेर के शोकलिया क्षेत्र में पाया जाता है। यह पक्षी अत्यंत ही शर्मीला होता है और सघन घास में रहना इसका स्वभाव है। यह सोहन चिड़िया तथा शर्मीली पक्षी के नाम से भी प्रसिद्ध है। राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा है। यह एक छोटा हिरण है जो दक्षिण एशिया में पाया जाता है। चिंकारा शर्मीला जीव है और मानव आबादी से दूर रहना ही पसंद करता है। यद्यपि यह अकेले रहने वाला जीव है, किंतु कभी कभी यह प्राणी एक से चार के झुंड में भी दिखाई दे जाता है। ग्रीष्म ऋतु में इस प्राणी की खाल का रंग लाल भूरा हो जाता है और पेट तथा अंदरूनी पैरों का रंग हल्का भूरा लिए हुए सफेद होता है। इतिहास के साधनों में शिलालेख, पुरालेख और साहित्य के समानांतर कला भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसके द्वारा हमें मानव की मानसिक प्रवृत्तियों का ज्ञान प्राप्त होता है और निर्मितियों में उनका कौशल भी दिखाई देता है। यह कौशल तत्कालीन मानव के विज्ञान तथा तकनीक के साथ साथ समाज, धर्म, आर्थिक और राजनीतिक विषयों का तथ्यात्मक विवरण प्रदान करने में इतिहास का स्रोत बन जाता है। इसमें स्थापत्य, मूर्ति, चित्र, मुद्रा, वस्त्राभूषण, श्रृंगार प्रसाधन, घरेलू उपकरण इत्यादि जैसे कई विषय समाहित हैं, जो पुनः विभिन्न भागों में विभक्त किए जा सकते हैं। स्थापत्य कला राजस्थान में प्राचीन काल से ही हिंदू, बौद्ध, जैन तथा मध्य काल में मुस्लिम धर्म के अनुयायियों द्वारा मंदिर, स्तंभ, मठ, मस्जिद, मकबरे, समाधियों और छतरियों का निर्माण किया जाता रहा। इनमें कई भग्नावेश के रूप में तथा कुछ सही हालत में अभी भी विद्यमान हैं। इनमें कला की दृष्टि से सर्वाधिक प्राचीन देवालयों के भग्नावेश हमें चित्तौड़ के उत्तर में नगरी नामक स्थान पर मिलते हैं। प्राप्त अवशेषों में वैष्णव, बौद्ध तथा जैन धर्म की तक्षण कला झलकती है। धातु मूर्ति कला भी राजस्थान की एक अनोखी कला है। धातु मूर्ति कला को भी राजस्थान में पर्याप्त प्रश्रय मिला है। पूर्व मध्य, मध्य तथा उत्तर मध्य काल में जैन मूर्तियों का यहाँ बहुतायत में निर्माण हुआ। सिरोही जिले में वसूतगढ़ पिंडवाड़ा नामक स्थान पर कई धातु प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें शारदा की मूर्ति शिल्प की दृष्टि से दृष्टव्य है। भरतपुर, जैसलमेर, उदयपुर के जिले भी इस तरह के उदाहरणों से परिपूर्ण हैं। आगे बढ़ते हैं अब यहाँ की बेहद खूबसूरत चित्रकला की ओर। राजस्थान में मुकुंद्रा की पहाड़ियों व अरावली पर्वत श्रेणियों में कुछ शैल चित्रों की खोज हुई है, जिससे यहाँ के लोगों की चित्रकला के प्रति रुचि दिखाई देती है। कोटा के दक्षिण में चंबल के किनारे माधोपुर की चट्टानों से आलनिया नदी से प्राप्त शैल चित्रों का जो ब्यौरा मिलता है, उससे लगता है कि यह चित्र बगैर किसी प्रशिक्षण के मानव द्वारा वातावरण प्रभावित स्वाभाविक इच्छा से बनाए गए थे। इनमें मानव एवं जानवरों की आकृतियों का अधिक्य है। कुछ चित्र शिकार के, कुछ यंत्र तंत्र के रूप में ज्यामितिक आकार के लिए पूजा और टोना टोटका की दृष्टि से अंकित हैं। कोटा के जलवाड़ा गांव के पास विलास नदी के कन्यादाह ताल से बैला, हाथी, घोड़ा सहित घुड़सवार एवं हाथी सवार के चित्र हैं। यह चित्र उस आदिम परंपरा को प्रकट करते हैं जो आज भी राजस्थान में मांडला नामक लोक कला के रूप में घर की दीवारों तथा आंगन में बने हुए देखे जा सकते हैं। कालीबंगा और आहड़ की खुदाई से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों पर किया गया अलंकरण भी प्राचीनतम मानव की लोक कला का परिचय प्रदान करता है। मेवाड़ के अनुरूप मारवाड़ में भी चित्रकला की प्राचीन परंपरा पनपती रही है। राव मालदेव उल्लेखनीय हैं कि यहाँ मुगल प्रभाव के परिणाम स्वरूप 17वीं शती से मुगल शैली और राजस्थान की परंपरागत राजपूत शैली के समन्वय ने कई प्रांतीय शैलियों को जन्म दिया। इनमें मेवाड़ और मारवाड़ के अतिरिक्त बूंदी, कोटा, जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर, किशनगढ़ और नाथद्वारा शैली मुख्य है। राजस्थान धातु एवं काष्ठ कला भी अत्यंत लोकप्रिय है। इसके अंतर्गत तोप, बंदूक, तलवार, म्यान, छुरी, कटारी आदि अस्त्र शस्त्र भी इतिहास के स्रोत हैं। इनकी बनावट, इन पर की गई खुदाई की कला के साथ साथ इन पर प्राप्त सन एवं अभिलेख हमें राजनीतिक सूचनाएं प्रदान करते हैं। ऐसे ही तोप का उदाहरण हमें जोधपुर दुर्ग में देखने को मिला, जबकि राजस्थान के संग्रहालयों में अभिलेख वाली कई तलवारें प्रदर्शनार्थ भी रखी हुई हैं। धातु कला के पश्चात अब यहाँ की लोक कला के बारे में भी कुछ जानते हैं। राजस्थान की लोक कला के अंतर्गत वाद्य यंत्र, लोक संगीत और नाट्य आता है। यह सभी सांस्कृतिक इतिहास की अमूल्य धरोहरें हैं। जो इतिहास का अमूल्य अंग है। 20वीं सदी के पूर्वार्ध तक राजस्थान में लोगों का मनोरंजन का साधन लोक नाट्य व नृत्य रहे थे। रासलीला जैसे नाट्यों के अतिरिक्त प्रदेश में ख्याल, रम्मत, राजधारी नृत्य, भवाई, तुर्रा कंगली, घूमर, अग्नि नृत्य, कोटा का चक्री नृत्य, कठपुतली आदि प्रदर्शन के नाम से उल्लेखनीय हैं। लोक वाद्यों में नगाड़ा, ढोलक, मादल, रावण हत्ता, सारंगी, तंदूरा, तासा, खड़ताल आदि भी राजस्थान की देन है। राजस्थान को एक अनोखे रंग प्रदान करती है यहाँ की कठपुतली कला। राजस्थान की कठपुतली काफी प्रसिद्ध है। यहाँ धागे से बांधकर कठपुतली नचाई जाती है। लकड़ी और कपड़े से बनी और मध्यकालीन राजस्थानी पोशाक पहने इन कठपुतलियों द्वारा इतिहास के प्रेम प्रसंग दर्शाए जाते हैं। इसमें अमर सिंह राठौड़ का चरित्र काफी लोकप्रिय है, क्योंकि इसमें युद्ध और नृत्य दिखाने की भरपूर संभावनाएं होती हैं। आगे बढ़ते हैं और अब थोड़ा राजस्थान घूमने चलते हैं। यहाँ घूमने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ स्थित हैं राजाओं के महल, ऊंचे पहाड़ और कई दार्शनिक स्थल जैसे जोधपुर, जयपुर, माउंट आबू, बीकानेर और उदयपुर। सभी जगहें बहुत ही खूबसूरत हैं, पर राजस्थान की राजधानी जयपुर शहर पर्यटन का सर्वोच्च केंद्र है। यह शहर चारों ओर से परकोठों यानी दीवारों से घिरा है, जिसमें प्रवेश के लिए 7 दरवाजे बने हुए हैं। 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत में महाराजा सवाई मानसिंह ने इस शहर को गुलाबी रंग से रंगवा दिया था। तभी से ही इस शहर का नाम गुलाबी नगरी अथवा पिंक सिटी पड़ गया। यहाँ के प्रमुख भवनों में सिटी पैलेस, 18वीं शताब्दी में बना जंतर मंतर, हवा महल और नाहरगढ़ किला शामिल हैं। अन्य सार्वजनिक भवनों में एक संग्रहालय और एक पुस्तकालय भी शामिल हैं। यहाँ की भाषा की बात करें तो राजस्थानी भाषा भारतीय आर्य भाषाओं तथा बोलियों का समूह है, जो भारत के राजस्थान राज्य में बोली जाती है। यह भाषा हिंदी की एक प्रमुख उपभाषा है। राजस्थानी भाषा अपनी शब्दावली का लगभग 80% हिंदी से ग्रहण करती है, जबकि 20% शब्द स्थानीय होते हैं। इसके 4 प्रमुख वर्ग हैं: पूर्वोत्तर मेवाती, दक्षिणी मालवी, पश्चिम मारवाड़ी, पूर्वी मध्य जयपुरी। इनमें से मारवाड़ी भौगोलिक दृष्टि से सबसे व्यापक है। भारत के अन्य राज्यों की तरह राजस्थान में कई बोलियां बोली जाती हैं। वैसे तो समग्र राजस्थान में हिंदी बोली का प्रचलन है, लेकिन लोक भाषाएं जन सामान्य पर ज्यादा प्रभाव डालती हैं। पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ी, मेवाड़ी, डारकी, बीकानेरी, बांगड़ी, शेखावटी, खेराड़ी, मोड़वाड़ी, देवड़ावाटी आदि बोले जाने की बोलियां हैं। उत्तर पूर्वी राजस्थान में अहिरवाटी, मेवाटी बोली जाती है। मध्य पूर्वी राजस्थान में ढूंढांडी, तोरावटी, जयपुरी, कोटड़ा, राजावाटी, अजमेरी, किशनगढ़, नागौर चोल, हड़ौती बोलियां बोली जाती हैं। वहीं दक्षिण पूर्वी राजस्थान में रांगड़ी, सोंधवाड़ी बोली जाती है और दक्षिण राजस्थान की बोलियां निमाड़ी आदि हैं। राजस्थान के बारे में इतना कुछ जानने के बाद यहाँ के स्वाद न चखे तो फिर सफर अधूरा है। राजस्थान में कई प्रकार के मीठे और तीखे व्यंजन पसंद किए जाते हैं। यहाँ का मुख्य व्यंजन है रबड़ी, बाड़ी, केर सांगरी की सब्जी, कढ़ी, सेब टमाटर, मक्की की घाट, दाल चावल कूट और मिठाइयों में गुजिया, सीरो, इमरती, घेवर, फीनी, बेसन, चक्की, बालूशाही। ये सब सुनकर मुंह में पानी आना तो स्वाभाविक ही है, और दाल बाटी चूरमे को कैसे भूला जा सकता है। राजस्थान आखिर प्रदेश ही इतने रंगों और स्वादों का है। और ये भी गौरतलब बात है कि राजस्थान के किलों के बारे में जब गिनती की जाती है तो राजस्थान के 7 किले विश्व धरोहर गिने जाते हैं। और वैसे ही मशहूर है राजस्थानी खाने भी, और ये भी किसी विश्व धरोहर से कम नहीं है। जिसने राजस्थान के व्यंजन चख लिए उसके लिए और कुछ चखना बाकी नहीं रहता। राजस्थान के अनेक रंग हैं, उनमें से कुछ हमने आपके सामने रखे, और यहाँ का लोक संगीत, नृत्य, किले, पहाड़ियाँ, पकवान आपको यहीं बांध लेंगे। चलिए राजस्थान के रास्तों से आते हैं अब वापस, पर जारी रहेगा आपका ये सफर 29 राज्य, 1 राष्ट्र, 1 कहानी में। जय हिंद।
1: उनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: तो वो लोग जो हमें छोटी छोटी बातों पे डांटते हैं, जो हमारी गलतियां निकालते हैं, जो हमारी निंदा करते रहते हैं, जो हमारी की हुई मेहनत का क्रेडिट ले लेते हैं, जो हमें धोखा दे देते हैं, जो हमारे पीठ पीछे गलत फैलाते हैं, कुछ भी लोग, वो छोटी ब्लैक बॉल हो सकती है, ग्रे हो सकती है या बहुत बड़ी ब्लैक बॉल हो सकती है, क्या हमारे पास पावर है कि हम ब्लैक का रिटर्न व्हाइट से भेजेंगे? वो हमारे साथ गलत करेंगे, हम उनको दुआएं भेजेंगे, इज दैट पॉसिबल? पहली बात, ये मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कभी ना कभी वो बॉल भेजी थी, तो गलती इनकी या मेरी? मेरी। तो इनके ऊपर से जो मैंने ब्लेम लगाया हुआ था वो पहले खत्म, वन। सेकंड, अब मैं अगर व्हाइट भेजूंगी तो किसके फायदे के लिए? उनके ऊपर एहसान नहीं, अपने फायदे के लिए व्हाइट भेजने में भी सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उनके लिए नहीं भेज रहे, अपने फायदे के लिए भेज रहे हैं। क्योंकि अब जब हम व्हाइट एनर्जी भेजेंगे, मतलब दुआएं देंगे अपने फायदे के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा है। ठीक है, चाहे वो हमारी साइकोसोमेटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, द बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था ना मन के लिए ना शरीर के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: सफर आरजे सनी के साथ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर खाबो का सफर। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपका हम सफर सनी। जी हाँ, आज के शो में हम लोग एम अल्फाबेट वाले बहुत सारे खूबसूरत गाने आपको सुनाएंगे और 50s and 60s के ओल्ड मेलोडीज आप सुनेंगे और आशा करता हूँ आप सभी को पुराने गाने बहुत ही सूदिंग लगते हैं और बहुत ही अच्छा फील कराते हैं। और आप लोगों का जब मैसेजेस आता है प्रोग्राम के बाद तो हमें बहुत खुशी होता है। आप लोगों का प्यार है जो हम इस कार्यक्रम को निरंतर चला रहे हैं। तो आइए आज एम अल्फाबेट वाले गानों को हम आपको सुनाने वाले हैं। और सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमारे जीवन में काफी चीजें आती हैं, लेकिन कभी कभी मुश्किल के समय अगर दो लाइनें भी मोटिवेशन के आपके सामने आ जाए या आपको याद आ जाए या किसी ने याद करा दिया तो आपको एक एनर्जी मिल जाती है। इसीलिए मैं भी आपको कार्यक्रम की शुरुआत में एक बहुत ही खूबसूरत लाइन सुनाना चाहूंगा। जैसे कि देखिए, संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो। तो दोस्तों, इस लाइन से यही पता चलता है कि हमारे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए लेकिन वो मुश्किलें हमें मजबूत बनाती हैं। ये अगर मेरे ध्यान में आ जाए तो मैं निरंतर मेहनत करूंगा और आगे बढ़ूंगा। तो चलिए, आशा करता हूँ आप सभी को ये लाइनें पसंद आई होगी और आप भी अपने जीवन में मेहनत कीजिए, कभी भी रुकिए नहीं, चलते रहिए, चलने का नाम ही जीवन है। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत में बहुत ही प्यारा सा गीत आपको सुनाने वाला हूँ जो एक मैसेज देता है और ये मैसेज आप इस गाने को सुनने के बाद समझ लीजिएगा। सीमा फिल्म जो 1955 में आई थी और इसके गीत लिखे थे शैलेंद्र जी ने, और जो गाना मैं अभी आपको सुनाने वाला हूँ एम अक्षर वाला, जिसे लता मंगेशकर ने गाया था और शंकर जयकिशन का खूबसूरत संगीत से सजा ये गाना है। तो चलिए इस गीत का आनंद उठाते हैं, फिर मिलते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है खाबो का सफर। इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना, मन मोहना बड़े झूठे हार के हार नहीं माने। जी हाँ, कृष्ण लीला की कुछ खूबसूरत वर्णन इस गीत के माध्यम से किया गया है और बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोग इस को अच्छी तरह से अगर आप सुनते हैं या फिर इसे देखते हैं तो मन में एक खुशी पैदा होती है। तो आइए, आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए एक और खूबसूरत गीत मैं आपको सुनाने वाला हूं। और ओपी नैयर साहब को अगर आपने कभी सुना हो या उनकी संगीत को सुना हो तो एक बहुत ही बड़े पॉपुलर संगीतकार रहे। इन्होंने अपने जीवन में काफी मेहनत की। शुरुआत में जब इनकी बातें चली और ये नए नए संगीत की दुनिया में आए तो काफी मुश्किलें इनको आए, लेकिन उसके बाद जब इन्होंने एक गति पकड़ी, एक लय पकड़ी, तो ओपी नैयर साहब पूरे ही छा गए और फिल्मी दुनिया में इनका नाम का सिक्का भी चलने लगा। तो आइए, ऐसे ही खूबसूरत संगीत से सजा संगीतकार का एक बहुत ही खूबसूरत गाना है एम अक्षर से, जो 1958 में आई थी रागिनी इस एल्बम के लिए। रागिनी एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी जिसमें एक जो जीवन का जो सफर है उसको बहुत ही अच्छी तरह से बताया गया है और किस तरह से हमारे जीवन में ये काम करता है, फिल्म देखने के बाद आपको पता चलेगा। लेकिन मैं फिल्म के बारे में कम, अब गीत के बारे में ज्यादा बताऊंगा। और एक गीत है इसमें रागिनी फिल्म में एम से, मन मोरा भावरा। जी हाँ, मन मोरा बावरा, ये गाना जो है जहाँ निसार अख्तर साहब ने लिखा था, मोहम्मद रफी साहब ने खूबसूरत आवाज से इस गीत को गाया था। ओपी नैयर साहब का संगीत है। रागिनी इस एल्बम का अगला गाना आपको मैं सुना रहा हूँ, तो चलिए सुनते हैं। और कहते हैं, अगर हारने से डर लगता है तो जीतने की इच्छा कभी मत रखना। इसीलिए कहा जाता है, अगर आप जीतना चाहते हैं तो हारना भी आप सीखिए। जितना आप हारेंगे उतना सीखेंगे और जितना सीखेंगे उतना जीत पाएंगे। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर खाबों का सफर। इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना 1958 का रागिनी इस एल्बम से। आइए अब आगे बढ़ते हुए एक और खूबसूरत गीत की तरफ मैं ले चलता हूँ। 1963 की बात करेंगे अब, जिसमें एक फिल्म आई थी हम राई। जी हाँ, ये फिल्म बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी, जिसमें खास करके अगर मैं बताऊं तो इस फिल्म को खास डायरेक्ट किया था प्रकाश राव ने और स्क्रीन प्ले इसका लिखा था इंदर राज आनंद ने और इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे शंकर जयकिशन। और इसमें भी बहुत सारे गाने थे, लेकिन एक गाना जो एम अल्फाबेट से है वो मैं आपको सुनाना चाहूंगा, मुझको अपने गले लगा लो। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत सूदिंग आवाज में मोहम्मद रफी साहब ने गाया है और राजेंद्र कुमार, जमुना महमूद, ललिता पवार, राजेंद्र नाथ इस फिल्म के कलाकार थे। और इस फिल्म में जो स्टोरी बताई गई है, एक शारदा नाम की महिला की कहानी बताई गई है और एक शारदा के जीवन में जो बड़ी मुश्किलें आती हैं उसे पुलिस पकड़ के लेके जाती है, ऐसी कुछ मर्डर मिस्ट्री की कहानी इसमें दिखाई गई है, जो 1963 में आई थी ये फिल्म, जिसका नाम है हमराही। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हमराही का एक बहुत ही खूबसूरत गीत मैं आपको सुना रहा हूँ, मन रे तू ही बता क्या गाऊं। शैलेंद्र साहब का लिखा, लता मंगेशकर का गाया, शंकर जयकिशन का संगीत से सजा ये अगला गाना। खुश रहो खुशियां बांटो।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर खाबों का सफर। जी हाँ, 1963 के बाद आइए 64 की ओर चलते हैं। यहाँ पर भी एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म के बारे में बात करना चाहूंगा। जो फिल्म आई थी 64 में, जिसका नाम था चित्रलेखा। फिल्म तो आई है, लेकिन आप अगर रेलवे स्टेशन पे कभी गए होंगे तो रेलवे स्टेशन पे जो बुक स्टॉल होता है उसमें भी एक मैगजीन है जिसका नाम है चित्रलेखा, और जो बहुत ही अच्छी बिकती भी है, लोग काफी पसंद करते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी स्टोरीज आती हैं जो मन को छू जाते हैं। और कहानियां पढ़ने के लिए लोग एक तो चंदा मामा लेते हैं जो बच्चों के लिए होता है, और चित्रलेखा बड़े लोगों के लिए है जिसमें कहानियां बहुत अच्छी तरह से होती हैं। तो आइए, इस फिल्म में भी एक गाना है जो एम अक्षर से शुरू होता है, वो मैं आपको सुनाने वाला हूँ। और इसमें जो कलाकार थे, मीना कुमारी, अशोक कुमार, प्रदीप कुमार, महमूद और मीनू मुमताज पर पिक्चराइज किया गया ये खूबसूरत फिल्म चित्रलेखा, जिसका गाना है।

जी हाँ, इस गाने को जो है साहिर लुधियानवी साहब ने लिखा है, मोहम्मद रफी साहब ने गाया है। रोशन का संगीत इसमें है और चलिए सुनते हैं इस गीत को। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: खाबों के सफर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। चलिए बात करते हैं फिर से एक बार, पीछे की तरफ जाते हैं 1957 में। जी हाँ, 1957 में एक फिल्म आई थी पेंगेस्ट। ये भी बहुत ही पॉपुलर फिल्म थी, कॉमेडी और सस्पेंस भरा फिल्म था। देवानंद नूतन, शोभा खोटे, गजानन जागीरदार और सज्जन जी ने इस फिल्म में काम किया है और किशोर दा ने गाने गाए हैं। और पेंगेस्ट ये फिल्म जो है 1957 का है। शुबोध मुखर्जी ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। एस डी बर्मन का संगीत से सजा, स्क्रीन प्ले नाजिर हुसैन, शुबोध मुखर्जी ने लिखा था। और यहाँ पर एक कहानी है एडवोकेट की। जी हाँ, ये एडवोकेट किस तरह से अपने घर में जो गेस्ट आते हैं और फिर उनकी बातों से किस तरह से वो चीजें बनती हैं। एक पेइंग गेस्ट यानी एक रूम है जो गेस्ट आते हैं जाते हैं, उसमें ये फिल्म बनाई गई है। तो एक एडवोकेट जिसका नाम रमेश कुमार है, उस पर ये पिक्चराइज किया गया था। तो आइए, इस फिल्म का एक खूबसूरत गाना है जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ। यहाँ मजरू सुल्तानपुरी साहब का लिखा, किशोर कुमार साहब का गाया, सचिन देव बर्मन का, पेइंग गेस्ट का, ये गाना आपके लिए। जी हाँ, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: हरिओ हरिओ हरि हरिओ
1: दर्शन भिक्षा दे दो
0: हरिओ
1: वह दर्शन भिक्षा दे दो आगे दो
0: मनोहर मोहन के हरि हरि ओ मनोहर मोहन के हरि हरि ओ मनोहर मोहन के हरि हरि ओ मनोहर मोहन के हरि हरि ओ मनोहर मोहन के हरि हरि ओ मनोहर मोहन के हरि हरि ओ।

0: हरिओ हरिओ हरि हरिओ
1: दर्शन भिक्षा दे दो
0: हरिओ
1: दर्शन भिक्षा दे दो आगे दो
0: मोहन के घर हरिओ हरि मनोहर मोहन के घर हरिओ हरि मनोहर मोहन के घर हरिओ हरि मनोहर मोहन के घर हरिओ

1956 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था चोरी चोरी, और ये फिल्म राज कपूर, नरगिस प्राण, जॉनी वॉकर, मुकरी पर पिक्चराइज किया गया था। बहुत ही प्यारा सा फिल्म है, और इस फिल्म में जो है कॉमेडी मस्ती दोनों है। और ये फिल्म जो है एक राज कपूर और जॉनी वॉकर और मुकरी साहब की जो मस्ती है इसमें देखने को आपको मिलता है। और इस फिल्म में एक बहुत गाने हैं, लेकिन उन सारे गानों के बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन एक गाना जो है जो मुझे अच्छा लगा, और वो एम अक्षर से भी शुरू होता है, मन भावन के घर जाए गोरी। ये खूबसूरत सा गाना इस फिल्म में है जो शैलेंद्र साहब ने लिखा है, लता मंगेशकर और साथ में आशा भोसले ने इसे गाया है। शंकर जयकिशन का संगीत से सजा चोरी चोरी इस एल्बम का ये गाना अभी आपके लिए ख्वाबों के सफर में। मैं हूं आपका हम सफर, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर खाबों का सफर और बहुत ही प्यारे प्यारे गाने आप सुन रहे हैं एम अल्फाबेट वाले। चलिए अब 1956 के बाद 57 की ओर देखते हैं। 1957 में वैसे बहुत सारे फिल्में आई थी, लेकिन 1957 में एक फिल्म जो है बहुत ही हिट रही उस जमाने में, वो था नया दौर। जी हाँ, ये जो फिल्म है ये अपने आप में एक यादगार फिल्म बनी और जिसमें दिलीप कुमार साहब चमक गए। जी हाँ, दिलीप कुमार, वैजयंती माला, चांद उस्मानी, जीवन और जॉनी वॉकर पर पिक्चराइज किया गया था। और इस फिल्म में एक गांव की कहानी बताई गई थी, जहां पर पहले पहले जो है गांव में आने जाने के लिए, गांव से शहर तक आपको आना हो तो टांगे से आपको आना पड़ता था। और बेस, इस बेस को लेकर उन्होंने कहानी बनाई थी, और जिसमें एक शहर से जो है व्यक्ति आता है गांव में और वहां पर वो मोटर गाड़ी का बिजनेस शुरू करता है। तो गांव वालों के बीच में और मोटर गाड़ी की एक रेस दिखाई गई है और इस रेस में गांव वाले जीत जाते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत एक जो क्या कहते हैं रोमांच खड़ा कर देता है लास्ट सीन में, जब तांगे और मोटर गाड़ी में रेस लगती है। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत इसमें स्टोरी बताई गई है और बहुत ही अच्छा लगता है जब आप फिल्म देखेंगे तो इसका एक आनंद अपने आप में। गांव और शहर की जो बातें हैं इसमें एक ब्रिज का काम कर रहा है, वो चीजें यहाँ पर बताई गई है। तो चलिए इस फिल्म का एक खूबसूरत गीत आपको सुनाते हैं, जैसे कि ये
2: मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार।
1: जी हाँ, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, ये बहुत ही खूबसूरत गाना है। शायर लिदानवी साहब ने लिखा है, आशा भोसले और रफी साहब ने गाया है। ओपी नैयर का संगीत से सजा ये खूबसूरत गाना अभी आपके लिए। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। जी हाँ, ख्वाबों का सफर इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और काफी बहुत ही प्यारे प्यारे गीत आपने सुने आज के इस कार्यक्रम में। और अभी हम लोग पहुंचे हैं आखिरी मोड़ पे। जी हाँ, एक और खूबसूरत गाना आपको सुनाएंगे और फिल्म है कठ पुतली। जी हाँ, इस फिल्म की एक खास बात यह है कि आप इस नाम को सुनकर खुद ब खुद समझ गए होंगे कि क्या कहानी हो सकता है इसमें। और ये कहानी मैं थोड़ी सी आपको जरूर बताना चाहूंगा, कहानी इन द सेंस कठपुतली ये जो है बच्चों का एक खेल होता है, या आप देखते हैं हमारे पहले जो है ड्रामास वगैरह इसमें ही दिखाया जाता था और स्कूलों में भी बच्चों को कठपुतली का खेल के बारे में जानकारी दी जाती थी। और ये फिल्म जो है वैजयंतीमाला, बलराज साहनी, आघा जवाहर कौर और कुमारी कमला पर पिक्चराइज किया गया था। और ये फिल्म जो है पुष्पा नाम की एक नृत्यकी के बारे में बताया गया, जो बहुत ही अच्छा डांसर भी है और सिंगर भी है, और लेकिन गरीब परिवार से बिलोंग करती है, यानी एक गरीब परिवार की लड़की है पुष्पा। वो बहुत ही अच्छा नृत्य करती है और गाना भी गाती है। तो इसकी जो है टैलेंट को बाद में पता चलता है लोगों को, और फिर उस टैलेंट को एक अच्छी जगह पे मंच देने का काम इस फिल्म में बताया गया है। तो ये चीजें इस फिल्म की कहानी है कठपुतली की। तो चलिए, जब आप फिल्म देखेंगे तो पूरी आपको स्टोरी समझ में आ ही जाएगी, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से थोड़ी सी बातें आपको बताई हैं। और इसके साथ ही ये फिल्म का एक गाना है जो एम अक्षर से शुरू होता है। जी हाँ, मंजिल वही है, प्यार की राह ही बदल गए। शैलेंद्र साहब का लिखा, सुबेर सेन का गाया हुआ, शंकर जयकिशन का संगीत से सजा ये गाना अभी जाते जाते आपके लिए। और इसी के साथ मैं आपसे चाहूंगा इजाजत, और जाते जाते आपके लिए चार लाइनें जरूर कहना चाहूंगा। आँख खोलू तो चेहरा मेरी माँ का हो, आँख बंद हो तो सपना मेरी माँ का हो, मैं मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं, लेकिन अगर कफन मिले तो दुपट्टा मेरी माँ का हो। ऐसे ही शुभकामना के साथ चलिए दोस्तों, आज के शो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक आप बने रहिए रेडियो पुनेरी आवाज के साथ। सलाम नमस्ते, खमा गनीसा, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की जोड़ में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: सपोज आपने मुझे अभी आकर कहा कि आपका शरीर कमजोर है, एक आपकी बात को इग्नोर कर दो, ठीक है। सेकंड मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती उस बारे में, है कमजोर तो है, आई कांट हेल्प, खाना ऐसा है आजकल, पानी ऐसा है, मौसम ऐसा है, तो ये कमजोर है। थर्ड ऑप्शन इज ठीक है, आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टूडे, एंड अगर मैं आज भी उस पर काम करना शुरू कर दूँ, चाहे मैंने 50 साल कोई काम नहीं किया उसके ऊपर एंड वो कमजोर हो चुका है, बिल्कुल कमजोर हो गया, लेकिन आज भी अगर उस पर काम करना शुरू कर दिया, आई एम मूविंग फ्रॉम डिजीज टू हेल्थ। आज अगर काम करना नहीं शुरू किया उस पर, देन इट्स डिक्लाइनिंग फर्दर फर्दर फर्दर। तो आज डिप्रेशन नहीं होगा ये बात सुन के, लेकिन आज अगर ध्यान नहीं रखा और कल अगर कोई बड़ी बात आ गई तो ताकत नहीं होगी उसको फेस करने में, तब डिप्रेशन होने का चांस होता है। आज इस बात को सुनने से नहीं होना चाहिए, आज एक रियलाइजेशन होने चाहिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: 24 घंटे का व्रत रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सामने वाले का व्यवहार कैसा भी हो, मेरा मन, वाणी और व्यवहार शांत और प्रेम से भरपूर। सिर्फ 24 घंटे का व्रत रखें तो भी हमने सृष्टि की कितनी सेवा की, और जो चीज हम एक दिन कर सकते हैं हम उसको हर रोज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास पावर है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: साल मुबारक साहिब जी,
3: साल मुबारक साहिब जी।

0: साल मुबारक पापा जी,
1: साल मुबारक काका जी,
0: लो लो आज पियो हंस के दो घूंट सोम रस के, साल भर इसका नशा रहेगा।
1: और जो आज हंसे हंसे जो आज हंसे।

0: साल मुबारक साहिब जी,
1: साल मुबारक साहिब जी,
0: आज पियो हंस के दो घूंट सोम रस के साल भर इसका नशा रहेगा,
1: जो आज मिले मिले जो आज

0: शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से। तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने टेबल रखी, उठा मेरा पैर लग गया। सबको डांट रहा था तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा, सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा? इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे? किसने रखे थे? वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है? हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहाँ और ठीक करने की उंगली भी यहाँ। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया ही इतना, मैं कैसे क्षमा करूं? उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

मेरे कंप्यूटर चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

सर्दियों में सर्दी ज्यादा, कहा जाता है इसका कारण आइटम बम के टेस्ट हैं। अभी चीन ने एटम बम बनाकर दूसरा टेस्ट किया। सूचना ये भी मिली है कि फ्रांस ने भी एटम बम बना लिया है। भारत का अटल फैसला है कि वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जिससे संसार के नष्ट होने का भय हो। आइटमी दौर में रूस और अमरीका सबसे आगे हैं

0: रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंद रहा आनंद।
1: भैया आज तो हम तुम्हें एक नए जमाने की कथा सुनाएंगे।
2: अरे बाबा किसी भी जमाने की सुनाओ, मगर सुनाओ जरूर।
3: सियावर रामचंद्र की जय।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम दो लोग बिजनेस कर रहे हैं, बहुत साल हमने अच्छे से किया, करते करते एक की नियत खराब हो गई तो उन्होंने हमें चीट किया, हमारी दुकान के सामने एक और दुकान खोल दी। अब हमें अपनी दुकान में बैठकर चॉइस है कि हमने उनके बारे में क्या सोचना है। हम ये भी सोच सकते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसके साथ इतना बुरा हो इसको पता चले कि दुख क्या चीज होती है। कई लोग तो इतना भी कहते हैं भगवान इसको दिखाए कि इसने मेरे साथ क्या किया है। अगर भगवान है तो मुझे प्रत्यक्ष दिखाई देना चाहिए कि इसको दुख कैसे मिलता है। ये भी एक तरह की सोच है। हम इतना ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं, इतनी ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं कि उनके फ्यूनरल पर भी जाके आ सकते हैं बैठे बैठे दुकान में। कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव सोचने की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी हम सोच सकते हैं। जैसे नेगेटिव सोचने की लिमिट नहीं है, वैसे किसी के लिए अच्छा सोचने की भी कोई लिमिट नहीं है। हम ये भी सोच सकते हैं जो हुआ हमारा कोई हिसाब किताब था, पूरा हुआ, अब ये अपना बिजनेस अलग करे, मैं अलग करूं, मेरा भी बहुत अच्छा चले, इनका भी बहुत अच्छा चले। क्या मुश्किल होगा ऐसा सोचना? जब हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, सबसे पहला फायदा हमें होने वाला है। व्हाइट बॉल जब हम फेंकेंगे तो वो जाएगी, हिट करेगी, वापस आएगी, वो तो होगा बाद में, फेंकते हुए फायदा किसका होने वाला है? आज जब हम किसी के प्रति पुरानी बातें पकड़ के रखते हैं, दर्द पकड़ के रखते हैं, नफरत पकड़ के रखते हैं, तो नुकसान किसका हो रहा है? मेरा। तबीयत किसकी खराब हो रही है? मेरे। घुटना किसका दर्द हो रहा है? सर्वाइकल किसका दर्द हो रहा है? मेरा। हार्ट की ब्लॉकेज किसको हो रही है? मेरे को। वो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ। तो हमने अगर व्हाइट बॉल भेजनी तो किसके फायदे के लिए भेजनी? अपने। हमने क्षमा करना अगर उनको, तो हमने एक्चुअली किसको क्षमा किया? दुनिया में कहते ईंट का जवाब पत्थर से देना। अब अगर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो क्या हो जाएगा? पहली बार ईंट फेंकी थी इसलिए ईंट आई। अब अगर पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर आएगा। अब ईंट का जवाब किससे भेंगे?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: पावसाच्या थेंबात दडलेलं जुनं प्रेम, आठवणींचा ओलावा. कधी कधी विरहातलं मौन सुद्धा गाण्यापेक्षा जास्त बोलत.
1: अश्विनी
0: जीवन म्हणजे चालत राहणं, गाणं, हसणं आणि स्वप्न पाहणं.
2: वाऱ्यावरती गंध पसरला ना ते मनाचे.
0: आईचा आवाज म्हणजे मनाला शांती मिळवण्याचं संगीत. या सगळ्यांची सांगड कुठे बर घातली जाते? आपल्याच पुणेरी आवाज 107.8 FM वर. आनंदी रहा, आनंद लुटा.
3: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे रेडिओ पुणेरी आवाज. अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं. बने रहिए हमारे साथ.
4: चाहे आसमान का सूरज बुझ जाए, ये मन का सूरज बुझने न दो. पथरीले रास्तों से कदम लहूलुहान हो जाए, पर बढ़ते कदम को रुकने न दो. रास्तों में आ रहे रुकावटों को शिक्षा की तरह जीवन में लेना और उनको सीख समझकर जीवन को बहुमूल्य बनाते हुए आगे बढ़ते चले जाना, यही सीखना है आज के हमारे गेस्ट के जीवन से. यशस्वी भारत के इस प्रोग्राम में आज हमारी गेस्ट है यशस्वी भारत की यशस्वी बेटी टिफनी रार.
5: टिफनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में. कैसे हैं आप?
6: हम अच्छे हैं.
5: आपको आज स्टूडियो में पाकर हम बहुत ही हर्षित महसूस कर रहे हैं. हमारे श्रोतागण भी आपको बहुत बहुत चाव से सुन रहे हैं और आपने हमारे लिए समय निकाले, इसके लिए पहले ही मैं आपको थैंक यू कर देता हूँ. क्योंकि मुझे पता है बहुत बिजी होते हैं और आप बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं और बहुत ऊंचा आपका नाम हो रहा है. हाल ही में आपको राष्ट्रपति ने नारी शक्ति पुरस्कार से नवाजा है, जो कि भारत के लिए, भारत में रह रही सभी महिलाओं के लिए सबसे श्रेष्ठ सम्मान है. तो पहले तो उसकी मुबारकबाद हो आपको.
6: थैंक यू, बहुत धन्यवाद. और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने सारे महिलाओं में माननीय राष्ट्रपति जी ने हमें चुना है, पुरस्कार के काबिलियत समझा है. तो ये बहुत ही बड़ी बात है हर एक इंडियन महिला के लिए. और मैं अपने काम करती रहूं और इंडिया में बहुत सारी महिलाओं को ये रिकग्निशन मिले, इसके लिए मैं दुआ करती हूँ भगवान से.
5: जी, मुझे इसी सिलसिले में आपसे पहला सवाल यही पूछना था कि जब इस अवार्ड के लिए अनाउंसमेंट हुआ या आपको पता चला कि आपको ये अवार्ड मिलने वाला है, व्हाट वाज योर फर्स्ट फीलिंग? क्या कैसा फील कर रहा था? क्या आपके मन में चल रहा था? क्या वो फीलिंग्स थी? कौन से विचार घूम रहे थे मन में उस समय?
6: वेल, टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं कहूँ तो मुझे एक्चुअली यकीन नहीं हुआ कि ये होने वाला है, क्योंकि मुझे शाम के 6 बजे 5 तारीख को मुझे कॉल आया था, 4 तारीख या 5 तारीख को लगता है. और एक लेडी ने मुझे कॉल किया, गवर्नमेंट ऑफिशियल ने, और उन्होंने कहा कि यू हैव बीन अवार्डेड विद द नारी शक्ति पुरस्कार और यू विल हैव टू रीच दिल्ली बाय 7. तो मैंने कहा कि इतने कम समय में मैं कैसे दिल्ली पहुंचूंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा. तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपके टिकट्स की सारी चीजें हम देख लेंगे, कल ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा, आज तो नहीं होगा. ये 5 अप्रैल को कहा है उन्होंने कि अनाउंसमेंट होने वाला है और ये है, तो आप अभी किसी से ना कहिएगा, किसी प्रेस से कांटेक्ट ना करिएगा, आप किसी से संपर्क ना करिए, लेकिन बस फिलहाल हम आपको बता रहे हैं. और इसके 4 या 5 दिन पहले हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पुलिस इंक्वायरी के लिए कुछ पुलिस ऑफिसर्स आए थे. उन्होंने बहुत सारे पर्सनल क्वेश्चंस पूछे मुझसे कि आप क्या कर रहे हो, आपका ये काम में कौन आपका सहायता कर रहा है, आपके घर में कौन कौन है, आपके फैमिली के बारे में बताइए. और मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि ये लोग ऐसे क्यों हमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हमने क्या गलती की है, क्यों पुलिस हमें इंक्वायरी कर रही है. ऐसे मैंने अपने दिल में 2-3 दिनों के लिए सोचा. फिर मैंने सोचा, अच्छा भगवान तो सामने ला ही देगा, जो भी हुआ है भगवान हमें कुछ होने नहीं देगा, करके ये हमें आत्मविश्वास था. फिर जब ये अवार्ड के बारे में हमसे कहा गया था, हमें बहुत ही खुशी हुई, लेकिन हमें ये भी लगा कि शायद ये स्कैम तो नहीं है, कि शायद ये ऐसे ही, क्योंकि हमें कोरोना के दौरान बहुत सारे कॉल्स आए, बहुत सारे फ्रॉड कॉल्स, बहुत सारे स्कैम कॉल्स भी आए हैं कि आपको ये मिला, आपको वो मिला, आपको यहाँ जाना, आपको वहाँ जाना. तो मुझे ऐसे ही लगा. और फिर हम कुछ दिन ठहरे, फिर हाँ 4 तारीख को, फिर 5 तारीख को हमने टिकट्स बुक किए थे और वहाँ से इनविटेशन भी आई, वहाँ से सारे डॉक्यूमेंट्स भी आ गए थे तब तक, और 6 तारीख हम दिल्ली चले गए थे क्योंकि 7th को हमें वहाँ पर रिहर्सल करना था और मोदी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से हमारी इंटरेक्शन थी। तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि हमें इसके लिए चुना गया, लेकिन जो पहले कॉल था उसमें तो मुझे लगा कि पता नहीं ये सही है या नहीं है, इतनी शॉर्ट नोटिस क्यों दे रही है, ऐसा लगा मुझे।
5: तो जब आपको, चलिए ये तो बहुत ऑनेस्ट ओपिनियन था, लेकिन आपके आसपास में जो लोग आपके पड़ोसी हैं या जो आपके साथ काम करते हैं या जिन्होंने आपको देखा है, क्या उनका आपके साथ कुछ भी बिहेवियर में चेंज महसूस किया आपने, या व्हाट वाज देयर रिएक्शन?
6: वो लोग सब बहुत खुशी हुए। इनफैक्ट मेरी देखरेख करने वाली मेरी अडॉप्टेड मदर जो है, जिनका मैं जो मेरे पालन पोषण बचपन से कर रहे हैं, उनको बहुत खुशी हुई और मैंने सोचा कि मैं उन्हें भी लेके जाऊं, और मेरी एडमिनिस्ट्रेटर, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर भी मेरे साथ आए अपने बच्चे को लेके, हमने सबका टिकट्स बुक कर दिया लास्ट मिनट में और सब आए। और जो मेरे आसपास वाले पड़ोसियां हैं, मेरे स्टूडेंट्स जो हैं, उन्होंने मुझे बधाइयां दी, उन्होंने मुझे कंग्रेचुलेट की, बहुत अच्छा विश किया उन्होंने मुझे कि ये दिल्ली ट्रिप आपके लिए सफल हो, ऐसे कहा था उन्होंने। और काफी अच्छा बिहेवियर था सबका, ऐसा कोई ज्यादा बदलाव नहीं आया, लेकिन जो हमें डेली देख रहे हैं उनका बिहेवियर ऐसा चेंज नहीं हुआ, उनका बिहेवियर का स्टाइल चेंज नहीं हुआ, और ये मुझे अच्छा लगा क्योंकि बहुत ओवर रिस्पेक्ट करना, आर्टिफिशियलिटी, ये सब हमें पसंद नहीं है, हमें हार्ट टू हार्ट वाला बिहेवियर पसंद है सबके दौरान, ये बिहेवियर हो और ऐसा ही हो हम आशा करते हैं। जिन्होंने हमें बेटी समझा, जिन्होंने हमें दोस्त समझा, जिन्होंने हमें टीचर समझा, वो सब हमें ऐसे ही समझते रहे।
5: जी बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा कि अगर कुछ ऊंचाइयां छू लेने के बाद हमारे आसपास के लोग हमसे अलग तरीके से पेश आ रहे होते हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे उनके साथ पहले के जो रिश्ते थे वो थोड़े कच्चे थे, और अगर रिश्ते बहुत अच्छे शुरू से रहे होंगे तो चाहे हमारे जीवन में उतार आए या चढ़ाव आए वो हमारे साथ बने रहेंगे, और ये संदेश आपके जीवन से भी मिलता है आपके जीवन में।
6: क्योंकि हमें ऐसा वैसे नहीं करना चाहिए कि जब हमारे जिंदगी में कोई चढ़ाई आती है तो हमें अपना आया हुआ रास्ता नहीं भूलना चाहिए, जिस रास्ते से हम आए थे, जिस चैलेंजेस का हमने फेस किया था, जो लोग हमारे साथ थे, जिस तरीके से हम पहले काम करते थे, वो तरीके को अचानक से भूल करके एक ऊंचे पहाड़ के ऊपर चढ़ना, दैट इज नॉट विक्ट्री, ये एक्चुअली जीत नहीं होती है। जीत ये होती है कि अपने विक्ट्री को एक्सेप्ट करो, ग्रेसफुली एक्सेप्ट करके जैसे हम पहले थे, जितने भी हम्बल हो सकते हैं, जितने भी ऑनेस्ट, जितने भी डाउन टू अर्थ हम हो सकते हैं, और जितने हम लोगों के साथ, अभी हम ग्रास रूट लोगों को हम हेल्प कर रहे हैं, हम ब्लाइंड पीपल की हेल्प कर रहे हैं रूरल एरियाज एंड अर्बन एरियाज में, तो हमें अगर उनके साथ हमारा मेल नहीं हो रहा है, अगर हम उनके साथ पहले जैसे बिहेव ना कर पाए, या हम अपने वेट को बढ़ाए कि देखो मुझे प्रेसिडेंट अवार्ड मिला, अब मेरे साथ ऐसा वैसा मत करो, अगर हम हमेशा के लिए ऐसे ये कर दें, हम किसी की मदद हम एक्चुअली कर नहीं सकते। बाइबल में भी कहा गया है कि हम्बल योर सेल्फ डाउन, तो जब तक हम अपने आप को हम्बल नहीं करते, अभी देखो जीसस क्राइस्ट ने क्या किया, अपने डिसाइपल्स के पैर धोए थे उन्होंने। आज गुड फ्राइडे का दिन है, आज हम उसके ऊपर भी मेडिटेट करते हैं तो हमें पता चलता है कि ही वॉश द फीट ऑफ हिज डिसाइपल्स, क्योंकि वो इतने हम्बल इंसान थे, और गौतम बुद्ध ने भी ऐसे बहुत सारी चीजें किए थे। सो दीज टू इंडिविजुअल्स वर वेरी हम्बल, एंड हमें भी उनसे सीखना चाहिए कि हमें भी अपने, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अनअप्रोचेबल बन जाते हैं अपना कुछ पुरस्कार पाने के बाद, या कुछ बहुत सारे लॉरल्स या अचीवमेंट्स के बाद, या अगर एक्ट्रेसेस एक्टर्स, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को अनअप्रोचेबल बनाते हैं। बहुत सारे एनजीओ के फाउंडर्स भी हैं जो खाली अपने वेलवेट कार्पेटेड ऑफिस में बैठ जाते हैं, और बाहर कैसे हो रहा है, बाहर उनके टीम मेंबर्स कैसे ग्रास रूट्स में जा रहे हैं, कैसे आउटरीच कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं चलता, वो खाली पेपर वर्क करते हैं, खाली अपने डेस्क के पीछे बैठते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली मैं एज अ फाउंडर अपने

0: बिना फालतू का मैं किसी को वेट नहीं कराती हूँ कि हाँ मैं फाउंडर हूँ, मुझे अपॉइंटमेंट लो, मुझे ये करो. अगर मैं बिजी तो यस, बट अगर नहीं हूँ तो मैं तुरंत लोगों से बात करके उनके उनके जो भी क्वेरीज हैं उनको सॉल्व कर देती हूँ, बिकॉज वी शुड नॉट फॉरगेट हु वी आर.
1: आई थिंक आपने इस जवाब में जितनी भी बातें कही ना, वो मुझे कई सारी बातें याद दिला रही थी. जैसे आपने जीसस क्राइस्ट जी की या फिर बुद्ध जी की बातें कही कि कैसे वो कॉमन लोगों के साथ जुड़े हुए थे. ठीक ऐसे ही सुदामा के पैर धोए थे श्री कृष्ण ने, वो कभी नहीं भूले कि वो बचपन का साथी था. और इस तरीके से देखा जाए कि हर वो व्यक्ति जो अपने पास्ट को भूलता नहीं है लेकिन उसकी यादों को संजो करके उससे बल लेकर के आगे बढ़ता है, वो व्यक्ति वास्तव में बहुत महान होता है. और उसकी महानता की निशानी ये है कि वो अपने साथियों को कभी भूलता नहीं. तो आपने
0: कह रहे हैं आप, ये बिल्कुल सही है, ये बहुत ही सही बात है. आपने इवन इफ यू डाइव इनटू हिंदू मिथोलॉजी आल्सो यू सी के जो हिंदू गॉड्स हैं वो भी काफी हम्बल थे अपने इसमें.
1: तो आपने जब कहा कि आप अपने स्टूडेंट्स के लिए वहाँ होती हैं, यू आर ऑलवेज देयर फॉर देम, आप हमारे श्रोताओं को क्या बताना चाहेंगे, ज्योतिर्गमय है क्या चीज?
0: एक्चुअली ज्योतिर्गमय एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ब्लाइंड लोगों का एम्पावरमेंट करती है, ब्लाइंड लोगों को इंडिपेंडेंट बनाती है. ये ऑर्गेनाइजेशन 2012 में एक मोबाइल स्कूल के इसमें शुरू हुआ था, जहाँ में हम ब्लाइंड यूथ्स और एल्डर पीपल के घर जाते थे. हम उनके घर जाते थे, हम उनको पढ़ाते थे, हम उन्हें काउंसिल करते थे, और उनके गार्डियंस के सामने ही हम उन्हें व्हाइट केन पकड़ाते थे, व्हाइट केन की सहायता से चलने के लिए सिखाते थे, फिरने के लिए सिखाते थे, अपने दैनिक कार्यों को करने के लिए हम सिखाते थे कि कैसे अपना कपड़ा पहनाया जाएगा, कैसे कुछ काम कर दिया जाएगा. ऐसे भी हमने कुछ लोगों को सिखाए जो अपने डेली लिविंग स्किल्स में एडवांस्ड है, हम उन्हें कंप्यूटर वगैरह सिखाते थे. फिर 2014 के आसपास हमें लगा कि हमें की डिमांड बहुत बढ़ रही है, और हम कैंप्स करते थे, एक एक डिस्ट्रिक्ट में हम कैंप्स करते थे, रोड टू इंडिपेंडेंस कैंप्स. फिर 2015 में हमें लगा कि हमें अपना एक रेजिडेंशियल ट्रेनिंग सेंटर शुरू करनी चाहिए, ताकि हम अच्छे से ब्लाइंड पीपल को एम्पावर कर सके. मोबाइल स्कूल की एक लिमिटेशन थी कि हम हफ्ते में एक दिन या दो दिन ही एक एरिया में हमारा पहुंच जा सकता है, हम हर दिन उस व्यक्ति का एम्पावरमेंट हम नहीं कर सकते ठीक से. तो इसलिए हमने रेजिडेंशियल ट्रेनिंग सेंटर शुरू किए हैं, लेकिन मोबाइल स्कूल अभी भी चलती है उन लोगों के लिए जो घर से बाहर बिल्कुल ही नहीं निकल सकते ड्यू टू फिजिकल इम्पेयरमेंट या ड्यू टू एनी अदर काइंड ऑफ लिमिटेशन. सो हमारे मोबाइल स्कूल ऐसा बंद नहीं हुआ, लेकिन कोविड के दौरान काफी चैलेंजेस हमने फेस किया. हमने ये प्रोजेक्ट अभी के लिए तो हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम उन घरों में जाते हैं जो बिल्कुल अपने घर से निकल नहीं सकते और जिनको सेंटर में आने का कोई स्कोप नहीं है. बाकी उनको तो हम फोन में काउंसिल कर देते हैं, और उनके पेरेंट्स को हम प्रेरणा देते हैं कि वो उनको अपने सेंटर में लाएं. हमारे सेंटर में हम क्या करते हैं, एम्पावरमेंट ट्रेनिंग कोर्सेज फॉर 6 मंथ्स. इन कोर्स में हम ब्लाइंड यूथ को हम कंप्यूटर पढ़ाते हैं, MS ऑफिस, इंटरनेट ऑपरेशन, स्क्रीन रीडर, नेविगेशन एंड सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, साउंड एडिटिंग भी सब्जेक्ट है. हम इंटरपर्सनल स्किल्स और इंग्लिश सिखाते हैं, जैसे कि बेसिक इंग्लिश कम्युनिकेशन. अगर आप कहीं जाते तो आपको इंग्लिश में अपने आप को कैसे अंडरस्टैंडेबल बनाना चाहिए, एक इंटरव्यू, एक सेल्फ इंट्रोडक्शन, एक कॉन्वर्सेशन, तो थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है. ऐसा नहीं है कि वो पूरा इंग्लिश सीख जाते हैं 6 मंथ्स में, ऐसा तो बहुत मुश्किल है, लेकिन उनको थोड़ा बेस मिले ताकि वो अपने आप थोड़ा रीडिंग करें और अपने आप को थोड़ा डेवलप करें. तो हम ऐसे उनको बेसिक इंग्लिश सिखाते हैं, बेसिक स्पोकन इंग्लिश, अंडरस्टैंडेबल इंग्लिश, इंटरपर्सनल ट्रेनिंग की ब्लाइंड पीपल को कैसे सोसाइटी में उठना बैठना है, कैसे ग्रूमिंग करना है, कैसा बिहेव करना है, कैसे एक एम्प्लॉय के सामने अपने आप को पेश करना है, ऐसे स्किल्स भी देते हैं. प्लस ओरिएंटेशन मोबिलिटी, अपने आप बिना किसी की सहायता से, व्हाइट केन की सहायता के है इसमें, अपने आप चलना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाना, ये सब चीजें हम सिखाते हैं उनको. और हम एडवेंचर ट्रिप्स के लिए भी ले जाते हैं, हर कोर्स में बच्चों को हम कुछ एडवेंचर ट्रिप्स के लिए ले जाते हैं, जैसे कि एडवेंचर पार्क्स, जैसे कि मॉल्स, शॉपिंग सेंटर्स, साइट सीइंग प्लेसेस, ताकि वो लोग भी एंजॉय कर सकें. ऐसे बहुत सारे घर में सब लोग शादी में जाते हैं, सब लोग ट्रिप पे जाते हैं, सब लोग टूर में जाते हैं, और जो ब्लाइंड लोग हैं या फिजिकली चैलेंज लोग हैं उन्हें एक कोने में छोड़ देते हैं कि अच्छा तुम लोग इधर बैठो, हम जाके देख के आते हैं, या तुम लोग इधर हम देख के आते हैं, या तुम लोग घर पे रहो, खाना इधर रखा है, हम जाके आते हैं. ऐसे बहुत सारे घरों में होता है, बहुत सारे स्कूलों में भी ऐसा होता है, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता. बहुत सारे दोस्त भी ऐसे करते हैं, अच्छा हम अभी फोटो लेके आते हैं, तुम इधर रुको. ऐसे बहुत सारे सिचुएशन है. तो ब्लाइंड सिचुएशन की जरूरी नहीं होती है, जब हम उन्हें उनके लिए ले जाए, उनका फोटो ले, उनको सब कुछ डिस्क्राइब करें हमारी साइटेड कोलिग्स. मैं भी ब्लाइंड हूँ एंड आई हैव एक्सपीरियंस दिस. बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स मुझे पढ़ने के जाते हैं, बहुत अच्छा तुम इधर ही बैठना, हम अभी आते हैं बैठने।

0: संभाल लेना, हम अभी जाते हैं। पर हमें पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ जा रहे हैं। लेकिन जब हम किसी के साथ जा रहे हैं जो हमें सिर्फ ले जा रहे हैं, वो हमें वहाँ की सीन्स डिस्क्राइब करेंगे, हमारी फोटो लेंगे, हमें पानी के पास ले जाएंगे या हमें वो राइड्स में चढ़ाएंगे, तो यही हम अपने स्टूडेंट्स के लिए करते हैं।
1: आई थिंक ये आपने बहुत एक अच्छा अभियान शुरू किया है, जहाँ पर आप जो लोग दृष्टिबाधित नहीं हैं और जो हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है उसको आप कम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो भी भारत के नागरिक हैं और ये भी भारत के नागरिक हैं, तो देश के हिसाब से दोनों नागरिकों में कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, दोनों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, दोनों को बराबर हक, दोनों को बराबर ड्यूटीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कर्तव्य भी दोनों के बराबर हैं। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं, ये सब बातें किताबों में तो दिखी जाती है, लेकिन जब प्रैक्टिकल हम जमीन पे आते हैं तो हमें दिखता है कि नहीं, दोनों ही वर्गों में बहुत बड़ा एक दूरी है और आप उस दूरी को कम कर रहे हैं। तो इसके लिए तो पहले पहले बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन इस दूरी को कम करने का ख्याल कैसे आया आपको?
0: वैसे अपने ही सिचुएशन, क्योंकि जब हम किसी सिचुएशन से हम गुजरते हैं तभी हमें पता चलता है कि अलग इंसान का सिचुएशन कैसे होगा। अभी जो एनजीओस हैं हमारे ब्लाइंड पीपल के लिए, जिन्होंने एनजीओ स्टार्ट किया है, ऐसा काफी सारे एनजीओस हैं जिन्होंने इंक्लूसिवली स्टार्ट नहीं किया, जैसे साइटेड पीपल आर स्टार्टिंग एनजीओस फॉर द ब्लाइंड। अब साइटेड पीपल को कैसा पता चलाएगा कि हम क्या महसूस कर रहे हैं, हम पर क्या बीत रही है, हमारा मन कैसा है, हम पर क्या बीत रही है, क्योंकि वो लोग तो खाली थियोरेटिकल एस्पेक्ट देख रहे हैं, खाली उनका बुकिश नॉलेज, जो उन्होंने स्पेशल एजुकेशन पढ़ा है, जो उनको ब्रेल आती है, अच्छा वो ब्लाइंड पीपल को रिहेबिलिटेट कर रही है, वो अच्छी चीज है, क्योंकि हमें साइटेड का भी पर्सपेक्टिव चाहिए, साइटेड का भी आउटलुक चाहिए। लेकिन एक ब्लाइंड पर्सन अगर एक एनजीओ स्टार्ट करें और साइटेड को अपने साथ रखें, तब ये भी बहुत बेहतरीन कार्य है, क्योंकि हमें ही पता चलता है कि हमारे रिहेबिलिटेशन किसी ने तो कराया होगा, तो हम भी अपने ब्लाइंड सहभागियों का रिहेबिलिटेशन करा सकते हैं। और कीपिंग इन माइंड कि उन्होंने क्या प्रॉब्लम्स फेस किया, हमने बचपन में ये प्रॉब्लम फेस किया, इसलिए हमारे ब्लाइंड साथियों को ये प्रॉब्लम फेस नहीं करना चाहिए, और ये प्रॉब्लम फेस करने से उनके ऊपर ये बीती है, क्योंकि मेरे ऊपर भी यही बीती थी। तो शायद बैकग्राउंड या शायद कल्चर या शायद किसी चीज की वजह से कोई कोई प्रॉब्लम्स में डिफरेंस हो सकती है, लेकिन जो यूनिवर्सल प्रॉब्लम एक ब्लाइंड पर्सन झेल रहा है वो तो हर ब्लाइंड पर्सन झेलते हैं, तो इसीलिए इतना ज्यादा भेदभाव नहीं है। और मैं इंक्लूशन लाना चाहती हूँ सोसाइटी में, कि मैं अपने जो मैंने प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस फेस किए हैं वो मेरे साथियाँ, हर एक साथी का तो मैं कह नहीं सकती हूँ, क्योंकि इंडिया में 15 मिलियन ब्लाइंड पीपल है, उन सब तक तो मैं बिल्कुल पहुंच नहीं पाऊंगी, मुझे पता है कि ये नामुमकिन है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मेरे आसपास रहने वाले जो ब्लाइंड लोग मेरे पहुंच में आती हैं, जो मेरे साथियां मेरे पहुंच में आती हैं, उनको मैक्सिमम इंक्लूसिव बनाएं, उनको मैक्सिमम इंडिपेंडेंट बनाएं, और सोसाइटी को जागृत करना चाहती हूं मैं कि ब्लाइंड पीपल भी नॉर्मल पीपल ही हैं, उनको भी सोसाइटी में हक है, उनको भी सोसाइटी में स्थान है, और वो हर कार्य को अपने आप सफलता से वो सब काम कर सकते हैं, लेकिन थोड़े से डिफरेंटली। अभी जैसे आप लोग पेन से लिखते हो, हम लोग ब्रेल स्लेट से लिखते हैं, हम लोग कंप्यूटर से टाइप करते हैं, आप लोग भी आजकल सारे में टेक्नोलॉजी पर निर्भर हो गए, कोविड के दौरान तो हमारा सब चीज टेक्नोलॉजी के ऊपर ही निर्भर हो गया है, तो ब्लाइंड पीपल स्क्रीन रीडर यूज करते हैं, आप लोग अपने आंखें यूज करते हैं, तो यही कुछ डिफरेंस है। हम व्हाइट केन लेके चलते हैं, आप लोग आगे देख के चलते हैं, आप लोग थोड़ा सा तेज चलते होंगे, हम लोग थोड़े से धीरे चलते होंगे, लेकिन बात तो यही है, हम सब लिव कर रहे हैं। जो व्हीलचेयर यूजर्स हैं वो भी थोड़ा सा स्टेप चढ़ने में उन्हें मुश्किल होता है, टॉयलेट्स की वाइडनेस उनके लिए नहीं होती क्योंकि वो एक्सेसिबल नहीं है, तो उनको थोड़ा सा और मुश्किल होता होगा, उनको थोड़ा सा और असिस्टेंस की जरूरत होता होगा, लेकिन दे आर ऑल्सो पीपल इन द वर्ल्ड एंड दे शुड बी ट्रीटेड इक्वली।
1: जी, आई थिंक ये जो आपने बोला कि हर व्यक्ति समान है और उसके साथ समानता वाला व्यवहार होना चाहिए, इसके लिए मैं समझता हूँ हमारे देश की संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा जो आध्यात्म है वो सदा से इस चीज की प्रेरणा हमें देता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, उसमें हर एक को एक जैसा देखने का भाव शुरू दिन से हर बच्चे को हर स्कूल में हर पाठ में पढ़ाया गया, लेकिन फिर भी कहीं छूट जाता है। विशेष रूप से अगर देखा जाए आजकल के युवा जो हैं वो टेक्नोलॉजी के तो काफी करीब हैं, लेकिन हार्ड टेक्नोलॉजी जो है, दिल से जो इन बातों का ज्यादा गहरा जुड़ाव है, उनसे थोड़े दूर हो जाते हैं। ऐसे में आप खुद भी एक यंग प्रोफेशनल हैं, देश का एक युवा नागरिक हैं, आपको क्या लगता है कि आप अपने साथियों के लिए क्या कहना चाहेंगे?
0: अपने साथियों के लिए यही कहना चाहती हूँ कि डोंट गिव अप, जो कर सकते हैं आप जरूर सोसाइटी के लिए कीजिए। एक्चुअली हमें बहुत लगता है कि हम पूरे सोसाइटी को हम चेंज नहीं कर सकते, हमारी बस की नहीं है, लेकिन आपसे जो होता है आप वो करिए। आप ये मत सोचिए कि सोसाइटी आपको कैसे जज करेगी, आपने इतना इम्पैक्ट क्यों नहीं लेके आया, आपके नंबर्स कहाँ है। जब भी हम CSR के लिए कंपनीज को अप्रोच करते हैं तब कंपनीज पूछते हैं आपके नंबर्स कहाँ हैं, आपने कितनी लाइव्स इंपैक्ट किया है, हाउ मेनी लाइव्स हैव यू इंपैक्टेड, व्हाट इज योर नंबर्स। तो मैं बोलती हूँ मैंने नंबर्स तो मैंने इतने ज्यादा लाइव्स को तो इंपैक्ट नहीं किया, लेकिन जो मैंने किया है वो मैंने अच्छे से किया है। मैंने 3 अनपढ़ ब्लाइंड व्यक्तियों को घर से बाहर लेके आके उन्हें काम दिलाया, उन्हें +2 एग्जाम की एग्जाम देने के लिए हेल्प किया है। अभी वो 3 व्यक्ति हैं अपने पैर पर स्वयं खड़े हैं, वो अपना जॉब करते हैं, एक ने तो अभी जॉब छोड़ दिया है, डिग्री एडमिशन ले लिया है और वो भी ड्रॉप आउट कर लिया है, लेकिन फिर भी वो अपने जिंदगी में सफल हुआ, वो +2 तक गया, वो व्हाइट केन के सहारे चलता है, वो स्मार्टफोन यूज करता है, वो सोशल मीडिया यूज करता है, उसके अपने फ्रेंड्स हैं। एक 42 ईयर ओल्ड लेडी है जो अभी अभी अपने घर से निकली है, वो हैज जस्ट बिकम ब्लाइंड, वो रिसेंटली हमारे 6 months ट्रेनिंग उन्होंने अटेंड किया, उन्हें बिल्कुल अकेले चलने के लिए बिल्कुल कोई हौसला नहीं था, कोई कॉन्फिडेंस नहीं था उनमें, वो ड्राइवर के बिना कहीं घर से निकलती ही नहीं थी, लेकिन उनके हस्बैंड का देहांत के बाद उनको बहुत सारे मुसीबतों का सामना करना पड़ा, उनकी आंखें चले गई, साइट चले गई, आंखों की रोशनी चले गई, तो उनको बहुत सारे मुसीबतों झेलना पड़ा, वो हमारे सेंटर में आए, हमने उन्हें हौसला दिलाया, हमने उन्हें प्यार दिया, हमने उन्हें ट्रेनिंग दिया, अब वो स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया, यूट्यूब, गूगल पे भी इस्तेमाल कर लेती है वो, और अपने आप हमारे सेंटर से इतने घूमकर अपने होम टाउन तक वो बस में खुद चले गए, इस बार अपना सामान लेकर वो खुद एक ऑटो बुलाकर वो खुद कोर्स के बाद वो बस में चले गई थी। तो दिस इज व्हाट आई कॉल सोशल इम्पैक्ट, इफ आई कैन इम्पैक्ट वन लाइफ, इफ आई कैन चेंज वन लाइफ, दैट इज समथिंग ग्रेट। इफ आई कैन शो 1% द वे, आई डोंट हैव टू इम्पैक्ट 1000 लाइव्स, आई डोंट हैव टू शो द कंपनीज कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, लेकिन मैं ऑफ कोर्स वी नीड द कंपनी CSR, वी नीड द हेल्प, बट ओनली इफ दे बिलीव इन अस। If I can't impact 1000 lives, it's okay. But पहले मैं ऐसे नहीं सोचती थी, पहले मुझे बहुत घबराहट होता था कि मैंने ये नहीं किया, मेरा ऑर्गेनाइजेशन आगे नहीं बढ़ रहा, हमने इतने सारे lives impact नहीं किया, लेकिन जो lives हमने impact कर लिया है हमने अच्छे से किया है, और इसके लिए मैं अभी बहुत खुश हूँ। मैं अपने पीस ऑफ माइंड पे आ गई हूँ, अपने स्पिरिचुअल एंड में भी मैं आ गई हूँ कि बी कंटेंट विथ वॉट यू हैव, बी कंटेंट विथ वॉट यू कैन डू, बाकी सब गॉड देख लेंगे।
1: जो हमारे अंदर में चल रहा होता है वही हमें हमारे बाहर के एक्शंस में दिखता है, अगर अंदर में संतुष्टता नहीं है, कंटेंटमेंट नहीं है, तो बाहर के भी काम हमारे ऐसे ताबड़तोड़ ही होंगे, लोग देखेंगे और हंसेंगे, बोलेंगे क्या करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन
0: फॉर पब्लिसिटी। ऐसे बहुत लोग हैं जो खाली पब्लिसिटी के लिए ही करते हैं, कुछ फोटोज ले लिया, स्टेटस अपडेट कर लिया, अच्छा हमने बहुत बड़ा काम किया, हमने ये किया, हमारा बैनर इधर उधर लगा, इट्स नॉट फॉर दैट, इट्स फॉर टचिंग लाइव्स। इवन इफ यू कैन टच वन लाइफ एंड यू आर कंटेंट विद इट, दैट्स योर कंटेंटमेंट, दैट्स योर फुलफिलमेंट, ये आपकी अचीवमेंट है। लेकिन आपने 1000 लाइव्स में ऐसे ऐसे एक उंगली से टच करके पब्लिसिटी पाने का बजाय आप किसी एक लाइफ को अच्छे से इंटरनली टच करें, यही मैं कहना चाहती हूँ।
1: ये जो है बहुत ही एक अच्छा प्रिंसिपल है लाइफ का। बाकी मैंने देखा है आपके जीवन में आप बहुत ट्रैवल कर चुकी हैं, चाहे इंडिया हो या बाहर हो, आपने बहुत ट्रैवल किया है, तो जब आप भारत के अलग अलग जगहों पे जाती हैं, आपको क्या लगता है वो कौन सी एक बात है जो भारत को भारत बनाती है?
0: कौन सी एक बात भारत को भारत बनाती है अगर आप हमसे पूछे तो, इंडियन कल्चर, कल्चरल हेरिटेज जो है इंडिया की, इंडिया में बहुत सारी ड्रॉबैक्स भी है, लेकिन हमारा जो कल्चरल हेरिटेज है, हमारे जो लैंग्वेजेस का डाइवर्सिटी है, हार्ट टू हार्ट जो हमारा लोगों से व्यवहार करने का तरीका होता है, जिस तरीके से हम लोगों से बिहेव करते हैं, हम कैसे बिहेव करते हैं लोगों से, हम बात हमारे जो नमस्कार या नमस्ते या वणकम या नमस्कार, जो हम 4 लैंग्वेजेस में अभी मैंने बोली है, तो ये 4 लैंग्वेजेस की अपनी स्पेशलिटी है, अपना कल्चर है, अपनी धुन है, अपना स्वर है। अभी जो डांसेस है, जो अभी भरतनाट्यम होगा या भांगड़ा होगा, दीज आर 2 डिफरेंट डांसेस, बट दे डिपिक्ट 2 डिफरेंट स्टेट्स, 2 डिफरेंट कल्चर्स, 2 डिफरेंट यूनिकनेस या स्पेशलिटी उनमें है। एक पंजाब की है, एक तमिलनाडु का डांस है, ऐसे बहुत सारे डांसेस है, ऐसे बहुत सारे भगवान के स्टोरीज भी डांसेस के द्वारा डिपिक्ट किया जाता है। हमारे कल्चरल हेरिटेज, हमारे जो चीजें हैं, जैसे रेड फोर्ट है, जैसे ताजमहल है, कितने सालों से ये बिल्डिंग्स बना रखी हैं, कितना हेरिटेज है हमें, जो ये फ्लूट की आवाज होती है, घुंघरू या पायलों की आवाज होती है, इंस्ट्रूमेंट्स की साउंड होती है, हमारे जो फेस्टिवल्स होते हैं, ये सब इंडिया के, दीज ऑल थिंग्स मेक इंडिया इंडिया एंड मेक अस अ कंट्री विद यूनिटी इन डाइवर्सिटी. वी आर ऑल यूनाइटेड बट वी आर ऑल डाइवर्स एट द सेम टाइम.
1: टिफनी जी, मुझे आपसे बात करते हुए इतना इतना इतना अच्छा लग रहा है, और मुझे लगता है हमारे सभी श्रोता साथियों को भी ये सुनते सुनते समय का भी पता नहीं चल रहा है, क्या करें, समय की सुइयां आगे बढ़ रही हैं, लेकिन बातें जारी रहेंगी. मैं समझता हूँ हमें आपके साथ एक और बार मिलने का मौका मिलना चाहिए, इसलिए आज के इस एपिसोड को हम यहीं रोकते हैं. फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में टिफनी जी के साथ. श्रोता साथियों, बने रहिए रेडियो मधुबन 90.4 FM के साथ. सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और यशस्वी भारत को यशस्वी बनाने में अपना योगदान देते रहिए.

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम सरवसु, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे जब किसी ने इस तरह से गलती की है, तब वो सच बोलेंगे। हम झूठ तभी बोलते हैं जब हमें सच बोलने का डर है, और डर ये है कि सच बोलेंगे तो कोई एक्शन लिया जाएगा। इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि मुझे डांट नहीं पड़ेगी, मैं आपको सच बता दूंगी, लेकिन इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि आपको सच बताने के बाद मुझे डांट पड़ेगी, तो इजियर चॉइस फॉर मी इज झूठ बोलो और निकल जाओ। सो इट्स ऑल अबाउट आई नो व्हाट योर रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी। ट्रस्ट आ जाता है ना उसमें, आपको पता है कि दूसरा आपको समझेगा कि आपने जो गलती की, नेवर माइंड, ही विल एक्सेप्ट यू, आप सच बोलेंगे। देर इज नो रीजन, कोई झूठ नहीं बोलना चाहता क्योंकि खुद को बहुत गिल्टी लगता है उसके बाद।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार पुराना स्तंभ जी।
1: नमस्ते मनु, आओ।
0: पुराना स्तंभ जी, मैं सोच रही थी कि अगर पशु पक्षी बोल पाते तो कितना अच्छा होता।
1: अगर वो बोल पाते तो इससे क्या हो जाता?
0: इससे ये होता कि हम पशु पक्षियों का दर्द तो समझ पाते।
1: बात तो तुमने ठीक कही। अगर हम उनकी भाषा समझ पाते या वो इंसानों की तरह बोल पाते तो शायद वो इंसान ये समझ पाते कि उनके दिल में भी दर्द होता है, जबकि हम उनको अपनी खाने की थाली में परोस लेते हैं, भोजन की तरह इस्तेमाल करते हैं। अजीब ही है मनु, प्रकृति ने इतने सब खाद्य पदार्थ दिए हैं, शाकाहार दिया है, फिर भी इंसान जिह्वा के स्वाद के वश होकर जानवरों को मारने से जरा भी परहेज नहीं करते।
0: और मैंने तो ये भी सुना है कि मनुष्य के दांत और अन्य शरीर के अंग मांसाहार के लिए बने ही नहीं हैं।
1: तुमने बिल्कुल सही सुना है मनु, जो जानवर जीभ से पानी पीते हैं सिर्फ वही मांसाहार के लिए होते हैं।
0: अच्छा।
1: तुमने देखा होगा कुत्ते, बिल्ली या शेर जैसे पशु पानी जीभ से पीते हैं।
0: हाँ।
1: और उनके दांत बड़े बड़े लंबे होते हैं मांसाहार के लिए।
0: अच्छा।
1: जबकि इंसान पानी लेकर मुख से पीता है।
0: शाकाहार में तो कई फल सब्जियां हैं जो शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखने के लिए संपूर्ण रीति से लाभदायक हैं। अच्छा पुराना स्तंभ जी, अब मुझे वासुदेव बलवंत फड़के जी की आगे की कहानी भी सुनाइए ना।
1: हाँ जरूर जरूर, चलो अब सुनो। वासुदेव बलवंत फड़के ने पूरे महाराष्ट्र में घूम घूम कर नवयुवकों से विचार विमर्श किया और उन्हें संगठित करने का प्रयास किया, किंतु उन्हें नवयुवकों के व्यवहार से आशा की कोई किरण नहीं दिखाई पड़ी।
0: और फिर?
1: फिर कुछ दिनों के बाद गोविंद राव दावरे और कुछ अन्य युवक उनके साथ खड़े हो गए। फिर भी कोई शक्तिशाली संगठन खड़ा होता नहीं दिखाई दिया। तब उन्होंने वनवासी जातियों की ओर नजर दौड़ाई।
0: अच्छा।
1: और सोचा, आखिर भगवान श्री राम ने भी तो वानरों और वनवासी समूहों को संगठित करके लंका पर विजय पाई थी। महाराणा प्रताप ने भी इन्हीं वनवासियों को ही संगठित करके अकबर को नाको चने चबवा दिए थे।
0: बिल्कुल।
1: और शिवाजी ने भी इन्हीं वनवासियों को स्वाभिमान की प्रेरणा देकर औरंगजेब को हिला दिया था।
0: अच्छा।
1: महाराष्ट्र के 7 जिलों में वासुदेव फड़के की सेना का जबरदस्त प्रभाव फैल चुका था।
0: अरे वाह।
1: अंग्रेज अफसर डर गए थे, इसी कारण एक दिन मंत्रणा करने के लिए विश्राम बाग में इकट्ठा थे। वहाँ पर एक सरकारी भवन में बैठक चल रही थी। 13 मई 1879 को रात 12 बजे वासुदेव बलवंत फड़के अपने साथियों सहित वहाँ आ गए।
0: और फिर?
1: फिर अंग्रेज अफसरों को मारा और भवन को आग लगा दी। उसके बाद अंग्रेज सरकार ने उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया, किंतु दूसरे ही दिन मुंबई नगर में वासुदेव के हस्ताक्षर से इश्तहार लगा दिए गए, जो अंग्रेज अफसर रिचर्ड का सिर कटवा कर लाएगा उसे 75,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा।
0: अच्छा।
1: हाँ, अंग्रेज अफसर इससे और भी बौखला गए। 1857 ईस्वी में अंग्रेजों की सहायता करके जागीर पाने वाले बड़ौदा के गायकवाड़ के दीवान के पुत्र के घर पर हो रहे विवाह के उत्सव पर फड़के के साथी दौलत राम नायक ने 50,000 रुपए का सामान लूट लिया। इस पर अंग्रेज सरकार फड़के के पीछे पड़ गई। वे बीमारी की हालत में एक मंदिर में विश्राम कर रहे थे।
0: अच्छा।
1: तभी 20 जुलाई 1879 को गिरफ्तार कर लिए गए। राजद्रोह का मुकदमा चला और आजीवन काला पानी की सजा भी दे दी गई। अंडमान पहुंचने पर फड़के भाग निकले, किंतु वहां के मार्गों से परिचित न होने के कारण पकड़ लिए गए। जेल में उनको अनेक प्रकार की यातनाएं दी गई मनु। वहां उन्हें क्षय रोग भी हो गया। और इस महान देशभक्त ने 17 फरवरी 1883 को जेल ही के अंदर प्राण त्याग दिए।
0: वाह, मजा आ गया आज तो ऐसे महान देशभक्त की कहानी सुनकर।
1: अच्छा बताओ।
0: बताओ तुम अपने देश के लिए और क्या करोगी, यही ना। मुझे पता था कि आपका ये सवाल तो फिक्स है।
1: अब देश की इतनी कुर्बानियों की कहानियां सुनकर सिर्फ कानों का रस बनकर खत्म हो जाए तो फायदा क्या हुआ, कुछ बदलाव भी तो होना चाहिए।
0: बात तो आपकी बिल्कुल सही है, मैं जागरूक नागरिक का कर्तव्य जरूर निभाऊंगी।
1: जरूर निभाना अपने दायित्व और अपने कर्तव्यों को जरूर निभाना मनु।
0: आय आय कैप्टन। आज की कहानी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पुराना स्तंभ जी। बाय बाय।
1: बाय बाय मनु।

0: पुराने स्तंभ जी का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब अपने एक्सपर्ट जी से जानते हैं, वो हमें क्या बताना चाहते हैं वासुदेव बलवंत फड़के जी के बारे में।
1: यमन देशातील एडन तुरुंगात अशा या महान देशभक्ताचे अतोनात हाल केले आणि याला वैतागूनच त्यांनी अन्न त्याग केला। क्षय रोगाने त्यांना ग्रासून टाकले आणि अखेर ही स्वातंत्र्य प्रेमाची मशाल म्हणा किंवा स्वातंत्र्य प्रेमाने भारावून गेलेलं हे व्यक्तिमत्व म्हणा 17 फेब्रुवारी 1883 मध्ये त्यांचा मृत्यू झाला। खरं तर प्रजासत्ताक राज्य स्थापन करण्याचे स्वप्न पाहणारे हे झंझावाती वादळच होतं, पण हे वादळ कशा प्रकारे शांत झालं हे ऐकलं किंवा वाचलं की आजही डोळ्यात पाणी उभं राहतं। अर्थात हे बलिदान व्यर्थ नाही गेलं। यातून अनेक क्रांतिकारकांचा जन्म झाला, देशभक्तांचा जन्म झाला, ज्यामध्ये चंद्रशेखर आझाद, चाफेकर बंधू, लोकमान्य टिळक, सुभाषचंद्र बोस, चंद्रशेखर असे एक ना अनेक क्रांतिकारी ज्यांनी प्रेरणा घेतली, त्यांच्या कार्याचा गौरवही करण्यात आला शिरढोण येथे स्मारक स्तंभ उभारून। इतकंच नाही तर 1884 मध्ये भारतीय टपाल खात्याने त्यांच्यावरचं तिकीटही प्रकाशित केलं होतं आणि 2007 मध्ये त्यांच्यावरचा चित्रपटही प्रदर्शित करण्यात आला। अशी चरित्र ऐकली, अशी चरित्र वाचली की वाटतं कुठं गेलं ते स्वातंत्र्य प्रेम, ते देशभक्तीने भारावलेलं व्यक्तिमत्व, ज्यातून अनेकांनी आपल्या घरादाराची होळी केली। केवळ तेवढंच नाही तर उभं आयुष्य अशा प्रकारे वेचलं तो झंझावात। आज स्वातंत्र्य मिळाल्यावर 70 वर्ष झाली, कुठंच बघायला मिळत नाही। आपल्याला त्यांच्या बलिदानाचं मोल नाही असा तर याचा अर्थ नाही ना घ्यायचा, की त्यागा वाचून जर भाग्य लाभलं तर त्याची कदर आपल्याला नसते, काय म्हणायचं। केवळ स्मारक उभारून किंवा जयंती आणि पुण्यतिथी साजरी करून मला असं वाटतं की त्यांच्या हौतात्म्यास म्हणा किंवा त्यांच्या स्मृतीला म्हणा वंदन करण्यापेक्षा त्यांच्या चरित्राचं चित्र जर आपल्या कर्मांमधून आपण दाखवायचा प्रयत्न केला तर खऱ्या अर्थाने त्यांना वंदन आहे, त्यांच्या स्मृतीला वंदन आहे। आणि हे करण्यासाठी मला असं वाटतं की आजच्या तरुण पिढीला सर्वप्रथम माहीत पाहिजे अशा क्रांतिकारकांची जीवनगाथा। या निमित्ताने त्यांची जीवनगाथा आपण थोडीशी समजून घेतली तर नक्कीच ती वाचत असताना आपल्यातीलही स्फुल्लिंग पेटून उठेल आणि मग खऱ्या अर्थाने या देशामध्ये रामराज्य नांदेल असं मला वाटतं।
0: एक्सपर्ट जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ मनु और आप सुन रहे हैं मेरे साथ पुराने स्तंभ जी से कहानी वासुदेव बलवंत फड़के जी के बारे में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई एक वैल्यू हम उस कहानी से चुनते हैं और उसके बारे में थोड़ी बातचीत करते हैं। इतिहास तो खजाना है, उसमें कुछ न कुछ हमें निकाल के लेके आना है। कितनी सारी एथिक्स और वैल्यूज छुपे हुए हैं इतिहास में, अगर हम एक भी उठा के अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें तो शायद हमारा भविष्य बदल सकता है ये इतिहास। तो आज की जो मेरी पसंदीदा वैल्यू है जिसे मैंने चुना है वो है हिम्मत। और हिम्मत से आज मेरा मीनिंग ये है, आज मेरा तात्पर्य ये है कि कठिन परिस्थितियों में घबराना नहीं। हम सभी जानते हैं कि वासुदेव बलवंत फड़के जी के सामने बहुत सी विषम परिस्थितियां आई। अगर वो हार जाते या डर जाते, घबरा जाते तो शायद ये कहानी वैसी नहीं होती जैसी आज हम सुन रहे हैं। तो इसीलिए उनकी वीरता का गुणगान जितना किया जाए उतना कम है। तो दोस्तों, हम उससे ये सीख सकते हैं कि कठिन परिस्थितियों में घबराने से कुछ नहीं होता, डर कर कोई फायदा नहीं होता, बल्कि जो हम कर सकते हैं हमारी जितनी कैपेसिटी है वो भी और कम हो जाती है और हम उतना भी नहीं कर पाते जितना हम कर सकते हैं। जैसे कि मेरे साथ हुआ, एक बार मेरे भाई को चोट लग गई और मैं इतना डर गई कि उसे हॉस्पिटल ले जाने की बजाय मैं 2 मिनट बस वहीं खड़ी रही। अब सोचिए वो 2 मिनट उसके लिए कितने परेशानी भरे होंगे, और मैं अगर घबराती नहीं तो उसकी मदद कर सकती थी और बेहतर तरीके से। तो दोस्तों, हम जिनसे प्यार करते हैं, हम जो करना चाहते हैं वो भी नहीं कर पाते अगर हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। इसलिए प्यार में भी डर घबराहट जैसी चीजों की कोई जगह नहीं है। बस अपने ऊपर विश्वास रखना है और खुद को कूल रखना है हर परिस्थिति में, खुद को खुश रखना है हर परिस्थिति में। सोचिए, हमारा कोई जानने वाला गड्ढे में गिरता है तो हम उसे उठाते हैं, अगर हम भी साथ में कूद जाएंगे तो हम दोनों को कौन बचाएगा। इसलिए दोस्तों, अगर कोई विषम परिस्थितियों में हमारा अपना भी है तो हमें दुखी नहीं होना है, बल्कि हमें ओके रहना है और उसे बाहर निकालना है। घबराना नहीं है, घबराना किसी चीज का सलूशन ही नहीं है। इसलिए हमेशा ओके रहना है, बस कूल रहना है, क्योंकि दूसरों की मदद करने के लिए पहले खुद की मदद करनी बेहद जरूरी है। चलिए दोस्तों, मैं लेती हूँ आपसे इजाजत, फिर मिलेंगे पुराने स्तंभ जी के साथ। तब तक आप सुनते रहिए रेडियो पुणेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसे सरकार ने नियम बनाया कि टीचर्स स्टूडेंट्स पर हाथ नहीं उठा सकते, पहले उठा देते थे ऐसे ही, थोड़ा सा रूलर मारा, किसी ने चौक मारा, किसी ने थोड़ा, फिर लॉ बन गया कि नॉट अलाउड, उस दिन के बाद बंद हो गया। तो हम लॉ सरकार क्यों बनाए, हम अपने लिए खुद के लिए लॉ बनाएंगे ना, कि मेरे लिए और जो मेरा एनवायरमेंट है वहां पे ये चीज कितनी हानिकारक है। हम एक दर्द का एनवायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं जहां हीलिंग होनी चाहिए। और फिर जब एक ने दूसरे को डांटा, दूसरे ने तीसरे को डांटा, तीसरे ने चौथे को डांटा, तो फिर पांचवे ने तो इरिटेट होके बात कर ही लेनी है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। नमस्कार, मैं हूँ अमोल। आप सभी रेडियो पुनेरी आवाज सुनने वालों को मेरे ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

ओम शांति. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर स्वागत करते हैं आप सबका. हैप्पीनेस इंडेक्स की इस श्रृंखला में बहुत सी बातें सामने आई हैं, और अगर पिछली कड़ी को देखें तो याद आता है कि हमने बात की थी कि क्या

0: खुशी दे रही है। हम अभी तक ये सोचते थे कि हम टीवी जो देख रहे हैं या फिल्म देखने जाते हैं या किताब पढ़ लेते हैं वो हमें एंटरटेन करती है कुछ टाइम तक, मेरे थॉट्स जो मुझे तंग कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनसे मुझे दूर ले जाती है, मैं किसी और चीज में इन्वॉल्व हो जाता हूँ। लेकिन फिर ये बात समझ में आई थी कि क्यों कहा जाता है कि टीवी देखना या फिल्म देखना एक एडिक्शन बन सकती है, क्योंकि जैसे ही हम जो वहां सिचुएशंस हो रही थी उसमें इन्वॉल्व होते जाते हैं, उन्हें अपना थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसे चूज करने का हक उनको दे देते हैं। ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी बात थी, लेकिन जब इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, एक्सपीरियंस करते जाएंगे, हमें समझ में आता जाएगा। आज थोड़ा इसी बात को और आगे बढ़ाते हैं कि हाउ डज इट रियली वर्क। हमारा सौभाग्य हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: इनफैक्ट सिस्टर शिवानी, इट्स लाइक अगेन आई कैन अंडरस्टैंड नाउ व्हाई पीपल से कि आप रोज हमारे साथ ड्रॉइंग रूम में होते हैं, बात कर रहे होते, क्योंकि इट्स अ जर्नी और हर बार हमारा जो अनुभव है, हम बात यहाँ कोशिश करते हैं समझें, फिर उसे जाके इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो एक रिकैप लेना चाहेंगे आपके साथ कि व्हाट रियली हैपेंस जब मैं किसी भी टीवी के प्रोग्राम में या फिल्म में या नॉवल में इन्वॉल्व हो रहा हो।
1: या इट्स नॉट दैट वी नॉट ट्राइंग टू से कि हम ये नहीं देखें। फंडामेंटल ऑफकोर्स हम चूज करें क्या हम देख रहे हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो अंदर फीड हो रही है। सिर्फ अब ये ध्यान रखें देखते हुए भी कैसे देखें, यू नो, एंड इट्स एप्लीकेबल बोथ द प्लेसेस। जैसे मूवी को या टीवी को देखते हुए कैसे देखें, और वही चीज फिर आपकी प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में आएगी कि ये जो ड्रामा सारा दिन, इसको भी हम ड्रामा ही कहेंगे, माय जर्नी ऑफ लाइफ इज अ ड्रामा। व्हाई इज इट अ ड्रामा? बिकॉज एक सीन के बाद दूसरा सीन विद सो मेनी एक्टर्स इन्वॉल्व्ड। तो दोनों तरफ हमें ये सीखने को मिलता कि ड्रामा के हर सीन को कैसे देखें। तो जब हम मूवी देखते या टीवी देखते, जस्ट वॉच योरसेल्फ। अगर आप हाफ एन आवर का सीरियल देख रहे हैं या 3 घंटे की मूवी देख रहे हैं, सिर्फ आज शाम को अगर आप कुछ देखें तो उसको देखते हुए अपने मन को बीच बीच में देख लेना कि वो कैसे कैसे।
0: एक्चुअली आई वॉन्ट टू शेयर व्हाट हैपेंड टुडे। मैं जब आ रही थी तो पहले मैं कुछ अपना सोच रही थी, ड्राइवर ने गाना चला दिया, वो मेरा सबसे फेवरेट गाना था, एकदम से मुझे स्ट्राइक किया, मैं गाना सुनने लग जाती हूँ तो मेरा थॉट खत्म हो जाता है। लेकिन मैंने इस बार चाहा कि नहीं, मैं जो सोच रही थी वो करती रहूं, बट उसकी अट्रैक्शन इतनी थी गाने की, गानों के शब्दों की, और तब मैंने देखा कि गानों के शब्द ना सिर्फ मुझे इन्वॉल्व करते गए बल्कि वो इमोशन भी क्रिएट होने, क्योंकि मैं देख पा रही थी, हम इस पे बात कर चुके थे इसलिए। तो अब मैंने सोचा कि नहीं, मुझे वो इमोशन तक नहीं जाना, मुझे वापस आना है अपने थॉट पर मेरा मन नहीं था आने का मेरे को, क्योंकि उसमें एंजॉयमेंट मिल रही थी।
1: स्टिम्युलस था ना, वो एक स्टिम्युलस था जो मेरे अंदर वो इमोशंस क्रिएट कर रहा था। क्या होता, हैप्पीनेस या पेन दोनों चीज हॉर्मोन्स तो सिक्रेट करती है ना बॉडी के अंदर, एंड द माइंड नीड्स दैट क्रेविंग बट द बॉडी ऑल्सो नीड्स दोज हॉर्मोन्स। तो इफ आई एम वेरी वेरी स्टेबल, अगर मैंने प्रैक्टिस नहीं किया है, दिस ऑल्सो डिवेलप्स धीरे धीरे ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन मेरी बॉडी की कुछ वो होती है, एडिक्शंस होती है, वो हॉर्मोन्स की मुझे आदत पड़ी हुई है, तो मुझे कुछ ऐसा बाहर से चाहिए होता है स्टिम्युलस, कि वो स्टिम्युलस आएगा, वो स्टिम्युलस मेरे अंदर वो इमोशंस क्रिएट करेगा, और जैसे ही वो इमोशंस क्रिएट होंगे मेरे बॉडी के अंदर भी वो हार्मोन्स सिक्रेट होंगे एंड आई फील गुड, जैसे कि मुझे वो चीज मिल गई जो वो चाहिए थी। फिर इवन भले वो दर्द के ही यू नो इमोशंस हो, वो एड्रेनालिन सिक्रेट हो, लेकिन वो सिक्रेट हुआ ना, वो बॉडी को जो चाहिए था वो सिक्रेट हुआ, आई फील गुड एंड देन आई से दिस इज एंटरटेनमेंट, यू नो ये मुझे चाहिए, दिस मेक्स मी फील गुड इवन इफ आई हैव क्राइड फॉर हाफ एन आवर। हाउ कैन आफ्टर क्राइंग यू फील गुड अदरवाइज? तो कोई लॉजिक ही नहीं। आप आधा घंटा पिक्चर देखा, आप कितनी बार रोए उसके साथ, यहां तक कि आपने हैंकी तक निकालना पड़ गया, एंड देन वी से आई फेल्ट गुड आफ्टर वॉचिंग द मूवी। वॉट फेल्ट गुड? समवेयर दोज इमोशंस गॉट क्रिएटेड, द बॉडी सिक्रेटेड व्हाट इट हैड टू डू, एंड आई वॉज लाइक ओके दिस इज वॉट इज माई नीड। जैसे ड्रग्स है, डैमेजिंग है, लेकिन बॉडी को आदत पड़ गई है ना, तो जब तक बॉडी लेती नहीं है उस चीज को, लेना उसको अनकंफर्टेबल लगता है। तो इसी तरह अगर मुझे एक पर्टिकुलर प्रोग्राम से वो स्टिम्युलस मिलता है, देन धीरे धीरे धीरे आई स्टार्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, कि ये तो मुझे देखना ही है। अगर आज मैं पहुंच नहीं पाई टाइम पर, या वो लाइट नहीं है घर में, वो प्रोग्राम नहीं आ रहा, या आई विल फील वेरी वेरी अनकंफर्टेबल। सो दिस इज लाइक जिसको किसी को वो नहीं मिला जो उसको उसकी आदत होती है। जैसे आपने वो सॉन्ग के साथ किया, नेक्स्ट टाइम हम सभी एक्सपेरिमेंट इसको करके देख सकते हैं कि जब हम कुछ देख रहे हैं, पहले जब हम बैठते हैं जस्ट देखने के लिए, आर माइंड इज क्वाइट स्टिल, यू नो, इनफैक्ट पहले तो आर माइंड इज विद अदर थॉट्स, So this is about watching our mind. It's very interesting कि जैसे ही हम आकर बैठे टीवी के सामने, पहले थोड़ी देर मेरे मन में कुछ और चल रहा है जो मैं छोड़कर आया हूँ, अभी ऑफिस का काम या घर का, धीरे धीरे वो थॉट्स खत्म हो जाती है एंड यू विल एक्सपीरियंस अ लिटिल स्टेज वेयर यू आर इन यू नो नॉट टू मेनी थॉट्स. दिस माइंड इज बिकमिंग साइलेंट, क्योंकि ये वो वाली जो बातें लेकर आया था घर वो बातें तो खत्म हो गई, तो ये माइंड थोड़ा थोड़ा स्टिल हो जाता है. ये जो स्टिलनेस की स्टेज है, ये है कि यू आर हियर, प्रोग्राम इज देयर एंड आप उसको डिटैच्ड ऑब्जर्वर की तरह आप उस प्रोग्राम को देख रहे हैं. उसका इफेक्ट मुझ पर नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये बहुत थोड़ी देर रहता है. धीरे धीरे हमारी जो नेक्स्ट स्टेज आती वो आती है कि हम जजमेंटल होना शुरू करते हैं. ऐसे क्यों बोल रहे हैं ये, ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे व्हाट एवर आर ओपिनियन.
0: देखा उसने ऐसे किया तो अब ऐसा ही होना चाहिए. अब व्हाट नेक्स्ट,
1: इवन इन द क्रिकेट मैच ऐसे क्यों,
0: ये बॉल
1: यू सी. सो द सेकंड स्टेज बिकम्स जजमेंटल, कि हम अपना ओपिनियन चाहते हैं कि दैट इज हाउ इट ऐसे करते तो. इवन द एक्टर्स क्लोथ्स, द सीन और व्हाट एवर एवरीथिंग, आई स्टार्ट बिकमिंग जजमेंटल. जैसे ही हम जजमेंटल शुरू हुआ, मतलब क्यों, क्या, कैसे के क्वेश्चन मार्क की सीरीज में गए, ये जो स्टिलनेस थी वो क्या हो गई,
0: वो खत्म हो गया.
1: बिकॉज वो माइंड ऐसे ऐसे, ऐसा क्यों, ऐसे कैसे, ऐसे, तो द माइंड स्टार्ट्स गेटिंग डिस्टर्ब. वो स्टिलनेस हमारी खत्म हो गई. सो दिस वॉज द सेकेंड स्टेज. द थर्ड स्टेज जो आती कि हम उस कैरेक्टर की स्टोरी के अंदर ही पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं एंड दैट स्टेज विल बी कि वो कैरेक्टर जो इमोशन वहां एक्सपीरियंस कर रहा है वो इमोशन आई स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग हियर. तो फिर आई एम टोटली इन द स्टोरी, लाइक पूरी तरह से. देन आई हैव नो अदर थॉट एंड देन आई माय क्रिएटिविटी इज ओवर बिकॉज नाउ आई एम ओनली क्रिएटिंग व्हाट दे आर क्रिएटिंग. मेरी अपनी अब कोई नहीं रह गई.
0: उससे पहले तो मैं कर रही थी, वैसे
1: उससे पहले
0: जजमेंटल जब मैं हो रही थी,
1: पर जैसे जजमेंटल हुए तब क्या हुआ, क्रिएटिविटी नहीं थी. जैसे ही आप जजमेंटल होते हैं आपकी एनर्जी तो उल्टा खत्म होने लगती है, क्योंकि आप किसी और को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते. आई कैन सिट अक्रॉस द टेलीविजन एंड कीप ऑन सेइंग व्हाट आई वांट टू से. मैं कितना भी जजमेंटल हो सकती हूँ, कैन आई डू एनीथिंग अबाउट इट. मैं आपका प्रोग्राम देख रही हूँ सामने से बैठकर और मैं कहूँ ये नहीं पहनना चाहिए था, ये पहनना चाहिए था, ये सेट ऐसा नहीं, कैन आई डू एनीथिंग अबाउट इट. नो, आई एम थिंकिंग ऑफ दोज थिंग्स व्हिच आर नॉट इन
0: बट माय कंट्रोल.
1: बट
0: आई हैव अ राइट टू हैव माय ओन ओपिनियन.
1: दैट्स ओके, दैट्स फाइन, यू आर हैव अ राइट. लेकिन आप बस बैठे हैं और यहाँ आपका माइंड कंटिन्यूअसली वो थॉट्स क्रिएट कर रहा है उन चीजों के बारे में जो आपके कंट्रोल में नहीं है. यूजफुल एनर्जी?
0: No, it can't be. Yes.
1: Useful energy?
0: Actually, I know, it's of no use.
1: It's a drain. ये आपका drain शुरू हो गया, कि जो वो stillness थी, वो आपका drainage शुरू हो गया, क्योंकि आप एक एक वो thought create कर रहे हैं जो आपके control में.
0: Actually, और इससे मुझे आदत भी पड़ती जाएगी.
1: Exactly. यही चीज तो फिर practical life में आएगी ना, day to day.
0: हर एक को, oh yes.
1: जो आपने कहा, do I not have the right to have an opinion? Yes.
0: So then I'll have my right
1: सारा दिन पे. ये बिल्कुल सेम चीज फिर रोज के ड्रामा में होती है ना. दैट्स व्हाट वी सेड, जो टेलीविजन के ड्रामा के साथ पहले प्रैक्टिस होती है वही चीज फिर हैबिट बन गई, तो वही चीज फिर मेरे डे टू डे लाइफ में आती है. सो वी वेंट थ्रू दीज थ्री स्टेजेस, पहले स्टिलनेस, फिर जजमेंटल एंड तीसरा तो पूरी तरह से इन्वॉल्व. एंड जब पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गई तब तो अपनी थॉट क्रिएट करने की मेरी अपनी कैपेसिटी है वो भी भूल गया. मेरी थॉट की पावर मैंने टोटली उस प्रोग्राम को दे दी. नाउ दिस because I'm doing every day. It's not कि I'm watching a movie just once in a while या मैं टीवी देख रही हूँ वंस इन अ वाइल. नहीं, हम रोज कर रहे हैं. तो कोई भी चीज जो रोज करेंगे
0: वो
1: बन गई मेरी हैबिट. अब जो हमने पिछली बार भी देखा कि अगर गुस्सा ऑफिस में सिर्फ कर रहे हैं ये सोच के कि गुस्से से काम होता, लेकिन वो मेरी अगर बन जाती है हैबिट, तो वो हैबिट मेरे साथ हर जगह
0: मेरी पर्सनालिटी बनती. Yes, now I understand it actually.
1: अब ये था, शुरू किया था जब बैठ कर देखना, मैं एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर, एक साक्षी दृष्टा थी, लेकिन आधे पौने घंटे के अंदर अंदर मैं उस ड्रामा के अंदर पूरी तरह से घुस गई. अब यही चीज फिर सारा दिन होती, क्योंकि अब मुझे हैबिट पड़ गई है. अब धीरे धीरे तो वो साक्षी दृष्टा होना कैसे वो ही हमें आज नहीं पता चलता, और इसलिए आज हमारी वोकैबुलरी ये हो गई है कि अटैचमेंट तो नेचुरल है, डिटैचमेंट डिटैचमेंट का कॉन्सेप्ट कंफर्टेबल नहीं लगता, लोगों को बहुत कोल्ड लगता है कि हम बहुत स्टिल हैं, हम बहुत डिटैच्ड हैं, हमारे ऊपर असर क्यों नहीं पड़ रहा. लेकिन ये जो असर पड़ने का, प्रभाव पड़ने की आदत जो पड़ी थी वो इससे पड़ती
0: हाँ,
1: है.
0: वो कंटिन्यू. इनफैक्ट अगर हम देखें, वो जब अभी हुआ था, जब मुंबई का जो अटैक हुआ था, तो उसमें मुझे कितने दिन तक, 2 दिन लगातार चला था, हम पूरा टाइम डिस्टर्ब्ड रहे थे. लेकिन
1: अब इसको ही अगर आप देखो जो न्यूज में अगर कोई एक इंसिडेंट हुआ है एब्सोल्युटली कि वो नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है बात, लेकिन जब हम उसको 24 घंटा हर रोज स्ट्रेच करते हैं, और उसमें हम करते क्या है, किसी के साथ कुछ हुआ हम उसी को लेकर वो रोते हुए को बार बार दिखाएंगे, बार बार उसको पूछेंगे आपको कैसा फील हो रहा है. Somewhere we are using emotions and the other person's feeling to sell it into the market. और क्यों? क्योंकि हम feel करते हैं कि ये लोग देखना चाहते हैं. This sounds very harsh, but it is the truth. हमें लगता है कि ये रहम है, actually नहीं, उनको रहम नहीं चाहिए, उनको compassion चाहिए, उनको love चाहिए. लेकिन love नहीं है. अगर हमने भी pain create किया कुछ भी ऐसा देखकर, जब ये पूरा टेरर अटैक हुआ तो व्हाट वाज द इंफॉर्मेशन दैट वाज बीइंग फ्लडेड एवरीवेयर कि आप सबको गुस्सा होना चाहिए इस बात को लेकर. व्हाई आर यू नॉट एंग्री, पीपल शुड गेट एंग्री, वही तो सोल्यूशन है. हाउ कैन एंगर बी द सोल्यूशन टू एंगर? जिन्होंने जो किया दैट वाज अ साइन ऑफ एंगर, रिजेंटमेंट. ऑलरेडी उस शहर के अंदर जो वातावरण फैल चुका था वो दर्द का था. बहुत लोगों की जीवन ऊपर नीचे हो गई थी, बहुत लोग डर में थे, अपने अपने घरों में ट्रैप्ड थे. इन एन एनवायरमेंट जहां ऑलरेडी इतना पेन है, इतना दर्द है, वी ट्राइंग टू से गेट एंग्री.
0: नहीं, एंड इनफैक्ट वही बात कह रही हूँ कि वो सिचुएशन, अगर हम जो हम जिस मुद्दे पे थे, उस सिचुएशन ने जो कहीं और हो रही थी, उसने पूरी तरह से पूरे जो वॉच कर रहे थे, टीवी देख रहे थे, उन सबके माइंड्स को कैप्चर ही तो कर लिया.
1: या बट नॉट इवन सी, अगर हम देख भी रहे हैं, हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद मेरे माइंड में इमिजिएटली ये आना चाहिए कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. आई टेल यू अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग दैट हैपेंस एट द ब्रह्मा कुमारीज. वी नॉट सेइंग कि ये होना चाहिए, जो समथिंग वेरी वेरी नाइस दैट हैपेंस हियर इज कि जब भी दुनिया के किसी भी हिस्से में कुछ भी हो जाता है, थोड़ा भी ऊपर नीचे, चाहे वो नेचुरल कलामिटी है या वो कुछ ऐसी बात है, इमिजिएटली एवरी वन नोज दिस, हर सेंटर पर जितने भी हम सारे भाई बहने हैं, वी हैव कलेक्टिव मेडिटेशन. हम सब इकट्ठे मिलकर, अलग अलग अपनी अपनी रीति से घर पर तो करते ही हैं, लेकिन कलेक्टिव टाइम फिक्स करके हम सब सेंटर पर बैठते हैं, और सेंटर पर इकट्ठे मिलकर वी क्रिएट वाइब्रेशंस ऑफ पीस, लव एंड पावर. क्योंकि भगवान परमात्मा हमेशा ये कहते कि दर्द तो ऑलरेडी है, आप दर्द के बारे में चर्चा करते हो, दर्द की खबरें सुन रहे हो और दर्द क्रिएट कर रहे हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इस टाइम? डोंट जस्ट सी इट एज अ स्टिम्यूलस, सी व्हाट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ. तो वहां दर्द है, हमें क्या भेजना? हमें प्यार भेजना, हमें शांति भेजनी. लेकिन वो कब भेज पाएंगे? जब हम डिटैच्ड हैं. लेकिन अगर मैं ही दर्द में चली गई, हाय क्या हुआ, कैसे हुआ, तो वेयर इज द पावर?
0: और इनफैक्ट अनोइंगली मैं दिए जा रही हूँ, भेजी जा रही हूँ.
1: हमें लगता है कि ओ मैं तो दिल्ली में बैठी हूँ, ट्रेजेडी तो बॉम्बे में हुई, बट इट्स नॉट ट्रू, इट्स अ कलेक्टिव वाइब्रेशन.
0: डेफिनेटली सुशील शिवानी, ये तो बात समझ में आती है, लेकिन जब अगेंस्ट चीजें हो रही हैं, सोसाइटी के नॉर्म्स के, ह्यूमन काइंड के, तो हम ही तो हैं, इंसान ही तो हैं जिन्होंने अपनी वॉइस भी रेज करनी है. तो अगर हम स्टेबल होके देख रहे हैं या मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं उस चीज को, इजंट इट बीइंग नॉन रिएक्ट, आई मीन नॉट डूइंग थिंग्स,
1: यू बिकम वेरी पैसिव.
0: यस, यू नो, लाइक मतलब आप बहुत स्लो हो जाते हैं. आपको अपनी बात कहने का भी तो वो जरिया चाहिए.
1: एब्सोल्युटली. लेकिन अपनी बात कहने का जो तरीका है, एक तो वो मैटर करता, और दूसरी अपनी बात कहने के लिए पहले आपकी सोच में तो बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए ना. जब हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, सी एंगर, पेन, हर्ट, उस टाइम जो हम जिस अटैक के बारे में बात कर रहे हैं, जो तीन फंडामेंटल इमोशंस बहुत हैवी थे, एंगर, पेन, हर्ट, रिजेंटमेंट, एंड स्पेशली वो पूरी, यू नो, एक पूरा एक फ्लेवर जो क्रिएट हो गया हर जगह, इट वॉज दीज थ्री. जब हम इन तीनों इमोशंस के वशीभूत हैं, ये तो डू वी हैव क्लैरिटी ऑफ थॉट, क्या हम उस समय राइट सोच पाएंगे, राइट बोल पाएंगे? अब इसी स्पेसिफिक बात को भी अगर हम देख लें, जितनी दिन वो न्यूज में था, हम देख रहे थे क्या हो रहा है. सो वी वर ऑल्सो यू नो एवरी वन इज वेरी एंग्री, एवरी वन इज टॉकिंग अबाउट इट. किया हमने क्या इज अ क्वेश्चन मार्क. हमने क्या किया अपने देश के लिए,
0: कलेक्टिव एंगर जो था,
1: कलेक्टिव एंगर था, कलेक्टिव एंगर का रिजल्ट.
0: अगेन यू नो दिस इज व्हाट पीपल हैव सीन.
1: सी इफ यू वांट टू वॉइस योर ओपिनियन ऑल द मोर यू रिक्वायर स्टेबिलिटी. वी थॉट के एंगर एंड रिएक्शन हमारी आवाज ज्यादा यू नो जैसे नॉर्मल भी वो तो बड़ी बात है, छोटी बात पे ऑफिस में भी हम देखेंगे या घर पे भी कि मैं जोर से चिल्लाकर बोलूंगा ना तो आपको ज्यादा ठीक से समझ में आएगी. सी द थिंग इज फर्स्ट इज इम्पैक्ट ऑन यू कि आप जो इमोशंस क्रिएट करते हैं उसका आपके ऊपर इम्पैक्ट, फिर कलेक्टिव सब लोगों के ऊपर उसका इम्पैक्ट, फिर उसका एंड रिजल्ट. इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ, हमने बहुत ज्यादा कुछ किया नहीं, हमने सिर्फ उसके बारे में जितने दिन वो न्यूज में था हम भी न्यूज के साथ थे, हम भी उसको यू नो ऑफिस में भी वही बात हो रही है, घर में भी वही बात हो रही है. हमने किया क्या, 10 दिन 15 दिन, आई थिंक दैट्स अबाउट इट ऑल. उसके बाद न्यूज चेंज हो गई, कोई और चीज हो गई दुनिया के किसी और कोने में,
0: पब्लिक मेमोरी बहुत छोटी होती
1: है, हम उसके बारे में बात करने लगे. जिनके जीवन पर उसका इफेक्ट हुआ, जो आज दर्द में है वो तो आज भी दर्द में है. हमने उनके लिए क्या किया, कुछ नहीं किया. हमने कंट्री के लिए क्या किया इज अ बिग क्वेश्चन मार्क. हमने सिर्फ गुस्सा किया, व्हाट डज दैट रिजल्ट.
0: अच्छा लेकिन
1: अगर सारे इकट्ठे होकर इफ वी हैव टू रियली डू समथिंग उसके लिए, क्योंकि टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इवन कुछ करने के लिए पावर चाहिए. अगर हम अंदर से हर्ट हैं, गुस्से में हैं, हम वीक हैं, वीक अंदर से वीक होकर सिर्फ शोर मचाकर हम कोई परिवर्तन ले आएंगे विल नॉट रियली वर्क. एंड वी नीड टू रिमेम्बर वो करना, वो उस तरह से करना धीरे धीरे मेरी क्या बनते जा रहा
0: है,
1: हैबिट बनता जा रहा है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो जो क्या होता है कि हम उसके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, वी नीड टू रिमेम्बर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, डिटैच होकर देखें एंड तुरंत अपने आप से पूछें अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. सो दैट लाइक आई वाज शेयरिंग एट द ब्रह्मा कुमारीज हम लोग कलेक्टिव मेडिटेशन करते कि हम सब बैठकर, और ये तब नहीं सिर्फ कि अगर कुछ ऐसे इंसिडेंट होता, बट एवरी मंथ ऑल्सो. एक है कि एवरी डे हम शाम को जब मेडिटेशन करते 6:30 to 7:30 हम दो बार मेडिटेशन करते हैं हर रोज दिन में, वन इज इन द मॉर्निंग. एंड ये हमने बहुत यू नो क्लियरली जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर जैसे ये किया है कि मॉर्निंग में जो मेडिटेशन है वो है अपने ऊपर काम करने का समय, अपनी मेहनत, अपने संस्कारों को परिवर्तन. और शाम को जब मेडिटेशन करते इट इज फॉर सर्विंग द वर्ल्ड. कि सुबह आपने मेडिटेशन किया, आपने अपने अंदर पावर्स भरी, शाम को आप मेडिटेशन करो एंड वो पावर्स जस्ट सेंड इट आउट टू द वर्ल्ड, जस्ट सेंड इट आउट. Now, when I came first to the Brahma Kumaris, I just didn't know how this works. ये कैसे होगा कि हम यहाँ बैठे हैं, हम यहाँ create कर रहे हैं कुछ, and this is going out to the world. ये and for me it was a question mark कि इसका क्या फायदा हो सकता है कि हम यहाँ बैठे हैं, वो किसी और देश में है, वो तो अभी भी दर्द में ही है. एंड ये ऐसी चीज है जिसका कोई तुरंत प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं पता चलता कि यू नो जैसे we used to call this donation of peace and power. तो आई सेड धन डोनेट करो तो दिखाई देता, कपड़े डोनेट करो दिखाई देता, मतलब हमें ये नहीं कि फॉर एटलीस्ट आई कैन सी दैट आई एम गिविंग इट टू यू एंड यू आर टेकिंग इट. एंड आई सी कि आपको वो मिला जो आपको चाहिए था, लेकिन पीस डोनेट करो वो आप तक पहुंच रहा है कि नहीं. आई वुड नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस के बट नाउ व्हाइल आफ्टर डूइंग इट फॉर सो मेनी इयर्स आई हैव रियलाइज्ड इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. हाँ हमें उसका तुरंत वो नहीं पता चलेगा कि वो किस तक पहुंचा, क्या हुआ, लेकिन जब ये समझ में आ गया कि थॉट्स एनर्जी है और जो एक एक थॉट हम क्रिएट करते वो वाइब्रेशन है जो एनवायरमेंट में फैलता है, पहले मुझे मिलता, मेरे आसपास जो है उनको मिलता, देन ग्रेजुअली आई अंडरस्टूड कि एक एक थॉट जो हम क्रिएट करते वो वाइब्रेशन है. इट डजंट स्टे इन, इट रेडिएट्स, इट वाइब्रेट्स इनटू द एनवायरमेंट. एंड वो जिनके प्रति भी क्रिएट किया गया होगा, बिकॉज दैट्स व्हाट वी हैव सीन एवरी टाइम कि जो थॉट मैं आपके लिए क्रिएट करूंगी वो आप तक पहुंचेगा. तो जब हम मेडिटेशन करते हैं इट इज कॉन्शियसली क्रिएटिंग थॉट्स. यू नो वी डोंट रियलाइज, हम लोग आज सब बोल रहे हैं कि दुनिया में शांति होनी चाहिए, एवरी वन इज टॉकिंग कि दुनिया में शांति होनी चाहिए. कैसे आएगी, जब हम एक एक शांत रहेंगे तब ऑटोमेटिकली शांति के वाइब्रेशंस फैलेंगे, ऑटोमेटिकली शांति होगी. हम सब अशांत है और हम कहते हैं दुनिया में शांति होनी चाहिए. दुनिया मीन्स व्हाट, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ एवरी इंडिविजुअल इन द वर्ल्ड. हर एक जो हम है, हम सब की मन की स्थिति क्या है, कलेक्टिव सबकी मन की स्थिति को अगर हम लें, वो दुनिया की स्थिति है। तो हम कहते हैं दुनिया में शांति हो तो मैं शांत हो जाऊंगा, यू नो, दुनिया सब ठीक हो जाए तो मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं शांत होंगी तो दुनिया में शांति आएगी। तो नाउ वी आई कांट वेट कि पूरी दुनिया में सभी 600 करोड़ लोग जब शांत हो जाए तो दुनिया शांत होगी, लेकिन एक एक करेगा, एक एक क्रिएट करेगा वो पीसफुल वाइब्रेशन, तो दुनिया में तो आएगी, लेकिन सबसे पहले आई विल बी पीसफुल, माय फैमिली विल बी पीसफुल, वेयर आई एम वर्किंग विल बी पीसफुल। तो ये जो हम मेडिटेशन करते हैं, वी डू इट एवरी इवनिंग 6:30 to 7:30, सर्विंग द वर्ल्ड, सेंडिंग आउट पावर्स ऑफ पीस, लव एंड पावर, एंड स्पेसिफिकली every third Sunday of the month, ye to fixed hai all over the world, every third Sunday of the month 6:30 to 7:30 sabhi bhai behne center par aate, and it is called meditation for world peace, ki vishv mein shanti ke liye hum ikatthe milkar meditation karte.
0: In fact, you know, it's such a beautiful aspect ki it will make me feel so good ki I'm doing it for the world. You know, अभी तक तो सब कुछ इवन प्रोग्राम में भी हम अपने लिए कर रहे थे, यू नो, हर चीज हम पर फोकस हो रही थी, और कहीं ना कहीं वो जो ह्यूमन एलिमेंट ये होता है कि हम दुनिया के लिए क्या कर सकते हैं, और हर बार हमारे को लगता है कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम इतने बिजी हैं अपनी लाइफ में, कुछ कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, कुछ किसी का दर्द नहीं बांट सकते, कुछ नहीं कर सकते. So this gives me such a good feeling. Actually, we should all try to experience
1: and
0: it.
1: And in this case, it is कि जब आप कर रहे हैं किसी और के लिए, सबसे पहले किसको मिलता?
0: हाँ, खुद को मिलता
1: सबसे पहले. See, if I do something for you, it's for you. तो उसमें शायद हो सकता है मुझे कोई benefit नहीं, लेकिन इसमें सबसे पहले मुझे मिलता और फिर मेरे through औरों तक पहुंचता. And जब हम देते हैं, that's the most beautiful feeling. लेना लेना सारा दिन ये तो बहुत easy है, लेकिन जो खुशी मिलती है जब हम देते हैं, दिस इज समथिंग टू बी एक्सपीरियंस्ड. एब्सोल्युटली,
0: इन फैक्ट इट ऑलवेज हैपेंस, यू नो, हम कुछ भी जब देते हैं हमें अच्छा लग रहा होता है,
1: यू नो, गिफ्ट, जैसे गिफ्ट होता है, आई हैव टू आस्क मायसेल्फ, गिफ्ट देने में ज्यादा अच्छा लगता या गिफ्ट लेने में? इट्स ऑलवेज द गिविंग, अ गिविंग ऑफ अ गिफ्ट. आप चूज करने जाएंगे, आप लेंगे, यू ऑलवेज सो हैप्पी बिकॉज गिविंग इज ह्यूमन नेचर. लेकिन वो हम अपने बेसिक नेचर को आज थोड़ा सा भूल गए हैं, एंड इंस्टेड ऑफ गिविंग हैप्पीनेस, giving love, giving peace, we are wanting asking happiness, for asking for love, asking for peace. So let's experiment this meditation together.
0: In fact, Sister Shivani, हम जो बात कर रहे थे वो ये थी कि जो impact था आज इस पूरी बातचीत में, ये तो समझ में आया कि क्या process है, क्या कुछ कैसे होता है, जो जिसे हम फिर हमारा जो पूरा जितनी देर हम टेलीविजन के आगे होते हैं, क्योंकि ये जो हमने एग्जांपल्स लिए उसमें भी तो यही हुआ, जितने दिन तक वो टीवी पर दिखते रहे, जितने दिन तक वो चर्चा में रहा, उतने दिन तक वो हम पे हावी रहा, उसके इमीडिएटली बाद हमें याद भी नहीं रहा,
1: कुछ और आ गया ना तब.
0: हाँ, सो इट मीन्स इट टुक ओवर ना.
1: सो दैट मीन्स मेरी अपनी क्रिएटिविटी क्या थी, इफ यू रियली फेल्ट फॉर व्हाट हैड हैपेंड, तो टीवी से वो हट भी गई न्यूज, आपकी फिर भी वो रहना ही चाहिए थी ना, वट एवर यू थॉट, वो तो इट्स फिनिश्ड. सो इट्स नॉट रियली दैट यू फेल्ट इट, इट इज समवन एल्स वाज क्रिएटिंग योर इमोशंस फॉर यू दैट टाइम, एंड वो समवन एल्स चेंज्ड द टॉपिक, हमारा भी चेंज.
0: तो हमारी रैशनैलिटी खत्म हो चुकी होती है
1: एक्चुअली. वही, दैट्स व्हाट वी सेड, हमारी क्रिएटिविटी कि कौन सी थॉट्स क्रिएट करनी है, चूज करनी है, इट्स ओवर.
0: तो वी अंडरस्टूड कि शुरुआत में क्या होता है, देयर इज अ स्टेज वेयर वी आर स्टेबल, वी आर डिटैच्ड, हमने जो पूरा प्रोसेस देखा, और उसके बाद हमारा जो यू नो लोगों के ऊपर जो जजमेंटल होना कि ये ऐसा किसी भी चीज के लिए, एंड देन पूरी इमोशंस हमारे जो टेक ओवर करती है. ये तीन प्रोसेस हैं जब हम किसी भी चीज में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं बाहर ही किसी भी, और ये फिर मेरी हैबिट बनता जाता है, जजमेंटल होना और फाइनली फिर उस सिचुएशन को अपने ऊपर हावी होने देना. इनसे अब काम कैसे करना, हम टेलीविजन के प्रोग्राम से ही जुड़े हुए चीजें करेंगे, सो दैट क्योंकि आप इस प्रोग्राम से भी जुड़े हुए हैं तो उसको भी अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको कम ना होने दें. यू नो, आपको जो समझ में आ रहा है, जो एक्सेप्ट, मतलब आप ब्लाइंड, बार बार हम ये कहते हैं कि ब्लाइंड फेथ ना रखकर, इसीलिए अनुभव की बात कही जाती है,
1: एक्सपेरिमेंट.
0: हाँ, कि आपका एक्सपेरिमेंट और फिर आपका एक्सपीरियंस जो होगा उसके साथ वो कैसा होगा वही आपको तय करवाएगा. आपके मन में कोई बात आ रही है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर आप हमें फोन भी कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर्स हैं 0124-266-7000, 9999-344-555, 9999-344-666, 9873-666-555. हमारा ईमेल आईडी है ओम शांति @bkmail.org. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी, इसमें आज हमने मेडिटेशन के उस एस्पेक्ट को भी समझा जो कलेक्टिव होती है और जो सिर्फ मुझसे जुड़ी नहीं हो सकती, लोगों से भी जुड़ सकती है, विश्व से जुड़ सकती है। तो आज सिस्टर शिवानी चलते चलते चाहेंगे कि थोड़ा सा अनुभव वो करें।
1: आज दिन तक हमने मेडिटेशन किया, आज उसमें एक नया एस्पेक्ट देखते कि हाउ आई कैन क्रिएट वाइब्रेशंस ऑफ पीस एंड सेंड इट आउट टू द वर्ल्ड। तो इसमें कोई हमें स्पेसिफिकली लोगों के बारे में नहीं सोचना है, लेकिन आई क्रिएट वो शांति की संकल्प वो अनुभूति एंड देन आई सेंड इट आउट टू द वर्ल्ड। डोंट सिट एंड थिंक कि वो किस तक पहुंचेगा, कहाँ पहुंचेगा, नहीं, जस्ट सेंड इट आउट विद अ प्योर फीलिंग एंड अ प्योर इंटेंशन एंड इट विल रीच आउट टू देम। लेट्स सिट कंफर्टेबली, बाहर की रोजमर्रा की बातों से अपनी बुद्धि को हटाते हुए अपने ऊपर लेकर आते हैं। आई दैट पावरफुल बींग जो हर संकल्प क्रिएट करता है, आई एम द क्रिएटर ऑफ एवरी थॉट, आई एम अ पीसफुल बींग, शांति मेरा अपना स्वभाव, मेरी अपनी नेचर है। ये शांति की वाइब्रेशंस, ये शांति की शक्ति मुझसे निकलकर सारे विश्व तक पहुंच रही है। देखने का प्रयास करें, वाइब्रेशंस ऑफ पीस, इट्स लाइक अ लेजर बीम, मुझसे निकल सारे विश्व तक पहुंच रही है, विश्व की एक एक आत्मा तक पहुंच रही है। ओम शांति,
0: ओम शांति। थैंक यू सो मच। अब आपसे भी विदा लेंगे, लेकिन इसी उम्मीद के साथ कि आने वाली कड़ियों में बहुत सी और बातें हम समझ पाएंगे। ओम शांति।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अपने आप को आज देखते हैं, हर रोज कुछ बातों को हमने एक ही तरह से रिएक्ट किया और करते करते वो मेरी आदत बन चुकी है। आज एक नया तरीका, अ न्यू वे ऑफ रिस्पोंडिंग, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मुझे खुशी, सेहत और सुंदर रिश्ते देगा, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मेरे लिए कंफर्टेबल एंड रॉयल होगा। आज अपनी किसी एक आदत, अपने किसी एक रिएक्शन को चूज करते हैं एंड देखें अपने आप को कि आज उसी परिस्थिति में अपने आप को एक नए तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए देखें। धीरे धीरे अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग, एक नया पैटर्न क्रिएट होना शुरू हो रहा है। This is the powerful being.
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: ओम शांति एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। अगर आपको याद हो पिछली कड़ी में हमने ये जाना है कि इमोशंस और फीलिंग्स दो ऐसे एस्पेक्ट है जिन्हें आज तक हम ये समझ रहे थे कि वो एक ही तराजू का हिस्सा है या एक ही थैली के हिस्से हैं, लेकिन हमने ये जाना कि इमोशंस जहां नेगेटिविटी को क्रिएट करते हैं, वहीं फीलिंग्स मेरी नेचुरल सेंस को लेकर आते हैं, जो नेचुरली मैं हूँ, सहज हूँ। और आज हम बात करेंगे एंगर की। और आपको बता दें कि आने वाले जो कड़ियां हैं, आने वाले एपिसोड्स में हम जानेंगे कि किस तरह से एंगर जो है वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, वो एक नेगेटिव इमोशन है, और क्या है उसका एंटीड्यूट, कहीं ना कहीं शांति जिसे हम और आप तलाश रहे हैं, क्या हम उस फीलिंग को क्रिएट कर सकते हैं। और फिर आगे चलकर बात आती है क्षमा की, यानी कि फॉरगिवनेस की। ये होगा आने वाली कड़ियों में, लेकिन आज बात करते हैं एंगर की। कई सारे रॉन्ग बिलीफ्स जुड़े हैं एंगर के साथ, इन सभी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, अगर हम गुस्से को देखते हैं तो गुस्सा ऐसा लगता है कई बार, अगर हम पूरे अपने सिनेरियो को देखें तो चारों तरफ वो एंगर नजर आता है, और उस एंगर को हमने इतना नॉर्मल मान के एक्सेप्ट किया हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसा कि आप पहले भी हमसे कह चुके हैं कि अंदर से हम सब जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत, तो कैसे खुद को बार बार ये समझाना जरूरी है कि ये कहीं गलत है, और उसे सिर्फ अंदर ना रह के बाहर भी लेके आए।
1: बाहर की दुनिया की जो आज हालचाल हम देखते, तो बस एक बार न्यूज़ ऑन करने की ही ज़रूरत है या एक न्यूज़पेपर ही उठाने की ज़रूरत है, और पढ़ते ही या देखते ही वो एंगर हमारे अंदर भी इतना क्रिएट हो जाता, क्योंकि हम देखते हैं एक देश दूसरे देश के अगेंस्ट, एक धर्म दूसरे धर्म के अगेंस्ट, एक शहर दूसरे के अगेंस्ट, एक टीम दूसरे के, यू नो, एवरीवेयर वी आर फाइंडिंग दैट कॉन्फ्लिक्ट, कि एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इतना ज़्यादा, और वो कॉन्फ्लिक्ट एक एंगर जेनरेट करता है। कहीं फैमिलीज के अंदर वो भी सारा दिन आज मीडिया में दिखाई देता कि फैमिली के अंदर ही ब्रेकडाउन है, तो चारों तरफ से एक नेगेटिव वायुमंडल तो है ही, लेकिन हमारा सारा दिन ध्यान बहुत ज्यादा उसकी तरफ होता कि बाहर क्या हो रहा है, और इस प्रोसेस में कहीं रुक कर अपने आप से पूछना होगा कि बाहर तो जो है तो है, दैट वी कैन डू व्हाट वी कैन डू अबाउट, लेकिन अंदर का क्या हालचाल है। बाहर बहुत एंगर है, बहुत नेगेटिविटी है, और वो देखकर हमें अच्छी नहीं लगती, और यू नो वी सिट डाउन एंड से ये दुनिया कहाँ जा रही है, यू नो व्हाट इज द वर्ल्ड हेडिंग टुवर्ड्स, समाज का क्या होगा, घर में लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, लेकिन अंदर क्या हालचाल है, यू नो, एंड हु विल आस्क दैट, वो मेरे से कौन पूछेगा। आई हैव टू आस्क माईसेल्फ कि अंदर नेगेटिविटी है या प्योरिटी है या पॉजिटिविटी है, कहीं ऐसा तो नहीं बाहर का एंगर इतना है जो मेरे अंदर भी उतना एंगर ही क्रिएट हो रहा है, तो आई नीड टू स्टॉप एंड चेक दिस कि मेरे अंदर क्या हालचाल है। कई बार क्या होता, हम जैसे हमने पहले भी बात किया, हम बुक्स तो पढ़ते हैं, इस तरह से प्रोग्राम भी सुनते या ट्रेनिंग सेमिनार्स अटेंड करते, सब कुछ करते हैं, और ये सारी चीजें हमारे सामने सत्यता को लाकर रख देती हैं, क्योंकि क्रोध इस पर अब कोई डिबेट करने जैसी बात नहीं है कि ये राइट है या रॉन्ग है। आई हैव टू आस्क मायसेल्फ कि ये मेरे लिए सही है या नहीं है, लेकिन सच जानने के बाद फिर भी उस पर काम नहीं करना, फिर भी कोई स्टेप्स नहीं उठाना जिससे आई कैन यू नो गेट रिड ऑफ इट, तो ये तो अपने आप से धोखा है।
0: लेकिन यही से शिवानी, बहुत से लोग यही इस ये भी एक कंफ्यूजन या जिस दौर में हम रह रहे हैं कि मुझे सच पता चल गया तो समझ गया, बस हो गई बात, कि मुझे इम्प्लीमेंट भी करना है कुछ कुछ, कैसे ये हो पाएगा क्या, और यही ये जो एक जो सो कॉल्ड अध्यात्म की हम बात कर रहे हैं कि आज जब मुझे समझ में, मुझे पता तो चल गया, हाँ ठीक है, मुझे भी पता है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, मैं मानता हूँ इस बात को, मैं मानती हूँ, तो फिर अब क्या करना है।
1: क्योंकि सच बहुत सिंपल है, गुस्सा क्या है वो भी बहुत सिंपल है, उसको ओवरकम करना है वो भी बहुत सिंपल है, लेकिन होता क्या कि जब सत्यता सामने आ जाती है तो वो एक शीशे का काम करती है, इट इज अ मिरर टू माय इंटरनल स्टेट, और वो सत्यता मुझे दिखाती है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम अंदर है, कि अंदर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे ऐसे मान्यताएं, बहुत सारी ऐसी बिलीफ सिस्टम, परसेप्शन, दृष्टिकोण ऐसा बन चुका है जिसने मेरे थॉट्स को उस डायरेक्शन में बनाना शुरू कर दिया है, तो अब अगर मुझे उसे चेंज करना है तो मुझे अंदर काफी सारा वर्क करना पड़ेगा, पर वो कहीं ना कहीं डिफिकल्ट लगता है.
0: Are we ready? That's what.
1: You know, वो डिफिकल्ट लगता है, and then we say, it's okay. I'm okay the way I am. You know, क्योंकि जहाँ परिवर्तन की और मेहनत की अंदर पे बात आती तो हम कहते नहीं जैसे हैं ठीक है, क्योंकि हमने कंफर्ट जोन क्रिएट कर दिया है.
0: तो पहले मुझे लगता है उसकी जरूरत ही नहीं है मुझे अंदर काम करने की. ये जो इससे
1: मुझे जरूरत नहीं है भी क्यों, क्योंकि हम अनकंफर्टेबल रहते हुए भी कंफर्टेबल बन चुके हैं. यू नो इट्स लाइक दिस कि सपोज ये कुर्सी कंफर्टेबल नहीं है, यू नो इट्स गिविंग मी अ लॉट ऑफ पेन, लेकिन रोज उस पर ही बैठे हैं तो बैठते बैठते इस अनकंफर्टेबल कुर्सी पर बैठने की भी आदत हो जाती है. एंड वो जो दर्द वो दे रही है उसको भी हम स्वीकार कर लेते हैं, बिकॉज आई डोंट हैव अनदर ऑप्शन, लेट्स से यू नो आई कांट चेंज माय चेयर, तो आई एक्सेप्ट दिस पेन एंड आई एक्सेप्ट दिस डिस्कम्फर्ट और इस पर ही मैं अपने आप को कंफर्टेबल कर लेती हूँ. आई से ओके एंड आई गेट यूज्ड टू सिटिंग ऑन दिस. तो इसी तरह वो जो कंफर्ट जोन हमने क्रिएट कर लिया, गुस्सा दर्द देता है, गुस्सा तकलीफ देता है अंदर, हमें पता है, लेकिन उसी के अंदर हमने अपने आप को कंफर्टेबल कर लिया कि ये ठीक है, दिस इज ओके. तो अनकंफर्टेबल में

0: बात हो रही होगी उस पर उनको गुस्सा आ जाएगा. न्यूज देखते हुए भी उनको उतना ही गुस्सा आएगा जितना उन लोगों को आ रहा है जिनके साथ वो अत्याचार हो रहा है. यू नो, इतना ज्यादा इमोशनल डिस्टर्बेंस है. थोड़ा सा बीच में आए तो उस तरह के लोग मिलेंगे जिनको उस बात से बहुत ज्यादा नहीं फर्क पड़ता कि दुनिया में क्या हो रहा है. दे विल लिसन एंड दे विल से ओके इट्स एक्सेप्ट. लेकिन उनके जीवन में, उनके नजदीक, उनके ऑफिस में और घर में जो छोटी छोटी बातें हो रही है उससे उनको काफी गुस्सा आ जाता है. और एक एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम पे वो लोग मिलेंगे जो इररिस्पेक्टिव ऑफ जो भी हो रहा है, एंड देन इट मींस जो भी, कुछ भी, चाहे बाहर चाहे उनके आसपास, उनको गुस्सा नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है. जिनको हम कहेंगे द इनलाइटेंड पीपल, दे विल नॉट लूज देयर कंट्रोल, दे विल नॉट गेट एंग्री. तो हर प्रकार के लोग हैं. अब मुझे अपने आप को उस ग्राफ के ऊपर ऑफ 1 to 10 मुझे अपने आप को रख कर देखना पड़ेगा कि वेयर एम आई. एंड देन देर आर सम काइंड ऑफ पीपल जो कहेंगे कि गुस्सा अगर नहीं किया तो ये सारी जो गलतियां हो रही हैं समाज के अंदर इसको ठीक कौन करेगा. तो उन्होंने जैसे अपने ऊपर ये जिम्मेवारी उठाई हुई है कि उनके गुस्सा करने से जो गलत हो रहा है वो सही होगा, जिसको आपने कहा राइटियस एंगर. यू नो, वो अपने एंगर को भी राइट जस्टिफाई कर देते हैं. तो इट्स नॉट फॉर एनीवन एल्स टू टेल मी व्हाट्स राइट और रॉन्ग. आई हैव टू आस्क मायसेल्फ कि मेरे लिए क्या, डू आई फील एंगर इज गुड फॉर मी? इफ यस, live on with it. Live on with it, but then don't complain. Don't say कि मुझे तो खुशी चाहिए, मुझे तो शांति चाहिए, मुझे तो प्यार चाहिए, मुझे तो सबके साथ बहुत अच्छे relationships चाहिए, मुझे एक बहुत अच्छा career चाहिए, because both these things साथ साथ नहीं चलेंगे.
1: ये coexistence नहीं हो सकता, peace और anger का coexistence. This is what we'll have to understand actually.
0: तो हमें चाहिए कुछ और, लेकिन हम comfortable इसके साथ हो गए हैं. It's like I'm sitting on this chair, I'm not even moving, और फिर इस पर बैठकर मैं complain भी करती रहूं, ये कुर्सी ठीक नहीं है, ये कुर्सी ठीक नहीं है. So you will say, get up, move, change your chair. It's so simple. लेकिन रहना भी गुस्से के साथ है, लेकिन मुझे शांति चाहिए, मुझे शांति चाहिए.
1: बिफोर वी मूव ओवर टू यू नो कि कौन कौन से किस किस तरह के गुस्से होते हैं, एक और बात मैं कहना चाहूंगी कि जो जैसे आपने कहा, एक वो लोग हैं जो कोई भी सिचुएशन आ जाए उसमें नाराज नहीं या गुस्सा नहीं होते हैं, लेकिन उससे पहले एक और भी ऐसे लोग हैं जो शो नहीं होने देते कि उन्हें गुस्सा है,
0: लेकिन वो गुस्सा तो हो रहे हैं.
1: वही वो एक और मेजर चीटिंग है कि कहीं ना कहीं वो कॉन्फ्लिक्ट अंदर जिसे इंटरनलाइज कर लेते हैं और उसको वो फिर कहीं ना कहीं किसी रूप में निकल रहा है.
0: वो सबसे पहले तो अपने शरीर पर निकलेगा, लेकिन इसका भाव ये भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस भी बिलीफ के साथ चलते कि अंदर नहीं रखना चाहिए इसलिए निकाल दो. यू नो, अगर मैंने अपना गुस्सा अंदर रख दिया तो वो मेरा नुकसान करेगा अंदर, तो इससे अच्छा आप, अगर आपने गलती की थी तो आप पे मैं वो गुस्सा निकाल
1: दूं. अल्टीमेटली बात ये आती है ना, अंदर ना बाहर, कहीं नहीं रखना चाहिए.
0: बट अगर हम उस तरह से उसको चलेंगे कि अंदर नहीं रखना है तो बाहर निकाल दो, तो हम बाहर निकालते ही जाएंगे, निकालते ही जाएंगे. वेयर इज इट गोइंग टू स्टॉप? यू नो, सो समवेयर, जैसे इस मेडिटेशन के करते दौरान हम जिस यात्रा पर चले, तो माय पर्सनल एक्सपीरियंस हैज बीन कि समवेयर यू हैव टू फर्स्ट स्टॉप आउटसाइड. आपको, क्योंकि उतना लेवल नहीं है हमारा एकदम से कि बिल्कुल मन में भी गुस्सा नहीं आए. अल्टीमेट स्टेज वो है कि थॉट में भी एंगर नहीं आएगा, लेकिन एकदम से हम सोचें कि वो वाली स्टेज अचीव हो जाए तो वो नहीं हो पाती है. आइडियली होता क्या है, यहाँ गुस्सा आता है और ये बाहर निकल कर आता है. अब अगर इसको हम नहीं रोक पाते कि यहाँ नहीं रोक पाते, एटलीस्ट हमें इसको यहाँ रोकना पड़ेगा. एक बार वो यहाँ रुकेगा बिहेवियर में, आप कॉन्शियस रहेंगे कि चाहे कोई कुछ भी बोले, चाहे कोई कुछ भी करे, आई शुड नॉट रिएक्ट. यू नो, एंड यू विल कॉन्शियसली कीप अटेंशन इन इट फॉर सम टाइम एंड यू विल सी दैट आप बहुत जल्दी उसको अचीव कर पाते हैं कि अगर आपने डिसाइड कर लिया आप नहीं रिएक्ट करेंगे तो आप रिएक्ट नहीं करेंगे. तो एटलीस्ट उतना नुकसान खत्म हुआ. तो बहुत सारी एनर्जी जो इस तरह से डिस्चार्ज होने वाली थी, रिलेशनशिप्स बिगड़ने वाले थे, वो रुक गया. देन इट्स अ जर्नी. तो नाउ नेक्स्ट स्टेज इज, ठीक है, मैंने बोला नहीं, मैंने कुछ गलत किया नहीं, लेकिन अब मुझे गलत सोचना भी नहीं है. देन आई विल वर्क ऑन द नेक्स्ट स्टेज कि अब चाहे कोई कुछ भी बोले, मुझे बुरा सोचना भी नहीं है. लेकिन अगर मैं इस प्ली को ले लूं कि जब भी मैं मुझे गुस्सा है मुझे बोलना तो चाहिए नहीं तो मेरा नुकसान हो जाएगा. देन इट नेवर स्टॉप्स, इट जस्ट गोज ऑन एंड ऑन.
1: बट देन वी हैव टू अंडरस्टैंड.

0: इफ वी हैव रीच्ड अ स्टेज वेयर जहां हम ओपनली गुस्सा नहीं कर रहे हैं, चुप हो गए हैं, उसके बावजूद भी हमारा सफर खत्म नहीं हुआ,
1: वो अभी भी गुस्सा,
0: मंजिल कहीं और है।
1: बिकॉज गुस्सा वो नहीं है जो बाहर आ रहा है, गुस्सा सबसे पहले वो है जो यहाँ क्रिएट हो रहा है। तो हम जिसकी बात कर रहे हैं वो ये है कि अंदर से वो इमोशन खत्म हो जाए, वो जो बात बात में डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है वो खत्म हो जाए, क्योंकि वो हमारे रिलेशनशिप्स पर भी अफेक्ट कर रही है, हमारे ऊपर अफेक्ट कर रही है और हमारे शरीर पर भी अफेक्ट कर रही है। बहुत सारी इस तरह से स्टडीज भी हुई हैं जिसमें ये बताया, और जो बहुत ऑब्वियस है कि अगर आपने कुछ चीज अंदर पकड़ कर रखी है, यू नो यू होल्डिंग अ ग्रज अगेंस्ट समबडी, या किसी ने आपके साथ कुछ किया और आपने वो पकड़ कर रखा है, आप तब तक हेल्दी नहीं रह सकते, क्योंकि आपके अंदर वो नेगेटिव थॉट्स जब तक चलते रहेंगे तो वो आपके शरीर को तकलीफ देते ही रहेंगे। एंड दिस वाज दिस रिसर्च डन इन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कि दे वर डूइंग अ प्रोजेक्ट ऑन फॉरगिवनेस। तो उस फॉरगिवनेस के प्रोजेक्ट पे उन्होंने कहा कि इट इज इम्पॉसिबल, नॉट इवन दैट इट्स डिफिकल्ट, लेकिन ये असंभव है कि आप खुश रहें और आप हेल्दी रहें अगर आपने किसी के अगेंस्ट कोई बात अंदर पकड़ कर रखी हुई है। टिल यू लेट गो, द डे यू आर एबल टू लेट गो, you will be. Now what happens is we want to be happy. See, this is where the irony comes. And yet humne kitni sari baatein pakad kar rakhi hui hain. Impossible. To fir puri yatra chalte rahenge chahiye ye aur pakad kar ye rakha hua. So it will never be possible.
0: Wahi again hum ye sochte hain ki ye dono cheeze coexist kar lengi, ya gussa aur shanti ikattha kar reh sakta hai.
1: Wo nahi sakta. Jab bhi hamare andar stress ya gussa is tarah se aata hai to hormones secrete hote hain, cortisol और एड्रेनालिन जो हमने देखा, और जैसे ही वो सिक्रेट होता है हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है। यू नो इमीडिएटली अगर आप देखो कि लेट्स से आप गाड़ी चला रहे हो और एक गाड़ी कोई बहुत नजदीक से आपसे चले जाए, एंड यू फील कि यू जस्ट मिस्ड एन एक्सीडेंट वेरी क्लोजली, उस क्षण अंदर क्या क्या हो जाता है, वो सारा बॉडी में, वो सारा सिस्टम में फ्लो हो जाता है। लेकिन ये कभी कभी होता है, तो कभी कभी होने से उसका बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता कि छोटा सा एक्सीडेंट होना था बच गया, अंदर हार्मोन क्रिएट हुआ लेकिन जस्ट फॉर अ फ्यू मिनट्स। लेकिन जब हम एंगर स्ट्रेस ये सारा दिन क्रिएट करते हैं, दीज आर लाइक एक्सीडेंट्स विच आर टेकिंग प्लेस
0: एवरी मोमेंट, यू नो लाइक आई थिंक
1: कॉन्स्टेंटली, और वो कॉन्स्टेंटली क्रिएट होने से वो केमिकल्स सारा दिन क्रिएट हो रहे हैं और कहीं ना कहीं फिर वो टॉक्सिन्स बन जाते हैं हमारे शरीर के अंदर, और फिर हमें बीमारियों का अलग अलग रूप ले लेते हैं, चाहे वो हार्ट अटैक है, हाई ब्लड प्रेशर है, इवन इम्यूनिटी सिस्टम हमारा क्रैश हो जाता है। तो इसमें अब दो राय कहाँ होनी चाहिए कि गुस्सा हमारे लिए अच्छा है या नहीं अच्छा है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। तो इसका हर एस्पेक्ट पे नुकसान हो रहा है। Why have we kept it with us?
0: लेकिन सिस्टर शिवानी अगर हम बात आम जिंदगी में देखें तो बहुत सी ऐसी प्लीज हैं जो जुड़ी हैं गुस्से के साथ, जिन्हें हम अपना बिलीफ सिस्टम में कह सकते हैं कि
1: एक्चुअली गुस्से को खत्म करने के लिए बहुत सिंपल है, सिर्फ सबसे पहले समझ लेना इट्स अनहेल्दी। यू नो जैसे स्मोकिंग इज डेंजरस, हानिकारक है, सिमिलरली एंगर इज हानिकारक है, मेरे लिए वो हानिकारक है।
0: इनफैक्ट वी शुड राइट इट, एंगर इज टॉक्सिक नाउ।
1: एब्सोल्युटली इट इज टॉक्सिक, यू नो इसीलिए तो वो पूरा जो डेंजर का साइन होता है दैट गोज विद एंगर ओनली, क्योंकि वो इतना ज्यादा नुकसान कर देता है हमारे में। तो तीन स्टेप्स में हम चल सकते हैं। एक, समझ ले पहले अच्छी तरह से, जब तक समझ नहीं आएगा आई विल नॉट वॉन्ट टू चेंज। तो सबसे पहले समझ ले कि एंगर इज एब्सोल्युटली अनहेल्दी, ये मेरे लिए हानिकारक है। दूसरा, ये मेरी जिम्मेवारी है, मेरा एंगर ये मेरी जिम्मेवारी है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी परिस्थिति या कोई भी व्यक्ति, ये मेरी अपनी क्रिएशन है, मेरी, किसी और की वजह से नहीं क्रिएट हो रहा, क्योंकि जब तक वो किसी और की वजह से क्रिएट हो रहा है आई कांट चेंज इट, बट व्हेन आई अंडरस्टैंड कि दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी देन आई हैव अ चॉइस, देन आई कैन डू समथिंग अबाउट इट। एंड थर्ड इज वो जो आपने कहा बिलीफ्स, जो मान्यताएं हमने पकड़ कर रखी हुई हैं जिसकी वजह से ये गुस्सा क्रिएट होता है, चेंज, लेट देम गो। जैसे ही बिलीफ सिस्टम चेंज हुआ गुस्सा आना खत्म हो जाएगा। तो तीन स्टेप्स पर चले, पहले तो समझ ले कि दिस इज अनहेल्दी फॉर मी, सेकंड, दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई कैन फिनिश इट, एंड थर्ड, what is the wrong belief system which needs to be changed, and then change it. Because हमने बहुत सारी beliefs पकड़ी हुई हैं, और उन beliefs की वजह से ही हमने anger को पकड़ा हुआ है. Belief गया, anger भी चले जाएगी.
0: Belief system की अगर हम बात करें तो जैसे कि आपने अभी भी कहा कि बहुत से belief systems हैं, तो उनपे आते हैं हम कि कौन कौन से ऐसे जो बिल्कुल हमें बिल्कुल गुस्से को जाने नहीं देते हैं हमारे पूरी जिंदगी से. उससे पहले ये जानना चाहूंगी कि कैसे हम उसे ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे,
1: बिलीफ को. तो अपने बिलीफ सिस्टम को कैसे चेंज कर पाएंगे? कुछ नहीं है, नॉलेज से. क्योंकि जैसे सपोज अभी तक मेरा एक बिलीफ सिस्टम था कि मेरा गुस्सा आपकी वजह से है. यू नो, नॉर्मल भी भाषा में अगर हम सारा दिन देखें, मेरा मूड तो बिल्कुल ठीक था, मैं बिल्कुल ठीक थी जब मैं ऑफिस में आई. उन्होंने बात ही ऐसी की कि मुझे गुस्सा आना ही था. तो आई वॉज लिविंग विद द बिलीफ सिस्टम कि मेरा गुस्सा इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ अदर पीपल. तो इसीलिए मैंने हर बार अपने गुस्से को जस्टिफिकेशन दे दी. थोड़ा सा रुक कर चेक किया कि उन्होंने जो कहना था वो तो किया, उन्होंने जो करना है वो किया. अब गुस्सा कौन क्रिएट कर रहा? इट्स मी. देन आई आस्क माई सेल्फ व्हाट्स द ट्रूथ. क्योंकि बिलीफ जरूरी नहीं है कि वो सच है. इट्स अ बिलीफ. And truth is when I work with it, I experiment with it and I experience it. Till then it's only a belief. ये एक मान्यता है कि औरों की वजह से गुस्सा create होता है. Right है या wrong है, we don't know. This I will have to experiment with myself. तो पूरे दिन को evaluate करें जितनी बार गुस्सा आया था, और check करें क्या उन्होंने आपके अंदर आकर वो गुस्सा create किया, या उन्होंने जो करना था वो किया, उसको लेकर आपने जो अंदर क्रिएट किया उससे गुस्सा आया. दिस विल नॉट हैव टू बी डन वंस, नंबर ऑफ टाइम्स. आप 8 बार, 10 बार, एक हफ्ते के लिए हर सिचुएशन में जब आपको गुस्सा आता है. गुस्सा डजंट नेसेसरली ऑलवेज मीन अ बिग, यू नो, गुस्सा छोटा छोटा छोटा छोटी छोटी इरिटेशन हो रही है, तो वो आप हर टाइम चेक करें. यू नो, लाइक सिंपल है कि लेट्स से कई लोगों को आदत है कि वो बैठ के यू नो अपने नकल्स को इस तरह से दबाते रहते हैं. अब कई लोगों को आदत है कि वो देखकर बहुत इरिटेशन होती है, राइट? तो इट्स लाइक ये मेरी चॉइस है, आई एम डूइंग दिस. अब इससे आपको इरिटेशन हो रही है. अब तक हम सोच रहे थे आप ऐसे कर रहे हो इसलिए मुझे इरिटेशन हो रही है. आई एम डूइंग व्हाट आई वांट टू डू, दिस इज व्हाट आई फील लाइक डूइंग. आई एम नॉट गेटिंग इनटू योर माइंड एंड टेलिंग यू गेट इरिटेटेड विद दिस व्हाट आई एम डूइंग. नो, यू आर चूजिंग कि यू डोंट लाइक दिस. तो इरिटेशन किसने क्रिएट की? आपने. क्या आप उसको फिनिश कर सकते हैं? Absolutely. The minute you realize this is my creation, it's over. Absolutely. So just work on this for 1 week. Every situation stop.
0: That's wonderful. What you're trying to say is ki hum ye keh rahe hain, आप ये कह रहे हैं कि गुस्सा मेरी वजह से ही अगर मैं क्रिएट करती हूँ, किसी और की वजह से नहीं होता. ये एक मान्यता, ये एक जो मान्यता है ये रॉन्ग बिलीफ है. लेकिन मैं तब तक उसे स्वीकार ना करूं जब तक मैं खुद एक्सपीरियंस,
1: कोई भी बिलीफ को नहीं स्वीकार करना. बिकॉज अदरवाइज अभी तक एक बिलीफ था कि औरों की वजह से गुस्सा क्रिएट हो रहा है, अभी हम एक और बिलीफ क्रिएट कर देंगे कि नहीं ये मेरी वजह से हो रहा है. कल फिर वो उसको कोई चैलेंज कर देगा. तो डोंट, you know, that's all about, you know, that's why we don't say just listen and read and start doing it. Experiment, do it, experiment it, experience ho gaya, then it's the truth. To ab aap usko experiment kare, usko sach nahi mane ki this is the truth. Lekin jab aapko usko anubhav ho jayega and you will realize this is the truth.
0: Okay, so this is again a new thing for us, you know, ki jo bhi jin bhi manyataon ko आप ये कह रहे हैं कि ये गलत मान्यताएं हो सकती हैं आपके लिए, क्योंकि वो गुस्सा आपके अंदर क्रिएट कर रही हैं, उन्हें हम जैसे ही गुस्सा आने लगे, दैट्स वंडरफुल एक्चुअली,
1: जस्ट स्टॉप एंड चेक,
0: खुद एक्सपेरिमेंट करके.
1: एब्सोल्युटली. जब 2 बार 4 बार आई विल रियलाइज कि आपने गुस्सा क्रिएट कर रहा है, ये मैं क्रिएट कर रही हूँ, नाउ आई चेंज माई बिलीफ सिस्टम. और जब मैंने उसको चेंज किया, एंड ये क्योंकि मैंने अनुभव किया, किसी के सुनने से या बोलने से नहीं किया, जब मैंने अनुभव कर लिया, नाउ दिस इज ट्रूथ फॉर मी. और जब ये सच, ये सत्यता की ताकत मेरे पास आ जाएगी, ये मुझे परिवर्तन करने देगी. अभी तक ये आपकी स्टेटमेंट है सिर्फ, यू नो, अगर कोई सिर्फ ये प्रोग्राम सुने और सोचे कि हाँ मुझे तो गुस्सा अपनी वजह से ही आता है, तो चलो फ्रॉम टुमारो आई विल चेंज, इट विल नॉट हैपन. परिवर्तन किसी और की वजह से नहीं आ सकता. परिवर्तन सिर्फ तब आएगा जब अंदर से there is that inner work, you listen to it, वो आपको समझ मिल रही है, but the work will have to be done. Inside. Experiment करें, बार बार रुकें, देखें, किसने क्रिएट किया, इट्स माय क्रिएशन, कितनी देर क्रिएट करके रखना, एक मिनट, 10 मिनट, एक घंटा, चूज एंड यू विल सी दैट यू हैव ऑल द पावर.
0: वंडरफुल. इनफैक्ट यही एक और जो मान्यता है कि एंगर इज गुड, यू नो एंगर इज गुड. तो यहाँ पे एक और फीलिंग भी हम चेक कर सकती हूँ मैं बार बार कि
1: व्हाट इज गुड अबाउट इट,
0: क्या मैंने गुड फील किया.
1: या आस्क, दैट्स ऑल इट्स ऑल अबाउट. सी सेल्फ अवेयरनेस क्या है, एवरी टाइम टॉकिंग टू योर सेल्फ. बहुत लोग बोल रहे हैं एंगर इज गुड, नाउ लेट मी आस्क माई सेल्फ व्हाट इज गुड. पूरा हो गया, सीन खत्म हो गया, गुस्सा कर दिया मैंने, जिसको डांटना था उसको डांट दिया, और चार लोगों को भी डांट दिया, सब कुछ कर लिया. नाउ स्टॉप, व्हाट इज गुड, पुट इट डाउन ऑन पेपर. अगर आप नहीं थॉट्स क्रिएट कर पा रहे, सिट विद अ पेन एंड पेपर, क्योंकि लिखने से फिर मे बी इट जस्ट फ्लोज, एंड राइट डाउन अच्छा क्या निकला इससे और नुकसान क्या क्या हुआ. फाइंड योर लिस्ट. मेरे को अच्छे वाली साइड पे तो पता नहीं क्या निकलेगा लेकिन, बिकॉज देयर इज नथिंग अच्छा, कुछ भी अच्छा नहीं निकल सकता.
0: मैं इसलिए बता पाऊंगी क्योंकि मैं खुद ये कर रही हूँ, क्योंकि ये एक बिलीफ है या व्हाटएवर इट इज, हमसे लाइक वी ऑल एक्सपीरियंस दैट कि गुस्सा करने से कम काम निकलता है. वी लिव ऑन दैट कि गुस्सा किए बिना काम नहीं हो सकता.
1: तो काम तो निकल गया, और अगर प्यार से कराते तो, अगर आप प्यार से कराते तो काम निकलता.
0: कोई नहीं सुनता. मतलब
1: आपके साथ कोई किस तरह से काम करवाए तो आपको अच्छा लगेगा. यू सी, इट्स जस्ट दैट वी डोंट हैव द पेशेंस. हमारे वो पेशेंस नहीं है कि हम प्यार वाला मेथड यूज करके देखें. एक्चुअली क्या हुआ, एवरीवन हैज गॉट यूज्ड टू दैट बिलीफ सिस्टम कि गुस्से से काम हो जाता है. अब अगर हमने किसी को एक बार कहा ये कर देना, उन्होंने नहीं किया, दूसरी बार कहा भैया कर देना, नहीं किया, तीसरी बार हमने थोड़ा सा जोर से बोल के कर दिया, और जैसे ही हमने जोर से बोलकर किया उस व्यक्ति ने कर दिया फटाफट. तो हमने कहा अरे वाह वेरी गुड, दिस मेथड वर्क्स. तो मैंने दो बार टाइम वेस्ट क्यों किया अपना, एंड क्योंकि टाइम तो है ही नहीं आजकल, वी आर ऑलवेज शॉर्ट. तो कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस यहाँ फिट होता जा रहा है कि नेक्स्ट टाइम मैं दो बार प्यार से फिर तीसरी बार गुस्से से नहीं बोलने वाला
0: हूँ, सीधे गुस्से से बोलूंगा.
1: एंड फिर एक बार ऐसे करते हैं, दो बार करते हैं, धीरे धीरे वो हमारा संस्कार बन जाता है. क्यों? क्योंकि किसी एक के साथ ऐसा हुआ था, हुआ एक के साथ था कि एक को प्यार से बोलने से उसने दो बार में नहीं किया, लेकिन वो करते करते करते वो मेरा तो संस्कार बन गया, एंड नाउ दैट संस्कार विल कम इन टू प्ले एवरीवेयर एंड विद एवरीबडी. विद एवरीबडी
0: हैबिट बना ली मैंने उसको.
1: मैंने हैबिट बना ली अपने आप की उसको. तो वो कहीं ना कहीं उनका तो कितना फायदा कर रही है वो नहीं पता, लेकिन अपना मेरा बहुत ज्यादा नुकसान कर रही है, क्योंकि एवरी टाइम हर काम कराने के लिए मैं अपने अंदर वो एड्रेनालिन, वो कॉर्टिसोल्स, वो हॉर्मोन्स, वो नेगेटिविटी, हार्ट बीट फास्ट, वो सब क्रिएट कर रही हूँ एक एक काम कराने के लिए.
0: शिवानी अगर ठीक है सब जगह मैं नहीं करूंगी, लेकिन कई जगह मुझे दिख रहा है कि चार बार बोलने पे भी नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूं?
1: असर्टिवनेस, अथॉरिटी. अथॉरिटी चाहिए. यस, अगर हम समझते हैं कि प्यार से बोलने से नहीं काम होता तो हमें अथॉरिटी चाहिए, लेकिन अथॉरिटी इज नॉट एंगर. टोटली डिफरेंट. एंगर इज वो कि जब अंदर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है, टर्मोइल, हम अपने ऊपर कंट्रोल खो देते हैं, हमारे अंदर से पूरा सिस्टम ऊपर नीचे हो जाता है. अथॉरिटी, हम बिल्कुल स्टेबल हैं, मुझे कोई गुस्सा नहीं आया हुआ है बिल्कुल भी अंदर, एंड फिर भी हम थोड़ा सा स्टर्नली, वो भी तब अगर आपको लगे कि प्यार से काम नहीं हो सकता, एक्चुअली इवन दैट्स नॉट नीडेड, प्यार से डेफिनेटली काम हो सकता है. ये हो सकता है आपको चार की जगह छह बार बोलना पड़ेगा, लेकिन इन द प्रोसेस आप क्या बिल्ड कर रहे हैं, बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स.
0: लेकिन एक्चुअली हो सकता है जिन हालात में हम रह रहे हैं कि वो सामने वाला व्यक्ति भी
1: यूज अथॉरिटी, वो भी इसलिए हो गया है. देखो ये सामने वाले व्यक्ति पे भी जो हम ब्लेम डाल रहे हैं, उनको भी किस चीज की आदत पड़ गई.
0: मैं कहना चाह रही थी कि सामने वाला व्यक्ति को भी आदत है कि मुझ पे चिल्लाएंगे तभी मैं काम कर दूंगा, कि भाई अभी एक चिल्ला,
1: क्योंकि जब हम बार बार बार बार चिल्लाते हैं तो सामने वाला भी ढीठ हो जाता है उसके ऊपर. हाँ ठीक है, जब चिल्लाएंगे तभी होगा. सो यू नो वी आर क्रिएटिंग दैट होल सिस्टम लाइक दैट, बट हमें ही उस सिस्टम को फिर से चेंज करना होगा. तो अगर प्यार से आपको लगता कि नहीं हो रहा है तो अथॉरिटी, लेकिन अथॉरिटी एंगर नहीं है. अथॉरिटी में आप पूरी तरह से स्टेबल हैं अंदर, आप सोच समझ कर एक एक शब्द बोल रहे हैं, आपका एक भी वर्ड रॉन्ग नहीं निकलेगा, सिर्फ आप थोड़ा सा स्टर्नली बोल रहे हैं, थोड़ा सा डिसिप्लिन करके बोल रहे हैं. एंड दिस इज समथिंग वी नीड टू यूज समटाइम्स विद चिल्ड्रन ऑल्सो. अ पेरेंट एंड अ चाइल्ड नीड्स टू यूज दैट, कि आपको थोड़ा सा असर्टिव होकर बोलना पड़ता है, बट नॉट एंग्री. एंगर इज नॉट नीडेड. लेकिन इसके लिए सबसे पहला बिलीफ सिस्टम जो तोड़ना पड़ता है वो यही है कि गुस्सा मेरी अपनी क्रिएशन है, इट्स मी. अभी तक बिलीफ था इट्स
0: सिचुएशन, द अदर पर्सन. गुड, वंडरफुल. एंड यू नो, अगेन ये बात सुन के हमें इसे अपना बिलीफ सिस्टम बना लेना ये भी जरूरी नहीं है.
1: नहीं, हर बार इसको एक्सपेरिमेंट करो, सारा दिन में ट्राई करो, आपको जो बोलना था आपने बोल दिया. सी इट्स लाइक दिस, यू वॉक इन एंड यू कम एंड से यू आर गुड फॉर नथिंग, दैट्स व्हाट यू से. तो आपने बोल दिया, अब मैं उस सेंटेंस को अंदर ले लेती हूँ और अपने आप को बोलना शुरू करती हूँ, इन्होंने बोला कि आई एम नो गुड, इन्होंने बोला आई एम नो गुड. नाउ आई लिसन टू दैट सेंटेंस, मेरा जो इमेज अपने साथ अपने बारे में अंदर है आई एम वेरी गुड, ठीक है, लेकिन आपने बोल दिया कि आई एम नो गुड, तो ये दोनों के साथ क्लैश हो गया. जहां वो क्लैश हुआ वो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ. इफ आई वॉन्ट टू मेंटेन माई स्टेबिलिटी आई कैन से इट्स ओके, इन्होंने वो बोला कि आई एम नो गुड. पहली बात, या तो ये मुझे पूरी तरह से जानते ही नहीं है, दूसरी बात ये फिर भी एंटाइटल्ड है अपने ओपिनियन से. इनके बोलने का मतलब ये नहीं होगा कि मैं बन जाऊंगी उस तरह से, लेकिन अब अगर मैं अपना आपा खो दूं देन तो आई एम रियली नो गुड, देन आई विल एक्चुअली बी प्रूविंग टू यू व्हाट यू आर सेइंग. सो यू से समथिंग टू मी दैट्स ओके, बट दैट डजंट क्रिएट द एंगर. उसको अंदर लेके जो मैं क्रिएट करती हूँ ना, इन्होंने ऐसा कैसे बोला, इन्होंने अपने आप को क्या समझते हैं, इन्होंने ऐसा, तो नाउ आई एम क्रिएटिंग दैट एंगर. अब वो कितना क्रिएट करना है, किस लेवल का क्रिएट करना है, कितनी देर का क्रिएट करना
0: है. Okay, लेकिन वो इतना रिएक्शन इतनी देर तक होता है ये हमें खुद ही नहीं पता, क्योंकि वो एक इंस्टेंट जो एक्चुअली एंगर है, जो रिएक्शन की बात है, वो इतना इंस्टेंट होता है कि मुझे नहीं मालूम कि मैं इतना देर लगा पाऊंगी अपनी अपने अंदर की जो कॉन्वर्जेशन, क्योंकि मे भी आदत नहीं है इस कॉन्वर्जेशन.
1: अगर वो अवेयरनेस हमने अदरवाइज प्रैक्टिस की होगी तो नेक्स्ट टाइम ये बहुत स्लो चल रहा है, देन वो अवेयरनेस में रहेगा कि हाँ इन्होंने कह दिया. अभी हम क्या कर सकते हैं, सपोज अभी हमने गुस्सा कर दिया, लेकिन शाम को जब हम बैठ के रिफ्लेक्ट करेंगे दैट टाइम चेक इट आउट, और आप देख लें और तब अपने आप को कंक्लूजन दे दें, उन्होंने गुस्सा नहीं क्रिएट किया था, उन्होंने जो बोलना था वो बोला था. तो टॉक टू योर सेल्फ, काउंसिल योर सेल्फ, उन्होंने जो बोलना था वो बोला था. गुस्सा किसने क्रिएट किया,
0: मैंने खुद.
1: तो उस टाइम शायद अभी नहीं याद आएगा क्योंकि नया नया प्रोसेस चल रहा है, लेकिन शाम को बैठकर उस पर वर्क करेंगे तो कल जब होगा तब वो याद आ जाएगा.
0: वंडरफुल सिस्टर शिवानी, एंगर के इस एस्पेक्ट की बात बहुत क्लियरली समझ में आई कि जिन भी रॉन्ग बिलीव्स को या जिन भी बिलीव्स को हम रॉन्ग या राइट समझते हैं, जो आप कह रहे हैं उसको भी ना मान के एक एक्सपेरिमेंट करते रहे, उसको एक सूत्र पकड़ के उस पर खुद अनुभव का जो हमारा एक सफर है उसे तय करते रहे और फिर देखें कि हम कहाँ खड़े हैं, क्योंकि अगेन काम अपने ऊपर करना जरूरी है. लेकिन आज ये जो पूरा हमारी श्रृंखलाएं चल रही हैं उसमें ये बात तो सामने आती है, जिस तरह से हमारा परिवार जुड़ा है, कि हम काम करने को तैयार हैं. शायद वो रास्ता नहीं मिल रहा था तो अब ये रास्ता हम जरूर पकड़ेंगे. सिस्टर शिवानी, आज की इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. ओम शांति.
1: ओम शांति.
0: जिस गुस्से को हम सही मानते हैं, हो सकता है वो सही हो अगर आपकी कसौटी पर खरा उतरेगा, क्योंकि हर बार की तरह बात यही कहेंगे कि जिस बिलीफ को लेकर हम चल रहे हैं वो सही है या गलत, ये भी हमें खुद तय करना है और उसके लिए अनुभव बहुत जरूरी है. आज तीन बातें हमारे सामने आई हैं कि सबसे पहले ये कि हम समझ लें कि गुस्सा अगर हम करते हैं या एंगर या क्रोध जो है वो किस तरह से ना सिर्फ हमारे मन को बल्कि शरीर को परेशान करता है, उसके लिए नुकसानदायक है. दूसरी बात ये, हम ये अभी तक मानते आए हैं कि गुस्सा कोई और क्रिएट करता है, किसी और के कारण मुझे आता है, लेकिन करने वाला मैं खुद हूँ, ये बात जानना बहुत जरूरी है. और तीसरी बात ये कि जो रॉन्ग बिलीव्स हैं या जो बिलीफ सिस्टम है वो सही है या गलत, ये भी हमें खुद तय करना है. सफर अभी लंबा है, लेकिन अगर हमने एक सूत्र पकड़ लिया है तो फिर सफर पर चलने को भी हम तैयार हैं. ये इंटरनल जर्नी यूं ही चलेगी. अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपका स्वागत. आप हमें ईमेल पर या फिर फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं.

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एंगर इज अ वेपन जिसको हमने हर परिस्थिति में यूज करना शुरू कर दिया है। व्हाट वी आर नॉट रियलाइजिंग दैट वेपन डजंट वर्क, इट्स नॉट प्रोवाइडिंग एनी रिजल्ट, लेकिन फिर भी हम उसी शस्त्र को बार बार यूज करे जा रहे हैं और उससे चोट दूसरे को नहीं लगती उतनी ज्यादा, वो भूल जाएगा। बॉडी के अंदर भी उसका इफेक्ट होता है, माइंड पर भी होता है। तो अगर हम ये याद रख लें कि ये एक हथियार है मेरे हाथ में जिससे मैं दूसरों को मारने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका किसी और पर कोई अच्छा इफेक्ट नहीं होने वाला है, वो सिर्फ मेरा ही नुकसान करे जा रहा है, तो हम उसको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली खत्म कर देंगे। बहुत ईजी है खत्म करना, इट्स जस्ट दिस अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। कि दूसरा, सबसे पहला निवारण यही होगा कि दूसरा मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, ये खुद मेरे हाथ में। तो आधा तो इसी से खत्म हो जाता है, क्योंकि अभी तक हमेशा कोई और मुझे गुस्सा दिला रहा। ये अंडरस्टैंडिंग ही अपने आप, क्योंकि मैं खुद से गुस्सा नहीं करना चाहूंगी जब मुझे समझ में आ गया कि उसका इतना डैमेज है, लेकिन मैं खुद से नहीं कर रही ना, आप मुझे दिला रहे हैं, तो देन आई फील कि नथिंग इज इन माई कंट्रोल। सो दैट इट सेल्फ चेंजेस सो मच ऑफ द पर्सपेक्टिव देखने का।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

वतन करा के श्रोताओं को हमारा नमस्कार। जिन लोगों ने सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जिहाद छेड़ी उनमें एक नाम है राजा राम मोहन राय का। अमूनन उन्हें भारत का प्रथम आधुनिक मानव कहा जाता है। वे एक विद्वान, अन्वेषक और समाज सुधारक थे। एक ओर वे वैज्ञानिक शिक्षा के पक्षधर थे तो दूसरी ओर पत्रकारों से सामाजिक उद्देश्यों के प्रति प्रतिबद्धता की अपील करते थे। आधुनिक युग के महत्व को समझते हुए उन्होंने वैचारिक क्रांति लाने का प्रयास किया था। उनका मानना था कि मानव सभ्यता का विकास आपसी निर्भरता द्वारा ही संभव है, अतः सभी राष्ट्रों को भाईचारे के साथ रहना चाहिए, चलना चाहिए उस डगर पे जो एकता की ओर ले जाती हो।

अनंत हरिमित्र का जन्म 1904 में हुआ था। विवेकानंद के साहित्य ने उन्हें क्रांतिकारी बना दिया और वे असहयोग आंदोलन में कूद गए। चौरी चौरा कांड की वजह से जब आंदोलन स्थगित हो गया तो वे क्रांतिकारियों के दल में शामिल हो गए। कलकत्ता का दक्षिणेश्वर बम कारखाना पुलिस के हाथ लग जाने पर उन्हें अभियुक्त बनाया गया और 10 साल के काले पानी की सजा सुनाई गई। उन्हें अलीपुर की सेंट्रल जेल में रखा गया, जहां का पुलिस अधीक्षक क्रांतिकारियों में फूट डालकर उन्हें पतित करने की कोशिश किया करता था। अनंत हरिमित्र और उनके क्रांतिकारी साथियों ने उससे छुटकारा पाने की योजना बनाई और 28 मई 1926 को जब वो जेल निरीक्षण के लिए निकला तो उसे मार डाला। क्रांतिकारियों पर नए सिरे से पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र नाथ चटर्जी की हत्या का अभियोग चलाया गया और उन्हें फिर फांसी की सजा सुना दी गई। 28 सितंबर 1926 को उन्हें प्रमोद रंजन चौधरी के साथ फांसी दे दी गई। फांसी से पूर्व रात्रि को वे वंदे मातरम गाते रहे और प्रातः हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। अजीब इत्तेफाक था, 28 सितंबर शहीद आजम भगत सिंह की जयंती का दिन था। ये वो क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपनी सांसों के एक एक तार से आजादी बुनी थी।

डॉक्टर एनी बेसेंट अग्रणी थियोसॉफिस्ट, महिला अधिकारों की समर्थक, लेखक, वक्ता और भारत प्रेमी महिला थी। उनके जीवन का मूल मंत्र था कर्म। वे जिस सिद्धांत पर विश्वास करती उसे अपने जीवन में उतार कर उपदेश देती। वे जन्म से आयरिश, विवाह से अंग्रेज और भारत को अपना लेने के कारण भारतीय थी। भारत की स्वतंत्रता के नाम पर वे अपना बलिदान करने को सदैव तत्पर रहती थी। वे भारतीय वर्ण व्यवस्था की प्रशंसक थी, परंतु उनके सामने समस्या थी कि इसे व्यवहारिक कैसे बनाया जाए ताकि सामाजिक तनाव कम हो। उनकी मान्यता थी कि शिक्षा का समुचित प्रबंध होना चाहिए और शिक्षा में धार्मिक शिक्षा का समावेश होना चाहिए। ऐसी शिक्षा देने के लिए उन्होंने 1898 में वाराणसी में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की। सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए उन्होंने ब्रदर्स ऑफ सर्विस नामक संस्था का संगठन किया। सन 1917 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा भी बनी। 20 सितंबर 1933 को वे ब्रह्मलीन हो गईं। उनकी अस्थियों को वाराणसी में एक विशाल जनसमूह ने अश्रुपूरित विदाई देते हुए गंगा मैया के हवाले किया था। सभी लोग भाव विहल थे। क्या बनारस, क्या अवध।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। संगीतकार थे उमेश वीनस, तापसी नागराज और मॉरिस लाजरस। आलेख और उद्घोषणा सुधानुपम, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय की। आज के इस कार्यक्रम में आपने जो गीत सुने उन्हें हमने लिया था स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा जन गर्जे श्रृंखला के अंतर्गत जारी ऑडियो एल्बम से।

पुनेरी आवाज 107.8 FM, वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
1: आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए, ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुणेरी आवाज 107.8, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम खुश बैठे हैं, हम प्यार से वो चीज खा रहे हैं जो हमें पसंद है, तो पूरी सिचुएशन तो हमारी एक्चुअली। सी द सिचुएशन इज ऑल अबाउट मी। मैं आराम से इस कुर्सी पे बैठी हूँ, मेरे सामने मेरी फेवरेट मिठाई है, मैं प्यार से खा रही हूँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट, हैप्पी हैप्पी। और सामने से कोई आया, किसी ने एक लाइन बोल दी। इस केस में लाइन इतनी बहुत ज्यादा कड़वी भी नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी ने कोई कड़वी लाइन भी बोल दी, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर ली, किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने डांट दिया। इस केस में तो कुछ भी नहीं था, इस केस में थोड़ा सा बोला कि आपको थोड़ी परहेज करनी चाहिए थी। हियर माई वर्ल्ड वॉज परफेक्ट, सब कुछ मेरे अनुसार था, लेकिन सामने से कोई आया, सामने से किसी ने एक लाइन बोली और वो एक लाइन ने मेरे पूरे वर्ल्ड को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। मन डिस्टर्ब्ड, फीलिंग्स डिस्टर्ब्ड, फिर वर्ड्स डिस्टर्ब्ड, काफी देर तक डिस्टर्ब्ड। मीनिंग वन लाइन, किसी की एक लाइन मेरी इस दुनिया को एक घंटे के लिए डिस्टर्ब कर सकती है। और ये भी हो सकता है कि अगली बार जब आप वो उनसे मिलेंगे तब भी आपको वो वाली बात याद आ जाएगी। सो इट विल नॉट इवन रिस्ट्रिक्ट टू दिस वन आवर, ये हो सकता है कि इट स्टेज ऑन माई माइंड and it comes back to my mind later on. शायद कभी जब वो लड्डू खा लिया तब वो बात याद आ जाएगी, या शायद वो बहन सामने कभी आ जाएगी तो वो बात याद आ जाएगी। मतलब my mind, ये हमारा एक्सरे है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: मनोबल तक, आस्था से अस्तित्व तक। पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। वेलकम सिस्टर।
2: ओम शांति।
1: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग शक्ति।
2: थैंक यू सो मच।
1: आज फिर से मैं कुछ पढ़ के सुनाना चाहता हूँ।
2: जरूर।
1: वी डू नॉट सी द वर्ल्ड थ्रू अ विंडो। वी डू नॉट सी द वर्ल्ड थ्रू अ विंडो बट थ्रू अ मिरर, आईने के द्वारा। Everything we discern is comparatively held to the vision with which we see ourselves.
2: Look at the line. We do not see the world through the window. We see the world through a mirror. Dunya ko hame khidki ke through nahi, ek aaine ke through dekh rahe hain. Dunya ko agar hame khidki ke through dekhte, खिड़की के थ्रू तो जो चीज जैसी है वैसी दिखाई देती है,
1: तो डिटैच होके देखते हैं,
2: जो चीज जैसी है वैसी दिखाई देगी थ्रू अ विंडो, बट इन द मिरर व्हाट डू आई सी? आईने में व्हाट डू आई सी? नो, आईने में आई सी ओनली माई सेल्फ।
1: वही तो मैंने आपसे,
2: आई कैन सी हियर इज द वर्ल्ड, सपोज दिस इज द वर्ल्ड, यू आर द वर्ल्ड फॉर मी, लेट्स से ये दुनिया है, मुझे इसको देखना है। अगर मैं आपको खिड़की के थ्रू देख रही हूँ, मतलब खुला है सब, आई कैन सी यू एज यू आर, लेकिन अगर बीच में एक आईना है, मिरर है, आईने में आई कैन सी ओनली माई सेल्फ, थ्रू वॉट आई सी माई सेल्फ देन आई सी यू, सो आई डू नॉट सी यू एज यू आर। ये बहुत डीप लाइन है और इसीलिए उसने लिखा कि बहुत कम हम लोगों को और सिचुएशंस को वो जैसे हैं वैसे परख सकते हैं। वी डू नॉट डिसर्न देम एज दे आर। जो लास्ट टाइम भी हम बात कर रहे थे कि जब हम औरों को चेंज करने के लिए कहते भी हैं, या औरों को उनकी आदत के लिए, संस्कार के लिए क्रिटिसाइज करते हैं, जो आपने कहा इतना भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं आता, एट दैट टाइम वी आर सीइंग पीपल थ्रू अ मिरर, नॉट थ्रू द विंडो।
1: और ये सारी बातों में आता है, कर्टेसी में, खाने में, उठने में,
2: हर चीज में,
1: ताकत में, सेहत में, मतलब कॉमन सेंस में, हर जगह बोल देते हैं इतना तो होना चाहिए।
2: कॉमन सेंस के लिए कितना इजीली बोलते हैं, इतनी भी कॉमन सेंस नहीं है।
1: कर्टेसी पे कम बोलते हैं क्या? कम से कम खड़े तो हो जाते,
2: yes.
1: नमस्ते झुक के नहीं करते, एटलीस्ट दिस बार चाय तो पूछ लेते, नहीं फिर भले पूछ तो लेते, मतलब हर चीज में। हेलो,
2: सब कुछ हम आईने के थ्रू कर रहे हैं।
1: किस किस तरह के प्रॉब्लम होते हैं, मेरे घर में एक झगड़ा हुआ था कि सम गेस्ट ऑफ माइन, उन्होंने मेरे भाई का फोन उठा दिया, तो उन्होंने सोचा कि अमेरिका से फोन कर रहा है मेरा भाई, तो उन्होंने जल्दी से फोन ला के मेरे को दिया, तो बोले फोन उसको वापस दो, वापस दे कि आपको इतनी कर्टेसी नहीं है, पहले हेलो हाय नमस्ते कुछ भी। तो वो बोल रही भाई मैं समझी आप अमेरिका से लाइटनिंग शाइटनिंग पता नहीं क्या आपके पैसे लगेंगे, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से।
2: कॉन्फ्लिक्ट का कितना बड़ा रीजन है, और इसीलिए जैसे वो लाइन थी कि इसीलिए हम लोगों को और सिचुएशंस को परख ही नहीं सकते, क्योंकि हम वो जो हैं जैसे हैं वैसे उनको हम नहीं देख रहे हैं, हम उनको आईने के थ्रू देख रहे हैं। आईने के थ्रू देख रहे हैं मतलब अपने संस्कार के थ्रू जब हम उनको देखेंगे, तो वो जो हैं जैसे हैं वैसे हम उनको नहीं देखेंगे। राजयोग मेडिटेशन से जब हम अपने माइंड को साइलेंट करना शुरू करते हैं, एक माइंड में टर्बुलेंस चल रही है, अपने संस्कार, ईगो का कभी, हर्ट का कभी, एंगर का कभी, इरिटेशन का, ये जब चल रहे हैं और इनके थ्रू हम दूसरों को देखेंगे, तो दूसरे जो हैं जैसे हैं वो कभी नहीं दिखाई देंगे।
1: धूलती चेहरे पर हम आईना पोछते रहे,
2: बिल्कुल
1: चेहरे पे अपना नहीं पोछ रहे हैं।
2: अब सेम चीज जब ये माइंड साइलेंट हो जाएगा, मतलब ये जो अक्वायर्ड संस्कार्स है वो साइलेंट है, तब सामने वाला जो है जैसे है वैसे दिखाई देगा। इसीलिए परखने की शक्ति कितनी इम्पोर्टेंट है। परखने की शक्ति अगर सही नहीं होगी तो निर्णय शक्ति सही नहीं होगी, निर्णय शक्ति सही नहीं होगी तो कर्म सही नहीं होगा, कर्म सही नहीं होगा तो भाग्य सही नहीं बनेगा। तो एक परखने की शक्ति में अगर गलती हुई कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, इस समय सही क्या है, गलत क्या है, एक छोटी सी गलती का इफेक्ट मेरे भाग्य तक पड़ेगा।
1: ये जो दोनों रिश्तेदार थे जो जिसने फोन मेरे घर पे उठाया और जिसने अमेरिका से रिश्तेदार ने फोन किया, अब मेरे हिसाब से दोनों राइट है। वो कहता है कि तुम छोटे हो उम्र में, पूछो तो सही भाई कैसे हो कैसे है, क्या हाल है। तो वो बोल रहे है कि नहीं, मैं तो ये समझ रही थी कि आपका पैसा लगेगा।
2: ये जो आपने अभी कहा ना कि मेरे हिसाब से दोनों राइट है, क्योंकि एक्चुअली दोनों राइट है, लेकिन किसको ये दिखेगा कि दोनों राइट है, जो दोनों से डिटैच्ड होके सिचुएशन को देख रहा है। लेकिन उन दोनों को नहीं दिख रहा कि दोनों राइट है।
1: पर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो बोलता है कि भी कम नमस्ते तो करो।
2: उनका दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू राइट है, लेकिन राइट परखने के लिए हम अगर डिटैच होकर देखते तो हमें ये भी दिख जाता कि दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू भी तो राइट है। दिस आपको कैसे दिख रहा है?
1: अगर सपोजिंग वो बंदा पूछ लेता कि बेटा तुम मेरे को आज हेलो तो करो, क्या बात है, नमस्ते भी नहीं किया, इतनी जल्दी क्या है।
2: जैसे हमें कोई ऐसा बिहेव करेगा जो हमारे संस्कार के साथ अग्री नहीं करता, हमारी ईगो हर्ट हो गई, हम रिएक्ट कर गए ना। जब रिएक्ट कर गए तब तो एनर्जी सारी चेंज हो गई उसके बाद,
1: रोती हुई है मैं,
2: क्योंकि हमने यहाँ थॉट क्रिएट कर लिया वो गलत है। द मिनट आई एम सीइंग अ संस्कार विच इज डिफरेंट फ्रॉम माइन, माय संस्कार सेज कि जिसने फोन उठाया उसको प्यार से पहले बात करनी चाहिए, विश करना चाहिए, कर्टेसी। माय प्रोग्रामिंग इज फिक्स्ड, तो मेरी प्रोग्रामिंग के थ्रू ही मैंने उनको देखा, आईने के थ्रू देखा, तो मैं ये देख ही नहीं पा रहा कि सामने वाले ने इसलिए बात नहीं की क्योंकि उसका नजरिया क्या था कि अमेरिका से फोन है, वाई टू वेस्ट देयर पर मिनट एनी। आप उस सिचुएशन के अंदर नहीं है, यू नो, एक होता है सिचुएशन के अंदर घुसे हुए और एक है सिचुएशन से साक्षी है। वो दो लोग सिचुएशन के अंदर हैं। अब एक है जिन्होंने फोन किया, आपने कहा उनको उस बच्ची ने विश नहीं किया तो वो उनकी ईगो हर्ट हो गई, एक। फिर जब उन्होंने डांटा तो वो बच्ची की ईगो हर्ट हो गई तो वो रोते हुए आई, उसने भी तो उनका नजरिया नहीं समझा ना, दोनों ने
1: नहीं समझा,
2: जोर से डांटा ना।
1: अब जरा इतनी भी अकल नहीं है तो
2: हाँ, लेकिन वो बच्ची भी, उसने भी तो वो नजरिया नहीं देखा ना कि हाँ इन्होंने इसलिए डांटा कि मैंने विश नहीं किया इसलिए डांटा। द पावर टू बी एबल टू सी द अदर पर्सन पर्सपेक्टिव, इम्पोर्टेंट इज वी आर नॉट एबल टू सी द अदर पर्सन पर्सपेक्टिव, वी कैन सी ओनली वन पर्सपेक्टिव, सिर्फ एक नजरिया।
1: जिसे फोन उठाया उसको क्या समझ में आया, क्यों झाड़ रहा है मुझे।
2: जब हमें किसी ने कुछ कहा या किया तो हमें उतना पॉज होना पड़ेगा कि इसके पीछे इनका क्या रीजन, पर्सपेक्टिव या इंटेंशन था। जब तक हम वो नहीं देखेंगे हम ना व्यक्ति को ना परिस्थिति को परख पाएंगे, इसीलिए तो वो खिड़की खुली नहीं है। खिड़की नहीं खुली ना
1: मिरर के थ्रू,
2: मतलब सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव के थ्रू, सिर्फ उस आईने के थ्रू ही हम देख सकते हैं सबको। बहुत सारी, सारा दिन में हमारे से छोटी छोटी गलतियां इसलिए हो रही हैं क्योंकि हम सब
1: छोटी नहीं हुई ना, ये बात इतनी बड़ी बाद में,
2: लेकिन ये बात
1: वो जब वो घर आए तो बात भी नहीं करी है। महीनों चला इसको कि बोलती मुझे आज तक किसी ने इतनी जोर से नहीं डांटा।
2: दोनों तरफ नजरिया नहीं देखा, दूसरे के संस्कार को नहीं समझा, फिर उसके बाद ईगो को हील नहीं कर पाए, बात को लेट गो नहीं कर सके। मैं लंबा चलता है, चीज इतनी होती है, इतनी सही नहीं परखी तो फिर बाद में निर्णय के लिया इनसे बात नहीं करनी, अभी जल्दी जल्दी ऐसे डांटते हैं। ये कर्म बदल गया, भाग्य बदल गया। ये सारा दिन में अगर हम चेक करेंगे ना तो पता नहीं कितनी लंबी लिस्ट निकलेगी कि जो हम ये कितनी बार ऐसा करते हैं। इसीलिए जितनी पावर्स हमने अभी तक देखी, पावर टू लेट गो, ये सब जो पुरानी बातें हुई बीत गया, लेट को छोड़ना है।
1: पावर टू टॉलरेट,
2: फिर पावर टू टॉलरेट, सहन शक्ति कि दूसरे के संस्कार को एक्सेप्ट करना। तीसरा, एडजस्ट करने की शक्ति कि समाने की शक्ति। लेकिन ये तीनों चीजें भी करने के लिए जो चौथी शक्ति, वो ये वाली शक्ति है, परखने की शक्ति। मीन्स राइट रॉन्ग, सही गलत, हम बचपन से सीख रहे हैं सही गलत की परख होनी चाहिए। परखो तो सही क्या था, गलत क्या था, सच क्या है, झूठ क्या है, परख के फिर निर्णय लो। वी हैव हर्ड दिस सिंस चाइल्डहुड, लेकिन जो हम पहले परखने की शक्ति बोलते थे दैट वॉज अ लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग कि सही क्या है गलत क्या है देखो तो नो बट अ लॉजिकल स्पिरिचुअलिटी जो हमें सिखाती है राजयोग मेडिटेशन से जो हम अपने पर वर्क करते हैं और हर एक अनुभव भी करेगा उसको कि जितना माइंड थोड़ा थोड़ा साइलेंस की तरफ साइलेंस मतलब ये क्लटर जो नॉइज है ये कम होने लगती है हम अपने ओरिजिनल संस्कार की तरफ जाना शुरू करते हैं तो जो परखने की शक्ति इमर्ज होती है वो एक आउटवर्डली परखने की शक्ति नहीं होती है कि लॉजिकली राइट क्या है रॉन्ग क्या है नॉलेज क्या कहती है राइट क्या है रॉन्ग क्या है लेकिन वो होती है एक इनेट अंदर से एक जो इनर वॉइस जिसको कहते हैं जिसको हम इंट्यूशन कहते थे नहीं जब कहते अंदर की आवाज कहती है ये राइट है ये रॉन्ग है
1: अंदर वाला तो हमेशा मुझसे बात करता रहता
2: है ना
1: और कई बार बोलते है मत कर मत बोल और मैं हमेशा फंसा
2: फंसा मतलब अगर नहीं माना तो फंसा
1: मैं कई बार फंसा बाय नॉट लिसनिंग टू माय अंदर वाला
2: नॉट लिसनिंग
1: सिस्टर एक बार मैं लोनावला जा रहा था अपने फार्म हाउस तो अंदर वाला बोला चाबी तो ले लो तो मैं ऐसा हाथ बढ़ा मैंने क्यों माली है उसके पास चाबी है वहाँ सब खाना पका के देंगे वहाँ गया तो मालिक के घर में किसी की डेथ हो गई वो गांव चला गया
2: जिसको हम अंदर की आवाज कहते हैं ना वो एक परखने की शक्ति है जो अक्वायर्ड बातों से नहीं लोगों के ओपिनियन के आधार से नहीं जो इस समाज में रहते हुए जो बिलीफ सिस्टम्स हमने बने उसके थ्रू नहीं परखता लेकिन जो आत्मा की इनेट विजडम है आत्मा को जो अंदर से पता होता है कि सही और गलत क्या है नहीं कई बार हम कहते हैं मुझे अंदर से मालूम है कि ये सही है मेरे लिए मुझे अंदर से मालूम है ये गलत है वो जो आवाज आती है वो जो राइट और रॉन्ग हमें बताएगा वो हमेशा राइट निकलेगा इट विल ऑलवेज बी राइट फॉर अस बट नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज स्टार्ट यूजिंग इट मोर एंड मोर
1: विवेक मेरा बेटा और मैं एक अपने लिए लैंड लेने गए थे तो उसके नंबर के लिए विवेक पूछ रहा बोलने लगा और मैं कि हम लोग वास्तु वाले को बुला लें उसको पूछ ले तेरे अंदर वाला क्या बोल रहा है डैडी आई लव इट डैडी मुझे अच्छी लगी मैंने मेरे को बहुत अच्छी लगी ना नंबर पूछो ना वास्तु पूछो तुम और मैं दोनों फंसेंगे क्योंकि वो कुछ बोलेगा ये कुछ बोलेगा ये हाथ से चीज चली जाएगी
2: सही बात है
1: आज तक हमको इतना सुख है उस प्रॉपर्टी से
2: वन इज अक्वायर्ड नॉलेज एंड वन इज द इनेट नॉलेज दैट द सोल हैज
1: दिस इज ब्यूटीफुल आपने मुझे याद दिला दिया अंदर
2: सही और गलत की जो आवाज जो हमें पता है क्या सही है क्या गलत है लेकिन वो जैसे आपने कहा ना अभी जो जब माइंड क्लटर्ड में होता है तो हमेशा बाहर ढूंढता है सही क्या है गलत क्या है इससे पूछे ये करे इधर पढ़े उधर चेक करे अगर हम सिर्फ 2 मिनट साइलेंस में बैठ जाए सिर्फ 2 मिनट हर आत्मा को हर बात का आंसर पता है We don't need to find out anything from anyone or anywhere. Every soul knows the answer to every question, every issue and every problem in their life.
1: You're so right. ये practically मैंने किया sister. विवेक को किसी ने बोला आप member of parliament की youngsters की जरूरत है आज आप क्यों नहीं किसी party से ticket लेके लड़ते that you're so good in speech. तो मेरे से वो advice लेने आया मैंने कहा काम करो बाबा के सामने बैठो मंदिर में बैठो मेडिटेट करो और अंदर वाले से पूछो आपको जवाब आएगा
2: बस
1: वो गया ही नहीं
2: एक बार परखा सही फिर निर्णय लेना इज इजियर इम्पोर्टेंट तो वो परख की शक्ति राइट होनी चाहिए ना तो जितना आत्मा इस इनेट से अब आंसर निकालने शुरू करेगी हर चीज में इवन अब अगर जब हमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है दो लोगों के बीच जैसे हमने देखा कि दूसरे का संस्कार हम क्यों नहीं परख पा रहे दूसरे का संस्कार क्यों हम दूसरे को अपने संस्कार के थ्रू देख रहे हैं क्योंकि उस टाइम हम इनेट से कनेक्टेड नहीं है हम ईगो से कनेक्टेड है हाँ
1: क्यों इनेट से
2: हम इनेट से कनेक्टेड नहीं है ना अगर हम इनेट से
1: कनेक्टेड हो या नहीं हूँ आप मुझे कुछ भी बोलते जाएंगे तो मैं इनेट से कनेक्टेड हो नहीं हूँ आप बदतमीजी करोगे तो
2: वाइज सोल कौन सी है जो आत्मा अपनी विजडम से कनेक्टेड होगी आप देखो जब हम महात्माओं के पास जाते हैं उनके साथ कोई गलत भी व्यवहार करता है
1: वो तो मैंने देखा लेकिन मैं महात्मा नहीं हूँ ना
2: महात्मा नहीं हो एक मिनट
1: हम तो
2: महात्मा नहीं हो मैं दिव्य आत्मा नहीं हूँ मैं संत आत्मा नहीं हूँ उस टाइम
1: क्या करना है
2: उस टाइम मैं नहीं हूँ क्योंकि उस टाइम मैं अपनी ओरिजिनलिटी से डिस्कनेक्टेड
1: हूँ आप Let us talk to people like me. आप बीच में महात्मा मत लाइए ना. महात्मा तो करता ही है. मैंने देखा हुआ है, एक मेरे सामने जगत गुरु के आदमी इतना बोला. उन्होंने सिर्फ बोला, आप शायद इससे गलत समझ रहे हैं, ये बात सत्य नहीं है.
2: पहली बात तो हम जो हम बार बार ये विक्टिम फीलिंग क्रिएट करते हैं ना कि हम तो संत आत्मा नहीं है,
1: इसमें विक्टिम की बात नहीं, सिर्फ प्रैक्टिकल है. आप यही चीज जो उसने जगत गुरु से बोलता ही जा रहा था, बोलता मैं सुन के मेरा मन करता अभी मारूं, और वो देख रहे हैं बोलते शायद नहीं, आपके ना आपको मिसअंडरस्टैंडिंग होगी.
2: तो अब वो संत आत्मा उस क्षण उस सीन में ही लेकर आते हैं कि एक व्यक्ति आया, ठीक से नहीं बात की, अब्यूजिव लैंग्वेज, रॉन्ग लैंग्वेज यूज की. यहाँ वो संत आत्मा बैठे हैं, यहाँ आप बैठे हैं, वो शांत थे.
1: मैं तो बहुत शांत
2: हो रहे थे. ओके, नाउ व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द टू सोल्स ओनली एट दैट टाइम? आप में और उनमें उस समय क्या फर्क था?
1: वो महात्मा थे, मैं एक्टर था.
2: महात्मा थे, मैं एक्टर था, मतलब क्या?
1: मतलब है?
2: महात्मा कोई रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है.
1: तो फिर
2: कोई
1: क्या?
2: प्रोफेशन थोड़ी है कि वो महात्मा थे, मैं एक्टर था. महात्मा कोई प्रोफेशन थोड़ी है. महात्मा है मतलब
1: क्वालिटीज तो है उनमें,
2: है मतलब डेवलप की
1: ओरिजिनलिटी भी है, काम भी है उनका, और उनको
2: काम नहीं है.
1: महात्मा को प्रैक्टिस भी तो होती है ना.
2: प्रैक्टिस तो हम भी कर रहे ना. सी, ये सब प्ली देके अपने आप को छुड़ाना नहीं है उस पुरुषार्थ से, वो महात्मा थे, मैं एक्टर था. नहीं, वो आत्मा है, मैं आत्मा हूँ. वो आत्मा उस क्षण अपनी ओरिजिनलिटी से कनेक्टेड थे, मैं आत्मा उस क्षण अपनी ओरिजिनलिटी से डिस्कनेक्ट होके अपने ईगो में था. नहीं सिंपल. आपने कहा हम संत आत्मा नहीं है, हम सब संत आत्मा है. परमात्मा हमें कहता है आप सब ओरिजिनली ब्यूटीफुल प्योर दिव्य आत्मा हो. सिर्फ संत आत्मा भी नहीं हो, दिव्य आत्मा, डिवाइन सोल, देवी देवता. देवी देवता मतलब डिवाइन आत्मा. हर आत्मा वो है, डिविनिटी. संत आत्मा प्रोफेशन नहीं है. आप एक्टर हैं इसका मतलब ये नहीं है कि ईगो होनी चाहिए और आपको ऐसे
1: ईगो होनी चाहिए. नहीं बोला मैं एक्टर हूँ, महात्मा नहीं हूँ, तो दोनों में डिफरेंस है.
2: मैं एक्टर हूँ इज अ प्रोफेशन.
1: तो क्या हुआ?
2: तो मैं एक्टर हूँ इज अ प्रोफेशन.
1: महात्मा तो
2: इज नॉट अ प्रोफेशन.
1: तो
2: महात्मा हूँ. एक महात्मा एक्टर बन सकता है?
1: महात्मा का बिहेवियर.
2: एक महात्मा एक्टर बन सकता है?
1: क्यों नहीं बन सकता?
2: सिंपल, मतलब आत्मा महान है, प्रोफेशन कोई भी हो. ऐसा नहीं है कि मैं एक्टर हूँ तो ईगो होना इज फाइन.
1: सही बात है, कई महात्मा तो मर्डर भी करते हैं.
2: हाँ, दैट्स इट, राइट. सो इट्स नॉट अबाउट हमने कौन से कपड़े पहन लिए.
1: आपका पॉइंट समझ में आया.
2: हमने कौन से कपड़े पहन लिए, हम आश्रम में रह रहे हैं, जंगल में रह रहे हैं, या एक बहुत बड़े बंगले में रह रहे हैं, इट डजेंट मैटर. महात्मा इज नॉट अ रोल, महात्मा इज नॉट अ प्रोफेशन. महात्मा मीन्स,
1: रिपीट करेंगे बहुत सुंदर,
2: महात्मा मीन्स वो आत्मा,
1: वो आत्मा
2: जिसने अपनी महानता को, मतलब अपनी डिविनिटी को, अपनी ओरिजिनलिटी को इमर्ज किया है. फिर उसके बाद चाहे वो एक्टर का प्रोफेशन है या बिजनेसमैन है, वो फादर है, वो कुछ भी हो सकता है.
1: यू सर राइट. अभी मेरे बात समझ में आई, क्योंकि अब मुझे थॉट आया कि मैं कई महात्माओं को जो ये रोल करते हैं लेक्चर देने का, रिलीजियस एक्स्ट्रा जो भी है, वो लोगों को मैंने गुस्से में भी देखा है.
2: yes.
1: लड़ाई करते हुए भी देखा है.
2: yes.
1: एकदम लो लेवल की बातें भी देखी है.
2: yes.
1: पैसों के लिए भी उनको ग्रीड देखा है.
2: बिल्कुल.
1: तो you're right. तो
2: विच इज ओके. अगेन, हम यहाँ जजमेंटल
1: तो
2: नहीं.
1: अब मैं एक्टर और उसको नहीं करूंगा.
2: बट यहाँ हम उनके बारे में भी जजमेंटल नहीं हो रहे, ठीक है? वी आर नॉट हियर टू बी जजमेंटल अबाउट एनीबडी. वी आर हियर टू अंडरस्टैंड कि आत्मा, एवरी सोल, एंड एवरी सोल मीन्स एब्सोल्यूटली एवरी सोल ऑन दिस प्लैनेट. परमात्मा ने कहा हर आत्मा मीन्स हर आत्मा, चाहे इस समय वो कुछ भी कर रहे हैं. एंड कुछ भी कर रही है मीन्स कुछ भी कर रही है. कुछ भी. अगर आज कोई आत्मा निमित्त बनती है मर्डर करने के, टेरर क्रिएट करने के विश्व के अंदर, वो आत्मा भी ओरिजिनली, वो आत्मा भी ओरिजिनली बहुत ब्यूटीफुल एंड प्योर आत्मा है. लेकिन इस समय किसी कारण से जो कंडीशनिंग हुई, जो सिखाया गया, जिस प्रभाव में आए, जो भी रीजन, डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, अपनी ओरिजिनलिटी से कम्प्लीटली डिस्कनेक्टेड. वो एक एक्सट्रीम है कि ओरिजिनलिटी से इतने डिस्कनेक्ट हो जाते हैं कि हम ऐसा कुछ कर्म करने लगते हैं. एक है हम सब लोग, लेट्स से मेजोरिटी, जो अपनी ओरिजिनलिटी से उतना डिस्कनेक्टेड नहीं है कि हम किसी के साथ ऐसा मर्डर करें या कुछ करें, लेकिन हम ओरिजिनलिटी से थोड़ा डिस्कनेक्टेड हैं, तो हम गुस्सा करते हैं और ये सब सब कर सकते हैं, विच इज ऑल्सो नॉट आर ओरिजिनल. और एक ऐसी सेट ऑफ आत्माएं हैं जो अपनी ओरिजिनलिटी में बहुत ज्यादा रहते हैं, जिनको फिर हम लेबल करते हैं नॉट बिकॉज ऑफ व्हाट दे वेयर एंड हाउ दे लुक, बट बिकॉज ऑफ हु दे आर, कि वो आत्मा संत आत्मा है. जरूरी नहीं है जो संन्यास करते हैं, आश्रम में रहते हैं, या जो आपने कहा वर्कशॉप्स कराते हैं, वो संत आत्माएं होते हैं. आपको सारा दिन में चलते फिरते आपको ऐसी आत्मा मिलेगी, आपको कोई गेट पे एक सिक्योरिटी गार्ड मिलेगा, कोई आप रेस्टोरेंट में जाएंगे आपको जो खाना परोस रहा होगा, आपको उससे मिलकर ऐसी एक वाइब्रेशन आएगी, आप कहेंगे संत आत्मा है ये. बिल्कुल आएगा कि नहीं आएगा?
1: लोग तो यहाँ तक बोलते, मैं किसी गाय को हाथ लगाने वाला था तो मैंने पूछा ये मारती तो नहीं है, तो बोले नहीं, तो एक तो बिल्कुल संत है.
2: तो संत मतलब किसको हम संत लेबल करेंगे?
1: जिसको मतलब
2: जो आत्मा अपनी ओरिजिनलिटी से ज्यादा कनेक्टेड है, मतलब जो आत्मा शांत रहती है, प्यार करती है, अनकंडीशनली हमें एक्सेप्ट करती है, जिसकी वाइब्रेशन. और किसको बोलते हैं संत? छोटे बच्चे को.
1: Friendly child.
2: छोटे बच्चे को जिसकी इतनी प्योरिटी है, इतनी डिविनिटी है, विच मीन्स इट कैन बी एनीबडी. नाउ नॉट, इट्स नॉट गोइंग टू बी पीपल जिनके पास सिर्फ टाइटल है कि वो संत आत्मा है, ये 100% है. ना हमें ये सोचना है कि जिनके पास ये टाइटल है कि ये संत आत्मा है वो सारे परफेक्ट होने चाहिए, वो भी नहीं हमें देखना है. क्योंकि आज क्या होता है, ऐसा देख के फिर हम कई बार डिसइल्यूजन हो जाते हैं, हम परखने की शक्ति रॉन्ग उस टाइम यूज करते हैं. क्योंकि बहुत लोग आजकल कहते हैं ओ ये लोग भी ऐसे करते हैं, तो फिर हम क्या, बट वाई आर वी कंपेयरिंग विद एनीबडी, वाई आर वी जजिंग एनीबडी, लेट्स हैव नॉलेज. नॉलेज ये कहती है कि हर आत्मा प्योर है, राइट? हर आत्मा अपनी प्योरिटी से अलग अलग मैग्नीट्यूड में डिस्कनेक्ट हुई है, कोई थोड़ा, कोई ज्यादा, कोई बहुत ज्यादा, लेकिन हर आत्मा के पास वो पावर है कि वो अपनी ओरिजिनलिटी पे वापस जा सकती है. कोई आत्मा हो सकती है घर गृहस्थ में रहती है, सारा दिन बिजनेस कर रही है, कारोबार कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन अपनी ओरिजिनलिटी से बहुत कनेक्टेड है, तो वो अपनी डिविनिटी को अपने डे टू डे कर्म में रेडिएट करती है. कोई आत्मा हो सकती है कि वो आश्रम में सेवा करती है, कहीं भी पूरी दुनिया में, लेकिन वो आत्मा अभी जर्नी पर है, वो अभी अपनी ओरिजिनलिटी से उतनी कनेक्ट नहीं हुई है, वो वर्क कर रही है अपने पर, मेहनत की, लेकिन हुई नहीं है. तो हमें ऐसे को देखकर डिसइल्यूजन भी नहीं होना है, जजमेंटल भी नहीं होना कि ऐसे आश्रम में रहते हैं, सब कुछ छोड़ दिया, संन्यास किया, फिर भी गुस्सा करते हैं. नो, इट्स ओके, दिस इज कंपैशन, दिस इज अंडरस्टैंडिंग द अदर पर्सन्स पर्सपेक्टिव. एंड उससे क्या होगा, ना हम उनके प्रति जजमेंटल होंगे और ना हम अपने को डिसएम्पावर करेंगे.
1: संत के जो आश्रम खोल के बैठे रहते हैं उनको गुस्सा करके तो देखता भी हूँ और बोलता भी हूँ ये संत थोड़ा ही है.
2: हमें किसी के ऊपर जजमेंटल नहीं होना है, हमें हर आत्मा की यात्रा पता नहीं है. आज अगर आप मुझे देख रहे हैं, सपोज ना आई एम ऑन दिस जर्नी, दिस जर्नी इज अ वेरी लॉन्ग जर्नी. ऐसा नहीं है आज डिसाइड किया तो ये ठीक हो गया, आज डिसाइड किया तो ये परफेक्ट हो गया. नो. अब आज अगर मैं गुस्सा कर रही हूँ यहाँ एंड आप कहें, फिर फायदा क्या है, आप इतना सुना रहे हैं और आप ही गुस्सा कर रहे हैं.
1: मुझे बोलते हैं कि आप शिवानी दीदी के साथ इतने सारे सीरियल किए और छोटी सी बात पे आपको गुस्सा आ गया, तो फायदा क्या हुआ जाके?
2: हाँ.
1: मुझे बोलते हैं,
2: राइट?
1: तो दे आर राइट.
2: हमें ये चेक करना है
1: सिस्टर, इट इज इम्पॉसिबल. देखिए, मैं किसी महात्मा को देखूं गांजे पी रहा है, मैं किसी को देखूं सिगरेट पी रहा है, किसी को देखूं मैं खराब काम कर रहा है, किसी को देखूं मैं लालची कर रहा है, तो मैं चुप रहूं और बोलूं हा हा हा, ऐसे तो होता ही है. ऐसे पॉसिबल है? एवरीबडी हैज टू प्ले द रोल. हाँ, तो फिर आपने, आप कितने एपिसोड में बोला आपने ड्यूटी करनी चाहिए?
2: हमारी ड्यूटी, माँ करेगी, पहली ड्यूटी है कि हमें दूसरे के प्रति जजमेंटल और क्रिटिकल नहीं होना है।
1: हम जजमेंट कहाँ करें, परखने की शक्ति जो आप बोल रहे हो वो परख रहा हूँ मैं।
2: हमें उनसे कुछ सीखना है, कुछ लेना है या नहीं लेना है, आवर चॉइस, वो परखना है। ठीक है, अगर आपको मेरे अंदर कुछ बहुत गलत दिखाई देता है तो अगर आपको मेरे साथ बैठ के नहीं शेयर करना है या आपकी चॉइस, फाइन, ये परखने की शक्ति। लेकिन लेबल करना, जजमेंटल हो जाना, क्रिटिकल हो जाना, ये लोग तो ऐसे हैं, ये लोग तो ऐसे हैं, ये ऐसे ही करते हैं, फायदा क्या है? इससे तो आपकी पावर डिप्लीट हो जाएगी, मेरा नुकसान नहीं होगा।
1: लेकिन मैं परखा कि ये आदमी, ये संत का ये सब दरबार खोल के बैठा है और इतना बड़ा आश्रम खोल के बैठा है, वहां मैं अपने बच्चों को भी बोलूंगा, वाइफ को भी बोलूंगा कि वहां बिल्कुल जाने की कोई जरूरत नहीं है आपको,
2: विदाउट बीइंग क्रिटिकल।
1: समझाएं कैसे विदाउट बीइंग क्रिटिकल?
2: कोई भी चीज ऐसी ना करें जिससे अपने ही शक्ति डिप्लीट होती है। इट्स लाइक ये दिखा, ये ठीक नहीं है, उधर से नहीं चलो, पांव टूटेगा, सिंपल। इतना ही परखना है सिर्फ, उधर नहीं
1: चक्कर में आ जाते हैं ना इनके,
2: तो वो अपनी परखने की शक्ति की कमी
1: है। मेरे अगर बच्चे और बीवी है तो मेरा काम है ना, मैं तो परख लिया तब उनको समझाऊं कि ऐसा है, ऐसा ऐसा मत।
2: वेरी ट्रू, विदाउट बीइंग क्रिटिकल एंड जजमेंटल अबाउट द अदर पर्सन, दिस इज नो, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट।
1: सिस्टर, लोग अपनी जायदाद दे देते हैं ऐसे लोगों को, ज्वेलरी दे देते हैं, पैसा देके बैठ जाते हैं, क्या क्या कैसे कैसे तो काम होते हैं, आपको मालूम है क्या?
2: अपनी परखने की शक्ति की कमी है ना। हमें करना है करें, हमें नहीं करना है नहीं करें, इज फाइन। लेकिन जो हम बहुत ज्यादा दूसरे को क्रिटिसाइज करने की जर्नी पे चले जाते हैं, राइट? सपोज मेरी वाइट ड्रेस है लेकिन उस पे काले दाग है, ठीक है, आपने देख लिया, आपको नहीं आना नजदीक, दूर रहना है, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, परख लिया। लेकिन दूर बैठकर अगर आप मुझ पर लगे हुए काले दाग के बारे में सिर्फ डिस्कस करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे, उससे नफरत करेंगे, तो उससे मेरे काले दाग पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं अपनी यात्रा पर हूं अपने दाग को कम करने के लिए, लेकिन मुझे क्रिटिसाइज करते करते आपकी ड्रेस पर काले दाग ज्यादा लग जाएंगे।
1: मेरे ड्रेस पर काले दाग कैसे लगेंगे सिस्टर? मुझे एक बहुत जरूरी ये जानना है और मैं इसको इमीडिएटली नेक्स्ट एपिसोड में आपसे ये पूछूंगा।
2: श्योर, थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू, ओम शांति।
3: वी डू नॉट सी द वर्ल्ड थ्रू अ विंडो, we see the world through a mirror. Seeing the world through a window means seeing people and situations as they are. Seeing the world through a mirror means seeing situations and people through our sanskars. When we see people through the filter of our sanskars, we will perceive their emotions, words and actions according to our sanskars, and we may not be able to understand them truly as they are. Raj Yoga meditation helps to silence our turbulent sanskars of ego, anger, hurt. This helps us to understand situations and people as they are, and this increases our power to discern. Power to discern or discriminate means to know what is right, what is wrong, what is true, what is false. Often we discern what is right or wrong based on acquired information, people's opinion, or belief systems created by society. This may or may not be right for us. Discernment based on our innate wisdom, which we call the inner voice or intuition, is right for the soul.
4: If you wish to discuss your problem or have a question to ask, or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 099-99-559-660.

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: आदत बनी कैसे? करते करते करते करते आदत बनी। अब एक नए तरीके से उन्हीं चीजों को करेंगे तो एक नई आदत बन जाएगी। जब हम एक ही तरह से सोचते जाते हैं हर सिचुएशन में, अगर हमारा एक टिपिकल वे ऑफ रिस्पॉन्ड होने लग गया या रिएक्ट होने लग गए, लेट्स से किसी की आदत हो गई इरिटेट होने की कि चिढ़ के बोलना है, कुछ भी हुआ चिढ़ के बोलना है। किसी की आदत हुई क्रिटिसाइज करना है कि सामने वाले ने कुछ भी काम किया हो ना, उसने उसके अंदर कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेना है। अब करते करते एक बार किया होगा, दो बार किया होगा, दस बार किया होगा, दस लोगों को किया होगा, करते करते उस आत्मा को खुद ही नहीं पता चलता।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब तक हम चाहिए चाहिए करते हैं तब तक हम औरों पे डिपेंडेंट हैं। अब हमें समझ में आ गया कि हम खुद भरपूर हैं, हमें उसका सिर्फ ध्यान रखना है। जैसे ये कप है, अब अगर मुझे लगे कि ये जो मेरा कप है ये खाली है, तो आई विल कीप टेलिंग यू कि इस कप को भरिए। तो आई एम डिपेंडेंट, जब आप भरेंगे तब, और अगर आप भर पाए, और अगर आपके पास है उसको भरने के लिए, यू नो यू हैव टू हैव दैट लव टू गिव इट टू मी, नहीं तो आई कैन कीप वेटिंग टिल द एंड ऑफ माई लाइफ फॉर पीपल टू फिल माई कप, इट विल नेवर गेट फिल्ड। एंड राजयोग से हमने ये रियलाइज किया कि मेरा जो कप है ये ऑलरेडी भरा हुआ है, मैं हूं ही प्रेम स्वरूप। अब मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको बहुत संभाल के चलना है, कि आपका कोई शब्द, कोई और परिस्थिति मुझे उस व्यर्थ चिंतन की तरफ ना ले जाए जिससे मेरी खुशी गायब हो। हम ये वर्ड भी ये यूज करते हैं कि मेरी खुशी को वो छीन गई, मतलब वो मेरे पास ऑलरेडी थी। उतना ध्यान हमें रखना है कि इस भरे हुए कप को अंदर भरा हुआ ही रहने देना है। जब तक उसको खाली समझेंगे मांगते रहेंगे, एंड दैट जर्नी जस्ट गोज ऑन लाइक दैट।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: नमस्कार, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों में उड़ान होती है। नमस्कार, मी आहे आपल्यासाठी शुभ असलेली शुभांगी

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: जब हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं, दैट इज नॉट फेयर, बिकॉज पिता है, हम बच्चे हैं, वो कभी नहीं ये डिसाइड करेगा कि एक बच्चा ट्रेन ब्लास्ट का विक्टिम हो जाए और दूसरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। एक पिता कभी ये नहीं कर सकता है। और अगर परमात्मा ये कर भी रहा है तो देन वी कैन क्वेश्चन ऑन व्हाट बेसिस। परमात्मा हमारी जीवन की यात्रा नहीं डिसाइड कर रहा है, हमारे अपने किए हुए कर्म, एंड दैट्स व्हाई थॉट्स लीड्स टू डेस्टिनी। उसमें सब थॉट्स जो अभी किए, जो बहुत सारे पहले, लेकिन वही थॉट्स अब उस डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। अब जो हुआ हादसा, वो पिछले किसी कार्मिक अकाउंट की वजह से हुआ, लेकिन उस हादसे के बाद अब क्या करना है, एटलीस्ट दैट इज इन माई कंट्रोल नाउ।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की डोर में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। मैं स्मिता जयकर, खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: क्षमा का सद्गुण। पात्र परिचय: वेदांत, आदित्य, आदित्य प्रकाश, यश, दृष्टि, उन्नति। लेखिका: सुधापुरी।
2: हाँ, पकड़ लिया।
3: हा हा, अब मैं पकड़ूंगी। सब भागो, दीदी आप भी तो खेलो।
4: ठीक है, तुम सब भागो और मैं पकड़ती हूँ। रुको रुको, ठहरो, बहुत खेल लिया ये पकड़म पकड़े का खेल। आओ कुछ नया खेलते हैं।
2: और क्या खेल सकते हैं?
4: क्रिकेट खेलें।
3: क्रिकेट? और हम लड़कियाँ?
4: हाँ, क्यों नहीं, मैं तो बहुत खेलती हूँ क्रिकेट।
5: और क्या, तुम लोग भी खेलना हमारे साथ, प्रैक्टिस हो जाएगी और आगे चलकर लड़कियों की टीम बनाना।
2: कोई बॉल, बैट या रैकेट तो है नहीं हमारे पास?
4: उसकी कोई चिंता नहीं, कोई चपटा सा फट्टा भी हो तो काम चला लेंगे। ऐसे तो हाथों को बैट बनाकर हैंड क्रिकेट भी खेल सकते हैं।
2: वो देखो, वहाँ वो लड़का बैठा है, उसके पास कितना अच्छा बैट और बॉल है। उससे जाकर कहते हैं कि हम सब मिलकर खेलते हैं।
3: हाँ चलो चलो।
5: हमारे साथ बैट बॉल खेलोगे?
6: तुम लोगों के पास अपना बैट है?
3: नहीं।
6: तो तुम मेरे ही बैट से खेलोगे? मैं नहीं खेलता।
3: हम कल ले आएंगे ना, मेरे पास बैडमिंटन रैकेट है, हम कल उससे बैडमिंटन भी खेल सकते हैं।
6: हाँ पर आज तो नहीं है ना तुम्हारे पास। जाओ जाओ, मैं नहीं खेलता तुम्हारे साथ।
2: तो क्या तुम आरती उतारोगे अपने बैट बॉल की?
4: कोई बात नहीं, चलो चलो, इसे अकेले ही रहने दो, हम सब कुछ और खेल लेते हैं।
2: हाँ हाँ, ऊंच नीच खेलते हैं, नहीं तो पोशंबा बाय पोशंबा खेल लेते हैं।
4: मैं बताऊं, लंदन लंदन खेलते हैं।
3: ठीक है, इसमें वही होता है ना कि लंदन सुनते ही सब मूर्ति बन जाते हैं और डाइनर को सबको हंसाने की कोशिश करनी होती है।
4: हाँ, और जो सबसे पहले हंस पड़े उसे सजा मिलती है, जैसे कुछ गाओ या जोक सुनाओ या कुछ भी करके दिखाओ।
2: चलो चलो शुरू करो, पहले मेरी डैन। आहा, हंसी तो आ रही है। देखो देखो, थोड़ी दिख भी रही है। आई आई आई आई, आहा आ गई। जी नहीं, ये बेईमानी है, मैं तो बिल्कुल नहीं हंसा था।
7: वाह जी वाह, सारे दांत दिख रहे थे और अभी कह रहे हो हंसा नहीं। चलो चलो, चुपचाप अपनी डैन दे दो। हाँ
3: हाँ हाँ, मैंने भी इससे हंसते हुए देखा था। भाई अब तुम्हारी डैन, चलो कोई भी चीटिंग नहीं करेगा। हाँ
2: अच्छा भाई, ठीक है, चलो अब मैं बोलता हूँ। लंदन लंदन लंदन स्टैचू। गुड़िया कब तक रूठी रहोगी, कब तक ना हंसोगी, आई रे आई हंसी आई।
3: ये बात गलत है, तुम कितने कार्टून जैसी शक्लें बना रहे थे।
2: क्यों भाई, मैं कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हें हंसाने के लिए।
6: सुनो, मुझे भी खिलाओगे?
2: अरे ये कौन है, पहले तो कभी नहीं देखा।
3: धत, कितने बुलक्कड़ हो, इसे भूल गए?
5: अरे ये वही तो है, इसने हमें अपने साथ खिलाने से मना कर दिया था।
7: हमने इसे कहा था कि हमें अपने बैट बॉल से खिला ले, पर इसने मना ही कर दिया।
6: सॉरी, कुछ ही देर में मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। अकेले मैं अपनी गेंद और बैट से थोड़ी ही खेल सकता हूँ। मैं दूर से तुम लोगों को इतने मजे करते हुए देख रहा हूँ, मेरा भी तुम्हारे साथ खेलने का दिल कर रहा है।
5: वाह क्या बात है, जब हमने तुम्हें अपने साथ बैट बॉल खिलाने के लिए कहा था तब क्या हुआ था, तब तो मना ही कर दिया था।
3: सॉरी।
2: कोई सॉरी वॉरी नहीं, अब बैठो अकेले अपने बैट बॉल के साथ, चल भाग यहाँ से।
3: ठीक है।
4: अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? उस बच्चे को अपने साथ क्यों नहीं खिला रहे?
3: दीदी, पहले इसने हमारे साथ खेलने से मना नहीं कर दिया था।
5: हाँ, बड़ी अकड़ दिखा रहा था अपने नए बैट बॉल की।
4: पर अब तो वह तुम्हारे पास खेलने आया था ना, सॉरी भी बोल रहा था। उसे अपनी भूल का एहसास हो गया था, क्यों?
3: मतलब हमारा ये व्यवहार ठीक नहीं है।
7: लगता है इसे अपनी भूल का पता चल गया है, और फिर वो सॉरी भी तो बोल रहा है।
5: हाँ, मेरी मम्मी भी कहती है सॉरी कहना बड़ी हिम्मत का काम है।
3: अपनी गलती मान लेना और पश्चाताप करना बड़प्पन की निशानी होती है।
4: अरे, उस दिन तुम सबको मैंने गांधी जी के बारे में बताया नहीं था क्या?
5: क्या?
4: कि किस तरह उन्होंने भी अपने पिताजी से एक बार चिट्ठी लिखकर अपनी गलतियों की क्षमा मांगी थी।
5: हाँ हाँ, सुनाई तो थी कहानी, पर
4: जैसे ही उन्होंने अपना अपराध स्वीकार करके माफ़ी मांग ली और फिर से अपनी गलती न दोहराने की प्रतिज्ञा ली, उनके पिता की आंखों में प्यार और क्षमा के आंसू आ गए थे। वे सुबुक सुबुक के रोने लगे थे।
3: और हमें देखो, इस बच्चे की एक छोटी सी भूल भी माफ नहीं कर पा रहे हैं।
4: ठीक सोच रहे हो सब, वह भी तो अपनी गलती मान रहा है
7: और सॉरी भी बोल रहा है। मैं उसे बुला के लाता हूँ।
5: हाँ, फिर मिलके लंदन भी खेलेंगे और क्रिकेट भी।
4: ये हुई ना बात।
7: बड़ा मजा आएगा।
4: और क्षमा करने के अच्छे गुण से जो एक नया दोस्त बनाएगा वो अलग।
8: हाँ दीदी, सजा देने वाले से क्षमा करने वाला ज्यादा बड़ा होता है।
4: शाबाश, बड़े सयाने हो गए हो सब। हे सुनो, रुको, आओ खेलते हैं, आ जाओ।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 करोड़ सेल्स है, दिस इज द ब्रेन, ओके 10,000 करोड़ सेल्स। एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 करोड़ सेल्स आर, ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 मोर सेल्स इन द बॉडी, 10,000 करोड़ सेल्स इन द ब्रेन इंटू 10,000, दिस इज द ह्यूमन नेटवर्क, सो मेनी स्विचेस कनेक्टेड टू सो मेनी स्विचेस। अब जब इतने स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा। तो जब ब्रेन में 10,000 करोड़ सेल्स कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स इन द बॉडी, एंड हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सिक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है, और हमने कितनी आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे। अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उस समय याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते हैं वैसे करना।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।

हवा मतवाली फिजा संसार सुहाना लगता है। कर लेना किसी से प्यार कहीं

सुनना चाहते हो? सुनो, मैं एक चांद हूँ जिसके माथे पे एक दाग है, मेरा दिल जलता हुआ चिराग है।

रूपनगर की भीड़ में हमने खुद को भुलाना।

तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या।

0: प्रिय, किसी का मन ना तोड़ो, देखो सुनो जाने दो छोड़ो।
1: नारायण नारायण, बात हुई क्या कृष्ण मुरारी, क्यों रूठी है सुंदर नारी।
0: अच्छे समय पर आप पधारे, विपदा में है प्राण हमारे। रुक्मिणी कहे मेरे संग आओ, भामा कहे नाथ मत जाओ।
1: जिसका निमंत्रण आया पहले, भगवान जाए उसके महले।
2: नारद जी
1: नारायण।

0: नारायण, क्यों बैठी हो खोई खोई? मेरे योग्य है सेवा कोई?
1: भरे नहीं अभी खाओ पुरानी, फिर आए हो आग लगाने।
0: मैं सबका सेवक तुम जानो, चाहे परख लो जो ना मानो।
1: कोई उपाय आप बताएं, वो सौतन के घर ना जाए।
0: अच्छा, तो एक व्रत रखोगी, अपने पति का दान करोगी?
1: वाह वाह, ढूंढा खूब उपाय, आपसे तो बस राम बचाए। जिस दिन देखूं जिनके सपने, हो बैठूं वो प्रीतम अपने।
0: तुम नहीं समझी, कैसा खोना, उनके बराबर तोल के सोना, मोल ब्राह्मण को दे देना, मोहन को वापस ले लेना।
1: बस इतना ही? आप करें व्रत की तैयारी, भामा जीती रुक्मिणी हारी।
0: परंतु कृष्ण है भारी जितना, तेरे पास है सोना इतना।
1: वाह नारद जी, सोने के भंडार जो खोलूं, एक नहीं 100 कृष्ण में तोलूं।
0: नारायण नारायण।

0: धोखा है राम दुहाई, इतनी भारी नहीं बनाई।
1: ये तेरा सोना नकली है, मेरा मनमोहन असली है।
0: मेरे पास जो था ले आई, दे दू मुझको कृष्ण कन्हाई।
1: दे दू लेके जरा सा सोना, मोहन है या कोई खिलौना। चल तुझको संसार में बेचू, दासों के बाजार में बेचू। लो ये तंबूरा बंसी बजैया, पकड़ो ये करताल कन्हैया।
2: भामा
0: स्वामी।
1: कैसा स्वामी, किसका स्वामी? स्वामी की होगी नीलामी।
0: नीलामी?

0: अपना घर जो आप जलाए उसकी बिगड़ी कौन बनाए।
1: भूल हुई मुझसे ये भारी, जाऊं कहां विरह की मारी।
0: रुक्मिणी से तुम बात ये पूछो, कैसे मिलेंगे नाथ ये पूछो।
1: रुक्मिणी मेरी भूल भुला दे, कोई जतन कर कृष्ण मिला दे। आ भामा मैं तुझ पे वारी, तू है मेरे कृष्ण की प्यारी। क्या ये दुख केवल तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है।